मीडियम वेव 305.81 मीटर यानी 981 किलो हर्ट्स और एफएम बैंड 102.8 मेगा हर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। आज मंगलवार है। शक संवत 1948 के वैशाख मास की 29वीं तिथि, तदनुसार 19 मई सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:57 होने को है। हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

0: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6 बजने वाले हैं। हिंदी में समाचार अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत नॉर्वे को समझौते के तहत 100 अरब अमेरिकी डॉलर निवेश और भारत में 10 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मिलकर प्रयास करना चाहिए। श्री मोदी कल ओस्लो में भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस सम्मेलन में नॉर्वे के क्राउन प्रिंस हाकोन और प्रधानमंत्री योनास गहर स्तोरे भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की।
2: आज नॉर्वे और भारत के बिजनेस और रिसर्च कम्युनिटी के बीच होना, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। कुछ साथियों को जो सुना, ये सुनकर ये विश्वास होता है कि हमारी पार्टनरशिप की नींव बहुत ही मजबूत है। ये केवल संभावनाओं की नहीं, ये एक प्रूवन पार्टनरशिप है।
1: प्रधानमंत्री ने भारत की तेज आर्थिक प्रगति, युवा शक्ति, निवेशकों के अनुकूल माहौल और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का उल्लेख करते हुए नॉर्वे से मछली उत्पादन, जहाज निर्माण, हरित ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी, महत्वपूर्ण खनिज और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों में अधिक निवेश का आह्वान किया। उन्होंने भारत की हरित ऊर्जा नीति और नॉर्वे की स्वच्छ ऊर्जा, समुद्री क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन कम करने तथा जलवायु वित्तीय सहयोग में वैश्विक नेतृत्व की भी सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के व्यापारी समुदाय से नए सहयोग क्षेत्रों की पहचान कर आर्थिक साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से भी मुलाकात करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए उद्योगपतियों से भी बातचीत करेंगे।
3: श्री मोदी इटली की प्रधानमंत्री के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता करेंगे, जिसमें समुद्री सुरक्षा और मजबूत कनेक्टिविटी प्रमुख विषय होंगे। इटली भारत को केवल यूरोप ही नहीं बल्कि पूरे भूमध्य सागरीय क्षेत्र तक पहुंच प्रदान करता है। आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी और रक्षा सहयोग के दृष्टिकोण से यह अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह 5 देशों की यात्रा केवल कूटनीतिक प्रयास नहीं है, ये भारत के भविष्य के ऊर्जा मार्गों, AI साझेदारी, सेमीकंडक्टर पहुंच, रक्षा निर्माण और वैश्विक हितों को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया है। हनोई में कल भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारत पहले परमाणु हमला नहीं करने की नीति के प्रति प्रतिबद्ध है, लेकिन वो परमाणु धमकी के आगे नहीं झुकेगा और किसी भी दुश्मन की दुस्साहसपूर्ण कार्रवाई का करारा जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये केवल तकनीकी प्रगति ही नहीं बल्कि नए भारत की पहचान भी है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नई दिल्ली में देश में वाटर मेट्रो सेवाओं की शुरुआत को लेकर समीक्षा बैठक की। श्री सोनोवाल ने कहा कि केंद्र सरकार पहले चरण में गुवाहाटी समेत 18 शहरों में वाटर मेट्रो सेवा शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि वाटर मेट्रो सेवा पर्यावरण अनुकूल और किफायती सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था होगी। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट को जल्द ही संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। आईपीएल क्रिकेट

0: में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्ले ऑफ में जगह बना ली है। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से जयपुर में शाम 7:30 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से बोल रहे हैं। 6:05 हुए हैं। कुछ ही पलों में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। शुभारंभ कर रहे हैं समूह स्वर में मातृ वंदना से। रचना हरि ठाकुर की है।

अनुराधा पौडवाल के स्वर में अभी आपने सुना मीराबाई का भक्तिपद। आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। लीजिए सुनिए पंडित भीमसेन जोशी के स्वर में पंडित नरेंद्र शर्मा की रचना।

0: जगजीत सिंह के गाए इसी भजन के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए चिंतन। आलेख श्री रविन्द्र गिन्नौरे का है।
1: कृपया ध्यान दीजिए, सभा स्थल में बैठे श्रोताओं को संबोधित करते हुए कहा जाता है, स्कूल में शिक्षक कहते हैं ध्यान से पढ़ो। अक्सर हम सुनते हैं जब हमसे कोई कहता है मेरी बात पर ध्यान देना, मगर हमने गंभीरता से कभी नहीं सोचा कि ध्यान क्या है, ध्यान कैसे दिया जाए। ध्यान यानी सजगता। हम सजग होंगे तो सभा स्थल में भाषण देने वाले की बात अच्छी तरह समझ सकेंगे। स्कूल में शिक्षक जो पढ़ा रहे हैं वो हमें याद रहेगा। किसी की कही हुई बातें हम भूलेंगे नहीं। इसके बावजूद ध्यान क्या है हम नहीं समझ सके हैं, और हमने तो इस ओर गंभीरता से ध्यान ही नहीं दिया। ध्यान तो ज्ञानी ध्यानी करते हैं, हम यही समझते हैं। आध्यात्मिकता से जोड़कर देखते हैं ध्यान को। सांसारिक लोगों के लिए ध्यान नहीं है, पर ऐसा कदापि नहीं है। सदियों पहले आध्यात्मिक क्रांति के साथ ध्यान विकसित हुआ। यही ध्यान हमारी जिंदगी में बढ़ते हुए तनाव को कम कर सकता है, नीरस होते जीवन को दे सकता है एक नई दिशा। ध्यान करने से अनेक असाध्य बीमारियों का इलाज भी संभव हो जाता है। मस्तिष्क का अध्ययन करते न्यूरोबायोलॉजिस्ट ने ध्यान करने वालों का परीक्षण किया। ऐसे परीक्षण के नतीजे में हैरतअंगेज तथ्य सामने आए। ध्यान करने वालों के मस्तिष्क बेहतर काम करते हैं और ऐसे लोग कम बीमार होते हैं। यही नहीं, घातक रोगों का उपचार आसानी से किया जा सकता है ध्यान को अपनाकर। लोगों का रुझान बदल रहा है, कई लोग ध्यान की ओर बढ़ रहे हैं। वजह है कई गंभीर बीमारियों की चिकित्सा में सहायक सिद्ध हो रहा है ध्यान। पश्चिमी देशों में ध्यान एक बढ़ता हुआ कारोबार बन चुका है। बढ़ते हुए तनाव और उसके दुष्प्रभाव को खत्म करने, मन को नियंत्रित करने के लिए लोग ध्यान की ओर आने लगे हैं। ध्यान कोई गूढ़ नहीं है जिसे सीखने के लिए किसी कारोबारी गुरु की जरूरत नहीं है। इसके लिए किसी को शिष्य बन दीक्षा लेना जरूरी नहीं है। ध्यान तो हर कोई कर सकता है, बच्चा बूढ़ा जवान सभी ध्यान कर सकते हैं, कहीं भी कभी भी। ध्यान का ध्येय मन को भटकने से रोकता है। हम ध्यान के लिए कैसे भी बैठें, अपनी आंखें बंद कर केवल और केवल अपनी श्वास पर पूरा ध्यान लगाएं। पूरा ध्यान सांस के लेने और छोड़ने पर लगाएं। जब हम अपने सामान्य श्वास प्रवाह के साथ चलेंगे तब मन विचार शून्य हो जाएगा, भटकता हुआ मन स्थिर हो जाएगा, यानी मन में कोई विचार नहीं आएगा। जब ऐसी स्थिति आएगी तब शरीर में वैश्विक ऊर्जा का प्रवेश होने लगेगा। हमारे भौतिक शरीर में जब पर्याप्त मात्रा में वैश्विक ऊर्जा भर जाएगी तब ध्यान की चरम परिणति होगी। गौतम बुद्ध ने ध्यान करने की विधि अपने शिष्यों को सिखाई थी। बुद्ध ने कहा था, आनापान सति, इसे विस्तार से देखें। आन का अर्थ श्वास लेना, अपान का मतलब श्वास छोड़ना, सति यानी के साथ मिलकर रहना। सरल शब्दों में श्वास लेने और श्वास छोड़ने के साथ साथ रहना। हम सांस सहजता से लें, सांस की क्रिया स्वाभाविक रूप से चलती रहे, न सांस रोके न ही उसे देर तक रखें। मन इधर उधर भटके तो तुरंत विचारों पर रोक लगाएं और पुनः सांस की गति के साथ रहें, बस यही स्थिति बनाए रखें। सांस के प्रति जागरूक रहने का मतलब है विचारों को मन पर नियंत्रण न करने देना। जब मन विचारों से रिक्त हो जाता है तब वैश्विक बातें हमारे शरीर में प्रवेश करने लगती हैं। इसी के साथ हम नए अनुभवों के संग विश्व चेतना के साथ जुड़ने लगते हैं। ध्यान हमें सब कुछ स्पष्ट देखने की क्षमता प्रदान करता है, जागृति की ओर ले जाता है ध्यान। यही जागृति हमें एहसास कराती है कि हम दिव्य हैं, अनंत हैं। जागृति तक पहुंचने के लिए हम जो आत्मिक यात्रा करते हैं वो हमें खुद करनी पड़ती है। ध्यान भौतिक जीवन से परलौकिक यात्रा का मार्ग प्रशस्त करता है। तो आइए ध्यान करें और इसके फायदे को अनुभव करें, खुद ध्यानी बने, मृत्यु लोक में अपने जीवन को संवारे और एक नए अनुभव के साथ देखें अपने आप को।
0: चिंतन अभी आप सुन रहे थे, आलेख श्री रविन्द्र गिन्नौरे का था। ये आकाशवाणी रायपुर है। अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:35 हुए हैं। लीजिए सुनिए श्री रामचरितमानस का गान।

वाल्मीकि आश्रम में पहुंच दंडवत प्रणाम कुशलक्षेम की औपचारिकताओं के पश्चात श्री राम ने ऋषिवर से कोई ऐसा स्थान बताने की विनती की जहां पत्तों घास आदि की कुटी बनाकर वो कुछ काल निवास कर सके। ऋषि बोले, हे राम, आप वेद की मर्यादा के रक्षक हैं और जनक नंदिनी माया स्वरूप हैं। हे प्रभु, आपका स्वरूप वाणी तथा बुद्धि से परे अव्यक्त अकथनीय और अपार है। वेद नेत नेति कहकर उसका वर्णन करते हैं। इस दृश्य जगत के आप दृष्टा हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश आपके इंगित पर गतिशील होते हैं। जब वे भी आपके मर्म को नहीं जानते तो अन्य कोई कैसे जान सकता है? आपको वही जान सकता है जिसे आप जानने देते हैं, और जानते ही वो आपका स्वरूप बन जाता है। ऐसे आप भला मुझसे पूछ रहे हैं कि कहाँ रहें, किंतु मुझे आपसे ये पूछने में संकोच हो रहा है कि आप वो स्थान बता दें जहाँ आप नहीं हैं।

0: श्री रामचरित मानस गान अभी आप सुन रहे थे। आज की कड़ी में मुख्य स्वर ए हरिहरन का था। आकाशवाणी की इस संगीतमय प्रस्तुति के संगीत निर्देशक हैं सतीश भाटिया। हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से बोल रहे हैं। 6:45 हुए हैं। कृषि चर्चा में लीजिए सुनिए व्यावसायिक दुग्ध उत्पादन के लिए चुनौतियां। इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर सुभाष कुमार वर्मा।
1: नमस्कार किसान भाइयों, आज हम दूध उत्पादन व्यवसाय को शुरू करने के लिए जो चुनौतियां आती है उसके बारे में बात करेंगे। दूध उत्पादन को शुरू करने वाले लोगों का आमतौर पर नए दूध उत्पादक के रूप में या भविष्य में आने वाली सभी चुनौतियों का सामना करके सफलता प्राप्त करने के बारे में होते हैं पता होना चाहिए। दूध उत्पादन को शुरू करने के समय आने वाली कुछ सामान्य चुनौतियां इस प्रकार। दूध उत्पादन का व्यवसाय पूंजी परिश्रम और पर्याप्त प्रबंधन पर आधारित होता है, इसलिए इसमें पूंजी जो भी आप लगाएंगे उसे अच्छी तरह से यूज कर सके एवं प्रबंधन के लिए आप जनरली इसमें डॉक्टर्स या मैनेजर को रख सकते हैं। इसके लिए उच्च बुनियादी ढांचे की लागत एवं चिकित्सीय लागत की आवश्यकता होती है। इसके लिए आप अपने नजदीकी चिकित्सालय पशु चिकित्सालय से संबंध स्थापित कर अपने पशुओं का इलाज करवा सकते हैं। बिना किसी रणनीति के और योजना के दूध उत्पादन का व्यापार बहुत ही परेशानी का सबक हो सकता है, क्योंकि दूध बहुत ही पेरिसेबल आइटम्स होते हैं। पेरिसेबल्स में जो जल्दी खराब होने वाली चीजें होती है। एक छोटी सी गलती और अनुचित देखभाल गाय भैंसों को विभिन्न बीमारियों का कारण बन सकती है। इसके लिए उच्च उत्पादक प्रजनन क्षमता को बनाए रखने की आवश्यकता होती है। इसके लिए गायों को उच्च प्रजनन क्षमता वाले मेल से प्रजनन करवानी चाहिए ताकि गाय की जो बीमारी सहने की क्षमता एवं दूध उत्पादन की क्षमता बढ़ सके। व्यापार के सभी पहलुओं पर गहन एवं व्यापक ज्ञान की आवश्यकता होनी चाहिए। इसके लिए समय समय पर ट्रेनिंग स्थापित किए जाते हैं, उसे आप करते रहें जिससे आपको प्रबंधन एवं उसकी जो व्यापक ज्ञान की हो जाएगी। आपको दूध या इसके उत्पादों का विपणन भी काफी चुनौतीपूर्ण होता है। जैसे मैंने बोला कि दूध बहुत ही पेरिसेबल प्रोडक्ट है, जैसे कच्चा दूध अगर 2 घंटे बाहर रह जाए तो फटने की संभावना जल्दी हो जाती है, खराब होने की संभावना हो जाती है, तो इसे बचाने की आपको जानकारी होनी चाहिए एवं प्रोडक्ट को भी संभाल कर विपणन या ठंडा कर रखने की जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए उच्च कौशल और प्रतियोगी परिश्रम की आवश्यकता होती है। इसके लिए आपको उच्च कौशल यानी ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। दूध के उत्पादों की गुणवत्ता और स्वच्छता को बनाए रखने भी बहुत जरूरी है। दूध उत्पादकों की गुणवत्ता, जैसे कि जो दूध है उसे खराब न होने के लिए ठंडा करना, बराबर ठंडे 5°C पे उसे ठंडा रखना एवं उसकी स्वच्छता, दूध हमेशा स्वच्छ हो या पैकेजिंग किया हुआ हो या फिर स्टेरिलाइज हो, इस तरह से कोई भी प्रोसेस करके उसे बचाने की जानकारी आपको होनी चाहिए। इस व्यवसाय को शहरी क्षेत्रों और शहरों में शुरू करना बहुत ही चुनौतीपूर्ण है क्योंकि इसकी लागत बहुत अधिक होती है, तो इसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए। इस व्यवसाय को गाय के साथ शुरू करना प्रारंभ में बहुत कम लाभ का मार्जिन देता है क्योंकि गायों की परिपक्वता और दूध के उत्पादन शुरू करने में समय लगता है, इसलिए इसमें गाय और भैंसों दोनों को शामिल करें। भारत में डेयरी उत्पादों का बाजार पूरे साल भर सक्रिय रहता है। यह पर्यावरण के अनुकूल व्यवसाय है जो वातावरण को भी प्रदूषित नहीं करता। इस व्यवसाय के लिए आपको उच्च स्तरीय कुशलता की कोई आवश्यकता नहीं है। परिवार में कम पूंजी से छोटे स्तर पर आसानी से इसे स्थापित किया जा सकता है। यह बेरोजगार, शिक्षित और अनपढ़ युवाओं के लिए व्यापार का महान अवसर है। यदि इस व्यवसाय को उचित योजना एवं प्रबंधन के साथ किया जाए तो अधिकतम उत्पादन देता है।

0: के लिए एक व्यक्ति को अपना कारोबार अच्छे तरह से शुरू करने के लिए ट्रेनिंग की आवश्यकता बहुत जरूरी होती है। एक व्यक्ति को गंभीरता से व्यवसाय को शुरू करने के लिए उसे व्यापार शुरू करने से पहले अपने विपक्ष विश्लेषण करना चाहिए। इससे कारोबार में सब कुछ विस्तार से जानने और आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता होती है। नमस्कार।
1: व्यावसायिक दुग्ध उत्पादन के लिए चुनौतियां, इस विषय पर अभी जानकारी दे रहे थे डॉक्टर सुभाष कुमार वर्मा। कार्यक्रम था कृषि चर्चा। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण।

श्रोताओं, आइए आपको हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। आज रात 8:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन, इसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी सुबह 7:05 पर सुनिएगा सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर। मोर भुइयां छत्तीसगढ़ी में समन्वित साहित्यिक कार्यक्रम में आज के आकर्षण होंगे छत्तीसगढ़ी भाखा साहित्यमा डॉक्टर पालेश्वर प्रसाद शर्मा के योगदान। इस विषय पर वार्ताकार होंगे श्री विजय मिश्र अमित। सुनिएगा कहानी संगवारी के शर्त, कहानीकार होंगे श्री मान सिंह ठाकुर और श्री तोषण कुमार चुरेंद्र का कविता पाठ आप सुनेंगे। संपादक और प्रस्तुतकर्ता होंगे महेंद्र साहू और इस कार्यक्रम का प्रसारण समय होगा सुबह 8:30 पर। लोक संगीत के कार्यक्रम में सुबह 9:40 और रात 8:15 पर कलाकार होंगे खुमान लाल साव और उनके साथी। सुबह 10 सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम उजाले की ओर NCERT। ये प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे दोपहर 12 और शाम 5 होगा प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ और शाम 6:30 पर सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़ियां। समूह गान शिक्षा के कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे असमिया भाषा का पाठ, रचनाकार होंगे सतीश दास। दोपहर 12:30 पर सुनिएगा छत्तीसगढ़ी लोकगीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आप मन के गीत। महिलाओं के कार्यक्रम घर आंगन में दोपहर 1:30 पर आप सुनेंगे आज के गोठ रद्दा चलत राखो सावधानी। सुनिएगा श्रीमती द्रौपदी साहू का कविता पाठ और दादी माँ के नुस्खा। शाम 5:30 पर शाम 5:10 पर युवा श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम युवावाणी। इसमें अपन गोठ का विषय होगा पढ़ाई लिखाई के महत्व, होगा प्रश्नोत्तरी क्रम सवाल जवाब और माटी के गीत। किसान साथियों के कार्यक्रम चौपाल में शाम 7:21 पर आज की बात का विषय होगा वनोपज का गुणवत्तापूर्ण संग्रहण है ज्यादा आमदनी का आधार। शाम 7:30 पर किसानवाणी में सुनिएगा फोन इन कार्यक्रम हेलो किसानवाणी, संचालन नीतू शर्मा का होगा, प्रस्तुतकर्ता होंगे शशि प्रकाश पांडे। भीड़ में गुम होते घर श्री सुरेश तिवारी का लिखा ये रूपक आप सुनेंगे रात 9:30 पर, प्रस्तुति मिर्जा मसूद की होगी। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में पंडित निखिल बैनर्जी का सितार पर बजाया राग बागेश्री सुनिएगा रात 10:30 पर। रात 10 आप सुनेंगे श्रोताओं की पसंद पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। सुबह 11:30 पर सुनिएगा सदाबहार नगमे। चित्रपट संगीत का प्रसारण समय होगा सुबह 9:15, 10:30, दोपहर 1:05, 2:00, 2:30, शाम 7:00, रात 8:00 और रात 9:15 पर।

0: कार्यक्रम विवरण अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:55 होने को है। समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं, पहले संस्कृत और फिर हिंदी में।
1: एम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः कृष्णप्रसादोपाध्यायः।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नॉर्वे को 100 अरब अमरीकी डॉलर निवेश और भारत में 10 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मिलकर प्रयास करना चाहिए। श्री मोदी कल ओस्लो में भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस सम्मेलन में नॉर्वे के क्राउन प्रिंस हाकोन और प्रधानमंत्री योनस गहरस्तुर भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की।
1: आज नॉर्वे और भारत के बिजनेस और रिसर्च कम्युनिटी के बीच होना, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। कुछ साथियों को जो सुना, ये सुनकर ये विश्वास होता है कि हमारी पार्टनरशिप की नींव बहुत ही मजबूत है। ये केवल संभावनाओं की नहीं, ये एक प्रूवन पार्टनरशिप है।
0: प्रधानमंत्री ने भारत की हरित ऊर्जा नीति और नॉर्वे की स्वच्छ ऊर्जा, समुद्री क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन कम करने तथा जलवायु वित्तीय सहयोग में वैश्विक नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने दोनों देशों के व्यापारी समुदाय से नए सहयोग क्षेत्रों की पहचान कर आर्थिक साझेदारी मजबूत करने का आग्रह भी किया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज शाम इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेल्ला से भी मुलाकात करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए उद्योगपतियों से भी बातचीत करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया है। हनोई में कल भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारत पहले परमाणु हमला नहीं करने की नीति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन वह परमाणु धमकी के आगे नहीं झुकेगा और किसी भी दुश्मन की दुस्साहसपूर्ण कार्रवाई का करारा जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये केवल तकनीकी प्रगति ही नहीं बल्कि नए भारत की पहचान भी है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नई दिल्ली में देश में वाटर मेट्रो सेवाओं की शुरुआत को लेकर समीक्षा बैठक की। श्री सोनोवाल ने कहा कि केंद्र सरकार पहले चरण में गुवाहाटी समेत 18 शहरों में वाटर मेट्रो सेवा शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि वाटर मेट्रो सेवा पर्यावरण के अनुकूल और किफायती सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था बनेगी। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट को जल्द ही संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ने पिछले वर्ष 12 अगस्त को इस समिति का गठन किया था। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष के खिलाफ मुकदमा चलाने को मंजूरी दे दी है। ये कार्रवाई कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश और सीबीआई की जांच के बाद की गई है। संदीप घोष पर मेडिकल कॉलेज में खरीद से जुड़े मामलों में वित्तीय अनियमितताओं का आरोप है। सीबीआई ने भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश के तहत मामला दर्ज किया है, जबकि प्रवर्तन निदेशालय भी धन शोधन के पहलुओं की जांच कर रहा है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के अनुरोध पर उन्होंने ईरान पर सैन्य हमले को फिलहाल स्थगित कर दिया है। श्री ट्रंप ने कहा कि संघर्ष विराम के लिए गंभीर वार्ता हो रही है, जिसके कारण सैन्य हमलों को स्थगित कर दिया गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि जल्द ही ऐसा समझौता हो सकता है जो अमरीका और पश्चिम एशिया के देशों को स्वीकार्य होगा। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्लेऑफ में जगह बना ली है। आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से जयपुर में शाम 7:30 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 7:05 हुए हैं। प्रस्तुत है सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर।

नमस्कार। रायपुर सुनने वाले सभी श्रोताओं का आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। स्वीकार कीजिए प्रवीणा त्रिपाठी का प्यार भरा नमस्कार। मई का महीना, तेज धूप और भीषण गर्मी से भरे इस मौसम में आज का नमस्कार रायपुर लेकर हाजिर हैं हम श्रोताओं। गर्मी इस बार भी कभी नरम कभी गर्म होते हुए अब अपने प्रचंड रूप में हम सबके सामने है। तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा रहा है और फिलहाल तो इसके कम होने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। ऐसे में जरूरी है कि हम अनावश्यक बाहर ना निकलें और घर पर रहकर ही अपने काम करें। धूप में कम निकलें, रसीले फल खाएं, क्योंकि चाहे जितना चाय कॉफी हम पी लें लेकिन पानी का काम तो पानी ही करता है। बहरहाल कार्यक्रम की शुरुआत में आइए सुना जाए नमस्कार रायपुर में आज का ये पहला गीत।

0: दसवीं या बीएससी पास युवाओं के लिए प्लास्टिक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सुनहरा भविष्य। भारत सरकार की संस्था सीपेट रायपुर और कोरबा में प्रवेश पाइए। डिप्लोमा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स के साथ शत प्रतिशत प्लेसमेंट सहायता, छात्रवृत्ति और शासकीय योजनाओं का लाभ उठाएं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 28 मई 2026। विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट है www.cipet.gov.in।
1: श्रोताओं, क्या आप जानते हैं, अगर आविष्कार न किए जाते तो हम मनुष्य न जाने कितनी चीजों, मौसमों और समय का वैज्ञानिक आकलन करने से वंचित रह जाते। जी हाँ, आज के इतिहास में दर्ज हैं वो नाम जिन्होंने 19 मई के दिन को इतिहास के पन्नों में जीवंत रखा है। सन 1743 में ज्यां पियरे क्रिस्टीन ने 19 मई के दिन ही तापमान मापने के लिए सेंटीग्रेड पैमाने का विकास किया। सन 1999 में 19 मई के ही दिन भारतीय मूल के महेंद्र चौधरी ने फिजी के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला। 19 मई सन 2008 को परंपरावादी मराठी थिएटर के पुरोधा श्री विजय तेंदुलकर का निधन हुआ। सन 2011 के 58वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा भी 19 मई को हुई, जिसमें फिल्म मोनेर मानुस को राष्ट्रीय एकता के लिए पुरस्कृत किया गया था। सन 1938 में 19 मई को जन्म हुआ कवि, रंगमंच कर्मी, कहानीकार, नाटककार, फिल्म निर्देशक और फिल्म अभिनेता गिरीश कर्नाटका। 19 मई को सन 1904 में निधन हुआ भारत के महान व्यवसायी और टाटा समूह के संस्थापक जमशेद जी टाटा का। और सन 1779 में हिंदी के शीर्ष साहित्यकार श्री हजारी प्रसाद द्विवेदी का निधन भी 19 मई को हुआ था। इतिहास में दर्ज इन घटनाओं के अलावा भी अन्य घटनाएं हैं जो हर पल हमारे जीवन में घटित होती हैं। अच्छी घटनाओं की पुनरावृत्ति हो और दुखद घटनाओं से अनुभव लेकर हम जीवन में आगे बढ़ें, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि जीवन के सफर में एक बार गुजर जाने के बाद वक्त दोबारा वापस नहीं आता।

श्रोताओं, आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर, और मैं हूं आपके साथ प्रवीणा। आज है नेशनल अकाउंटिंग डे यानी राष्ट्रीय लेखा दिवस। हर साल 19 मई को ये दिन मनाया जाता है। ये दिन कई तरह के उद्योगों में काम करने वाले लेखाकारों और अन्य वित्त व्यवस्था से जुड़े व्यवसायियों के महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता देने और उन्हें सम्मानित करने के लिए समर्पित है। अकाउंटिंग डे की शुरुआत सबसे पहले सन 1972 में सैन डिएगो के कैलिफोर्निया में युवाओं को अकाउंटिंग के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से की गई थी, जो बाद में दुनिया भर के लोगों के लिए प्रेरणा बनी। ये दिन वित्तीय साक्षरता, व्यावसायिक नेटवर्किंग और निरंतर शिक्षा के महत्व को प्रोत्साहित करता है। इसके अलावा ये नेटवर्किंग के लिए एक बेहतरीन माहौल प्रदान करता है। अकाउंटिंग डे का उद्देश्य लेखांकन पेशे को बढ़ावा देना, सार्वजनिक क्षेत्र, उद्योग और सरकार में कार्यरत लेखाकारों के बीच नेटवर्किंग का अवसर प्रदान करना और उपस्थित लोगों के लिए गुणवत्तापूर्ण सतत शिक्षा प्रदान करना है। श्रोताओं, लेखा यानी अकाउंट न सिर्फ व्यक्ति बल्कि परिवार, समाज और देश के विकास की भी रूपरेखा तय करता है। इसीलिए कहते हैं ना कि सफल व्यक्ति वही है जो अपनी आय के अनुसार व्यय का लेखा जोखा तैयार करता है और सीमित आय में भी सही बजट बनाकर स्वयं की और देश की तरक्की में अपना योगदान देता है। तो चाहे बात नंबर्स की हो या पैसे की, हर बार विचार करना जरूरी होता है।

0: इंतजार।
1: कौन है वो?
0: वो जिसे मैं करती हूँ प्यार।

0: श्रोताओ, जैसा कि आप जानते हैं, साइबर अपराध से जुड़ी घटनाओं की खबरें प्रतिदिन हमें पढ़ने और सुनने मिल रही हैं। साइबर अपराध से हम कैसे बच सकते हैं, हमें मोबाइल के उपयोग के समय किन किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए, इस संबंध में बता रहे हैं रायपुर पुलिस कमिश्नर की ओर से एडिशनल DCP क्राइम रायपुर।
1: एपीके फाइल बहुत प्रचलित वर्ड है, जिसको एंड्रॉयड पैकेज किट के नाम से हम जानते हैं। इसमें स्कैमर्स आपके मोबाइल में APK फाइल व्हाट्सएप, टेलीग्राम, SMS या मेल के माध्यम से भेजते हैं, जो सामान्यतः ट्रैफिक चलान या इलेक्ट्रिसिटी बिल या शादी के कार्ड के रूप में होता है। जैसे ही आप इस प्रकार के फाइल को इंस्टॉल करते हैं, आपका मोबाइल हैक हो जाता है और आपकी निजी जानकारी स्कैमर्स के पास पहुंच जाती है, जिसका उपयोग कर वह आपके साथ ठगी करता है। आप सतर्क और जागरूक बने, किसी भी प्रकार के APK फाइल को अपने मोबाइल पर इंस्टॉल ना करें। आपके साथ यदि किसी प्रकार की धोखाधड़ी होती है तो www.cybercrime.gov.in में अपनी रिपोर्ट दर्ज कर सकते हैं।
2: श्रोताओ, बदलते वक्त के साथ साथ हमारी दिनचर्या और हमारे खान पान में भी बदलाव होता है। अक्सर देखा जाता है कि गर्मी के इन दिनों में थोड़ा सा भी गरिष्ठ और तला हुआ भोजन बीमारी का कारण बन जाता है, जिसमें सबसे ज्यादा फूड पॉइजनिंग, डिहाइड्रेशन और बुखार की समस्या देखने को मिलती है। कई बार लोगों को लीवर या आंत में सूजन की परेशानी भी हो जाती है। श्रोताओ, आज विश्व सूजन आंत रोग दिवस है। ये एक वैश्विक स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम है जो हर साल 19 मई को IBD दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्रोहन रोग और अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इस वर्ष 2026 का विषय है आंत्र रोग की कोई सीमा नहीं, देखभाल तक पहुंच। ये विषय इस बात पर जोर देता है कि सूजन और आंत्र रोग भौगोलिक स्थिति की परवाह किए बिना हर जगह के लोगों को प्रभावित करता है और विश्व भर में निदान, उपचार और विशेषज्ञ देखभाल तक समान पहुंच की मांग करता है। तो श्रोताओ, ताजा भोजन कीजिए, स्वस्थ रहिए और योग और व्यायाम कीजिए, क्योंकि स्वस्थ शरीर ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर। और श्रोताओं अब आपको बता दें रोजगार सूचना के बारे में। संघ लोक सेवा आयोग ने विभिन्न विभागों में ग्रुप ए और ग्रुप बी के कुल 45 राजपत्रित पदों पर भर्ती के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए हैं। इनमें रक्षा मंत्रालय में सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, भारतीय खान ब्यूरो में इंजीनियर और लद्दाख प्रशासन में लेखा अधिकारी जैसे महत्वपूर्ण पद शामिल हैं। इनमें सबसे अधिक 29 पद DRDO के लिए निर्धारित किए गए हैं। योग्य उम्मीदवार 29 मई शाम 6 बजे तक आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। शुल्क, पात्रता, आयु सीमा और चयन संबंधी अन्य जानकारियों के लिए उम्मीदवार UPSC की आधिकारिक वेबसाइट www.upsc.online.nic.in पर विजिट कर सकते हैं। इसे एक बार फिर से सुन लीजिए। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार UPSC की आधिकारिक वेबसाइट www.upscionline.nic.in पर विजिट कर सकते हैं। इस सूचना के बाद आइए सुनते हैं ये गीत।

और अब एक और सूचना सुनिए श्रोताओं, आईआईटी मद्रास द्वारा बीएस डिग्री प्रोग्राम के लिए शैक्षणिक सत्र 2026 की प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। इच्छुक उम्मीदवार 31 मई तक https://study.iitm.ac.in इस वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ये प्रोग्राम कक्षा 12वीं उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए है, जिसमें प्रवेश के लिए किसी प्रकार की आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। इस प्रोग्राम के लिए जेईई की परीक्षा पास होने की कोई अनिवार्यता नहीं है। ये बीएस डिग्री प्रोग्राम विद्यार्थियों को भविष्य की जरूरतों के अनुरूप कौशल विकसित करने का अवसर देता है। तो अगर आपने भी 12वीं कक्षा पास की है तो ये बीएस डिग्री प्रोग्राम आपके भविष्य के लिए बेहतर विकल्प हो सकता है।

0: दसवीं या बीएससी पास युवाओं के लिए प्लास्टिक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सुनहरा भविष्य। भारत सरकार की संस्था सीपेट रायपुर और कोरबा में प्रवेश पाइए। डिप्लोमा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स के साथ शत प्रतिशत प्लेसमेंट सहायता, छात्रवृत्ति और शासकीय योजनाओं का लाभ उठाएं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 28 मई 2026। विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट है www.cipet.gov.in।
1: श्रोताओ, गर्मियों का मौसम है, छुट्टियों के दिन हैं और यही वो वक्त है जब परिवार के साथ कहीं ना कहीं छुट्टियां मनाने हम जाते ही हैं। लेकिन हम जब भी परिवार सहित बाहर जाते हैं, घर पर हमारी छोटी सी फुलवारी कुमलाने लगती है, क्योंकि यही वो समय भी है जब पौधों को सबसे ज्यादा देखभाल की जरूरत पड़ती है। तो अगर आप दो चार दिन या एक हफ्ते के लिए घर से बाहर जाएं, तो घर से निकलने से पहले पौधों की मिट्टी को अच्छी तरह गीला कर दें ताकि उनमें लंबे समय तक नमी बनी रहे। पौधों को छाया में रखें, प्लास्टिक की बोतल में पानी भरकर उसके ढक्कन में एक छेद कर दें और उसे उल्टा करके गमले में या मिट्टी में लगा दें, जिससे धीरे धीरे पौधों तक पानी पहुंचता रहेगा। मिट्टी के ऊपर सूखी पत्तियां, नारियल छिलका या घास बिछा दें, जिससे नमी बनी रहे। छोटे गमलों को पानी से भरे टब में कंकड़ डालकर रख दें, जिससे उन्हें पानी मिलता रहेगा और आपकी बगिया हरी भरी रहेगी। तो बस ये छोटे छोटे उपाय करें और फिर निश्चिंत होकर घूमने जाएं अपने मनचाहे डेस्टिनेशन पर।

0: अभी आप सुन रहे थे सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 8 बजने को है समाचार प्रभात, कुछ ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भारत EFTA समझौते के तहत 100 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश और 10 लाख नौकरियों के सृजन का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में सभी 5 नॉर्डिक देशों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत का मजबूत आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को रिपोर्ट सौंपी। पश्चिम बंगाल सरकार ने वित्तीय अनियमितता मामले में RG कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी और IPL क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्लेऑफ में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नॉर्वे को व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के अंतर्गत 100 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश लक्ष्य को प्राप्त करने और भारत में 10 लाख रोजगार सृजित करने के लिए प्रयास करने चाहिए। प्रधानमंत्री कल ओस्लो में आयोजित भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। क्राउन प्रिंस हकॉन और नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनिस गहरस्तुर भी इस शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते TEPA के लागू होने के बाद द्विपक्षीय व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की।
2: यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूनिक और स्पेशल एग्रीमेंट हमारे बीच टैलेंट, टेक्नोलॉजी और म्यूचुअल ट्रस्ट का एग्रीमेंट है। इसी एग्रीमेंट के माध्यम से EFTA कंट्रीज से भारत में अगले 15 वर्षों में $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है।
1: प्रधानमंत्री ने भारत के हरित परिवर्तन पर बल देते हुए देश के विकास, बढ़ती ऊर्जा मांग, जलवायु प्रतिबद्धताओं और नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रिड अवसंरचना, हरित हाइड्रोजन और स्वच्छ ऊर्जा के विस्तार का उल्लेख किया।
2: 2030 तक हमने 500 GW क्लीन एनर्जी और 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने का टारगेट रखा है। क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट नॉर्वे वेल्थ फंड की भी प्राथमिकता है। मैं नॉर्वे को भारत के क्लीन एनर्जी फ्यूचर में अहम हिस्सेदार बनने के लिए आमंत्रित करता हूं।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के व्यापारिक समुदायों से नई साझेदारियां बनाने, सहयोग के उभरते क्षेत्रों की पहचान करने और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने का आग्रह किया। शिखर सम्मेलन में 50 से अधिक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और भारत तथा नॉर्वे के व्यापार और अनुसंधान समुदायों के 250 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया। विदेश मंत्रालय के सचिव पश्चिम सिबी जॉर्ज ने प्रेस वार्ता में इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के हरित और समुद्री अर्थव्यवस्था में साझेदारी से अधिक निवेश आएगा, रोजगार सृजित होगा और भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा सहित सतत ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकेगा।
3: Recognizing the ambitious
4: भारत के महत्वाकांक्षी समुद्री अमृतकाल विजन 2047 को मान्यता देते हुए दोनों नेताओं ने जहाज निर्माण, हरित जहाज रानी, जहाज पुनर्चक्रण, बंदरगाह अवसंरचना का विकास, नाविकों का प्रशिक्षण, मत्स्य पालन, जलीय कृषि और बंदरगाहों के हरितकरण सहित समुद्री अर्थव्यवस्था साझेदारी को बढ़ाने का आह्वान किया है।
3: ग्रीनिंग ऑफ पोर्ट्स।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे की यात्रा के दूसरे दिन आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये विभिन्न क्षेत्रों में भारत नॉर्डिक सहयोग की दिशा में एक और कदम होगा। अधिक जानकारी ओस्लो से हमारी संवाददाता से।
5: भारत और पांच नॉर्डिक देशों के प्रधानमंत्रियों की उपस्थिति में आज तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यह शिखर सम्मेलन भारत और नॉर्डिक देशों के बीच बढ़े हुए क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत करेगा। 2022 में डेनमार्क के कोपनहेगन में पिछला सम्मेलन आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन में प्रौद्योगिकी और नवाचार, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण यह चर्चा के मुख्य क्षेत्र हैं। TEPA लागू होने के परिप्रेक्ष्य में यह शिखर सम्मेलन व्यापार और निवेश संबंधों को अधिक मजबूत करने का प्रयास करेगा। वर्तमान में इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय व्यापार का मूल्य $19 अरब है। तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
1: प्रधानमंत्री मोदी पांच देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेल्ला से भी मुलाकात करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए उद्योगपतियों से बातचीत भी करेंगे।
6: रोम पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली में बसे भारतीय समुदाय के सदस्यों से मुलाकात करेंगे, जिनकी यहां उल्लेखनीय उपस्थिति है। वे भारतीय मूल के बच्चों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम भी देखेंगे, जिसमें प्रवासी भारतीय समुदाय के बच्चों द्वारा गाया गया एक पंजाबी लोकगीत शामिल है। ये बच्चे रोम के पास स्थित फोंदी कस्बे से आते हैं, जहां उनके माता पिता कृषि क्षेत्र में कार्यरत हैं। ये पंजाबी लोक शैली का गीत एक जट किसान के गर्व, शक्ति और उत्साहपूर्ण जीवन का उत्सव मनाता है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
7: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है, ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
7: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं, तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया। हनोई में कल भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारत पहले परमाणु हमला नहीं करने की नीति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन वह परमाणु धमकी के आगे नहीं झुकेगा और किसी भी दुश्मन की दुस्साहसपूर्ण कार्रवाई का करारा जवाब देने के लिए तैयार है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये केवल तकनीकी प्रगति ही नहीं बल्कि नए भारत की पहचान भी है। गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के संभागीय मुख्यालय जगदलपुर में केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे।
8: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पिछले 6 दशकों के दौरान नक्सलवाद के कारण बस्तर को बड़े पैमाने पर जो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार अगले 5 वर्षों में करेगी। उन्होंने कहा कि अगले 1.5 वर्षों के दौरान बस्तर में स्थापित सुरक्षा बलों के करीब 200 कैंपों में से 70 कैंपों को जन सेवा केंद्रों में बदलकर उन्हें आदिवासी कल्याण का केंद्र बनाया जाएगा। इन सेवा केंद्रों में बैंकिंग, आधार, राशन कार्ड, कौशल प्रशिक्षण सहित केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं से संबंधित सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
1: न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार प्रस्तुत की गई। एक रिपोर्ट।
9: उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ लगे आरोपों की जांच के लिए लोकसभा अध्यक्ष द्वारा पिछले वर्ष 12 अगस्त को एक समिति का गठन किया गया था। रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों में उचित समय पर प्रस्तुत किया जाएगा। न्यायाधीश जांच समिति के पीठासीन अधिकारी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरविंद कुमार, बम्बई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर और कर्नाटक उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता बीवी आचार्य ने श्री बिरला को न्यायाधीश जांच समिति की रिपोर्ट सौंपी। आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय को मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आधिकारिक आदेश जारी कर निदेशालय को घोष के खिलाफ कथित वित्तीय अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में मुकदमा चलाने की अनुमति दी है। श्री अधिकारी ने कहा कि पूर्व की तृणमूल कांग्रेस सरकार ने इस मामले की जांच प्रक्रिया को लंबे समय तक जबरन और अनैतिक रूप से रखा था। ये मामला एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या से भी संबंधित है। सीबीआई ने 29 नवंबर 2025 को आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में आरोप पत्र दाखिल किया था। अमरीका ने समुद्र में पहले से मौजूद रूस के तेल पर प्रतिबंधों की छूट की अवधि को एक महीने के लिए बढ़ा दिया है। अमरीका के वित्त विभाग ने कल एक आदेश जारी कर 17 अप्रैल या उससे पहले समुद्र में फंसे रूसी तेल पर प्रतिबंधों से मिली छूट की समय सीमा को 17 जून तक बढ़ा दिया है। इससे पहले अमरीका ने 5 मार्च को एक महीने के लिए रूस का तेल खरीदने पर भारत को प्रतिबंधों से छूट दी थी। कुछ दिनों बाद ये छूट अन्य देशों को भी दी गई, जो 11 अप्रैल को समाप्त हो गई थी। अमेरिका इस वर्ष 30 और 31 अक्टूबर को जॉर्जिया के अटलांटा शहर में G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कल घोषणा की कि इस बैठक में दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के विदेश मंत्री शामिल होंगे, जिससे वैश्विक स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए G20 के मुख्य उद्देश्यों को आगे बढ़ाया जा सके। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्लेऑफ में जगह बना ली है। चेन्नई में पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 180 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद ने 19 ओवर में 5 विकेट पर लक्ष्य हासिल कर लिया। ईशान किशन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आज जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से शाम 7:30 बजे से होगा। मौसम विभाग ने आज मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया है। तटीय आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में दिन के समय मौसम गर्म और उमस भरा रहने की संभावना है। राजस्थान, विदर्भ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज रात भी गर्मी बने रहने का अनुमान है। जम्मू और कश्मीर तथा पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में आज बादल गरजने के साथ बिजली गिरने की संभावना व्यक्त की गई है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
10: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपना शीर्षक बनाया है। दैनिक जागरण लिखता है, अमेरिका प्रतिबंध हटाए या लगाकर रखे, रूस से तेल खरीद जारी रखेगा भारत, सरकार की दो टूक, अपने देश की ऊर्जा जरूरत के हिसाब से तेल खरीदेंगे। हिंदुस्तान ने अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के दावे को प्रमुखता दी है। ईरान का नया शांति प्रस्ताव भी खारिज। पंजाब केसरी ने लिखा है, ट्रंप ने युद्ध पूरी तरह खत्म करने के लिए रखी 5 शर्तें, जवाब में तेहरान ने भी 5 शर्तों की सूची थमाई। देशबंधु की खबर है, ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट पर लागू की नई व्यवस्था, स्ट्रेट के प्रबंधन के लिए नया निकाय बनाने की घोषणा की गई है। नवभारत टाइम्स के अनुसार, नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने सोमवार को महाराष्ट्र के लातूर से 10वीं गिरफ्तारी की। सीबीआई का दावा, नीट से 10 दिन पहले मिले थे सवाल। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ में प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा पर विश्लेषण दिया है। नए समीकरणों की उम्मीद शीर्षक से पत्र लिखता है, गहरे भू राजनीतिक संकटों और आर्थिक अनिश्चितताओं के दौर में प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की 6 दिवसीय यात्रा सिर्फ औपचारिक राजनयिक दौरा भर नहीं है, बल्कि इसके व्यापक कूटनीतिक, आर्थिक और सामरिक निहितार्थ भी हैं। दैनिक भास्कर की विशेष खबर ध्यान आकर्षित करती है, स्मार्ट से उबे लोग, बेसिक चीजों में सुकून की तलाश, जो गैजेट चुपचाप काम करे अब वही ज्यादा समझदार।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भारत EFTA समझौते के तहत $100 अरब अमरीके निवेश और 10 लाख नौकरियों के सृजन का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में सभी 5 नॉर्डिक देशों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत का मजबूत आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया। पश्चिम बंगाल सरकार ने वित्तीय अनियमितता मामले में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
11: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कॉल्स फॉर $100 billion इन्वेस्टमेंट एंड 1 million जॉब्स अंडर इंडिया EFTA एग्रीमेंट एट बिजनेस एंड रिसर्च समिट इन ओस्लो, नॉर्वे। Prime Minister Modi to meet leaders of all 5 Nordic nations at 3rd India-Nordic Summit today. Defence Minister Rajnath Singh describes Operation Sindoor as testament to India's transformation into strong, confident and capable nation. Judges Inquiry Committee investigating allegations against Justice Yashwant Verma submits report to Lok Sabha Speaker Om Birla.

0: छत्तीसगढ़ी समन्वित साहित्यिक पत्रिका मोर भुइया के आज के ए अंक मा आप मन के स्वागत है। जय जोहार, राम राम महेंद्र साहू कोती ले। श्रोता साथी हो, आज के ए अंक मा आप मन ला सुनवात हन श्री विजय मिश्रा अमित के वार्ता छत्तीसगढ़ी भाखा साहित्य मा डॉक्टर पालेश्वर प्रसाद शर्मा के योगदान। संगवारी के शर्त ये कहानी आप मन सुनिया श्री मानसिंह मौलिक ले और कविता सुनाही श्री तोषण कुमार चुरेंद्र। कार्यक्रम में सबले पहली आप मन ला सुनवाथन एक वार्ता जेकर विषय है छत्तीसगढ़ी भाखा साहित्य मा डॉक्टर पालेश्वर प्रसाद शर्मा के योगदान। वार्ताकार हावे श्री विजय मिश्र अमित।
1: दुनिया में दो किस्म के मनखे होते, एक तो वो जिन मन हर दूसर के बनाए रद्दा में रेंगते, दूसर वो मनखे होते जिन मन हर खुदे नवा रद्दा गढ़ते। जिन मन हर खुदे नवा रद्दा गढ़ते तेन मन हर अपन काम के दम मा खास बन जात हैं, महीन ले महान बन जात हैं। ऐसने है गुण के धनी मनखे मा छत्तीसगढ़ महतारी के दुलरवा बेटा डॉक्टर पालेश्वर प्रसाद शर्मा जी के नाम हर रचे बसे हवय। उखर जन्म जाज्वल्य देव नगरी जांजगीर के रानी पारा दुबे पाड़ा मा 1 मई 1928 के होय रहीस। ददा पंडित श्याम लाल शर्मा और महतारी सेवती के संस्कार में पले बढ़े पालेश्वर जी हर नानपन ले मेहनत मंजूरी के मरम ला समझ गे रहीन हैं। इही पाए के उन कहें कि दुनिया भर में 1 मई ला मजदूर दिवस के रूप में जाने जाते। मोरो जन्म हर 1 मई के हो है, तो महू हर कलम के मजदूर आओ। उखर असल कर्म भूमि बिलासपुर हर रहीस। बाली उमर ले कागज मा कलम के नांगर चलावत चलावत आरुग आखर के बीजा बोवत बोवत छत्तीसगढ़ी भाखा ला पोठ रोंठ बनाए बर जियत मरत ले उन बूता करिन। छत्तीसगढ़ी भाखा मा मानक लेखन और छत्तीसगढ़िया मान ल बढ़ाए बर उन संदा पदोली देवय। अपन हक बर लड़े ल परही सुत निंदा मन जागा। ये बात ल लिख के पालेश्वर जी हर छत्तीसगढ़िया मन के स्वाभिमान ल जगाए के जबड़ बूता करिन। हिंदी भाषा के गुणी साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी लिखे हावय कि निज भाषा उन्नति अहै सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा सम्मान के मिटै नहि को सूल। ये लाइन हर पालेश्वर जी के रुआ रुआ में समाये रही से। ते पाए के छत्तीसगढ़ी भाखा लोक साहित्य और संस्कृति ला जन मन में बगरावत छत्तीसगढ़ राज बने के पाछू पालेश्वर जी हर सबले पहली छत्तीसगढ़ी हिंदी शब्द कोश छत्तीसगढ़ सरकार ला दे रहीस, ताकि सरकारी काम काज हर तको छत्तीसगढ़ी भाखा मा हो सकाए। पालेश्वर जी हर अंग्रेजी हिंदी संस्कृत सहित दीगर भाखा के जबड़ जानकार होए के बावजूद छत्तीसगढ़ी भाखा के महल खड़े करे के जोन पोखा न्यू गढ़ी से तेनहर संदेशा देवा थे। कुछ काम करे बर मौसम नहीं मन होना चाही, साधन जम्मो जुट जाही बस मनखे के भीतर संकल्प के धन होना चाही। बछर 60 के पाछू हिंदी छत्तीसगढ़िया कलमकार मन बर सूरज कस उत पालेश्वर जी के कलम हर उजास देहे के बूता करिस। उखर कलम के किरण हर चारों मुड़ा बगर गे और महाविद्यालय के पाठ्यक्रम मा तको संघर गे। प्रबंध पाटल सुसक झन कुर्री सुरताले, तिरिया जन्म झन देई गुड़ी के गोठ सुरुज साखी हे। छत्तीसगढ़ के इतिहास परंपरा तीज तिहार कहावत खेती किसानी असन उखर कतकोन किताब छपे के पाछू छत्तीसगढ़ी भाखा के मान हर गजबे बाढ़ी से। आकाशवाणी मा छत्तीसगढ़ी गद्य लेखन पठन ल बढ़र देवैया पहली साहित्यकार डॉक्टर शर्मा रहीन हैं। अपन पहली कहानी नाव के नेह माँ के पठन करिन। नामी अखबार मा 2 बच्छर ले ज्यादा छत्तीसगढ़ी परिदर्शन गुड़ी के गोट लिखत छपत छत्तीसगढ़ी भाखाला पत्रकारी

ताकि दुनिया मा अंगत कस पांव धराय के बूता पालेश्वर जी करिन। अपन महतारी भाखाला लेके पालेश्वर जी के बड़ सुघर विचार रही से। ओ कहें छत्तीसगढ़ ही हर दाई के दूध के नाम आए, बड़े दाई के चौन्हा चुम्मा आए, बाबा के माया, सुवारी के सिंदूर, बहिनी के राखी और गुइया के भोजली आए। छत्तीसगढ़ शासन के पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान, भारत सरकार के वयोश्रेष्ठ सम्मान, बिहार सरकार के विद्याधर कवि सम्मान, बक्सी शोध पीठ के साधना सम्मान, मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन के बागेश्वरी पुरस्कार असन कतकोन मान और सम्मान उनला मिले रही से। उखल लिखे कहानी, कविता, निबंध और कतकोन दूसर रचना मनहर रहीम, कबीर, तुलसी, मुंशी प्रेमचंद जी के लिखे रचना कस आजो कहरत हावय। फोकट के चंदन, घीस भई लल्लू, एकर बहुत खिलाफ रहीन है पालेश्वर जी। जब कोनो कवि लेखक के नवा किताब के विमोचन में जाए पगरई होके या माई पहुना होके तो खुदे किताब ल बिसावें। उखर कहना रही से कि किताब ल फोकट में नहीं बांटना चाही, बल्कि किताब और रचनाकार के मान ल राखत किताब ल बिसाना चाही। छत्तीसगढ़ी मा गीत, गजल, कविता माने पद्य मा तो अड़बड़ लिखे के कारज हुआ थे, फिर गद्य मा कहानी, नाटक, उपन्यास, निबंध के लिखई हर कम हुआ थे। छत्तीसगढ़ के साहित्य जगत ला ये दशा ले उबारे बर छत्तीसगढ़ी गद्य कोठी ल भरे बर पालेश्वर कलम हर कमाल धमाल करी सावे। डॉक्टर पालेश्वर शर्मा जी के लिखे हरेक रचना हर गोरस म पागे मखना का स्वाद थे। तभे तो एक घाव किताब हर हाथ में आते तो आखरी पन्ना के सिरावत ले पढ़ुया हर ओला छोड़ाए नहीं। किताब ल छोड़ भी देते तो किताब में लिखाए बात हर हृदय में गूंजत रही थे। नानपन ले जानत रहे कि छत्तीसगढ़ ला धान के कटोरा कहे जाते, फिर धान के कटोरा काबर कहे जाते, धान के बुआई मिंजाई कुटाई कारज हर कैसे होते, कौन कौन किस्म के औजार खेती किसानी के कारज में होते और ओखर से जुड़े हाना, जनौला, कीरा मकौरा के ज्ञान पालेश्वर जी के किताब छत्तीसगढ़ के कृषक जीवन की शब्दावली में मिलते। उखर ये ग्रंथ में 11 अध्याय हावय, 9000 छत्तीसगढ़ी आखरे में भराए हावय। छत्तीसगढ़िया किसान के जिनगानी ऊपर 1972 में सबले पहली PhD पालेश्वर जी करीन है। ये अर्थ में कहे जा सकत है कि पालेश्वर जी के कलम हर छत्तीसगढ़ के इतिहास और किसानी जनजीवन ल जनवाए खातिर बड़का बूता करी सावय। जेन हर बताते कि जेकर हथेली में लकीर नहीं छाला रही से ओखरे नाव पालेश्वर रही से। छत्तीसगढ़ी सांस्कृतिक क्रांति के जनक दाऊ रामचंद जी देशमुख के संगे संग मोर पिताजी नारायण स्वामी मिश्रा हर खेती किसानी के नवा नवा बात ल बतावाए। ओखरे मुँह ले सुने रहे हो खेती अपन से थी, गाय न गरु सूजा हरु, ऐसन गोट बात के बेरा मा पालेश्वर जी के शोध प्रबंध छत्तीसगढ़ के कृषक जीवन के चर्चा जम के चलाए। छत्तीसगढ़ के 52,000 वर्ग मिल मा बसुईया किसान के नांगर और जांगर के ऊपर जी परान ले लिखे के जैन बुता पालेश्वर जी करीन है तेला सुने, गुने और पढ़े के पाछू मन में यही बात हर आते कि जैन हर बरखा के बरसे पानी मा भींजते तेन हर खाली अंगरखा ला बदलते, फिर जैन हर पछीना मा भींजते तेन हर पालेश्वर बन के नवा इतिहास गढ़ते। छत्तीसगढ़िया गुनी जन मन हा पालेश्वर जी के ज्ञान ल देखत देखत ओला जियत जागत आखर कोठी पोथी पुराण इंसाइक्लोपीडिया कही थे। एक घाव कवि सम्मेलन में शामिल होए बर रामेश्वर वैष्णव जी और मीर अली मीर जी के संग जात रहे, तभे रद्दा मा खेत में बड़ अकन कोंकड़ा कस चिरई मन दिखिन। ओ चिरई मन के ऊपर चर्चा करत ओमन ह पालेश्वर जी के किताब सुसक झन कुर्री सुरताले के चर्चा छेड़िन।

0: तब मेहर जाने हो दूसर राज दूसर देश ले अवैया चिरई मनला छत्तीसगढ़ी मा कुर्री कहे जाते। जिहां जन्मे जिहां के खाए पिए उन्हें के गुन गाबे बजाबे इही मा जिंदगी के सार है। और नहीं तो 84 लाख जोनी मा सबले बढ़िया जन्म लेहे के हवय तेन बेकार है। ऐसन संदेशा देवैया सियान छत्तीसगढ़ भुइयां के लाल हर 2 जनवरी 2016 के दिन सदा दिन भर विदा ले लेह रही से। डॉक्टर पालेश्वर हर छत्तीसगढ़ महतारी के ऐसन मयारुक दुलरवा बेटा आए जिन हर छत्तीसगढ़ी साहित्य जगत खातिर नवा रद्दा गढ़े के गुर अवैया पीढ़ी ल सिखा के सरक सिधारिन हैं। आखिर मा कलम के ऐसन पुजेरी ल विजय जोहार करत अपन कलम ल विराम देवत लिखत हों। नंगा लेहू कलम ल कलमकार ले तो ओहर लिख दी ही कविता तलवार ले।
1: अभी आप मन श्री विजय मिश्रा अमित ले वार्ता सुने। विषय रहिस छत्तीसगढ़ी भाखा साहित्य मा डॉक्टर पालेश्वर प्रसाद शर्मा के योगदान। कार्यक्रम मा आगू बढ़त हन और आप मन ला श्री मानसीय मौलिक ले कहानी सुनवात हन। शीर्षक हावे संगवारी के शर्त।
2: कलयुग मा पापी मन के संख्या अड़बड़ हावे कथे, ये गोट 16 आना सच नो है। अगर ऐसन होतीस ता विमल के गांधी फोकट भोजन भंडार कैसे चलतीस। बता देवन कि धर्मी मन के संख्या घलो कम नहीं है। ये दुनिया मा कहाँ ले चाउर दार सब्जी नून तेल आथे कोई नहीं जाने। एकर से समझ आथे धर्मी के दान गोहार पार के थोरे आथे। कले चुप ढंग ले मनखे दान करके पुण्य कमा लेते। मोबाइल मा पैसा देवैया मनखे कमी घलो नहीं है। तस सैकड़ों झन मुफत मा रोज खावत पियत विमल आओ ओकर संस्था ला गाड़ा गाड़ा आशीष देवैया मन के कमी नहीं है। ये काम ला विमल 5 झन ले शुरू करे रहिस। ओकर संख्या दिनों दिन बढ़त जात है। ओकर दूसर काम गरीब के सहायता करना है। वाह रे फूटहा किस्मत। ओकर सुवारी हा ये सब काम ले नफरत करते। मोर बर ओकर कना समय नहीं हावय। दूसर बर जीवत हावस कही के मैके मा रहत हावय। घर के दाई बाबू अपन खुद कतरो बेर ओकर खुशामद करके मान मनोवल घर लहुटे खातिर करिस। फेर उमा हा अपन मैके छोड़ ससुरार लहुटबे कहाँ करिस। उमा के कहना रहा कि फालतू काम छोड़ आओ मजा मा जिंदगी मोर संग बिता। हमर घर में कोनो बात के कमी हे ता मोला बता। मैं अपन दाई बाबू घर ले मंगवा दूँ। मगर विमल ओकर बात माने तब ना। मन मोटाव के कारण अतकी। फेर दोनों के बीच मया मान सम्मान के कभू डांड खिंचाए नहीं दिखाए। जब विमल ससुरार आते उमा ओकर बड़ सम्मान करते। अपन मैके छोड़े के बात मा अड़ के लंद फन काम झन कर कही थे। विमल के भरे पूरे परिवार मा 10-12 मन के हावय। ऊंचे रानू हा रसोई बनाए के काम करे। ओकर चाल ढाल पहने ओढ़े के ढंग देख विमल के दाई सुरजा पढ़े लिखे ठाड़ मोटियारी। कोनो बड़े घर के बेटी के लक्षण चिन्ह टोंक थे। बड़ सुघर रांदगढ़ के मड़ा देथस। मोला तो तैं काम वाले बाई कस लागस नहीं वो। माता विमल अब मैं एक के संग पढ़े हन। उमा भौजी मैके माँ बैठे हे मैं जानत हूँ। एक दिन गोठ बात माँ शर्त लगाए हन। मोला अगर अधिकारी बने बर मदद करबे त भौजी ला मना के तोर घर लान दूँ। विमल कथे अव नई लान बे त का करबे। ऐसन माँ तोला मोर संग बिहाव करे बर पर ही। मैं शर्त मान के काम करथो। वाह रे चतरी तोर चित अव पट दोनों में जीत है। कहीं तोर सपना ये घर के बहू बने के तो नहीं। जान सुन

ए मोर बहुला मना के लानबेच नहीं तबो तोर जीत है। आखिर तोर कना ऐसन का जादू है ते माँ बहु उमा तोर बात मानही। माता एक फोन करहूँ भौजी दौड़त आही कब्भू ये घर ले नहीं टरो कही। अच्छा का बोलबे महूला तो बता। माता ऐसन माँ मोर घाटा हो जही जब समय आही खुदे तोला मालूम हो जही। रानू हमर घर भर के मन बहुला मना डरेन नहीं मानिस तोर दरी कैसे मानही। माता मैं हार हूँ ता बहु बन हूँ जीत हूँ ता आफिसर मोला अपन गरीबी से निकलना है बाबूला सुख और खुद के घर सरकारी बंगला देना है। आफिसर बन के महिला मन के मान बढ़ाना देश सेवा करत करत अपन जिंदगी सुधारना हावय। मोला तुम्हार घर के बहू बने के एको कनिक शौक नहीं है। रानू के साफ मन से शुद्ध विचार देश सेवा के भावना अधिकारी बने के चाह माँ गरीबीन बर सुरजल दया आगे। एकर मृतालीन स्वभाव मीठ भाखा ईमानदारी बिना कपट खुददारी बने लागिस। सुरजा सोचते ये टूरी हा ऐसन का बात कही तेला सुन के वो हा अपन पति का ना आ जही। यही बात समझ से परे लागत रहा है। माता बर्तन मांझ के लईका मल्ला ट्यूशन पढ़ा के ये दुनिया के बैरी मन के गलत आचरण ले अपन जान बचाए बर तुम्हार शरण आए हूँ। मोला पढ़े बर नानू कुरिया दे दूँ तुम्हार उपकार जिंदगी भर नहीं भूलाऊँ। रानू के आँखी बोटबोटा गे अब तब आंसू चुहैया रहा है। रात माँ मैं अपन घर माँ पढ़ूँ अपन बाबू के सेवा करूँ कतरो झन मोर बर खोटा नियत करते एक दिन ओ मल्ला जवाब देना है। तोर बाबू बर जेवन कैसे कब करबे। बाबू बर रोज गांधी मुफत भोजन भंडार के भात साग ले जात हूँ। आधा घंटा काम करके मोला अड़बड़ शांति और पुण्य मिलते। ठीक है रानू तोर सपना पूरे करे बर मोरो सहयोग रही। भंडार के आखिरी कुरिया साफ सफाई कर उन्हें पढ़बे। विमल और उमा आपस में गोड बात होवत रही थे जे माँ किसानी घर परिवार के हालचाल लईका मन के पढ़ाई खान पान समय में करे के मया भरे सलाह शामिल रही थे। एक दिन उमा फोन में गरियात रहा ए जी तोला शर्म नहीं लागे एक झन टूरी संग तुम्हार लफड़ा दफड़ा के बात सुने भर मिलत है। ओ मोर कॉलेज के संगवारी आए मोर गांधी मुफत भोजन भंडार मा काम करन लागते आना जाना लगे रथे कोई जरूरत नहीं है ओकर संग गोठी आए के। नहीं ता एक दिन अंगरी धरत धरत सैगो हाथ ल धर ली संभल के रहबे। अब का करौ तय मोला छोड़ दे हस टाइम पास करे बर गोठिया लेत हूँ। तेहा टाइम पास कथस मोर सास हा सबो जीवन बनाए बर सौंप दे है। घर भर के मन मोहागे हो मोर मइंता जे दिन भड़क जही वो दिन घर जाके ओकर चुंदी हपाट के नंगत कुचर दूँ। विमल चिढ़ाए बर कथे ऐसन गलती झन कर बे बड़े जान अधिकारी बनैया है तोला जेल में डार दी जान डरे ओला अधिकारी बनाए के काम तोरे हो ही दानी आदमी आस तय हाँ फिर मैं ओकर चटनी बना दूँ। अगर मोर घर द्वार में आगे लगाही मोर जोड़ी ल टोराही ता उमा के भाखा आगी और रिस उगलत रहा है। विमल एति फोन ल काट दिस ओती उमा अलकरहा बगिया गे। चार बच्चर के कठोर मेहनत लिखाई पढ़ाई पेपर देके रानू जिला पंचायत सीईओ बनिस। उमा अपन मोबाइल व्हाट्सएप मा राजेश और अपन प्री वेडिंग रंगीन फोटो उमा ला भेजिस। फोटो देख के उमा पसीना मा नहा डरिस।

0: एक दूसर के पीठ मा पीठ चटकाए बैठे रहाय। नीचे लिखे, मैं तोर सौद बनहूँ तय मोर विमल ला तरसाय हस। चौथा फोटू मा रानू ला पाछू डहा ले विमल पोटारे रहाय। नीचे लिखे, काली हमार भावर पर ही देखे बर आ जाबे। अतका सब उमा पढ़ के तुरंत सूट के धरीस अपन ससुराल पहुँच सास ऊपर बरस थे। कहाँ है वो चुड़ैल हा ओला मार पीट के भगाना है। सुरजा अपन घर संभाल बेटी, तोर संग हमन हावन, ओला घर मा निंगन नहीं देन। सास सुरजा बड़ खुश होते, रानू हा बात सांची करके दिखा दिस। एति उमा घर मा बिहाव मड़वा सजावट कुछु नहीं देख पूछते, मुला राजेश कना जाना है। माता बिहाव कहाँ मड़ा है तेला बता। उकर पाँव पकड़ माफी मांग के अपन घर बचा हूँ। उतकी बेरा सरकारी गाड़ी ले अपन दू जन सहयोगी कर्मचारी संग रानू दंग दंग ले उमा के आगु ठाड़ होते। उमा रानू ला चीन के ओहा अपन जोड़ी के सही काम ला गलत ठहराए के सेती पछता थे। रानू के आगु हाथ जोड़ विनती करते, बहिनी तेहा अधिकारी बन के दिखा डरे, मोला मोर जोड़ी लहुटा दे, मैं तोर विनती करत हाँ। रानू उमा ला छाती में पोटार लीस, भौजी ना मैं तोर दुश्मन हो, ना विमल संग मोर कोनो संबंध है, वो मोर मितान आए, मैं शर्त जीत गयों। रानू थोकिन रुक के कथे, जा तोर जोड़ी हा गांधी मुफत भोजन भंडार मा तोर अगोरा करत है। आज दोनों जन मिल के लोगन ला जेवन कराए बर परन घलो करे है। ड्राइवर हा रानू के इशारा पाके उमा ला गाड़ी मा बैठे के प्रार्थना करते, ता वोहा गाड़ी में बैठते। जा भौजी, मोला माता संग कुछ बात करना है।
1: संगवारी के शर्त, ये कहानी आप मन सुनत रहो श्री मानसिंह मौलिक ले, और पत्रिका के आखिर में कविता सुनात हैं श्री तोषण कुमार चुरेंद्र।
2: गुनी लगावा गुनी लगावा गुनी लगावा वो छत्तीसगढ़ महतारी, तोरे महिमा हावे भारी, तोरी गुनी लगावा वो।

कुकरा के बांक सुने सूरज पांव पसारे, सूरज पांव पसारे। बड़े भी नाच रही चिरगुन कोयली कोह की मारे, कोयली कोह की मारे। कुकरा के बांक सुने सूरज पांव पसारे, सूरज पांव पसारे। बड़े भी नाच रही चिरगुन कोयली कोह की मारे।

भारी तोरी गुण लगाऊ। छत्तीसगढ़ महतारी तोरी महिमा हावे भारी तोरी गुण लगाऊ। तोरी को राम लहरावे अर पपैरी धारे अर पपैरी धारे। महानंदी सोंढुरी के झुमरथे कसारे झुमरथे कछारे। तोरी को राम लहरावे अर पपैरी धारे अर पपैरी धारे। महानंदी सोंढुरी के झुमरथे कसारे झुमरथे कसारे। लहलहावे लहलहावे लहलहावे वो छत्तीसगढ़ महतारी तोरे महिमा हावे भारी तोरे गुण लगावो। छत्तीसगढ़ महतारी तोरे महिमा हावे भारी तोरे गुण लगावो। रुख राई जंगल झाड़ी तोरे च सिंगारे हे तोरे च सिंगारे हे। देवधामी

रुख राई जंगल झाड़ी तोरे च सिंगार हे, तोरे च सिंगार हे। देवधामी तीरथ बरत हीरा के भंडार हे, हीरा के भंडार हे। जगमगावे जगमगावे जगमगावे वो छत्तीसगढ़ महतारी, तोरे महिमा हावे भारी तोरे गुण लगावा वो। छत्तीसगढ़ महतारी।

0: వారి తొరుగుని లగావు, తొరుగుని లగావు, తొరుగుని లగావు.
1: अब मैं हर दूसरा कविता सुनाए बर जात हूँ, जेकर शीर्षक है पेड़ और आला छंदमा रचना हवे.
0: पेड़ लगावा जुर्मिल संगी अमृत छैया हे बगराय, पानी बादर झुरझुरे लावे धरती को राहे हरियाय, पानी बादर झुरझुरे लावे. पेड़ बिना है सुनना जगिए संत सुजानिक करो विचार, कैसे पानी हवा बचाबो होवत हवे हाहाकार, कैसे पानी हवा बचाबो. पेड़ लगाथन कहके भैया दे मारे फोटो खिंचवाए, बिन पानी सब सुनना दीदी लगे पेड़ ला कौन बचाए, बिन पानी सब सुना दीदी. पेड़ बचावे जिंदगी सबके चेत गरौ गामित मितान, हरियर धरती के को रामा आही तभी नवा बिहान, हरियर धरती के को रामा. धरती हरियर दुनिया हरियर मानो संगी मोरो बात, शुद्ध हवा पानी मिल ही तब हो ही जब झुरझुर.

0: चादर झुरझुर लावे, धरती के कोरा हरियाए पानी बादर झुरझुर लावे, धरती के कोरा हरियाए पानी बादर झुरझुर लावे।
1: अभी आप मन श्री तोषण कुमार चुरेंद्र ले कविता पाठ सुनत रहो। एकरे संग आज के छत्तीसगढ़ी समन्वित कार्यक्रम मोर भुइया के आज के ए अंक ले मोला इहे विदा देवा। जय जोहार, राम राम।

मोर भुइयां। अभी आप छत्तीसगढ़ी में समन्वित साहित्य कार्यक्रम सुन रहे थे। संपादक और प्रस्तुतकर्ता थे महेंद्र साहू। ये आकाशवाणी रायपुर है। कुछ ही पलों में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से बोल रहे हैं। 9 बजे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम रंग तरंग। इसमें आज आपको सुनवा रहे हैं झलकी सुखांत नाटक। लेखक हैं श्री आर के शर्मा। निर्देशक हैं श्री विश्व प्रकाश दीक्षित बटुक।

0: अरुण, ओ अरुण,
1: तुमने मुझे पुकारा।
2: हाँ,
1: लेकिन तुम्हारी पुकार में अब वो प्यार नहीं है, मिठास नहीं है, रस नहीं है।
0: क्या मतलब?
1: अपने दिल से पूछो।
0: पूछ लिया।
1: ओ अरे तुम
2: नाटक के डायलॉग लिख रहे हो।
1: लो यार, तुम्हारे आने का मुझे पता ही नहीं चला।
2: किसी ने ठीक ही कहा है।
1: क्या कहा है?
2: पागल लेखक एक समाना।
1: बंद कर अपना ये तराना, मैं तेरी बेवकूफी की तुकबंदी कई बार सुन चुका हूं।
2: तो फिर अपनी कोई अकलमंदी की बात करो।
1: देख, इस समय तो मैं एक नाटक सोच रहा हूं।
2: मैं समझ गया और तू भी समझ।

0: ले, मैं इस वक्त टलने का नहीं।
1: अरे नहीं नहीं भाई, तुझे जाने को कौन कहता है?
0: बोल तुझे क्या परेशानी है, कहां अटकी तेरी कहानी है?
1: अरे यार, एक नाटक लिखने का वादा कर चुका हूँ और बस।
0: तो लिख डाल, इसमें परेशानी की क्या बात है?
1: अरे यार, कल रात से सोच रहा हूँ, दिमाग काम नहीं कर रहा।
0: बोल कहां गाड़ी अटकी हुई है, अभी धक्का लगाता हूँ।
1: कहा ना, मुझे एक नाटक लिखना है, मैं वादा कराया हूँ कि परसों जरूर स्क्रिप्ट दे दूंगा।
0: भाई तूने तो अब तक दर्जनों नाटक लिखे हैं, सब में से एक एक बरखा निकाल ले, नया नाटक तैयार हो जाएगा।
1: तू फिर ऊटपटांग की बात करने लगा। बात यह है भैया कि प्लॉट नहीं मिल रहा है, प्लॉट मिल जाए तो डायलॉग तो मैं बस फटाफट लिख डालूंगा।
0: तो तुझे प्लॉट चाहिए?
1: हाँ।
0: तो चल यार, प्लॉट के लिए किसी प्रॉपर्टी डीलर से बात करते हैं।
1: शट अप, तू जिंदगी में कभी सीरियस हो ही नहीं सकता।
0: अच्छा चलो, हो गया, एकदम सीरियस हो गया। अच्छा ये बता कि तुझे ट्रेजेडी लिखनी है या कॉमेडी?
1: कॉमेडी, यानी कि सुखांत नाटक।
0: तो फिर मुश्किल क्या है, हीरो हीरोइन को पहले मिलाओ, फिर उनका प्यार दिखाओ, उसके बाद उन्हें थोड़ा सा अटकाओ भटकाओ, फिर उसके बाद सुखांत नाटक लिखना है तो उनकी शादी करवाओ, और अगर दुखांत लिखना है तो उनमें से एक को परलोक पहुंचाओ।
1: अरे अरे, तूने तो बस चार लाइनों में नाटक खत्म कर दिया।
0: भाई मैंने तो तुझे प्लाट दिया है, अब इस प्लाट पर इमारत तू खड़ी कर दे। अच्छा तूने कुछ सोचा?
1: हाँ, नाटक शुरू तो मैंने कर दिया है, 5-6 सफ़े लिख भी लिए हैं, लेकिन आगे कुछ नहीं सोच रहा।
0: पहले ये सुनाओ तुमने क्या लिखा है, उसके बाद हम तुम्हें सुझा देंगे, तुम्हारी गुत्थी सुलझा देंगे।
1: तो सुन, मेरी हीरोइन का नाम है नीलम और हीरो का नाम है सुरेश। पहले इनकी मुलाकात होती है, फिर जान पहचान होती है, और उसके बाद प्यार होता है।
0: ये तो बिल्कुल ठीक है, किसी ने कहा है पहले औरत आदमी को शैतान बोलती है, फिर नादान बोलती है, फिर मेहमान बोलती है, और फिर मेरे प्राण बोलती है।
1: बीच में अपनी फिलॉसफी रहने दे और जो मैं कहता हूं उसे सुन।
0: तो सुना। अच्छा तो नीलम और सुरेश की पहली मुलाकात कहाँ होती है?
1: नीलम कैनॉट प्लेस में जा रही है। नीलम एक मॉडर्न लड़की है। अच्छा? उसने जीन पहन रखी है,
0: घोड़े वाली जीन।
1: बकवास बनकर, सीधी तरह सुनना है तो सुन, नहीं तो दफा हो जाए यहां से।
0: आई एम सॉरी, मैं समझ गया, जीन पहने हुए,
1: बाल कटे हुए हैं, और उसके ऊंची एड़ी के सैंडल हैं,
0: उसके हाथ में कैंडल है। हाँ। और वहीं हो जाता एक स्कैंडल है।
1: अच्छा बाबा, अब आप यहां से जाइए, नमस्ते।
0: भाई देखो, तुक बंदी करने की तो अपनी आदत है। अच्छा अब सुना।
1: वो इतराती हुई, इठलाती हुई
0: और लंगड़ाती हुई जा रही
1: है। यहाँ लंगड़ाती हुई तूने कैसे लगा दिया? अगर वो लंगड़ाती है तो फिर वो इतराती इठलाती कैसे है?
0: मेरा मतलब है कि चाहे लंगड़ाए या ना लंगड़ाए, लेकिन इतराती इठलाती के बाद लंगड़ाती शब्द ही आता है। खैर चलो, मान लिया कि वो इतराती इठलाती चली जा रही है, इसके बाद?
1: उसके बाद वो अपना पर्स खोलती है।
0: वो अपना पर्स क्यों खोलती है?
1: अरे उसकी मर्जी, उसका पर्स है, वो जब चाहे खोल सकती है, इसमें तुम्हें क्या एतराज है भाई?
0: अच्छा अच्छा आगे चलो।
1: पर्स में से इत्तफाक से उसकी एक चिट्ठी गिर पड़ती है और उसे पता नहीं चलता। वो पर्स बंद करके आगे चल देती।
0: अच्छा।
1: उसके पीछे इत्तफाक से सुरेश चला आ रहा है। वो चिट्ठी उठा लेता है और फिर जल्दी जल्दी चलकर नीलम के पास पहुंच जाता है।
0: और फिर इत्तफाक से क्या होता है?
2: लड़की जी, लड़की जी, ए मिस्टर लड़की जी,
3: आप कुछ मुझसे कह रहे हैं?
2: जी हाँ, मैं आपसे और सिर्फ आपसे और आप ही से कुछ कहना चाहता हूँ।
3: ये लड़की जी पुकारने का कौन सा तरीका है?
2: बात यह है जी, मुझे आपका नाम काम धाम कुछ भी पता नहीं। अगर नाम पता होता तो नाम से पुकारता, अगर काम पता होता तो मास्टर नीज या डॉक्टर नीज कहकर पुकारता, अगर धाम पता होता तो करोल बाग वाली जी या जोर बाग वाली जी कहकर पुकारता। मैं तो ये भी नहीं जानता कि आप मिस है या मिसेज, इसीलिए मजबूरन लड़की जी कहना पड़ा।
3: आप कैसे आदमी हैं?
2: जैसा भी हूँ आपके सामने हूँ।
3: आप अजीब आदमी हैं।
2: आदमी हूँ इसमें तो कोई शक नहीं, बाकी रही अजीब की बात तो साहब आपको पूरी आजादी है, आप मुझे अजीब समझे, गरीब समझे या बदनसीब समझे,
3: मैं पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगा।
2: उससे कोई फायदा नहीं होगा, आपकी ये चिट्ठी आपके पर्स से गिर पड़ी थी, अगर इसके गुम होने की रिपोर्ट पुलिस में करेंगी तो पुलिस आपसे पूछेगी कि ये चिट्ठी कहाँ से आई, किससे आई, क्यों आई, कब आई, वगैरह वगैरह।
3: ओ, ये चिट्ठी गिर पड़ी और आपने उठा ली?
2: हाँ जी हाँ, मैंने उठा ली। लेकिन आप ये बताएंगे कि आपने ये चिट्ठी फेंकी या ये खुद ही गिर पड़ी?
3: आप जरूरत से ज्यादा बातें बना रहे हैं।
2: मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये वो चिट्ठी है जिसे आप फेंकना चाहती हैं तो फाड़ कर फेंकिए, और अगर ये प्रेम पत्र है तो इसे संभाल कर रखिए, और अगर इसमें कोई जंतर मंतर है तो इसे तावीज में जड़वा कर अपनी बाई बाह में कंधे से 6 सेंटीमीटर नीचे बांध दीजिए।
3: ये चिट्ठी मेरी है और मुझे दे दीजिए।
2: आपकी चिट्ठी है, आप ही को दूंगा, और इसीलिए तो आपको रोका है टोका है। ये लीजिए अपनी चिट्ठी। आपका नाम?
3: आपसे मतलब?
2: और मैं भी कितना बेवकूफ आदमी हूँ,
3: इसमें क्या शक है।
2: आपका नाम तो चिट्ठी पर लिखा है, नीलम है। नीलम तो ना से आरंभ होता है ना?
3: जी हाँ। आपको कुछ एतराज है?
2: एतराज नहीं, बड़ी खुशी की बात है। मुझे कल जोशी ने बताया कि मेरी शादी जिस लड़की से होगी उसका नाम ना से आरंभ होगा।
3: शट अप।
2: ना से नीना और नीरा भी तो हो सकता है।
3: और मुझे ज्योतिषी ने बताया है कि आज मैं किसी आदमी को चाटा मारूं।
2: आपने चाटा मार दिया?
3: अभी तक नहीं।
2: तो आप जल्दी से किसी का चाटा मार कर आइए, मैं आपका यहीं इंतजार करूंगा।
3: जी हाँ, आप इंतजार कीजिए, मैं चली।
2: बाय बाय।
0: सुरेश बाय बाय कहता है लेकिन नीलम कोई जवाब नहीं देती। वो चली जाती है, सुरेश वहीं खड़ा रहता है। इसके बाद सुरेश कहाँ जाता है?
1: ये बताने की जरूरत नहीं, म्यूजिक देकर हम पहला सीन यही खत्म कर देते हैं।
0: तुम तो यूं ही घबरा रहे हो, लो एक सीन तो तुम्हारा बन गया।
1: इसके बाद इत्तफाक से उनकी दूसरी मुलाकात होती।
0: ये इत्तफाक बड़े काम की चीज है। ये बेचारा इत्तफाक नाटककारों के बड़े काम आता है। जहां कहानी अटकी ये उसे धक्का लगा देता है।
1: कुछ दिन बाद नीलम अपने स्कूटर पर जा रही थी, रास्ते में उसका स्कूटर खराब हो जाता है।
0: क्यों खराब हो जाता है?
1: अरे इत्तफाक से खराब हो जाता है भाई।
0: और इत्तफाक से सुरेश थोड़ी देर बाद अपने स्कूटर पर उधर से आता है। वाह रे इत्तफाक।
1: नीलम सुरेश को जाते हुए देखती है तो आवाज देती है, लेकिन उसे यह मालूम नहीं कि वो सुरेश ही जा रहा है।
2: आपने मुझे पुकारा?
3: जरा इधर आइए। ओह आप हैं, मैंने दूर से आपको पहचाना नहीं था।
2: तो आप पहचान लीजिए,
3: आप वही हैं?
2: जी हाँ, मैं वही हूँ।
3: आप ये स्कूटर ठीक कर सकते हैं?
2: जी मैंने बड़े बड़ों को ठीक कर दिया, ये तो आगे स्कूटर ही है।
3: तो स्कूटर स्टार्ट करके दिखाइए।
2: आप इनाम क्या देंगी?
3: इनाम का फैसला तो काम देखने के बाद किया जाएगा।
2: अच्छा, तो क्या ये चलते चलते एकदम बंद हो गया?
3: जी हाँ।
2: इसका ढक्कन खोलता हूँ। अरे ये देखिए, प्लग की तार निकली हुई है, स्टार्ट कैसे होगा?
3: बस इतनी सी ही बात थी।
2: आप स्टार्ट कीजिए। ओ मेरा इनाम।
3: आपने इस बहाने मुझसे इतनी देर बात कर ली, क्या ये कम इनाम है?
2: लड़की जी थैंक यू तो कह दीजिए। सुनिए तो, ओहो सुनिए तो।
3: सॉरी मुझे सुनाई नहीं देता। बाय बाय।
1: बाय बाय। म्यूजिक के साथ दूसरा सीन खत्म हो जाता है। तो इसके बाद इनकी मुलाकात एक पार्टी में होती है जहां दोनों इनवाइटेड हैं।
0: इत्तफाक से।
1: उस पार्टी में सुरेश गाना गाता है, नीलम उसका गाना सुनकर हैरान हो जाती है और उसे मन ही मन चाहने लगती है। धीरे धीरे दोनों में प्यार हो जाता है।
0: तो दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं।
1: अरे दोनों एक दूसरे को प्यार नहीं करेंगे तो क्या दोनों किसी तीसरे को प्यार करेंगे? अच्छा बता इसके बाद क्या करूं?
0: इसमें सोचने की तो कोई बात ही नहीं है। तुझे सुखांत नाटक लिखना है, इसलिए प्यार के बाद शादी तो होनी ही चाहिए।
1: अरे अभी इनकी शादी करवा दूं तो नाटक खत्म हो जाएगा, और अभी तो 15 मिनट का नाटक हुआ है, मुझे पूरे 30 मिनट का नाटक लिखना है।
0: जरा सोचने दे। आइडिया, अपने यहां प्रेम विवाह इतनी जल्दी नहीं हो जाता, शादी से पहले हीरो का बाप या हीरोइन का बाप टांग जरूर अड़ाता है।
1: अच्छा तो ठीक है, लड़के का बाप लालची है और वो दहेज चाहता है। सुरेश अपने बाप से नीलम की शादी की बात करता है। अरे ठहर जाए यार, लगे हाथ इस सीन के डायलॉग भी लिख देते हैं। सुरेश का बाप रामनाथ अपनी बैठक में बैठा हुआ है, सुरेश उसके पास जाता है।
2: पिताजी
1: पिताजी
4: क्या है?
2: पिताजी बात यह है कि मैं
4: कुछ कहेगा भी
2: पिताजी

0: मैं शादी करना चाहता हूँ।
1: ये तो बड़ी अच्छी बात है, हम भी तेरे लिए किसी अमीर बाप की बेटी देख रहे हैं।
0: पिताजी, मैं नीलम से शादी करना चाहता हूँ।
1: नीलम कौन
0: है? एक लड़की है।
1: तेरी ये हिम्मत कि हमसे बिना पूछे तूने लड़की पसंद कर दी, उससे प्यार करने लगा और शादी का इरादा करके वादा भी कर दिया। अपने खानदान में लव मैरिज का रिवाज नहीं है। तेरी शादी वहां होगी जहां मैं चाहूंगा। वो लड़की पढ़ी लिखी है?
0: बीए पास है।
1: तो हुआ करे, तेरी शादी वहीं होगी जहां मैं चाहूंगा। उसका बाप क्या करता है?
0: बिजनेस करता है।
1: कैसा बिजनेस?
0: ठेकेदार है पिताजी।
1: ठेकेदार है, तो हुआ करे, तेरी शादी वहां होगी जहां मैं चाहूंगा। उसकी कोठी है, कार है?
0: जी हाँ है, है,
1: है। तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन तेरी शादी वहां होगी जहां मैं चाहूंगा। कितने भाई बहन हैं?
0: एक भाई और एक बहन।
1: ये तो और भी अच्छी बात है, लेकिन तेरी शादी वहीं होगी जहां मैं चाहूंगा।
0: पिताजी, मैं नीलम से प्यार करता हूं।
1: कोई हर्ज नहीं, मालदार आसामी है, कोठी है, कार है, सिर्फ एक ही लड़की है, लेकिन तेरी शादी वहीं होगी जहां मैं चाहूंगा।
0: पिताजी,
1: तो ठीक है, मैं यही चाहूंगा कि तेरी शादी नीलम से हो जाए, लेकिन दहेज की बात पहले तय करनी होगी।
0: मैं दहेज नहीं लूंगा पिताजी।
1: तो शादी किस लिए कर रहा है?
2: इसके बाद दहेज के मामले पर बाप बेटे का झगड़ा शुरू हो जाता है। बेटा भूख हड़ताल कर देता है, बाप बेटे के विरोध में भूख हड़ताल कर देता है, और जब माँ को पता चलता है तो वो उसके बाप के विरोध में भूख हड़ताल कर देती है।
3: अच्छा।
2: अंत में बाप को हार माननी पड़ती है और सुरेश की शादी नीलम से हो जाती है।
3: लड़की का बाप क्या बिना कुछ कहे सुने मान जाता है?
2: अरे उसे तो फौरन माना ही पड़ेगा, वरना नाटक बहुत लंबा हो जाएगा भाई। इसके बाद
3: लड़का लड़की राजी, उसके माँ बाप भी राजी हो गए, तो सुखांत नाटक के लिए अब और कुछ नहीं हो सकता, उनकी शादी ही होगी।
2: शादी तो होगी, चलो उनकी शादी होगी और बड़ी धूमधाम के साथ। शादी के बाद?
3: शादी के बाद बच्चे होंगे।
2: अरे शादी हुई है तो बच्चे तो होंगे ही। चलो उनके 6 बच्चे हो गए।
3: क्या कहा, 6 बच्चे? भाई तुम तो सुखांत नाटक लिखना चाहते हो।
2: हाँ।
3: तो भैया शादी के बाद अगर 6 बच्चे हो गए तो ये तो जिंदगी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी होगी।
2: अरे
3: फिर ये नाटक तो दुखांत हो जाएगा।
2: हाँ यार, बात तो तुम ठीक कहते हो। मेरे हीरो हीरोइन तो पढ़े लिखे हैं, अकलमंद है, और पढ़े लिखों के तो सिर्फ 2 ही बच्चे होते हैं।
3: अब उनका जीवन सुखी होगा।
2: 2 बच्चे हो गए, इसके बाद?
3: इसके बाद क्या, कुछ भी नहीं। अगर उनके 2 ही बच्चे होंगे तो उनका जीवन बहुत सुखी हो जाएगा। और देख, तुझे 30 मिनट का नाटक ही तो लिखना था, बस 30 मिनट का नाटक तो हो गया, इसे लिख और झट से।
2: अरे वाह, ये तो काम बन गया भाई।
3: दोस्त देख, मैंने तेरी अटकी हुई गाड़ी चला दी ना, तेरी रुकी हुई कहानी पूरी करवा दी। हमको दुआएं दो कि तुम्हें कातिल बना दिया, नहीं नहीं नहीं लेखक बना दिया।

सुखांत नाटक। अभी आप श्री आर के शर्मा की लिखी ये झलकी सुन रहे थे। निर्देशक थे श्री विश्व प्रकाश दीक्षित बटुक। प्रतिभागी कलाकार थे सर्वश्री रवि शर्मा, नरेश कौशिक, रविंद्र खोसला, अलका पांडे और रामावतार शर्मा। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 9:15 हुए हैं। लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत। पहले सुनते हैं ये संदेश।

चित्रपट संगीत का पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं, प्रसून जोशी का लिखा हुआ, स्वर उस्ताद बड़े गुलाम अली खां और श्रेया घोषाल का है। फिल्म का नाम है दिल्ली सिक्स और संगीत ए आर रहमान का।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे।
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
2: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: लीजिए अब सुनिए नीरज श्रीधर और सुनिधि चौहान के स्वर में इरशाद कामिल की रचना, संगीत प्रीतम का है और फिल्म का नाम है लव आजकल।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत का कार्यक्रम अजब प्रेम की गजब कहानी। आइए सुनते हैं इस फिल्म का गीत। आतिफ असलम और अर्षा चिनॉय के स्वर में, आशीष पंडित के बोल हैं, संगीत प्रीतम का है।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत का कार्यक्रम। पावनी पांडे और अरिजीत सिंह के स्वर में लीजिए आप सुनिए फिल्म रईस का गीत। बोल इंदिवर के हैं, संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

0: कुछ बातें बड़ी दूर से सुनाई देती हैं।
1: फोनिंग फरमाइश, नमस्कार सर, रोहतक हरियाणा से महेंद्र शाह रेडियो लिस्टन बोल रहा हूँ सर।
2: बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तो फरमाए।
0: कुछ आवाजें गीतों के संग खुल मिल जाती हैं।
3: गीत मेरे होठों को गया कोई।
0: कभी कोई किस्सा याद आता है। कभी अपने बारे में बहुत कुछ कहने को मन करता है।
4: मुझे कुछ कहना है,
5: मुझे भी कुछ कहना है।
0: श्रोताओं की बातों और उनकी पसंद के फिल्मी गीतों का अनूठा संगम है फोन इन फरमाइश। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल से हर रविवार सुबह 11:05 पर।
6: सुनिए।

ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

हैप्पी न्यू ईयर। इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे श्रेया घोषाल और अरिजीत सिंह के स्वर में। इरशाद कामिल के बोल थे, संगीत विशाल शेखर का था। इसी गीत के साथ चित्रपट संगीत का कार्यक्रम समाप्त होता है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 9:40 हुए हैं। लीजिए सुनिए लोक संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में कलाकार हैं खुमान लाल साव और उनके साथी। पहले सुनिए लता खापर्डे अनीता वासनिक के स्वर में रमेश ठाकुर का लिखा ये गीत।

आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से आप सुन रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम। अभी आपने सुना रमेश ठाकुर, लता खापड़े और अनीता वासनिक के स्वर में लोकगीत। आइए अब सुनते हैं अनीता वासनिक के स्वर में लक्ष्मण मस्तुरिहा की रचना।

ये खनकती आवाज अब आप सुन सकते हैं और भी बेहतरीन क्वालिटी में, कभी ब्लूटूथ स्पीकर से कनेक्ट करके तो कभी हेडफोन पर लगाकर। आकाशवाणी रायपुर का प्रसारण अब उपलब्ध है मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTH पर। चाहे पास रहें या दूर, आपके करीब हर पल आकाशवाणी रायपुर।

0: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।
1: लोक संगीत के कार्यक्रम में अभी आप खुमान लाल साव और उनके साथियों को सुन रहे थे। इन्हें आप इसी कार्यक्रम में रात 8:15 पर पुनः सुन सकते हैं। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 9:55 होने को हैं। कुछ ही पलों में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। ये आकाशवाणी रायपुर है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
2: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। जगदलपुर में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक होगी। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि छत्तीसगढ़ में पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है। और दुर्ग पुलिस ने आईपीएल मैचों के दौरान ऑनलाइन सट्टा ऐप संचालित करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर में आज मध्य क्षेत्रीय परिषद की उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की जाएगी। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में होने वाली परिषद की 26वीं बैठक में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ राज्यों के मुख्यमंत्री तथा वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि बस्तर में पहली बार हो रही ये बैठक क्षेत्र के लिए गौरव का विषय है। उन्होंने कहा कि ये बैठक अंतर्राज्यीय समन्वय को मजबूत करेगी और क्षेत्र में सुरक्षा तथा विकास को नई दिशा देगी। श्री साय ने कहा कि कभी नक्सली हिंसा की चुनौतियों से जूझने वाला बस्तर आज शांति, सुरक्षा और विकास की नई पहचान बना रहा है। ऐसे समय में देश के वरिष्ठ नेतृत्व और विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों की उपस्थिति बस्तर के बदलते स्वरूप और बढ़ते विश्वास का प्रतीक है। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री ने कल बस्तर जिले के नेतानार गांव में जन सुविधा केंद्र का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि अगले 1.5 वर्षों में बस्तर में स्थापित सुरक्षा बलों के करीब 200 कैंपों में से 70 कैंपों को जन सेवा केंद्रों में बदलकर उन्हें आदिवासी कल्याण का केंद्र बनाया जाएगा। इन सेवा केंद्रों में बैंकिंग, आधार, राशन कार्ड, कौशल प्रशिक्षण सहित केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं से संबंधित सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। केंद्रीय गृह मंत्री ने बस्तर प्रवास के दौरान कल जगदलपुर में अमर वाटिका पहुंचकर माओवाद के विरुद्ध संघर्ष में

0: सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री श्री शाह ने कल जगदलपुर में शहीदों के परिजनों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों और नक्सल पीड़ितों के साथ मुलाकात और चर्चा की। श्री शाह ने खुशी जताते हुए कहा कि तीन पीढ़ियों तक जिस नक्सलवाद को समाप्त नहीं किया जा सका, उसे हमारे वीर जवानों ने मात्र 3 वर्षों में समाप्त कर दिखाया। उन्होंने कहा कि माओवाद इसलिए नहीं फैला था कि यहां विकास नहीं था, बल्कि यहां विकास नहीं होने का कारण ही हथियारबंद नक्सलवाद था। अब हथियारबंद नक्सलवाद समाप्त हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने विश्वास जताया कि देश के सभी आदिवासी संभागों में बस्तर सबसे विकसित आदिवासी संवाद बनेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अपने बस्तर दौरे के दौरान कल शाम जगदलपुर स्थित बादल अकादमी पहुंचे, जहां उन्होंने बस्तर के संघ कार्यक्रम में बस्तर की आदिवासी लोक कला और संस्कृति का आनंद लिया। इस मौके पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद थे। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि छत्तीसगढ़ में पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है और आम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार के अनुसार प्रदेश में वर्तमान में 3,28,00,000 लीटर से अधिक पेट्रोल और 7,75,00,000 लीटर से ज्यादा डीजल उपलब्ध है। खाद्य विभाग ने सभी ऑयल कंपनियों के साथ समीक्षा बैठक कर जिन पेट्रोल पंपों पर स्टॉक कम है, वहां प्राथमिकता के आधार पर आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। दुर्ग पुलिस ने आईपीएल मैचों के दौरान ऑनलाइन सट्टा ऐप संचालित करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि ऑनलाइन सट्टा कारोबार का मुख्य संचालक सेट स्पोर्ट बुक और लोटस ऐप के जरिए म्यूल अकाउंट का उपयोग कर करोड़ों रुपए का लेन देन कर रहा था। पुलिस को आरोपियों के पास मिले म्यूल खातों से करीब 5 करोड़ रुपए के ट्रांजेक्शन की जानकारी मिली है। बिलासपुर जिले में पुलिस और एसीसीयू की टीम ने सरकंडा थाना क्षेत्र के अंतर्गत 90 किलो गांजे के साथ 8 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। ये महिलाएं इलेक्ट्रिक ऑटो से गांजे की तस्करी कर रही थीं। सभी महिलाएं मटियारी गांव की रहने वाली हैं और ओडिशा से गांजा लाकर आसपास के इलाकों में खपाने की तैयारी में थीं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जगदलपुर में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक होगी। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि छत्तीसगढ़ में पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है और दुर्ग पुलिस ने आईपीएल मैचों के दौरान ऑनलाइन सट्टा ऐप संचालित करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक हिंदी समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 10 बजे हैं, कुछ ही पलों में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम उजाले की ओर।
2: कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं छत्तीसगढ़ संवाद।

समय चक्र के घेरे में सारा ब्रह्मांड है, क्योंकि समय का पहिया हमेशा घूमता रहता है। अतीत, भविष्य और वर्तमान सभी समय से बंधे हैं। समय का सम्मान अनुशासन सिखाता है, और अनुशासन से ही होती है देश और समाज की प्रगति।

0: ई ऑफिस अनुशासन और सुशासन का आदर्श रूप है। इस ऑनलाइन सुविधा ने पेपरलेस वर्क को गति प्रदान की है, साथ ही एक कार्यालय को दूसरे कार्यालय से सरलता और शीघ्रता से जोड़ा है। कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच की दूरी ई ऑफिस ने कम कर दी है। यहाँ तक कि हस्ताक्षर भी डिजिटल हो गए हैं, इसीलिए फाइलों के ढेरों के निराकरण में सहूलियत हो गई है। आवेदनों पर त्वरित कार्यवाही हो रही है और समय सीमा में ही हो रहे हैं सारे काम।
1: मैं विश्वास कुमार, डिप्टी कलेक्टर जिला राजनांदगांव में पदस्थ हूँ। छत्तीसगढ़ में ई ऑफिस के महत्व की अगर बात करें तो ई ऑफिस शासन की कार्यप्रणाली को डिजिटल, पारदर्शी और तेज बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। छत्तीसगढ़ में ई ऑफिस लागू होने से सरकारी कार्यों में गति और पारदर्शिता दोनों बढ़ी है। पहले ऑफलाइन फाइलों के संचालन में काफी समय लगता था, लेकिन अब ऑनलाइन फाइल ट्रैकिंग, डिजिटल सिग्नेचर और उसके त्वरित अनुमोदन से सुविधा से कार्य शीघ्रता से हो रहे हैं। इससे आम नागरिकों को समय पर सेवाएं मिल पा रही है और साथ ही साथ कार्यालयों में जवाबदेही भी बढ़ी है। अगर हम ई ऑफिस की सुविधाओं की बात करें तो ई ऑफिस जब से शुरू हुआ है, उसके शुरू होने से कर्मचारियों और अधिकारियों को कई सुविधाएं मिल रही हैं, जैसे कि अब फाइलों को ऑनलाइन भेजा और देखा जा सकता है, जिसे किसी भी स्तर पर हम ऑनलाइन ई ऑफिस के तहत कार्य की स्थिति को तुरंत पता लगा सकते हैं। दस्तावेजों के सुरक्षित डिजिटल रिकॉर्ड तैयार हो रहे हैं और इसके साथ ही साथ कार्यालयों के बीच समन्वय भी आसानी से हो रहा है। इससे समय और जो शासन के संसाधन है, इन दोनों की बचत हो रही है। ई ऑफिस का पेपरलेस कार्यप्रणाली में क्या महत्व है, अगर हम बात करें तो पेपरलेस कार्यप्रणाली में ई ऑफिस की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे कागज की खपत कम हो रही है और रिकॉर्ड भी सुरक्षित रह रहे हैं, जिससे कि पर्यावरण संरक्षण को भी इसमें बढ़ावा मिल रहा है। डिजिटल माध्यम से कार्य होने से फाइलों के गुम हो जाने या फिर उनके विलंब की जो समस्या थी उसमें कमी आई है, जिससे प्रशासनिक प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित और प्रभावी बन रही है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में ई ऑफिस का उपयोग राज्य शासन के विभिन्न विभागों में किया जा रहा है, जैसे कलेक्ट्रेट, राजस्व विभाग और शासन के अन्य महत्वपूर्ण सभी विभागों में ये कार्यालय शामिल है। राज्य सरकार इसे धीरे धीरे चरणबद्ध रूप में सभी विभागों में लागू करने के लिए पूर्णतः डिजिटल बनाने की दिशा में कार्य कर रही है।

0: ई ऑफिस प्रणाली तकनीक की दुनिया का एक नायाब शाहकार है। इससे सूचनाओं का आदान प्रदान तो हो ही रहा है, शासन की कार्य प्रणाली को भी स्पष्ट आधार मिल रहा है। इस प्रणाली का उद्देश्य ही ये है कि समाज प्रशासन के करीब आए और सारे कामों का निराकरण जल्दी से जल्दी जमीनी स्तर पर ही हो जाए। ई ऑफिस जनता और प्रशासन दोनों के लिए ही वरदान है। पारदर्शिता का ये एक अनुपम उदाहरण है।
1: मैं नितेश चक्रधारी, सहायक जनसंपर्क अधिकारी, मुख्यमंत्री प्रेस प्रकोष्ठ में संलग्न हूँ। अभी वर्तमान में सरकार ने छत्तीसगढ़ में ई ऑफिस लागू किया है। ई ऑफिस क्या है, इस चीज को हम समझते हैं। ई ऑफिस एक डिजिटल कार्य प्रणाली है जिसका उद्देश्य सरकारी कामकाज को तेज, पारदर्शी और आधुनिक बनाना है। यह जो पारंपरिक फाइल की व्यवस्था होती है उसको ऑनलाइन प्रणाली में बदलता है। इससे क्या होता है कि ऑनलाइन प्रणाली में आने से जवाबदेही सुनिश्चित होता है और सुशासन और पारदर्शिता की तरफ हम बहुत तेजी से बढ़ते हैं। इसका महत्व यह है कि सरकारी फाइलों का डिजिटल प्रबंधन प्रारंभ हुआ है, अधिकारियों के बीच में कार्यों का तेजी से आदान प्रदान हुआ है, निर्णय लेने की प्रक्रिया में तेजी आई है, पारदर्शिता और जवाबदेही बहुत अधिक बढ़ा है, रिकॉर्ड सुरक्षित रखना है, भ्रष्टाचार और देरी में कमी लाती है, मतलब हम जीरो टॉलरेंस की तरफ बढ़ते हैं। यह एक डिजिटल गवर्नेंस का एक मजबूत स्तंभ माना जा सकता है। इससे बहुत सी सुविधाएं हमको मिल रही है। अब इनकी हम सुविधाएं की बात करें तो हम इसको तीन स्तर पे बांट सकते हैं कि भैया कर्मचारियों को क्या सुविधा मिल रही है, आम नागरिक को क्या हो रही है और प्रशासन को इससे क्या फायदा हो रहा है। तो पहले तो अगर हम कर्मचारी और अधिकारियों की बात करें तो फाइल ऑनलाइन भेजने और देखने की सुविधा उपलब्ध होती है। इससे ये होता है कि कोई अधिकारी अगर दूर है तो वह ऑनलाइन माध्यम से अपने फाइल को ट्रैक कर सकता है, किसी भी समय और स्थान से कार्य करने की सुविधा प्रदान करता है। अभी हाल में ही एक हमारे सर हैं एक विभाग के, वो विदेश में थे, तो विदेश में रहने से वो करीब 10 दिन विदेश में थे, तो 10 दिन रहने से तो फाइल तो रुक जाती, लेकिन वह जब विदेश में थे तो वह विदेश से ही आसानी से वह अपने

फाइलों को ट्रैकिंग कर पाए। तो फाइल को ट्रैकिंग करना बहुत आसान होता है और कार्य में समय बहुत की बचत होती है। दूसरी, अगर हम आम नागरिकों की बात करें तो सरकारी कार्यों में इससे तेजी आई है। आवेदन और शिकायतों का बहुत शीघ्र निपटान होता है, पारदर्शी प्रशासन होता है और कार्यालयों का चक्कर कम लगाना पड़ रहा है। प्रशासन की ओर से दृष्टि से देखें तो यह कागज और खर्च में कमी लाती है, पर्यावरण संरक्षण को बहुत बढ़ावा दे रहा है, रिकॉर्ड सुरक्षित और व्यवस्थित रहता है और दूसरा, कार्यों की निगरानी भी बहुत आसान होती है। इसके महत्व, ई ऑफिस का आज महत्व देखें तो यह सबसे पहले है कि हम एक पेपरलेस कार्यालय की तरफ हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं। पेपरलेस प्रणाली एक सरकारी और आधुनिक और सुरक्षित प्रभावी बनाता है। दूसरा, यह कागज की खपत को तो कम करता है, साथ ही पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलती है। फाइलों के खोने की समस्या से निजात मिलती है। फाइलों के खोने की जैसे कई बार दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो जाती है, अगर उनका डिजिटल संधारण रहता या डिजिटल फाइल रहती तो उनके जलने से और उसके प्रभाव नहीं होता, मतलब वह चीज आसानी से हमको मिल पाता। तो ऐसे घटनाओं से बचने के लिए भी एक डिजिटल संधारण बहुत अनिवार्य है शासकीय कार्यों में। डिजिटल रिकॉर्ड को बहुत लंबे समय तक भी हम सुरक्षित कर सकते हैं हमारे डाटाबेस में और दस्तावेज खोजने में कम समय लगता है। जब बड़ी बड़ी नस्तियां फाइलें रहती है तो 4 साल 5 साल बाद जब उनकी दोबारा आवश्यकता होती है तो वह बहुत जीर्ण शीर्ण भी हो जाती है और उसको ढूंढने में बहुत समय लगता है, उसकी ट्रैकिंग प्रणाली थोड़ी सी कठिन होती है। वह ई ऑफिस प्रक्रिया में यह बहुत आसान है और इसे कार्यालय में तेज और बहुत व्यवस्थित व्यवस्था होती है। ई ऑफिस प्रणाली आज छत्तीसगढ़ में लगभग 87,222 अधिक से अधिकारी और कर्मचारी इससे जुड़े हुए हैं। अगर हम इसके फाइलों के मूवमेंट के बारे में बात करें तो जब से लागू हुआ है तब से 5,46,903 फाइलों का मूवमेंट हुआ है, इसे हम मान सकते हैं, मतलब आप समझ सकते हैं कि इससे कितनी बचत है, पेपरों की बचत हुई है, डिसीजन लेने में कितनी जल्दी इसका डिसीजन हुआ है। दूसरा, ये को लगभग आज छत्तीसगढ़ के सभी विभागों में, छत्तीसगढ़ के जितने भी सभी विभाग है सभी विभागों में ई ऑफिस को लागू कर दिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग हो चाहे राजस्व विभाग हो, सभी और न केवल जिला स्तर के भी नीचे जितने ऑफिस हैं उन सभी में ई ऑफिस प्रणाली को दुरुस्त किए लागू किया गया है। और इसको लागू किया गया है यह केवल नहीं है बल्कि अधिकारियों और कर्मचारियों को भी इससे लगत सतत प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण की व्यवस्था NIC जो डिजिटल नेटवर्किंग प्रोवाइड करता है सिक्योरिटी के इजाज़ से, NIC और हमारी शासकीय टीम चिप्स, ये दोनों मिलके पूरी सारे अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षित कर रहे हैं और ये विभिन्न चरणों में प्रशिक्षण हो रहा है। और इस प्रशिक्षण का फायदा ये हो रहा है कि आज सभी अधिकारी कर्मचारी अपना ई ऑफिस से कार्यों का संचालन लगभग प्रारंभ कर चुके हैं और निश्चित तौर पर यह एक सुशासन की एक नई और आधुनिक परिभाषा हम लिखने के लिए तैयार है अपनी हमारी छत्तीसगढ़ सरकार।

0: छत्तीसगढ़ में गुड गवर्नेंस यानी सुशासन प्रशासन की आधारशिला है ई ऑफिस। रोजमर्रा के प्रशासनिक कार्य हो या फिर डेटा कलेक्शन, सब कुछ आसान हो गया है ई ऑफिस की बदौलत। आज के डिजिटल युग में लंबी कागजी प्रक्रिया की जगह तकरीबन सब कुछ हो गया है ऑनलाइन। बात आवश्यक प्रमाण पत्रों को बनवाने की हो या बच्चों के शैक्षणिक कार्यों की, ई ऑफिस सब जगह एक जिम्मेदार मददगार के रूप में उपलब्ध रहता है। ई ऑफिस को ज्ञान का भंडार कहा जा सकता है। जनगणना जैसा बड़ा काम भी आज डिजिटल माध्यम से हो रहा है। ई ऑफिस सिर्फ एक सुविधा ही नहीं बल्कि समय, ऊर्जा और संसाधनों की बचत का भी एक अच्छा जरिया है।
1: मैं दीप्ति बघेल सहायक शिक्षिका शिक्षा विभाग से हूँ। आज का समय डिजिटल युग का समय है। पहले जिन कार्यों को पूरा करने में कई दिन, कई चक्कर और बहुत अधिक कागजी प्रक्रिया लगती थी, वही काम आज इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल की सहायता से कुछ ही मिनटों में हो रहे हैं। यही आधुनिक व्यवस्था ई ऑफिस कहलाती है। ई ऑफिस का अर्थ केवल कंप्यूटर पर काम करना नहीं है बल्कि इसमें लोगों का समय और मेहनत दोनों बच रहे हैं। यदि शिक्षा विभाग की बात करें तो आज स्कूलों में ऑनलाइन उपस्थिति, परीक्षा परिणाम, छात्रवृत्ति पोर्टल, डिजिटल क्लास, स्मार्ट बोर्ड और ऑनलाइन प्रशिक्षण जैसी व्यवस्थाएं शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो रही हैं। प्रशासनिक कार्यों में भी ई ऑफिस ने बड़ा परिवर्तन लाया है। आज फाइलें ऑनलाइन भेजी जा रही हैं, रिकॉर्ड सुरक्षित रखे जा रहे हैं और कार्यों की निगरानी पहले से अधिक सरल हो गई है, जिससे जानकारी जल्दी और व्यवस्थित रूप से एकत्र हो रही है। डिजिटल इंडिया जैसी पहल के माध्यम से ऑनलाइन कार्य प्रणाली को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसका लाभ यह है कि कई सरकारी कार्य घर बैठे ऑनलाइन किए जा सकते हैं। इस प्रकार ई ऑफिस केवल सुविधा ही नहीं बल्कि समय, ऊर्जा और संसाधनों की बचत का भी एक प्रभावशाली माध्यम बन चुका है। ई ऑफिस और डिजिटल तकनीक आज के समय की आवश्यकता है। यदि हमें समय के साथ आगे बढ़ना है तो हमें नई तकनीकों को सीखना और अपनाना होगा। विशेष रूप से शिक्षकों की जिम्मेदारी है कि वे बच्चों को उसका सही और सुरक्षित उपयोग भी सिखाएं। इंटरनेट, ई ऑफिस और एआई ने हमारे जीवन को सरल, तेज और आधुनिक बनाया है। यह हमारे विकास का महत्वपूर्ण माध्यम है। आवश्यकता केवल इस बात की है, हमें इसका उपयोग मानव कल्याण और समाज की प्रगति के लिए करना चाहिए।

ऑफिस प्रणाली ने पूरे छत्तीसगढ़ में सुशासन और पारदर्शिता को एक साथ प्रवाहित किया है। इसकी वजह से छत्तीसगढ़ एक मजबूत पहचान के साथ उभरा है। ई ऑफिस ने प्रशासनिक व्यवस्था की कई अलग अलग कड़ियों को एक सूत्र में पिरो दिया है। इससे जन सुविधाएं आसानी से सब तक पहुंच रही है, शहर, कस्बे या फिर हो गांव। ई ऑफिस की छत्र छाया में सब फल फूल रहे हैं। अब समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही है सारी योजनाएं। यही तो है सर्वांगीण विकास की परिभाषा। भारत के मानचित्र पर छत्तीसगढ़ विश्वास और प्रगति की एक नई गाथा लिख रहा है। ई ऑफिस की संवेद किरणों के साथ सबको लेकर अपने साथ बढ़ रहा है छत्तीसगढ़ उजाले की ओर।

0: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे छत्तीसगढ़ संवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उजाले की ओर। ये आकाशवाणी रायपुर है। कुछ ही पलों में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से बोल रहे हैं। 10:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं शब्बीर कुमार के स्वर में। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है राहुल देव बर्मन ने और फिल्म का नाम है बेताब।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

चित्रपट संगीत के कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं अमित कुमार और लता मंगेशकर के स्वर में आनंद बख्शी का लिखा गीत। संगीत राहुल देव बर्मन का है। फिल्म का नाम है लव स्टोरी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत का कार्यक्रम। लता मंगेशकर और किशोर कुमार के स्वर में आप सुनिए फिल्म रॉकी का गीत। जावेद अख्तर के बोल हैं संगीत राहुल देवबर्मन का है।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: SP बालसुब्रमण्यम और लता मंगेशकर के स्वर में अब आपको सुनवा रहे हैं समीर की रचना। संगीत आनंद मिलिंद का है और फिल्म का नाम है वंश।

आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत का कार्यक्रम। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना सुनिए श्रोताओं, आगामी मंगलवार 19 मई यानी आज प्रसारित होने वाले हेलो किसान वाणी कार्यक्रम का विषय होगा धान में श्री विधि अपनाएं उत्पादन बढ़ाएं। इस विषय पर आपकी समस्याओं और जिज्ञासाओं के समाधान हेतु हमारे स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ होंगे मनीष कुमार वर्मा, विषय वस्तु विशेषज्ञ कृषि विज्ञान केंद्र पहंदा दुर्ग। आप अपनी जिज्ञासा और शंका का समाधान पाने के लिए हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 4003482, 4003483 और 4003484। रायपुर का एसटीडी कोड है 0771। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग 19 मई 2026 को 11:30 से 12 बजे तक की जाएगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण मंगलवार को ही संध्या 7:30 पर किया जाएगा। हमें आपके फोन कॉल का इंतजार रहेगा। सूचना समाप्त हुई। और अब कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और एसपी बालसुब्रमण्यम के स्वर में आनंद बख्शी की रचना। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है। फिल्म का नाम है एक दूजे के लिए।

0: लता मंगेशकर और एसपी बालसुब्रमण्यम के गाए फिल्म एक दूजे के लिए के इसी गीत के साथ चित्रपट संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 11 बजने को है। हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे की यात्रा के दूसरे दिन आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ये विभिन्न क्षेत्रों में भारत नॉर्डिक सहयोग की दिशा में एक और कदम होगा। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: भारत और पांच नॉर्डिक देशों के प्रधानमंत्रियों की उपस्थिति में आज तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यह शिखर सम्मेलन भारत और नॉर्डिक देशों के बीच बढ़े हुए क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत करेगा। 2022 में डेनमार्क के कोपनहेगन में पिछला सम्मेलन आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन में प्रौद्योगिकी और नवाचार, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण, यह चर्चा के मुख्य क्षेत्र हैं। प्रधानमंत्री मोदी डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ विपक्षीय बैठक भी करेंगे। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों को व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के अंतर्गत 100 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश लक्ष्य को प्राप्त करने और भारत में 10 लाख रोजगार सृजित करने के लिए प्रयास करने चाहिए। प्रधानमंत्री कल ओस्लो में आयोजित भारत नॉर्वे व्यापार तथा अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। क्राउन प्रिंस हाकोन और नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनास गहर स्टोरे भी इस शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते TEPA के लागू होने के बाद द्विपक्षीय व्यापार तथा निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की।
3: यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूनिक और स्पेशल एग्रीमेंट हमारे बीच टैलेंट, टेक्नोलॉजी और म्यूचुअल ट्रस्ट का एग्रीमेंट है। इसी एग्रीमेंट के माध्यम से एफ्टा कंट्रीज से भारत में अगले 15 वर्षों में $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है।
1: प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हैराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया। प्रधानमंत्री पांच देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जो मत्तारेला से भी मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम के राष्ट्रपति तोलाम से भेंट की और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी महत्वपूर्ण है। श्री सिंह ने कहा कि भारत और वियतनाम साझा मूल्यों, रक्षा, सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता में घनिष्ठ सहयोग पर आधारित मजबूत संबंध साझा करते हैं। रक्षा मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया है। हनोई में कल भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारत पहले परमाणु हमला न करने की नीति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन वो परमाणु धमकी के आगे नहीं झुकेगा और किसी भी दुश्मन की दुस्साहसपूर्ण कार्रवाई का करारा जवाब देने के लिए तैयार है। मिजोरम में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू हो गया है। मिजोरम के मुख्य चुनाव अधिकारी डॉ. लाल रुजामा ने जनता और निर्वाचन आयोग की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई, जो एक सप्ताह से भी कम समय में दूसरी बढ़ोतरी है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब 98.64 रुपये प्रति लीटर है, जबकि डीजल की कीमत 91.58 रुपये है। मुंबई में बढ़ोतरी ईरान संघर्ष और हुरमुज जलडमरू मध्य में रुकावटों के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी तेजी के बाद हुई है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 366 से अधिक अंक की वृद्धि के साथ 75,706 पर, जबकि निफ्टी 107 अंक बढ़कर 23,760 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से होगा। कल रात चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही हैदराबाद ने प्लेऑफ में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से बोल रहे हैं। 11:05 हुए हैं। समूह गान शिक्षा के कार्यक्रम में आज लीजिए सुनिए असमिया भाषा का पाठ। बोल हैं ए माटी रे। रचनाकार हैं सतीश दास।

0: अच्छा बच्चों, आज हम तुम्हें असमिया भाषा का एक गीत सिखाएंगे। सीखना चाहते हो ना असमिया भाषा गीत?
1: जी हाँ।
0: अच्छा, ये जो गीत है इसमें अपने देश की मट्टी के प्रति देशवासियों के प्रेम का, प्यार का वर्णन है। तो मैं सिखाऊंगा ये गाना और मेरी मदद करेंगी नलिनी जी साथ। सबसे पहले तुम गीत के बोल लिख लो। ए माती रे,
1: माती रे,
0: ए माती रे, मोरो मोते,
1: मोरो मोते,
0: माती के,
1: माती के,
0: सुमिलो,
1: सुमिलो,
0: माती के सुमिलो, माती के सुमिलो। हो गया ना यहाँ तक? आगे लिखो। ए माती ते,
1: ए माती ते,
0: ए माती ते जीवन, ए माती ते, ज नहीं बोलना इसको, ज बोलना, ये ए माती ते जीवन सोबी, जीवन
1: सोबी,
0: जी कैसे, ज के नीचे बिंदी लगा लेना है ना, तो जीवन सोबी, आकी आकी, दोबारा आकी, आकी आकी, मोसीलो। अब पहला अंतर आएगा इसके बाद। दूर आका हार, ये जो ना आका, आकाश श को बोलते वहां ख की तरह से, तो आका, ये ख और ह के बीच में आका खार भी नहीं, आका हार भी नहीं, आका हार, आका हार लिखो। दूर आका हार, रोहन कियोनु, लागे लागे, खागोर तोलीर, खागोर खागोर, ख नहीं बोलना, ख, खागोर तोलीर, खागोर मतलब समुद्र के तल में, तो खागोर तोलीर, मानिक कियो, मानिक कियो नू, मानिक कियो नू, लागे लागे,
1: लागे लागे,
0: इसके आ गया है आहा आहा,
1: आहा, आहा।
0: फिर मातीर बुकुत,
1: मातीर बुकुत,
0: हाँ मातीर बुकुत, मोनोर मालोती,
1: मालोती,
0: बूटोलो,
1: बूटोलो,
0: मोनोर मालोती बूटोलो। इसके बाद फिर वही आ जाएगा, ए माती रे मोरो मोते। फिर दूसरा अंतरा है मोनोर कोरोनी रे,
1: कोरोनी रे,
0: हुरोर हुरोर पापोरी रे,
1: पापोरी रे,
0: पापोरी रे आजी,
1: आजी।
0: इतना हो गया ना?
1: जी हाँ।
0: आगे हुकुमार, थापो,
1: थापो
0: नाहुजुवा,
1: नाहुजुवा,
0: हुकुमार थापो नाहुजुवा। आगे लिखा है ना?
1: जी हाँ।
0: खुंदौर,
1: खुंदौर,
0: खुदीन और
1: खुदीन और
0: खुदीन और नहीं खनी ख खुदीन और
1: खुदीन और
0: नौतून
1: नौतून
0: दृष्टि
1: दृष्टि
0: ये ट को जरा त जैसा बोलना सॉफ्ट करके दृष्टि दृष्टि शनि सही बोलना दृष्टि
1: दृष्टि
0: कौनो
1: कौनो
0: ना हुआ
1: ना हुआ
0: आगे ना
1: जी हां
0: अच्छा ठीक है अब गाना सिखाना शुरू करते हैं स्वर दीजिए जरा

di sebelah orang nikah. अच्छा आप शुरू से लेंगे सारा गाना है ना, एक दो तीन चार

समूह गान शिक्षा के कार्यक्रम में अभी आपने सुना असमिया भाषा का पाठ। रचनाकार थे सतीश दास। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 11:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: जंजीर फिल्म का गीत अभी आपने सुना, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर के स्वर में। गुलशन बाबरा के बोल थे, संगीत कल्याण जी आनंद जी का था।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
0: किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ में अब आपको सुनवा रहे हैं मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत। संगीत सचिन देव बर्मन का है, फिल्म का नाम है पेइंग गेस्ट।
2: निगाहें मस्ताना देख, समा है सुहाना, तीर दिल पे चला के

सदी के दियों को बुझ जाने दे, लहरा के न रुक रुक जाना, चाहत का लबों पे ना माने।

आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। आशा भोसले और साथियों के स्वर में आप लीजिए सुनिए फिल्म बम्बई का बाबू का ये गीत, जिसे लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने और धुन बनाई है सचिन देव बर्मन ने।

0: स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह। आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं यूट्यूब पर। यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो यूट्यूब पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।
1: लीजिए अब सुनिए मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले के स्वर में फिल्म कश्मीर की कली का गीत। SH बिहारी के बोल हैं, संगीत OP नैयर का है।

0: कुछ बातें बड़ी दूर से सुनाई देती हैं।
1: फोनिंग फरमाइश। नमस्कार सर, रोहतक हरियाणा से महेंद्र शाह रेडियो स्टेशन बोल रहा हूँ सर।
2: बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तोहफा लाए हैं।
0: कुछ आवाजें गीतों के संग खुल मिल जाती हैं।
3: गीत मेरे होठों को
0: कभी कोई किस्सा याद आता है।
2: यादें
0: कभी अपने बारे में बहुत कुछ कहने को मन करता है।
4: मुझे कुछ कहना है,
5: मुझे भी कुछ कहना है।
0: श्रोताओं की बातों और उनकी पसंद के फिल्मी गीतों का अनूठा संगम है फोन इन फरमाइश। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल से हर रविवार सुबह 11:05 पर।
6: सुनिए।

0: लता मंगेशकर और किशोर कुमार के गाए फिल्म दाग के इसी गीत के साथ सदाबहार नगमे कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 11:55 होने को है। कुछ ही पलों में अगला कार्यक्रम होगा। ये आकाशवाणी रायपुर है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। जगदलपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक शुरू। तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज फिर से बढ़ोतरी की। पेट्रोल की कीमत 90 पैसे और डीजल की कीमत 96 पैसे प्रति लीटर बढ़ी। और बिलासपुर पुलिस ने 90 किलो गांजे के साथ 8 महिलाओं को गिरफ्तार किया। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ के बस्तर के संभागीय मुख्यालय जगदलपुर में अब से कुछ देर पहले मध्य क्षेत्रीय परिषद की उच्च स्तरीय बैठक शुरू हो गई है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। मध्य क्षेत्रीय परिषद की इस 26वीं बैठक में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ ही केंद्रीय गृह सचिव, इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक और 4 राज्यों के पुलिस महानिदेशकों के साथ ही पुलिस तथा प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हो रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि बस्तर में पहली बार हो रही ये बैठक क्षेत्र के लिए गौरव का विषय है। उन्होंने कहा कि ये बैठक अंतर्राज्यीय समन्वय को मजबूत करेगी और क्षेत्र में सुरक्षा तथा विकास को नई दिशा देगी। तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज फिर से बढ़ोतरी की है। तेल कंपनियों के छत्तीसगढ़ के राज्य स्तरीय समन्वयक नितिन चौहान ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि पेट्रोल की कीमत में 90 पैसे और डीजल की कीमत में 96 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। इस तरह से रायपुर में अब पेट्रोल 104.46 रुपये प्रति लीटर और डीजल 97.51 रुपये प्रति लीटर की दर से मिलेगा। इस बीच राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि छत्तीसगढ़ में पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है और आम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार के अनुसार प्रदेश में वर्तमान में 3,28,00,000 लीटर से अधिक पेट्रोल और 7,75,00,000 लीटर से ज्यादा डीजल उपलब्ध है। खाद्य विभाग ने सभी ऑयल कंपनियों के साथ समीक्षा बैठक कर जिन पेट्रोल पंपों पर स्टॉक कम है वहां प्राथमिकता के आधार पर आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। बिलासपुर जिले में पुलिस और ACCU की टीम ने सरकंडा थाना क्षेत्र के अंतर्गत 90 किलो गांजे के साथ 8 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। ये महिलाएं इलेक्ट्रिक ऑटो से गांजे की तस्करी कर रही थीं। सभी महिलाएं मटियारी गांव की रहने वाली हैं और ओडिशा से गांजा लाकर आसपास के इलाकों में खपाने की तैयारी में थीं। पुलिस ने गांजे के साथ 2 इलेक्ट्रिक ऑटो भी जब्त किए हैं जिनकी कुल कीमत 46,75,000 रुपये आंकी गई है। जांजगीर जिले के अकलतरा थाना क्षेत्र में आज एक कार और बाइक की टक्कर में एक युवक की मौत हो गई जबकि 3 अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। ये हादसा अकलतरा के खटोला गांव में हुआ। बताया गया है कि बाइक में 4 युवक सवार थे जो कोटगढ़ गांव के निवासी हैं। हादसे के बाद घायलों को अकलतरा अस्पताल लाया गया जहां प्राथमिक उपचार के बाद 3 गंभीर घायलों को बिलासपुर रेफर किया गया है। कोरबा जिले के बालको थाना क्षेत्र में बीती शाम हुए सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई जबकि 7 से अधिक लोग घायल हो गए। ये हादसा उस समय हुआ जब सतरेंगा के कारीघाट से पिकनिक मना

कर लौट रहे युवकों से भरा ऑटो अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में जा गिरा। कांकेर जिले के भानुप्रतापपुर में आज सुबह ट्रेन की चपेट में आने से एक सेवानिवृत्त शिक्षक की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार ये हादसा रेलवे पटरी पार करते समय हुआ है। छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्या मंडलम ने उत्तर मध्यमा प्रथम वर्ष 11वीं की द्वितीय मुख्य परीक्षा की समय सारणी जारी कर दी है। ये परीक्षा 1 जून से 9 जून तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा प्रतिदिन सुबह 9 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक होगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जगदलपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक शुरू। तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज फिर से बढ़ोतरी की। पेट्रोल की कीमत 90 पैसे और डीजल की कीमत 96 पैसे प्रति लीटर बढ़ी। और बिलासपुर पुलिस ने 90 किलो गांजे के साथ 8 महिलाओं को गिरफ्तार किया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

मीडियम वेव 305.8 मीटर यानी 981 किलो हर्ट्स और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.8 मेगा हर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। आप हमारा प्रसारण न्यूज़ ऑन AIR ऐप और DTH पर भी सुन सकते हैं। दोपहर के 12 बजे हैं। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश, आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूं उमंग कार्यक्रम में।
3: और मैं हूं आपका मित्र अजीत। नमस्कार श्रोताओं, आइए सुनते हैं सबसे पहले सुविचार जो हमें भेजा है पुराना तालाब डुमराओं से वलीउल्लाह अंसारी और बेबी पूजा मलिक जी ने।
2: शिक्षा जितनी रोचक होगी सीखना भी उतना ही रोचक और मनोरंजक होगा।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का। लिखते हैं,
2: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी।
3: नमस्ते।
2: उमंग कार्यक्रम में कहानी जुर्माना सुनी, कहानी पसंद आई। अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला जी पर केंद्रित कार्यक्रम बेहद पसंद आया। कार्यक्रम प्रस्तुति ने दिल जीत लिया। ये कार्यक्रम सुनवाने के लिए आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं। उमंग कार्यक्रम का हर एपिसोड जरूर सुनते हैं। ये कार्यक्रम बेहद पसंद आता है। कहानी लालची कुत्ता, शहीद रामप्रसाद बिस्मिल जी पर केंद्रित मेरी माँ एवं सम्राट अशोक पर प्रसारित कार्यक्रम सुने और पसंद आए। देश विदेश की जानकारी के साथ ये कार्यक्रम सुनवाने के लिए आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस संदेश के लिए। और अगला संदेश हमें मिला हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोडखे, नंदा बोडखे, हनुमान बोडखे और उत्तम जामदाड़े जी का।
2: साथ ही साथ हमें संदेश प्राप्त हुआ है जालंधर से संदीप कौर, प्रभा कौर और राधिका कौर।
3: और डोंडिया खेड़ा से प्रभा जटोलिया ने लिखा है चेतक कविता बहुत अच्छी लगी, आपको बधाई।
2: चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम, डॉक्टर सना और डॉक्टर अदीबा लिखते हैं, ये भी जानिए के तहत उड़ान का इतिहास और कल्पना चावला पर जानकारी बेहद अच्छी लगी। आज का कार्यक्रम दिल छू गया। परीक्षा कहानी बहुत अच्छी लगी। विमलेश चौधरी जी और अजीत होरो जी को बहुत बहुत बधाई।
3: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है दिल्ली से रेशमा अंसारी, शकीला अंसारी और सईद अंसारी जी का। और साथ ही साथ बागपत से सुंदर और सुंदरी और बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन जी का। धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए।
2: स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में। तो आइए करते हैं शुरुआत एक कविता से।
3: श्रोताओं अंदाजा जरूर लगाइएगा कि यह कविता किस विषय पर है। आइए सुनते हैं कविता।
2: घने पत्तों की छाया गहरी, जंगलों की श्रृंखला घनेरी, प्रतिदिन वर्षा गाती गीत, इस जंगल की यही है रीत।
3: प्रतिदिन वर्षा गाती गीत, इस जंगल की यही है रीत। श्रोताओं आपने अंदाजा जरूर लगा लिया होगा कि हम एक ऐसे जंगल या वन की बात कर रहे हैं जहां अक्सर वर्षा होती रहती है। तो विमलेश जी, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं।
2: जी अजीत जी, पिछले सप्ताह हमने चर्चा की थी समुद्र की, आज हम चर्चा करेंगे ऐसे वनों की जहाँ वर्षा होती रहती है, जिन्हें हम वर्षा वन कहते हैं। अजीत जी, अब ये सवाल उठता है कि वर्षा वन किसे कहते हैं या दूसरे शब्दों में इसकी परिभाषा क्या है?
3: जी विमलेश जी, देखिए तकनीकी रूप से वर्षा वन या रेन फॉरेस्ट उसे कहते हैं जहां साल भर बहुत अधिक वर्षा होती रहती है
2: जी,
3: और जहां हर समय नमी पाई जाती है और साथ ही साथ घने सदाबहार पेड़ पौधों के साथ वन्य जीवन भी बहुत ही समृद्ध होता है
2: जी। एक बात और जोड़ दूं इस सूचना में कि यहां वर्षा सालाना औसतन 70 से 80 इंच तक होती है। पृथ्वी के कई वर्षा वन तो ऐसे भी हैं जहां साल भर लगातार वर्षा होती रहती है, कभी कभी ही रुकती है।
3: लेकिन एक और प्रश्न है विमलेश जी मेरे मन में कि वर्षा वनों में इतनी बारिश क्यों होती है, अन्य जगहों पर क्यों नहीं होती?
2: श्रोताओं को बता दें कि इसकी वजह है वर्षा वनों का भूमध्य रेखा या इक्वेटर के पास होना।
3: तो जरा श्रोताओं को बताइए ना कि इससे फर्क क्या पड़ता है?
2: फर्क ये पड़ता है कि भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्रों में सूरज की किरणें इन क्षेत्रों पर सीधी पड़ती हैं
3: जी,
2: जिससे भूमि और जल दोनों बहुत गर्म हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं इससे क्या होता है।
3: तो इससे होता यह है कि इस क्षेत्र में भाप बहुत अधिक बनती है, समुद्रों और नदियों से बहुत अधिक भाप बनती है जो भाप आकाश में जाकर बादल बनाती है
2: जी।
3: और जब बादल भारी हो जाते हैं तो वर्षा होती है, इसीलिए इस क्षेत्र में गर्मी और नमी के कारण वर्षा बहुत अधिक होती है।
2: लेकिन श्रोताओं, जरूरी नहीं है कि सभी वर्षा वन भूमध्य रेखा के पास ही हों, इसके अलग अलग कारण हैं, लेकिन निष्कर्ष ये निकलता है कि वर्षा वन सबसे अधिक भूमध्य रेखा या पृथ्वी की काल्पनिक मध्य रेखा के आसपास ही पाए जाते हैं। लेकिन निष्कर्ष ये निकलता है कि वर्षा वन सबसे अधिक भूमध्य रेखा यानी पृथ्वी की काल्पनिक मध्य रेखा के आसपास ही पाए जाते हैं। आइए अब जानते हैं वर्षा वनों की और कुछ रोचक बातें।
3: तो श्रोताओं एक बड़ी रोचक बात है वर्षा वनों के बारे में, और वो ये है कि समुद्र के बाद वर्षा वनों को धरती का फेफड़ा भी कहा जाता है
2: जी।
3: ऐसा इसलिए कि सदाबहार पेड़ पौधों के कारण ये वन भारी मात्रा में प्राणवायु यानी ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिसके कारण हम सुगमता से सांस ले पाते हैं, वर्षा वन तो क्या, हमें पृथ्वी की सारी वनस्पतियों के प्रति हमेशा आभारी होना चाहिए।
2: जी, यही कारण है अजीत जी कि चारों वेदों और पुराणों में वनस्पति की स्तुति की गई है। उन्हें नमन किया गया है। पुराणों में विशेषकर पद्म पुराण और स्कंद पुराण में वृक्षारोपण को पुनीत कार्य बताया गया है।
3: जी।
2: और इससे पूर्व भी आदि मानव जनजातियां प्रकृति की पूजा करती रही हैं। हड़प्पा संस्कृति में भी वृक्षों को विशेष आदर दिया गया है। चलिए श्रोताओं, अब जानते हैं अजीत जी से वर्षा वनों की एक और बहुत रोचक बात।
3: जी विमृषि, श्रोताओं, एक और रोचक बात वर्षा वनों की ये है कि ये जैव और वनस्पति विविधता के अद्भुत भंडार हैं। यानी जितने पेड़ पौधे, जीव जंतु और अनोखे सूक्ष्म जीव इन वर्षा वनों में पाए जाते हैं, उतने कहीं और नहीं पाए जाते।
2: जी।
3: तो अब एक और रोचक बात जानते हैं बिमरेश जी से।
2: जी श्रोताओं, आपने ऊंचे से ऊंचे पेड़ देखे होंगे, लेकिन वर्षा वनों के पेड़ों की ऊंचाई का तो कहना ही क्या। कुछ वर्षा वनों के पेड़ 40 से 60 मीटर तक ऊंचे हो सकते हैं। और हाँ, ये पृथ्वी के तापमान और जलवायु को संतुलित रखने में अहम भूमिका निभाते हैं।
3: तो श्रोताओं, ये थी सामान्य जानकारी वर्षा वनों की। श्रोताओं, वर्षा वन तो क्या, सभी वनों का यही संदेश है कि हमें ना काटो।
2: जी।
3: जितना हो सकता है पेड़ लगाओ, वरना एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें शुद्ध हवा के लिए और फिर सांस लेने के लिए भी तरसना होगा।
2: जी हाँ, कल नहीं परसों नहीं, लेकिन आज ही अवसर है संभलने का और पेड़ों को बचाने का। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से।
3: तो आज का प्रश्न है, अधिकांश वर्षा वन पृथ्वी के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लें।
2: अधिकांश वर्षा वन पृथ्वी के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं।
3: 8800440559 यानी हमारे IVRS नंबर और audio@cit.nic.in यानी हमारे ईमेल पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
2: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
3: तो श्रोताओ, बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम बैंगनी जोजो।
2: ये कार्यक्रम कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें एक प्यारे डॉगी की रोचक कहानी है। वो एक पेड़ के नीचे सो गया था और जब जगा तो उसने देखा कि उसका सारा शरीर बैंगनी रंग का हो गया है। लेकिन क्यों, आइए जानते हैं एक मजेदार कार्यक्रम के माध्यम से।
3: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है NCERT की कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक सारंगी के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम बैंगनी जोजो।
4: जोजो एक सफेद कुत्ता था। वह एक पेड़ के नीचे सो रहा था। वो जग गया।
5: किसने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
4: उसने देखा एक बादल को आकाश में धीरे धीरे चलते हुए।
5: बादल, बादल, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
6: नहीं, मैं तो सफेद हूं।
4: बादल हट गया। जोजो ने ऊपर सूरज को देखा।
5: सूरज, सूरज, क्या तुमने मुझे दिए बैंगनी धब्बे?
6: नहीं, मैं तो पीला हूं।
5: कौवे, कौवे, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे? नहीं, नहीं, मैं तो काला हूं।
7: गुब्बारे, गुब्बारे,
5: क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
6: नहीं,
5: मैं तो लाल हूं। घास घास, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
8: नहीं, मैं तो हरी हूँ।
5: बेचारा जोजो। किसने दिए मुझे बैंगनी धब्बे? आहा, तो वो जामुन का पेड़ था।
3: तो बच्चों, सुना आपने? अब जरा याद कीजिए कि जोजो किस किस के पास गया। और कुछ फलों के नाम लिखिए और उनका रंग बताइए। बैंगनी जोजो, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, कलाकार ममता मलकानी और बाबला कोचर, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्माण सहायक तनु गुप्ता तथा निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे IVRS नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा IVRS नंबर है 8800440559। और साथ ही हमारे ईमेल पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है audio@cieet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली, भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। बैंगनी जोजो, अभी आपने सुना यह कार्यक्रम। श्रोताओं, और प्रस्तुत है कार्यक्रम गौरा देवी, एक महान पर्यावरण नेत्री।
2: इस कार्यक्रम में महान पर्यावरण नेत्री गौरा देवी के जीवन और पर्यावरण बचाने में उन

0: के प्रसिद्ध अभियान चिपको आंदोलन की जानकारी दी गई है। ये कार्यक्रम हमें उत्तराखंड के रमणीक राज्य में ले चलता है और वहाँ की पर्वतीय संस्कृति की झलक भी प्रस्तुत करता है।
1: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है विशेष उपलब्धियों को प्राप्त करने वाली महिलाओं के जीवन पर आधारित श्रृंखला छू लूं मैं आकाश।

0: इस श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कार्यक्रम गौरा देवी, एक महान पर्यावरण नेत्री।
1: भारत के सबसे रमणीक राज्यों में से एक है उत्तराखंड। इसी उत्तराखंड के चमोली जिले में एक गांव है लाटा। ये गांव विशेषकर बड़े बड़े पेड़ों के कारण जाना जाता है।
2: लाटा गांव के ग्रामीण खेतीबाड़ी और पशुपालन द्वारा अपनी जीविका चलाते थे। दिन भर खेतों और जंगलों में काम करने के बाद जब ग्रामीण शाम को घर आते तो उनके नृत्य और लोक संगीत से सारी घाटी गूंज जाती।
1: इसी गांव में सन 1925 में एक प्यारी सी बालिका ने जन्म लिया। नाम रखा गया गौरा। गौरा का बचपन से ही पेड़ पौधों के प्रति बहुत लगाव था। यदि गांव के बच्चे किसी भी प्रकार से फूल पत्तियों और पौधों को कष्ट पहुंचाते तो वो उन्हें मना करती और उन्हें समझाती भी।
3: मारो, मारो, मारो, ठीक से निशाना लगाओ।
4: अरे बार भी नहीं लगी।
5: अरे
3: नहीं लगा ना, लाओ लाओ, रुको रुको रुको। अरे मैं
5: तुम लोग इस पेड़ पर पत्थर फेंक रहे हो। अभी तो फल भी नहीं लगे। गोविंद, तुम तो सबसे बड़े हो, इनको क्यों नहीं समझाते?
3: अरे पत्थर फेंका है तो क्या हो गया, पेड़ ही तो है ना। देखो।
5: मैंने मना किया है ना कि पेड़ पौधों को पत्थर मत मारो, उन्हें चोट लगती है।
6: तुम हमें इस तरह रोका टोका मत करो।
5: मैं तो टोकूंगी और बार बार रोकूंगी।
3: बड़ी आई रोकने वाली।
1: तो साथियों, ये था गौरा का पेड़ पौधों के प्रति लगाव और स्नेह। स्थानीय लोग बताते हैं कि गौरा ने अपने गांव में कई पौधे लगाए थे जो आज भी जिंदा हैं।
2: समय बदला। उस समय की रीति के अनुसार गौरा की शादी मात्र 12 वर्ष की उम्र में पास के गांव रैणी के मेहरबान सिंह के साथ हो गई।
1: सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी शादी के मात्र 10 वर्षों के बाद पति मेहरबान सिंह की मृत्यु हो गई। गोद में 2.5 वर्ष का बच्चा था। पति के निधन के बाद 22 वर्ष की गौरा देवी पर अपने बच्चे और बूढ़े सास ससुर के भरण पोषण का पूरा बोझ आ गया। उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए जितना भी समय गौरा के पास बचता था वो उसे गांव के कामों में लगा देती थी। गौरा अपने गांव के महिला मंगल दल की अध्यक्ष भी बनी।
2: महिला मंगल दल का विशेष काम था गांव की महिलाओं के रोजगार और उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर ध्यान देना। स्त्रियों पर होने वाली घरेलू हिंसा की स्थिति में महिलाओं के समूह द्वारा हस्तक्षेप करना और ये भी सुनिश्चित करना कि ग्रामीण बालिकाओं की पढ़ाई नियमित रूप से चल रही है या नहीं।
7: बहनों, अब हमें ये देखना है कि हमारे गांव में शराबखोरी तो कम हो गई है और इसके चलते चलते आगे बच्चियों की पढ़ाई भी शुरू करनी पड़ेगी हमें।
5: हाँ, बहुत जरूरी है। मेरी बेटी तो पढ़ने जाने लगी है अब।
7: अरे वाह, कितनी अच्छी बात बताई इसने।
8: लेकिन मेरा आदमी तो अभी काम ही पे नहीं जाता।
7: आप तो काम करती है ना?
8: हाँ मैं करती हूँ, लेकिन उसे होता क्या है?
7: मैं तो ये मान

0: लड़कियों की नारी सशक्तिकरण एक बहुत जरूरी अंग है हमारे समाज का। नारी सशक्त बनेगी तभी तो परिवार सशक्त बनेगा।
1: समय बीतता गया। सन 1962 की बात है। चमोली के ग्रामीण अंचल में विकास के लिए तत्कालीन प्रशासन द्वारा सड़क बनाने का निर्णय लिया गया, जिसके कारण गौरा के गांव रैणी और आसपास के गांवों के लोगों की पुश्तैनी जमीन छिन गई।
2: गढ़वाल क्षेत्र के जंगलों में अंगू का पेड़ प्रचुरता में पाया जाता है। खेती करने के लिए पारंपरिक कृषि के औजार अंगू पेड़ों की लकड़ी से बनाए जाते हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों से निवेदन किया कि उन्हें खेती करने के औजार बनाने के लिए अंगू के पेड़ों को काटने की अनुमति दी जाए,
1: लेकिन वन विभाग भला कहां सुनने वाला था। एक ओर वन विभाग ने ग्रामीणों को साफ इनकार कर दिया तो दूसरी ओर जंगल की जमीन का कुछ हिस्सा खेल सामग्री बनाने वाले एक निर्माता को व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए आवंटित कर दिया। अंगू पेड़ों की लकड़ी से उम्दा स्तर की खेल सामग्री भी बनाई जाती थी। दिन था 24 मार्च 1976। इस दिन रैणी और आसपास के गांवों के कुल 2400 पेड़ों को काटने का आदेश दे दिया गया। इन जंगलों को बचाने के लिए लंबे समय से आंदोलन चल रहा था। गांवों के स्त्री पुरुषों ने बड़ी मुस्तैदी से मोर्चा संभाल रखा था और हर परिस्थिति का सामना करने के लिए वे तैयार थे।
3: नहीं करने देंगे।
4: बिल्कुल नहीं करने देंगे।
2: लेकिन संयोग कहिए कि उसी दिन गांव के लोगों को उनके उन खेतों का मुआवजा दिए जाने का आदेश हुआ जो सन 1962 के अधिग्रहण के कारण उनसे छिन गए थे। रैणी, मलारी और लाता गांव के लगभग सभी पुरुष मुआवजा लेने जिला मुख्यालय चमोली चले गए।
1: इधर पुरुषों की अनुपस्थिति में 100 से भी अधिक मजदूर रैणी और उसके आसपास के गांवों के जंगलों की ओर बढ़ने लगे। गौरा देवी उस समय गांव में ही महिला मंगल दल की स्त्रियों के साथ बातचीत कर रही थीं। उन्हें नहीं पता था कि ठेकेदारों की अगुवाई में मजदूरों का दल जंगल की ओर आ रहा है।
2: और तभी गांव की एक लड़की दौड़ती हुई आई। वो बहुत डरी हुई थी।
5: गौरमा,
0: क्या बात है चंपा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? कहां से आ रही हो?
5: गौरमा, वो लोग आ रहे हैं।
0: कौन लोग आ रहे हैं? अरे कहां आ रहे हैं, कुछ तो कहो।
5: गौरमा,
0: हाँ,
5: पहाड़ की ओर से ठेकेदार के बहुत से मजदूर जंगल की ओर आ रहे हैं।
0: क्या?
5: हाँ गौरमा, उनके हाथों में कुल्हाड़ियाँ, रस्सियाँ और पेड़ काटने वाली आरी है। मैं बकरी चराने गई थी तो देखा कि 3-4 ट्रक आकर रुके। उनसे मजदूर उतरे और जंगल की ओर बढ़ने लगे।
0: अच्छा, तो ये बात है। बहनों,
6: हाँ गौरमा,
0: चलो हम सब तैयार हो जाएं।
7: बिल्कुल,
0: समय आ गया है अब इस गांव के जंगल को बचाने का।
6: हाँ,
8: हाँ,
6: सब
8: तैयार
6: हैं।
7: नहीं कटने देंगे।
5: बिल्कुल नहीं कटने देंगे।
1: और चल पड़ी गौरा जंगल की ओर। उसके साथ गांव की 27 स्त्रियां थीं। उनकी चाल में दृढ़ता थी, आंखों में संकल्प झलक रहा था और उनके नारों में ऊंच था।
9: ये है जंगल के उपकार,
10: मिट्टी पानी और बयान,
9: मिट्टी पानी और बयान,
10: जिंदा रहने के आधार।
2: और अब वो स्त्रियां वहां पहुंच गईं, जहां मजदूर पेड़ों को काटने के लिए तैयार खड़े थे।
7: अरे ओ
0: हरिया,
9: तो इसी गांव का है ना रे, जिस जंगल ने तुझे पाला पोसा बड़ा किया, तेरी सारी जरूरतों को पूरा किया, उसे नष्ट करने के लिए कुछ पैसों के लालच में आकर तूने कुल्हाड़ी उठा ली। शर्म आनी चाहिए तुझे।
4: आगे बढ़ो।
2: अरे कहां से?
4: मिनट की बात तो बताओ। मैंने तुम्हें पेशगी दी है, पेशगी इस काम के लिए। बोलो शेरू,
2: पकड़ो पे। पेड़ों से चिपक जाएंगे, चिपक जाएंगे, ऐसा नहीं होने देंगे।
9: आगे बढ़कर तो दिखाओ तुम। एक भी पेड़ को हम हाथ नहीं लगाने देंगे आज।
8: नहीं लगाने देंगे।
9: बहनों, आगे बढ़कर चिपक जाओ पेड़ों से।
11: हाँ, हम चिपक जाएंगे।
4: ठीक है, तो वहां चलो, उन पेड़ों को काटो, चलो।
1: मजदूरों के सामने एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई थी। वे जिस पेड़ की ओर बढ़ते, गांव की स्त्रियां भागकर उसी पेड़ से चिपक जाती। इस संघर्ष में लगभग 4 घंटे बीत गए थे। इस दौरान किसी ने भागकर ये सूचना गांव के पुरुषों तक पहुंचा दी।
2: ये खबर वैसे भी जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। आसपास के गांवों से सैकड़ों की संख्या में लोग जंगल की तरफ आने लगे। स्थिति बिगड़ती देख ठेकेदार और जंगल काटने वाले मजदूर वहां से भाग खड़े हुए।
4: ठीक है, तो वहां चलो, उन पेड़ों को काटो, चलो।
1: बता दें कि इन पेड़ों की कटाई को रोकने के प्रयास में ये आंदोलन 3 साल पहले 1973 में शुरू हुआ था। इसकी नींव सुंदरलाल बहुगुणा, कॉमरेड गोविंद सिंह रावत और चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में रखी गई थी।
2: इस घटना ने गौरा देवी को चिपको आंदोलन की महान नेत्री बना दिया और इसकी गूंज पूरे विश्व में सुनाई पड़ी। गौरा देवी विश्व मीडिया में चिपको वुमन के नाम से मशहूर हुई। इस घटना का बहुत बड़ा प्रभाव ये पड़ा कि सरकार ने हिमालयी क्षेत्र में आगामी 15 वर्षों के लिए वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगा दिया और राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार पर्यावरण मंत्रालय गठित करने पर विमर्श संभव हुआ।
1: जुलाई सन 1991 में 66 साल की उम्र में इस महान पर्यावरण नेत्री का निधन हो गया।
2: एक साक्षात्कार में गौरा देवी ने जंगल के प्रति अपना स्नेह दर्शाते हुए कहा था,
9: ये जंगल हमारी माता के घर जैसा है। यहां से हमें फल फूल और सब्जियां मिलती हैं। अगर यहाँ के पेड़ पौधों को काटोगे तो निश्चित ही बाढ़ आएगी।
1: चिपको आंदोलन अहिंसक आंदोलन था, जिसमें ग्रामीणों और गढ़वाल की बहनों ने पेड़ों को कटने से रोकने के लिए उन्हें गले लगा लिया। इस महान पर्यावरण नेत्री को हमारा नमन।
12: अभी आपने सुना कार्यक्रम गौरा देवी, एक महान पर्यावरण नेत्री। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, ध्वनियांकन विकास सांगवान, कलाकार बाबला कोचर, पूनम एस कुदेसिया, ममता मलकानी, प्रज्ञा प्रवीण शर्मा और गीतांजलि, आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्माण सहायक कुसुम लता, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आप ईमेल पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम गौरा देवी। आशा है श्रोताओं ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है, तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT मीडियम वेव एफएम बैंड पर आकाशवाणी का रायपुर सरायपाली केंद्र है।

मीडियम वेव एफएम बैंड पर आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। प्रस्तुत है श्रोताओं की ईमेल और पत्रों पर आधारित कार्यक्रम आप मन के गीत।

तो आओ शुरू करथन, देखथन कौन संगवारी के हमला पहली चिट्ठिया ईमेल भेजे हैं। तो कुई ग्राम भंगीटोला ले ननकाराम ध्रुवे, जामुनबाई ध्रुवे, फिरतराम ध्रुवे, भड़गा कड़वा कोदवा गोडान लहे, श्याम सिंह मरावी, राजकुमारी मरावी, रानी और रजनी मरावी, धजा भाटा ओडिशा लहे नंद कुमार ठाकुर, ग्राम लोरमी चचेड़ी लहे कमलकांत मरावी, प्रमिला मरावी, नेहा मरावी, पुष्पराज मरावी और ऋषभ मरावी, चरडोंगरी पिपरिया लहे कमलकांत गुप्ता, दीपा रिमझिम गुप्ता, खुर्सीपार मोहला मानपुर लहे विष्णु राम यादव, बसंता बाई यादव, कविता अनेस और गीतांशु यादव, बरगांव लहे अनार साहू, छत्तीसगढ़ लहे पवन कुमार साहू, कांति देवी साहू, पंकज साहू और सुष्मिता साहू, हिंगोली महाराष्ट्र लहे शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे, हनुमान बोड़खे, तेंदुभाटा मगरलोट ले धमतरी लहे उमेद कुमार निषाद, महेश्वरी देविका, पोषण नूतन, सुरेंद्र, यशस्वी, भास्कर और किशन निषाद, भाटापारा लहे हिमकेश्वर साहू, करण साहू, चंपा साहू, दतरेंगी लहे भागवत वर्मा, गुलाब दास और प्रकाश हिंगोले, नांदिया गंडई लहे मूलचंद पटेल, मीनाक्षी पटेल, आशीष पटेल और सीमा पटेल, चिरमिरी कुरासिया लेह महेंद्र भान सिंह, अनुभव सिंह, ऋषभ सिंह, इंद्रभान सिंह, राम सहोदर सिंह, पथरिया भरेवा लेह चंदुलाल सिंह रोल, नारायणी सिंह रोल, नोमेश नेहा, भाटापारा छत्तीसगढ़ लेह विष्णु साहू, पूरब साहू, बीरा साहू, कुमकुम साहू, दीपिका साहू, योगेश्वरी साहू, धरसिंहा लेह छेदूलाल यादव, सीता यादव, अर्चना, अरुणा, अनुराधा और अल्पना यादव, सिंगारपुर पेली मेटल है चिंताराम ध्रुवे, कामीन चंद्रध्वज और सानू ध्रुवे, कांकेर संबलपुर ले फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव, धरदेई सरगांव ले हैं चंदूलाल पटवा, सुनीता पटवा, दुर्गापारा संतोषी नगर रायपुर ले हैं बलदाऊ राजेश्वरी और आस्था यादव। आप सबके फरमाइश में आओ अपने सुनवा थन जीवनदास सिंधे और संगवारी मन के गाय ये गीत।

अगलैया गीत बर हमला ईमेल पठोए हैं हटोत बाजार लाहौद ले कमलनाथ पटेल, राकेश कुमार पटेल, समीर पटेल और राजकुमार पटेल, नागर कोहरा जिला राजनांदगांव हैं झग्गर राम साहू, जामिन देवी साहू, प्रेम पूजा दुष्यंत समीक्षा और बेबी आराध्या साहू, पलारी ले हैं नितेश कुमार देवांगन, तनुजा देवांगन, ईशान देवांगन और डुगू देवांगन, मन की लोर में ले नारायण खांडे, रजनी खांडे, तुषार खांडे, समीर खांडे, हिच्छा महासमुंद ले है अदालत दास वैष्णव, मानस दास वैष्णव, सतीश कुमार वैष्णव और ऋचा गायत्री, भाटापार ले है दान सिंह और पद्मिनी, पुतकी कला कवर्धा ले वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे, सुमांशु पांडे, राधे श्याम पांडे, बाघामुढ़ा कुमा खान ले प्रज्ञानंद देवांगन, नंदिनी देवांगन, प्रकाश देवांगन, गायत्री, यशवर्धन और यशस्वी देवांगन, गुजरात

गांधी गांव ले है प्रवीण सोनी, जगदीश जौहरी, पूजा पायल, प्रथम राजेश कृष्णा कलावती सोनी। दहियान बांधा बाजार ले है राजनांदगांव ले हरिओम साहू, रेखराम साहू, रानू साहू, सरस्वती साहू, प्यारी राम साहू, परमानंद साहू। अड़ार नांदघाट ले हैं माखन वर्मा, चांदनी, भूपेश और दीपेश वर्मा। अमलेश्वर ले हैं डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रियांश ठाकुर। छत्रपति संभाजी नगर ले हैं प्रकाश बोरगांवकर, सुषमा बोरगांवकर। कोरासी छत्तीसगढ़ ले पवन कुमार साहू, कांति देवी साहू, पंकज साहू, सुष्मिता साहू। खमरिया बिलासपुर ले साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी और प्रतीक कुमार। लालपुर मारोले कीर्ति कुमार ध्रुव, संतोषी ध्रुव, निशांत ध्रुव। भाटापारा ले सोहन जोशी, अर्चना जोशी, हरमिंदर सिंह चावला, बानी चावला, लोगेश जोशी और पायल। बाजार वार्ड महासमुंद ले भीषमदास मानिकपुरी, लक्ष्यदास और दीपक दास। कोयलारी कवर्धा ले कैलाश चंद्राकर, पूर्णेंद्र और साहिल चंद्राकर। कुर्मा जंजगिरी चांपा ले दिलदार मिरी, मजेदार मिरी, ज्योति जानवी और दीक्षांत मिरी। गिर्रा पराली रे वीरेंद्र साहू, सोनू साहू, आशीष और कपिल साहू। डोंडी लोहारा बालोद ले देवशंकर तामुरिया, जयदेव तामुरिया और तुषार देव तामुरिया। सरसेनी ले तेज राम सेन, जानकी सेन, तुष्यंत सेन और जागृति सेन। आप सबके पसंद में आओ अपन ले सुनवा थन गौतम चंद जैन और कुसुम लता ठाकुर के गाए ये गीत।

गजराज सिंह खुसरो और संगवारी मन के गाय ये गीत बर हमला ईमेल पठवाए हैं भाटापारा ले बछकामल मोतीलाल यादव बसंत भृगु और विनय ठाकुर बैगाटोला मोहला मानपुर ले हैं मालिक राम सिन्हा तारामती सिन्हा धमधा ग्राम सुखरी कला ले अमित जंघेल शकुन जंघेल आरुषी देवरी भाटापारा ले गन्नूलाल रजक के आर साहू अश्वनी वर्मा गणेश राम मिस्त्री भानपुरी मुसराले आत्माराम यादव सुखदेव विदेशी होमेश्वर मानेश्वर साक्षी और तुलसी यादव पलारी ले प्रकाश वर्मा और निखिल फुलझर घटारानी ले योगेश्वर साहू दुमेश्वरी साहू यामिनी साहू मुस्कान साहू हर्षिता साहू जिला कच्छ भूंज ले सरोज श्रीमाली कंचन राधिका और रूपल श्रीमाली जैसा कर्रा चारामाले असाड़ू राम निषाद खिलाव निषाद ऋषभ निषाद पलारी ले नीतीश कुमार देवांगन दुर्गा प्रसाद देवांगन पूनाराम देवांगन और कृष्णा देवांगन सरधाना मेरठ ले अनिल जैन संयम जैन मुस्कान जैन और मास्टर जीवनम जैन बीरनपुर कला दनियामन गंडेले है सुरेश कुमार साहू मास्टर तन्मय साहू पोटिया कला दुर्गले हैं संजय साहू सुजाता साहू शशांक साहू और सीमा साहू चरडोंगरी पिपरिया ले हैं दुर्गाराम साहू अजय कुमार साहू और जय किसान साहू संबलपुर ले फागुराम यादव ज्योति यादव ओजस्वी यादव गैंदा टोला बाजार राजनांदगांव ले बीरेन्द्र कुमार गुप्ता अंजलि गुप्ता योगिता गुप्ता और गजेंद्र गुप्ता आप सबके फरमाइश में आवापन सुनवा थन गजराज सिंह खुसरो संगवारी मन के गाए ये गीत।

अगला गीत पर हमला ईमेल मिले हैं, एमा है आदि पुरले जगदीश सोनार प्रवीण पुजारी प्रफुल्ल और प्रतिमा देवी। ढोंडरी घोटियाले हैं महेश कुमार निषाद रंभरानी निषाद निखिल कुमार निषाद नैतिक कुमार निषाद पुष्पांजलि स्वप्निल कुमार निषाद। परसाटोला मगड़ चौकी ले है ओम प्रकाश मसिया सिलोचनी मसिया खुमेंद्र मसिया तुषारणी मसिया। हजदा नंबर दो ले हैं कमलेश साहू जितेंद्र साहू पायल साहू। सहिया मालगिले सुखनंदन चंद्रवंशी शिवरानी चंद्रवंशी आकाश चंद्रवंशी प्रतिभा पूर्वी और पूनम चंद्रवंशी। बनियापारा धमतरी ले है रामचंद माखीजा। रिंगनी ले दिनेश वर्मा करुणा वर्मा धरसिंह वाले छेदूलाल यादव सीता यादव अर्चना अरुणा राधा यादव। बनियापारा धमतरी ले हैं और सविता माखीजा। बोलसरा नैलाले प्रमोद कुमार साहू वैभवी विनोद विभूति अंशोर प्रियांशी साहू। भाटापारा ले हिमकेश्वर साहू करण राहुल साहू चंपा साहू। मदनपुर कवर्धा ले श्रवण कुमार साहू योगेश साहू राहुल साहू। नेपानगर ले सुदर्शन साह पल्लवी साह प्रखर साह कुशल साह। लघान पंडरिया ले उत्तम कुमार बघेल रुक्मणी बघेल भारती बघेल। बुड़गहन ले राम दुलारी प्रजापति रामशरण चंद्रेश कुमार चंद्रकांता और शशिकांता प्रजापति। राजापुर ले सूरज राजापुर सूरजपुर ले है मालिक राम। आप सब नन अपन फरमाइश भेजे हो हमला घासीदास मानिकपुरी और संगमारी मन के गाय ये गीत पर।

कार्यक्रम में अपन पसंद के हमला गाना सुने बर हमला पोस्ट कार्ड भेजे हैं। एमा है अरमरी खुरदले चुरामन लाल वार्डे, जैनी वार्डे, हिंसा वार्डे और अक्षत वार्डे, खट्टी महासमुंद लेहे सुभाष शर्मा, छाया शर्मा, सुरेंद्र मिश्रा, प्रमीला मिश्रा, कमलेश मिश्रा, विजिता मिश्रा, चनागांव ले हैं कोमल सोरी, आशीष नेताम, गेंद मरकाम, सोहन यादव और नंदलाल मरकाम। ऐसे हैं हमारे एक संगवारी हैं कोष्टापारा जुड़वा चौक सरगांव सारंग पाले, ये हैं भागवत देवांगन, पदुम देवांगन, सुना, पिंकी, यश, शीतल, प्रियांश, तन्वी, नीता, चंदबती, युवराज सिंह, गीता घासी और रामचंद्र जी देवांगन। और इखर बाद हैं आपके डंगनिया पाटन लेहे सुप्रिया कश्यप, मेघा कश्यप, अंजू, दीक्षा कश्यप, अरमरी खुदले चुरामन और शिक्षक नगर दुर्ग लेहे राकेश वर्मा, सचिन वर्मा, वाणी वर्मा, केजुराम मालेकर, ठाकुर राम, अश्विनी मालेकर, आपन हो मगर लोड ले, महासमुंद खट्टी ले और कोटा रायपुर ले अरुण वर्मा, अनिल वर्मा, ईश्वर वर्मा, दिनेश वर्मा, इहेल है योगिता वर्मा, रुचि वर्मा, खुशी ओजल वर्मा, गेंदलाल मिश्रा, चंद्रकांति, अर्चना, धनंजय मिश्रा, अपन हो धवलपुर ले, सिमगाले रमेश कुमार यादव, माया यादव, रिंकी, सन्नी और कोमल यादव, सोंगा मगर लोट ले हैं कोमल सेन, तोसन सेन और विनायक सेन, बंगला मटियाले शिव कुमार अंगारी, अंजनी, लीना, अंशुमाला और आशुतोष अंगारे, बेलरगांव सिहावले मिथिलेश देवांगन, मधु देवांगन, हिमांशु, अंकिता देवांगन, मगर लोडली श्रीचंद यादव, भारती, कशिश और चांदनी सनातन यादव, पलारीले प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, प्रिंस और यशस्वी वर्मा, शीतला नगर दुर्गले शिवचंद्राकर, भगवान चंद्राकर और बनिया पारा धमतरी लेहे शरद डोडवानी, श्रेया और पूनम डोडवानी। आप सब मन के पसंद में आप मल सुनवा थन गोराचंद बघेल और तुलसी जंघेल के गाय ये गीत।

0: एखरे संग सिरावत हे दारी के ईमेल भेजो आप मन के गीत कार्यक्रम आपके स्वयं प्रस्तुत करें संजय पाठक। अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं की ईमेल और पत्रों पर आधारित कार्य फरमाइशी कार्यक्रम आप मन के गीत मीडियम वेव एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में। मीडियम वेव एफएम बैंड पर आकाशवाणी के रायपुर केंद्र है, 1 बजने को है हिंदी में समाचार। हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे यात्रा के दूसरे दिन आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ये विभिन्न क्षेत्रों में भारत नॉर्डिक सहयोग की दिशा में एक और कदम होगा। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: भारत और 5 नॉर्डिक देशों के प्रधानमंत्रियों की उपस्थिति में आज तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यह शिखर सम्मेलन भारत और नॉर्डिक देशों के बीच बढ़े हुए क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत करेगा। 2022 में डेनमार्क के कोपेनहेगन में पिछला सम्मेलन आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन में प्रौद्योगिकी और नवाचार, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण यह चर्चा के मुख्य क्षेत्र हैं। प्रधानमंत्री मोदी डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
1: प्रधानमंत्री आज शाम इटली के रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि केवल भारतीय प्रवासी ही नहीं बल्कि स्थानीय टैलेंट लोग भी भारत में व्यावसायिक अवसरों की तलाश करने के लिए उत्सुक हैं।
3: इटली के विभिन्न हिस्सों से आए भारतीय समुदाय के सदस्यों के लिए यह अवसर किसी ऐतिहासिक पल से कम नहीं है। शिक्षा, कृषि, डेयरी फार्मिंग, रियल एस्टेट और अन्य व्यवसायिक क्षेत्रों से जुड़े ये लोग दोनों मित्र देशों के शीर्ष नेताओं के बीच होने वाली इस उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक से अपनी अपनी आकांक्षाएं और अपेक्षाएं लेकर आए हैं। भारतीय प्रवासी ही नहीं बल्कि स्थानीय इटालियन नागरिक भी भारत में उभरते व्यवसायिक अवसरों को लेकर उत्साहित हैं। आकाशवाणी के लिए रोम से सुपर्णा भाटिया।
1: भारत और स्वीडन का विश्वास है कि वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में सहयोग से साझा समृद्धि और सतत भविष्य का मार्ग प्रशस्त होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन द्वारा लिखे गए एक लेख में इस बात का उल्लेख किया गया है कि बढ़ती भू राजनीतिक अनिश्चितता, ऊर्जा असुरक्षा और आर्थिक बिखराव के समय में दुनिया को फैसला करना है कि वो या तो संकीर्ण राष्ट्रीय सोच की ओर लौट जाए या फिर आपसी सहयोग को सुदृढ़ करे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम के राष्ट्रपति तोलाम से भेंट की और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी महत्वपूर्ण है। श्री सिंह ने कहा कि भारत और वियतनाम साझा मूल्यों, रक्षा, सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता में घनिष्ठ सहयोग साझा करते हैं। श्री सिंह ने हनोई में वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फान वान जियांग के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की उच्च स्तरीय बैठक शुरू हो गई है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हिस्सा ले रहे हैं। रेलवे ने अरक्कोनम चेंगलपट्टू दोहरीकरण परियोजना के लिए 993 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। चेन्नई उपनगरीय रेल नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए यह फैसला किया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये परियोजना इस मार्ग पर लोगों की भीड़भाड़ कम करने और समय की पाबंदी तथा परिचालन दक्षता में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों से पकड़े गए लावारिस कुत्तों को टीकाकरण या नसबंदी के बाद वापस न छोड़ने के अपने पूर्व निर्देशों को वापस लेने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने नवंबर 2025 के आदेश में संशोधन की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया और अधिकारियों को ऐसे कुत्तों को

0: मतदाता स्थलों में रखने का निर्देश दिया। मिजोरम में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू हो गया है। मिजोरम के मुख्य चुनाव अधिकारी डॉ. लाल रोजामा ने जनता और निर्वाचन आयोग की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई, जो एक सप्ताह से भी कम समय में दूसरी बढ़ोतरी है। ये बढ़ोतरी ईरान संघर्ष और होर्मुज जलडमरू मध्य में रुकावटों के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी तेजी के बाद हुई है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 0.3% की वृद्धि दर्ज की गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव और FM बैंड पर आकाशवाणी का यह रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 1:05 हुए हैं। प्रस्तुत है चित्रपट संगीत कार्यक्रम में। आइए सबसे पहले सुनते हैं फिल्म होटल से इंदिवर की रचना। धुन बनाई है उषा खन्ना ने और आवाज़ हैं अमित कुमार और अलका याग्निक की।

आकाशवाणी एट 90। आइए आप सुनते हैं लता मंगेशकर और अमित कुमार की आवाज में आनंद बख्शी की रचना। संगीत राहुल देव बर्मन का है और फिल्म का नाम है रोमांस।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आइए अब सुनते हैं फिल्म लव स्टोरी का एक गीत। आनंद बख्शी के बोलों को संगीत से संवारा है राहुल देव बर्मन ने। युगल सर हैं लता मंगेशकर और अमित कुमार के।

चित्रपट संगीत अभी आप सुन रहे थे मीडियम यूर एफएम बैंड पर आकाशवाणी का रायपुर सरायपाली केंद्र है। 1:25 हुए हैं। कार्यक्रम विवरण, आइए आपको बता दें हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। स्पोर्ट्स स्कैन का प्रसारण होगा 8:30 पर। इस कार्यक्रम को हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेगा पंडित निखिल बैनर्जी का सितार पर बजाया राग रागेश्री। भीड़ में गुम होते घर, इस रूपक का समय होगा 9:30। लेखक श्री सुरेश तिवारी और प्रस्तुति मिर्जा मसूद की होगी।

अब से थोड़ी ही देर बाद 1:30 पर प्रसारित होगा ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम घर आंगन। इसमें आज की गोठ में चर्चा होगी रद्दा चलत राखव सावधानी। साथ ही सुनेगा श्रीमती द्रौपदी साहू का कविता पाठ और होगा दादी माँ के नुस्खा में बताएंगे लू ले बचाओ और घर माँ तैयार करो आचार के बारे में। युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युवाणी शाम 5:10 पर हिंदी में। अपन गुट में चर्चा होगी पढ़ाई लिखाई के महत्व और साथ ही होगा सवाल जवाब और माटी के गीत।

किसान भाइयों का कार्यक्रम चौपाल शाम 7:21 पर। इसमें आज की बात का विषय होगा वनोपज का गुणवत्तापूर्ण संग्रहण से है ज्यादा आमदनी का आधार। शाम 7:30 पर किसानवाणी में सुनेगा फोन इन कार्यक्रम। इसमें कृषि विज्ञान केंद्र पाहंदा के विषय वस्तु विशेषज्ञ डॉक्टर मनीष कुमार वर्मा बताएंगे धान में श्री विधि अपनाएं उत्पादन बढ़ाएं। कार्यक्रम का संचालन करेंगी नीतू शर्मा और प्रस्तुतकर्ता होंगे शशि प्रकाश पांडे।

चित्रपट संगीत का आप आनंद उठा सकेंगे दोपहर 2 बजे, दोपहर 2:30, शाम 7 बजे, रात 8 बजे और रात 9:15 पर। श्रोताओं की पसंद पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद का समय होगा रात 10 बजे।

श्रोताओं, एक बार पुनः दिल्ली केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम और शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम के बारे में बता देते हैं। स्पोर्ट्स इस इनका समय होगा 8:30। इस कार्यक्रम को हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। रात 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेगा पंडित निखिल बैनर्जी का सितार पर बजाया राग रागेश्री।

ये था हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। मीडियम वेव एफएम बैंड पर आकाशवाणी का रायपुर सरायपाली केंद्र है। 1:30 हुए हैं। प्रस्तुत है ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम घर आंगन।

गुरतर बोली अनमोल हे, तोल तोल के बोल, मीठ वचन हा जोर थे, कटु वचन ला छोड़, कटु वचन ला छोड़। यही भाव संग घर आंगन सुनैया जम मो बहनी मल्ला संगीता वर्मा के राम राम। बहनी हो, अभी घर ले आवत आवत यही बात मन मा आवत रहीस कि हमार सियान मन कही थे ना, दुर्घटना ले देर भली और दुर्घटना बता के नहीं आवे, वो कोन्हो ना कोन्हो असावधानी ले होते। पहली के जमाना मा अतका गाड़ी मोटर नहीं रहीस, आज गाड़ी मोटर के भीड़ बाढ़ते जाते। हमार बहनी मन कार ऑटो स्कूटी सब चलावा थे और कई घाव का होते गाड़ी चलावा थे और कान मा मोबाइल दबाए रही थे, बात करत रही थे, तहाँ ध्यान भटक जाते और कई घाव दुर्घटना के शिकार होए होए। ऐसने गाड़ी ला हेलमेट मा लटकाए रही थे त लगाए मा का समस्या है भाई, कई ठन दुर्घटना बिन हेलमेट के सेती हो है। बहनी हो, यही हमार नान नान असावधानी बड़े बड़े घटना ला आमंत्रित करते। तेकर सेती बहनी हो, ये बात के ध्यान रखन, कहूँ बात करना जरूरी छे त तेर मन गाड़ी ला खड़े कर लेवन और गोठियालन और हेलमेट ला जरूरी मान के आदत में शामिल करन। कहीं भी काम करत हो तो वही काम के प्रति पूरा ध्यान होना चाहिए। वैसने जब रद्दा रेंगत रही थन तो सबले जरूरी बात बहनी हो, हमला सड़क में ही ध्यान रखना है, यातायात के नियम के पालन करना है। कहूँ हम चौक चौराहा में पहुँचे हन और हरा सिग्नल नहीं है तो अपन बारी के इंतजार करन। कहूँ थोकन देरी पहुँचबो तो का हो जाही, या फिर घर ले थोकन जल्दी निकलन। काबर बहनी हो, जान है तो जहान है, आपके हड़बड़ी के स्थिति कहूँ शरीर के नुकसान हो गए, जान चल दीस तो ये जान संग पूरा परिवार जुड़े रहे थे, कतको अकन रिश्ता बंधाए रहे थे, जिन घर में इंतजार करत रहे थे। हर रिश्ता में हमार जिम्मेदारी होते और नान किन असावधानी के स्थिति हमार पूरा परिवार बिखर जाते। तेकर स्थिति बहनी हो, रद्दा रेंगत हम अपन सावधानी राखन, यातायात के नियम की पालन करन, तेज रफ्तार में गाड़ी झन चलावन, गाड़ी चलाए के बेरा गाड़ी में ही ध्यान रखन, सड़क पार करे के बेरा बने दोनों को तिला देख के पार करन, कार चलावथन तो सीट बेल्ट जरूर बांधन और बिन हेलमेट के गाड़ी झन चलावन। लैका मल्ला तक को सावचेत करते रहन बहनी हो, ये जीवन बहुत अनमोल है और जीवन के रक्षा करना हमार पहली कर्तव्य है। तेकर सेती कोनो भी काम करत हन सावधानी और धैर्य के संग सोच समझ के काम करन और सुरक्षित रहन। सावधानी के संग चलो, यही जिंदगी के आधार, सुरक्षित रही हर कदम तब खुश रही परिवार। और आवा बहनी हो, एक संगीत के तको आनंद लेलन जोन लपन स्वर में सजा के लाने हैं मंसूरी सिंह सत्यभामा सिंह।

0: बहनियों, कविता कहानी सिर्फ शब्द नहीं होए, ये मन भावना संवेदना और जीवन के सुखर भाव होते। और आज कविता पाठ में कवित्री बहनी श्रीमती द्रौपदी साहू अपन भाव ल कविता में सहेज के लाने हैं, ता आवो सुनथन ये कविता पाठ।
1: जब मुझे ला जोहार, मैं द्रौपदी साहू सरसीज महासमुंद छत्तीसगढ़ ले महतारी ऊपर आज अपन गीत पढ़े जात हों। त महतारी हमर जन्म देवैया महतारी भर है नहीं होए, हमर महतारी भाखा घलो हमर महतारी आए, हमर छत्तीसगढ़ माटी महतारी घलो हमर भाखा हमर महतारी आए। तो अभी आपला सुनावत हों महतारी भाखा के ऊपर मोर ये गीत। अपने कसमया जना थे छत्तीसगढ़ी न कहा थे, अपने कसमया जना

थे, छत्तीसगढ़ी न कहा थे, बोली तोर अड़बड़ भा थे, मोर अंतसला दुलरा थे, बोली तोर अड़बड़ भा थे, मोर अंतसला दुलरा थे। तोर मया कोटिले कबू नहीं, थोर को मया सिरावे, घोरे मंदरस बोल मया रूही हृदय तरी पीर थिरावे। तोर मया कोठीले कभू नहीं, थोर को मया सिरावे, घोरे मंदरस बोल मयारू हृदय तरी पीर थिरावे। भाखा महतारी मिठा, भाखा महतारी मिठा, जबे संगत जबान पाथे, छत्तीसगढ़िन कहा थे, तोर बोली अड़बड़ भाथे, मोर अंतस

सब लाते अपने चुमाने, अंगियाए जम्मू लादाई नहीं कपट चला की जाने, अपन बिराना करे नहीं अस सब लाते अपने चुमाने, जौन हसंगत ला पाथे जौन हसंगत ला पाथे वो तोर तनी ओधिया थे, छत्तीसगढ़ीन कहा थे बोली तोरे अड़बड़ भाथे, मुरअंतसला दुलरा थे होके तोरे चवो रही जाही, जब जे नहा तोला पढ़ी उनहा सोरिया।

पढ़ी उन्हा सो जियावत हावे कहत रही थे जिननी चटड़ी गोठिया बुन छत्तीसगढ़ी जे गोठ तोला उजरा थे छत्तीसगढ़ी न कहा थे बोली तोर अड़बड़ भा थे मुरवन तसला दुलरा थे अपने कसमया जना थे छत्तीसगढ़ी न कहा थे बोली तोर अड़बड़ भा थे मुरवन तसला दुलरा थे बोली तोर अड़बड़ भा थे मुरवन तसला दुलरा थे। आवाओ हमन सुनथन हमर जन्मदेवैया महतारी के गुणगान गीतमा।

दुख हाँसी मदे थस टार वो महतारी ही महतारी। दुख हाँसी मदे थस टार वो महतारी ही महतारी। नरियर असन उपन छावा गुस्सा मा लाली तावा। नरियर असन ऊपर छावा गुस्सा मा लाली तावा। कुंवर गुदा मिठ पानी ऐसन है तोर कहानी। कुंवर गुदा मिठ पानी ऐसन है तोर कहानी। देवी के रूप मनारी देवी के रूप मनारी ओ महतारी महतारी। दुख हाँसी मदे थस टार वो महतारी महतारी। तोर बिना है घर सुन्ना

खवाए, पर से तुरघात अघाए, समझाए दुनियादारी, समझाए दुनियादारी, ओ महतारी महतारी, दुख हाँसी मा दे थस टार, वो महतारी महतारी। मया दुलार ला पाए, गोदी मा ले के खिलाए, मया दुलार ला पाए, गोदी मा ले के खिलाए, तोर मया बर जे तर से, तय भर थारी पर से, तोर मया बर जे पर से, तय भर थारी पर से, मन हे नहीं चिटको कारी, मन हे नहीं चिटको कारी, ओ महतारी महतारी।

दुख हाँसी मदे थस टार वो महतारी महतारी। हृदय माँ माया भरे हे बोली माँ फूल झरे हे। हृदय माँ माया भरे हे बोली माँ फूल झरे हे। दुख हाँसी मदे थस टार वो महतारी महतारी। दुख हाँसी मदे थस टार वो महतारी महतारी। आवो अब माटी महतारी के वंदना करत एक क्षण गीत पढ़थन। तोर कोरा म बड़ सुख पाए ओ मोर छत्तीसगढ़ महतारी। छत्तीसगढ़िया बेटा कहाए ओ तोर महिमा हावे भारी। तोर कोरा म बड़ सुख पाए ओ मोर छत्तीसगढ़ महतारी। छत्तीसगढ़िया बेटा कहाए ओ तोर महिमा हावे भारी। जंगल झाड़ी डोंगरी पहाड़ी सरग असन मोला लागे।

कोरा ममन भर नींदरी भांजेओ, कोरा ममन भर नींदरी भांजेओ, खुलकत हासत दीन पहायो, मुर छत्तीसगढ़ महतारी। तोर कोरामा तोर महिमा हावै भारी, मुर छत्तीसगढ़ महतारी। बिजली बाक्साइड ही रामा, तोरे हावै माल गुजारी। जड़ी बूटी भरे जंगल माहे, कोदो तीली है उपजय भारी। बिजली बाक्साइड ही रामा, तोरे हावै माल गुजारी। जड़ी बूटी भरे जंगल माहे, कोदो तीली है उपजय भारी। चाउर दुबराज है घात ममावे, चाउर दुबराज घात ममहावे। मुंग राहर खाके अघायो, मुर छत्तीसगढ़ महतारी। तोर महिमा हावै भारी, मुर छत्तीसगढ़ महतारी। सुवाद दरिया कर्म के कुहकी, यहाँ बने हवै चिन्हारी। तीजा पोरा भैया बर राखी, बाजा संग दिया देवारी। सुवाद दरिया कर्मा के कुहकी, यहाँ बने हवै चिन्हारी। को तीजा पोरा भैया बर राखी, बाजा संग दिया देवारी। राग रंग मा रंगे फगुनवा, राग रंग मा रंगे फगुनवा। काया रंग बसंती रंगाए, मोर छत्तीसगढ़ महतारी। तोर महिमा हावै भारी, मोर छत्तीसगढ़ महतारी। गुल्ली डंडा माटी भावरा, खेल पिट्ठू लट्ठा चंगा। हावै गांव के तरिया नदिया, हमर बर पबरी।

0: बोली माँ मंदर समिझार सरसिज, बोली माँ मंदर समिझार सरसिज, छत्तीसगढ़ के महिमा गाए मोर छत्तीसगढ़ महतारी, तोर को राम बड़ सुख पाए मोर छत्तीसगढ़ महतारी, छत्तीसगढ़िया बेटा कहाए मोर छत्तीसगढ़ महतारी, मोर छत्तीसगढ़ महतारी, मोर छत्तीसगढ़ महतारी। जय जो
1: बहनी हो, अभी आप मन सुनत रहे हो कविता पाठ, और कवित्री बहनी रहीन श्रीमती द्रौपदी साहू। आप मन ला ये कविता पाठ कैसे लागिस भाई, पाती या ईमेल के माध्यम ले अपन विचार जरूर पठोहु भाई। अब आओ सुनथन ये सुघर गीतला जौनला स्वर में सजा के लाने हैं छाया चंद्राकर।

बहिनी हो, लक लक लक लक घाम अउ गरम हवा ले लू लग जाथे। एखर ले शरीर कमजोर अउ सुस्त हो जाथे। बुखार उल्टी जैसन समस्या तको आ जाथे। त आज हम दादी माँ के नुस्खा माँ हमर सियान मन लू लग के ले कैसे बाचन तेकर पर का कहा तेन ल जानबो। त हमर सियान मन कहा है घर ले बाहरी निकले के पहली पेट भरे रहना चाहिए और पानी पी के निकलना चाहिए। सिरमा गमछा टोपी पहनन शरीर ला ठंडा राखे भर आम के पन्ना बेल के शरबत दही मही नींबू पानी खीरा प्याज खावन और घाम में जाथन त छोटे से प्याज जरूर रखन बहनी हो। घाम ले आवत हन त तुरते ठंडा पानी झन पियन। घाम ले कोनो आवत है त प्याज के रस या प्याज ला पीस के हाथ या पैर के तलवा माँ मलदन। वैसने आम के पन्ना बनावत हन त उबले आम के गुदा ल घलो हाथ और पैर के तलवा माँ लगा दन जेखर ले शरीर ठंडा रहते। ऐसने सत्तू तको पेट ल ठंडा रखते ओहू ल उपयोग कर सकत हन। धनिया और सौंफ ला रात भर भिंजो के बिहनिया होकर पानी ल ले से तको शरीर के गर्मी दूर होते। बहनी हो इसने सब करके हम गर्मी के आनंद ले सकत हन। और कहूँ गर्मी या लू जल्दी ठीक नहीं हुआ थे त तुरते डॉक्टर ला दिखवा लेन बहनी हो। अपन स्वास्थ्य के ध्यान रखन और गाना

अभी आप सुन रहे थे ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम घर आंगन, मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 2 बजे हैं, प्रस्तुत है चित्रपट संगीत।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: कार्यक्रम में आइए सबसे पहले सुनते हैं देव कोहली की रचना। इसे संगीत से संवारा है अनु मलिक ने। फिल्म है हीरो हिंदुस्तानी, आवाज अताउल्ला खां की है।

आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।

ये खनकती आवाज अब आप सुन सकते हैं और भी बेहतरीन क्वालिटी में, कभी ब्लूटूथ स्पीकर से कनेक्ट करके तो कभी हेडफोन पर लगाकर। आकाशवाणी रायपुर का प्रसारण अब उपलब्ध है मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTH पर। चाहे पास रहें या दूर, आपके करीब हर पल आकाशवाणी रायपुर।

0: अरे सुमित, तुमने बाइक इधर क्यों मोड़ दी?
1: अरे इसी रोड पर ही तो हमको जाना है यार। हेलो।
0: अरे सुमित।
1: हेलो।
0: सुमित, ये तुम क्या कर रहे हो?
1: हेलो, अरे बात कर रहा हूँ यार, मुझे बात तो करने दे।
0: सुमित, तुम Hello? गाड़ी रोक कर भी तो बात कर सकते हो।
1: अरे छोड़ ना यार, मैं तो चलती गाड़ी में ही कॉल अटेंड कर लेता हूँ। हेलो।
0: अरे सुमित।
1: कौन? संदीप।
0: सुमित देख के।
1: हाँ बोल यार।
0: सुमित,
1: कब आना है?
0: अरे देख के सामने।
1: ठीक है, और कौन आएंगे?
2: सुमित आज इस दुनिया में नहीं है और उसका दोस्त घायल है। वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग बिल्कुल ना करें। खुद के और दूसरों की सुरक्षा के लिए यातायात के नियमों का पालन करें।
3: लीजिए अब सुनिए फिल्म दिल तुझको दिया का एक गीत। आवाज लता मंगेशकर की है, गीत और संगीत राजेश रोशन का।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा और व्यापार में सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने समाचार पत्र में एक संयुक्त लेख में वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में साझेदारी पर जोर दिया। सर्वोच्च न्यायालय का टीकाकरण या नसबंदी किए गए लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने के अपने पूर्व के आदेश को वापस लेने से इनकार और मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में अगले 3 दिन के लिए लू का येलो अलर्ट जारी किया। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन का उद्देश्य प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा, सतत विकास और व्यापार जैसे क्षेत्रों में नॉर्डिक देशों के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के अलावा डेनमार्क, आइसलैंड और स्वीडन के प्रधानमंत्री भी शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री मोदी ने आज ओस्लो में आइसलैंड की प्रधानमंत्री क्रिस्टन म्योल फ्रॉस्टडॉटर और फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेटरी ओर्पो के साथ द्विपक्षीय बैठक की। और जानकारी के लिए बात करते हैं नॉर्वे में मौजूद हमारे संवाददाता संगीता गोडबोले से। संगीता, नॉर्वे के साथ साझेदारी भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है?
1: कनकलता, नॉर्डिक देश अपनी 90% से अधिक बिजली ग्रीन स्रोतों से उत्पन्न करते हैं। भारत का अपना एक महत्वाकांक्षी ऊर्जा परिवर्तन लक्ष्य है। इसी विषय में नॉर्डिक तकनीकी विशेषज्ञता का लाभ पवन ऊर्जा, जल विद्युत, बायोमास जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करने में हो जाएगा। हरित भागीदारी की दिशा में उठाया गया सबसे ठोस कदम कल था। इससे नॉर्वेजियन कंपनियां हरित हाइड्रोजन, नीली अर्थव्यवस्था, चक्रीय अर्थव्यवस्था जैसे क्षेत्रों में नवाचार और निवेश कर सकेंगी। भारत एक डेडिकेटेड पवेलियन के साथ नॉर शिपिंग 2027 में भी भाग लेगा। कल व्यापार शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस हिस्सेदारी को बढ़ाकर 25% करने का विजन साझा किया है।
0: धन्यवाद संगीता। भारत और स्वीडन का विश्वास है कि वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में सहयोग से साझा समृद्धि और सतत भविष्य का मार्ग प्रशस्त होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन द्वारा लिखे गए एक लेख में इस बात का उल्लेख किया गया है कि बढ़ती भू राजनीतिक अनिश्चितता, ऊर्जा असुरक्षा और आर्थिक बिखराव के समय में दुनिया को फैसला करना है कि वो या तो संकीर्ण राष्ट्रीय सोच की ओर लौट जाए या फिर आपसी सहयोग को सुदृढ़ करे।
2: इस लेख में दोनों प्रधानमंत्रियों ने इस बात का जिक्र किया है कि इस समय जब संयुक्त राष्ट्र अपनी 80वीं वर्षगांठ मना रहा है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और बहुपक्षवाद का महत्व और भी अधिक स्पष्ट हो गया है। दोनों नेताओं ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और संप्रभु समानता पर आधारित नियमों से संचालित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था ने दशकों तक स्थिरता और विकास सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाई है। लेख में ये भी बताया गया है कि एक प्रमुख विकास इंजन और ग्लोबल साउथ की जिम्मेदार आवाज के तौर पर निकट भविष्य के लिए भारत के दो महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं। पहला 2047 तक विकसित देश का दर्जा हासिल करना और दूसरा 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करना। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम इटली के रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का ये दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री मोदी इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के व्यक्तिगत निमंत्रण पर वहां जा रहे हैं। केवल भारतीय प्रवासी ही नहीं बल्कि स्थानीय इटालियन लोग भी भारत में व्यावसायिक अवसरों की तलाश करने के लिए उत्सुक हैं। और जानकारी के लिए बात करते हैं हमारी संवाददाता सुपर्णा भाटिया से, जो इस समय रोम में मौजूद है। सुपर्णा, प्रधानमंत्री का आज इटली में क्या क्या कार्यक्रम है?
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इटली पहुँचने वाले हैं, जो उनके 5 देशों के दौरे का अंतिम चरण है। इस यात्रा से भारत इटली रणनीतिक संबंधों को कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई गति मिलने की उम्मीद है। व्यापार, निवेश और औद्योगिक साझेदारियों से जुड़ी सहयोग योजनाओं की घोषणा होने की संभावना है, क्योंकि दोनों देश आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और सहयोग के नए क्षेत्रों की तलाश में है। व्यापारिक संबंध पहले से ही मजबूत है और इस यात्रा के दौरान होने वाली उच्च स्तरीय वार्ताओं के बाद इनके और आगे बढ़ने की उम्मीद है। मुझे यहाँ भारतीय प्रवासी समुदाय से बात करने का भी अवसर मिला जो प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर विशेष रूप से उत्साहित हैं।
0: जानकारी के लिए धन्यवाद सुपर्णा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम के राष्ट्रपति तोलाम से भेंट की और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी महत्वपूर्ण है। श्री सिंह ने कहा कि भारत और वियतनाम साझा मूल्यों, रक्षा, सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता में घनिष्ठ सहयोग साझा करते हैं। श्री सिंह ने हनोई में वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फान वान जियांग के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। दोनों पक्षों ने समुद्री सुरक्षा, रक्षा उद्योग, प्रशिक्षण और क्षेत्रीय स्थिरता में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग से मुलाकात के लिए चीन की यात्रा पर हैं। क्रेमलिन के अनुसार दोनों नेता आर्थिक सहयोग और प्रमुख क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ये यात्रा चीन रूस मैत्री संधि के 25वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित की गई है। ये वार्ताएं ऐसे समय में हो रही हैं जब वैश्विक भू राजनीतिक तनावों के बीच चीन, अमरीका और रूस दोनों के साथ अपने संबंधों को संतुलित करने का प्रयास कर रहा है। यूक्रेन संघर्ष को लेकर पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद चीन रूस का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार और रूसी तेल तथा गैस का प्रमुख खरीदार बना हुआ है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों से पकड़े गए लावारिस कुत्तों को टीकाकरण या नसबंदी के बाद वापस न छोड़ने के अपने पूर्व निर्देशों को वापस लेने से इनकार कर दिया है। एक रिपोर्ट।
4: न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने नवंबर 2025 के आदेश में संशोधन की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया और अधिकारियों को ऐसे कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने का निर्देश दिया। अदालत ने बच्चों, बुजुर्गों और राह चलते लोगों पर कुत्तों के हमलों की बेहद चिंताजनक घटनाओं का हवाला देते हुए कहा है कि यह समस्या हवाई अड्डों और आवासीय कॉलोनियों सहित संवेदनशील सार्वजनिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। पीठ ने चेतावनी दी है कि निर्देशों का पालन न करने वाले अधिकारियों को अवमानना और अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: भारतीय रेलवे ने जम्मू श्रीमाता वैष्णो देवी कटरा खंड पर 238 करोड़ रुपए की लागत से महत्वपूर्ण ढलान स्थिरीकरण, सुरंग पुनर्निर्माण और पुल संरक्षण कार्यों को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये कार्य देश के कुछ सबसे चुनौतीपूर्ण भूभागों में सुरक्षित और विश्वसनीय संपर्क सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। रेलवे ने अरक्कोनम चेंगलपट्टू दोहरीकरण परियोजना के लिए 993 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। चेन्नई उपनगरीय रेल नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए यह फैसला किया गया है। रेलवे ने 54 किलोमीटर लंबे क्यूल झाझा तीसरी लाइन प्रोजेक्ट को 962 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। रेल मंत्री ने कहा है कि ये प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाले हावड़ा दिल्ली कॉरिडोर पर क्षमता को बढ़ाएगा और रेल सेवाओं की समय की पाबंदी और ऑपरेशनल लचीलेपन को बेहतर बनाने में मदद करेगा। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ऑपरेशन सिंदूर को स्मार्ट पावर का एक सटीक उदाहरण बताया है। वे आज राष्ट्रीय राजधानी में सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज में सुरक्षा से समृद्धि, सतत राष्ट्रीय विकास के लिए स्मार्ट पावर विषय पर आयोजित एक सेमिनार को संबोधित कर रहे थे।
5: ऑपरेशन सिंदूर डिलीवर्ड मिलिट्री प्रिसिशन इंफॉर्मेशन कंट्रोल।
6: ऑपरेशन सिंदूर ने सटीकता, सूचना नियंत्रण, कूटनीतिक संकेत और आर्थिक संकल्प को सुसंगत राष्ट्रीय कार्रवाई के रूप में प्रस्तुत किया। इसने दुश्मन पर गहरा प्रहार किया और आतंकी ढांचे को ध्वस्त कर दिया तथा एक लंबे समय से चली आ रही रणनीतिक धारणा को भी तोड़ दिया। सेना ने फिर इसके बाद सोच समझ कर विवेक सम्मत ढंग से अपनी कार्रवाई रोक दी। 88 घंटे चला ऑपरेशन सिंदूर स्मार्ट पावर का सबसे पूर्ण और सटीक उदाहरण था।
5: स्मार्ट पावर इन इट्स मोस्ट कंप्लीट एक्सप्रेशन।
0: मिजोरम में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू हो गया है। मिजोरम के मुख्य चुनाव अधिकारी डॉ. लाल रोजामा ने कहा कि संशोधन प्रक्रिया के दौरान अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने की आवश्यकता है क्योंकि अधिकारी सीधे तौर पर मतदाता सूचियों का काम संभालेंगे। उन्होंने अधिकारियों से पूरी ईमानदारी, सटीकता और सतर्कता के साथ काम करने का आग्रह किया ताकि मिजोरम के वास्तविक नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई, जो एक सप्ताह से भी कम समय में दूसरी बढ़ोतरी है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब 98.64 रुपए प्रति लीटर है, जबकि डीजल की कीमत 91.58 रुपए है। मुंबई में पेट्रोल 107.59 रुपए और डीजल 94.08 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। कोलकाता में पेट्रोल की कीमतें 109.70 रुपए और डीजल की 96.07 रुपए दर्ज की गई, जबकि चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 104.49 रुपए और डीजल की 96.11 रुपए प्रति लीटर है। ये बढ़ोतरी ईरान संघर्ष और होर्मुज जलडमरों मध्य में रुकावटों के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी तेजी के बाद हुई है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता भुवन चंद्र खंडूरी का आज एक निजी अस्पताल में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। सेना के पूर्व मेजर जनरल रहे श्री खंडूरी ने 2 बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री भी रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके निधन को एक अपूर्णीय क्षति बताया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री खंडूरी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @iirnewshindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने दिल्ली, मध्य प्रदेश, पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार और मराठवाड़ा में भी आज ऐसी स्थिति रहने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में अगले 5 दिन तक लू चलेगी। मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में 3 दिन के लिए भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार दिन के समय दिल्ली में कुछ स्थानों पर भीषण गर्मी पड़ने की आशंका है। एक रिपोर्ट।
7: विभाग के अनुसार दिल्ली में आज का अधिकतम तापमान 43 से 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। कल मौसम विभाग के रिज क्षेत्र स्टेशन पर 44.6 डिग्री सेल्सियस, सफदरजंग स्टेशन पर 43.4 डिग्री सेल्सियस, लोदी रोड स्टेशन पर 43.8 डिग्री सेल्सियस और पालम स्टेशन पर 43.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
0: उत्तर प्रदेश में अगले सप्ताह भीषण गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में बांदा 47 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ लगातार दूसरे दिन भी देश का सबसे गर्म स्थान रहा।
8: आज भी राज्य भर में भीषण गर्मी और लू की स्थिति बनी हुई है। बुंदेलखंड और अन्य इलाके तेज धूप और झुलसा देने वाली हवाओं की चपेट में हैं। धीमी हवा के कारण उमस और बढ़ गई है, जिससे राज्य के कई हिस्सों में सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। वहीं राज्य के कई जिलों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस या उससे भी ऊपर बना हुआ है। मौसम विभाग ने 33 जिलों के लिए लू की चेतावनी जारी की है। राज्य के दक्षिणी और मध्य भागों में अगले सप्ताह तक लू के हालात बने रहेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि धरती माँ के लिए पूरी मानवता एक परिवार है। सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि संपूर्ण विश्व एक घर की तरह है, जहाँ हर संस्कृति का अपना महत्व और सम्मान है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। कल रात चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही हैदराबाद ने प्लेऑफ में जगह बना ली है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.2% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 136 अंक के वृद्धि के साथ 75,451, जबकि निफ्टी 42 अंक बढ़कर 23,692 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा और व्यापार में सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित 3रे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने समाचार पत्र में एक संयुक्त लेख में वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में साझेदारी पर जोर दिया। सर्वोच्च न्यायालय का टीकाकरण या नसबंदी किए गए लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने के अपने पूर्व आदेश को वापस लेने से इनकार। मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में अगले 3 दिन के लिए लू का येलो अलर्ट जारी किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: मीडिया वेव 305.81 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्ज और फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.8 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रायपुर सरायपाली केंद्र है। 2:30 हुए हैं। प्रस्तुत है चित्रपट संगीत। कार्यक्रम में आइए सबसे पहले सुनते हैं फिल्म तेरी कसम का ये गीत। आवाज अमित कुमार की है, बोल आनंद बख्शी की और संगीत राहुल देव बर्मन का।

ये खनकती आवाज अब आप सुन सकते हैं और भी बेहतरीन क्वालिटी में, कभी ब्लूटूथ स्पीकर से कनेक्ट करके तो कभी हेडफोन पर लगाकर। आकाशवाणी रायपुर का प्रसारण अब उपलब्ध है मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTH पर। चाहे पास रहें या दूर, आपके करीब हर पल आकाशवाणी रायपुर।

0: स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह।
1: घर आंगन ग्रामीण बहनी मन के मनपसंद कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के मंझनिया 1:30 से 2 बजे तक। घर द्वार बारी बखरी के गोठ, स्वास्थ्य और पारिवारिक समस्या के समाधान, सुघर गीत संगीत और कविता कहानी एक के जगह। और तो अब तो हमार बहनी मन के सीधा भागीदारी फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम जोहार बहनी के संग मा। ता आपो सुनाओ संगी संगवारी मल्ला तको सुनाओ। घर आंगन प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के मंझनिया 1:30 से 2 बजे तक।

0: अभी आपने सुना फिल्म कलाकार का ये गीत। इंदिवर के बोलों को संगीत से संवारा था कल्याण जी आनंद जी ने, आवाज साधना सरगम की थी।
1: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
2: घर आंगन ग्रामीण बहनी मन के मनपसंद कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के मंझनिया 1:30 से 2 बजे तक। घर द्वार, बारी बखरी के गोठ, स्वास्थ्य और पारिवारिक समस्या के समाधान, सुघर गीत संगीत और कविता कहानी एक के जगह। और तो अब तो हमार बहनी मन के सीधा भागीदारी फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम जोहार बहनी के संग मा। ता आपो सुनाओ, संगी संगवारी मन ला तको सुनाओ। घर आंगन प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के मंझनिया 1:30 से 2 बजे तक।

कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में लीजिए सुनिए आनंद बख्शी की रचना। धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, फिल्म का नाम है नाम।

लीजिए अब सुनिए आनंद मिलिंद के संगीत से सजी फिल्म फूल का एक गीत। बोल आनंद बख्शी के हैं और आवाज कुमार सानू की।

लीजिए अब सुनिए अनुराधा पौडवाल और अमित कुमार की आवाज़ में फिल्म तेजाब का है गीत। बोल जावेद अख्तर के हैं और धुन और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

तेजाब इस फिल्म के गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का एक कार्यक्रम संपन्न होता है। मीडियम वेव 305.81 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्ज और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.8 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। दोपहर के 3 बजे हैं, हमारी ये सभा यहीं संपन्न होती है। शाम 5 बजे इसी फ्रीक्वेंसी पर पुनः उपस्थित होंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।

0: नॉर्डिक देशों के साथ भारत की साझेदारी को मजबूत करना है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के अलावा डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन, फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेटेरी ओरपो, आइसलैंड के प्रधानमंत्री सुश्री क्रिस्टोन फ्रॉस्टडॉटर और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन भी शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। शिखर सम्मेलन के इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ओस्लो में आइसलैंड की प्रधानमंत्री क्रिस्टोन म्योल फ्रॉस्टडॉटर और फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेटेरी ओरपो के साथ द्विपक्षीय बैठक की। नॉर्वे से और जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता संगीता गोडबोले।
1: नॉर्डिक देश अपनी 90% से अधिक बिजली ग्रीन स्रोतों से उत्पन्न करते हैं। भारत का अपना एक महत्वाकांक्षी ऊर्जा परिवर्तन लक्ष्य है। इसी विषय में नॉर्डिक तकनीकी विशेषज्ञता का लाभ पवन ऊर्जा, जल विद्युत, बायोमास जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करने में हो जाएगा। हरित भागीदारी की दिशा में उठाया गया सबसे ठोस कदम कल था। इससे नॉर्वेजियन कंपनियां हरित हाइड्रोजन, नीली अर्थव्यवस्था, चक्रीय अर्थव्यवस्था जैसे क्षेत्रों में नवाचार और निवेश कर सकेंगी। भारत एक डेडिकेटेड पवेलियन के साथ नॉर शिपिंग 2027 में भी भाग लेगा। कल व्यापार शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस हिस्सेदारी को बढ़ाकर 25% करने का विजन साझा किया है।
0: भारत और स्वीडन का विश्वास है कि वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में सहयोग से साझा समृद्धि और सतत भविष्य का मार्ग प्रशस्त होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन द्वारा लिखे गए एक लेख में इस बात का उल्लेख किया गया है कि बढ़ती भू राजनीतिक अनिश्चितता, ऊर्जा असुरक्षा और आर्थिक बिखराव के समय में दुनिया को फैसला करना है कि वो या तो संकीर्ण राष्ट्रीय सोच की ओर लौट जाए या फिर आपसी सहयोग को सुदृढ़ करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम इटली के रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का दो दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। श्री मोदी इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के व्यक्तिगत निमंत्रण पर वहां जा रहे हैं। और ब्यौरा रोम में मौजूद हमारे संवाददाता सुपर्णा भाटिया से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इटली पहुंचने वाले हैं, जो उनके 5 देशों के दौरे का अंतिम चरण है। इस यात्रा से भारत इटली रणनीतिक संबंधों को कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई गति मिलने की उम्मीद है। व्यापार, निवेश और औद्योगिक साझेदारियों से जुड़ी सहयोग योजनाओं की घोषणा होने की संभावना है, क्योंकि दोनों देश आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और सहयोग के नए क्षेत्रों की तलाश में हैं। व्यापारिक संबंध पहले से ही मजबूत हैं और इस यात्रा के दौरान होने वाली उच्च स्तरीय वार्ताओं के बाद इनके और आगे बढ़ने की उम्मीद है। मुझे यहाँ भारतीय प्रवासी समुदाय से बात करने का भी अवसर मिला, जो प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर विशेष रूप से उत्साहित हैं।
0: रेलवे ने 54 किलोमीटर लंबे किउल झाझा तीसरी लाइन प्रोजेक्ट के लिए 962 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि ये प्रोजेक्ट हावड़ा दिल्ली कॉरिडोर की क्षमता को बढ़ाएगा। रेलवे ने अरक्कोनम चेंगलपट्टू दोहरीकरण परियोजना के लिए भी 993 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। चेन्नई उपनगरीय रेल नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए ये फैसला किया गया है। जम्मू श्रीमाता वैष्णो देवी कटरा खंड पर 238 करोड़ रुपए की लागत से महत्वपूर्ण ढलान स्थिरीकरण, सुरंग पुनर्निर्माण और पुल संरक्षण कार्यों को भी मंजूरी दी गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों से पकड़े गए लावारिस कुत्तों को टीकाकरण या नसबंदी के बाद वापस न छोड़ने के अपने पूर्व निर्देशों को वापस लेने से इनकार कर दिया है। मौसम विभाग ने दिल्ली, मध्य प्रदेश, पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार और मराठवाड़ा में भी आज ऐसी स्थिति रहने की संभावना है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से होगा। कल रात चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही हैदराबाद ने प्लेऑफ में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ये हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे साथ आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड के स्टूडियो में मौजूद हैं एक विशेष अतिथि श्री हरविंदर मांकड़, जो एक जाने माने कार्टूनिस्ट, चित्रकार, पटकथा लेखक और फिल्म निर्देशक हैं। क्योंकि आज है मंगलवार, इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं AIR एट 90 के अंतर्गत हमारा स्पेशल प्रोग्राम आकाशवाणी के संग यादों के रंग, और मैं हूं आपके साथ अपराजिता। सर, पहले तो आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं।
1: नमस्कार, ये मेरा सौभाग्य है कि जिस आकाशवाणी ने मेरा बचपन सवारा, आज मैं उसी के स्टूडियो में बैठकर आकाशवाणी में आपसे बातें कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी। मैं सुनने वालों को बता दूं कि आज के विशेष अतिथि मोटू पतलू कार्टून को रचने वाले हैं, उसके लेखक हैं, जो पहली बार लोटपोट पत्रिका में प्रकाशित हुई। आप लगातार 46 वर्षों से हर सप्ताह मोटू पतलू की नई कॉमिक श्रृंखला रचने वाले दुनिया के एकमात्र कलाकार और लेखक हैं। आपने मात्र 15 वर्ष की आयु में कार्टूनिस्ट के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। आपको अमेरिका की विक्टोरिया ग्लोबल यूनिवर्सिटी से कला और संस्कृति में डॉक्टरेट की उपाधि भी प्राप्त है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप आकाशवाणी के लंबे समय से श्रोता हैं और आकाशवाणी पर प्रोग्राम भी करते आए हैं। आज आप हमारे बीच हैं, रेडियो से जुड़ी अपनी यादें हमारे साथ यहाँ अब से लेकर 4 बजे तक साझा करने के लिए। सर, ये हमारा सौभाग्य है। एक बार फिर मैं आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ और आपसे जानना चाहती हूँ कि जैसा आपने अभी कहा कि आकाशवाणी बचपन से आपके साथ है, आपका साथी है, तो कुछ बातें, कुछ यादें उनके साथ करते हैं शुरुआत।
1: बचपन क्या है, जब मैं अपने बचपन की बात करता हूँ तो ये करीब करीब सन बन जाता है 70 और 75 के बीच का।
0: जी,
1: अकेला था, माता पिता काम पे चले जाते थे, तो उस समय और कोई भी चीज़ मनोरंजन का हमें नहीं साधन मालूम पड़ता था। तो मेरा भाई बना, मेरी बहन बनी, मेरा साथी बनी आकाशवाणी।
0: वाह,
1: मुझे बहुत प्यारा लगता था। सबसे ज़्यादा वो उसकी जो सुबह सुबह उठते ही जो सिग्नेचर ट्यून जिसको कहा जाता है,
0: जी जी,
1: वो जब सुबह सुबह बजती थी ऐसे लगता था कि जैसे कोई एक बहुत ही पवित्र किसी मंदिर की घंटियां बज रही हैं।
0: क्या बात,
1: मुझे अच्छी तरह याद है। ये धुन राग शिवरंजनी पर आधारित थी और इसको वाल्टर काफमैन ने तैयार किया था, कंपोजर थे वो।
0: जी जी जी।
1: और बहुत कम लोग जानते होंगे शायद, क्योंकि मैं बहुत गहरा उसके अंदर जा चुका था, तो मुझे ये मालूम था इसका जो वायलिन बजाया है वो महली मेहता ने बजाया था, जो अच्छा। उस समय के जुबिन मेहता के पिता थे, जो म्यूजिक सिंगर के।
0: जी जी।
1: तो जिस चीज को ऐसे ऐसे लेजेंड्स और ऐसे ऐसे महान लोगों ने रचा हो,
0: बिल्कुल,
1: वो मेरा बचपन उसी के साथ जुड़ा, उसी के साथ उसके प्रोग्राम, उसके गाने, गीत और उसके हवा महल प्रोग्राम, खूबसूरत जयमाला प्रोग्राम, विविध भारती की अगर बात करें तो वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे, और युववाणी मिले युवकों के लिए जो आता था,
0: बिल्कुल।
1: मैं एक डायरी बना के रखता था और मुझे मालूम होता था सुबह 6 बजे ये आएगा, 6:30 बजे ये आएगा, 7 बजे खबरें आएंगी, जो मतलब जो जो उस समय हुआ करता था।
0: बिल्कुल, जैसे हमारे पास क्यू शीट होती है, आपके पास आपकी डायरी होती है।
1: हाँ, उस समय कंप्यूटर तो थे नहीं ना, तो वो एक डायरी की तरह मैं लिखता था। और मुझे याद है कि वो एक भारी भरकम आवाज, नमस्कार, मैं देवकी नंदन पांडे बोल रहा हूँ, आज के समाचार इस तरह थे, वो जब आवाज आती थी तो ऐसे लगता था कि मानो आप एक अलग ही युग में हैं।
0: जी
1: जी,
0: बहुत खूब। सर, आपसे बातचीत का सिलसिला यहाँ जारी रहेगा। आप ही की पसंद के गीत हम आज अपने लिसनर्स को सुनवा रहे हैं, तो पहला गाना जो सर मुझे बता चुके हैं वो मैं आप तक पहुंचा रही हूँ, 2 रास्ते फिल्म से है, आप ही की पसंद का ये रेशमी जुल्फें।

0: और मेरी तन्हाई, अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।
1: जी, आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपको बैक टू बैक दो गाने क्यों सुनवाए, लेकिन इन डायलॉग्स के पीछे भी एक कहानी छुपी है हमारे आज के स्पेशल गेस्ट से जुड़ी। आज आकाशवाणी के संग यादों के रंग में हमारे साथ हैं एक विशेष अतिथि, श्री हरविंदर मांकड़, जो एक जाने माने कार्टूनिस्ट हैं। मोटू पतलू आपने जरूर पढ़ी होगी, देखा होगा ये कार्टून। इसके रचयिता हैं, इसको लिखने वाले हैं और इसको बनाने वाले भी हैं। तो हरविंदर जी, मैं जानना चाहती हूँ कि ये जो डायलॉग्स अभी हमने सुने, इनसे जुड़ी आपके पास एक कहानी है। मैं जान चुकी हूँ, मैं चाहती हूँ कि हमारे श्रोता भी उसे जाने।
2: देखें, पुरानी बात है, आज आकाशवाणी को अगर 90 साल होने वाले हो गए हैं
1: जी,
2: उसमें से उन 90 सालों में जो यादें मेरे पास हैं, उनमें से ये सबसे खूबसूरत याद है। उन दिनों क्या हुआ करता था, टेप रिकॉर्डर नए नए आए थे
1: जी,
2: प्रचलन में आ गए थे, लेकिन डायलॉग्स, क्योंकि मिस्टर अमिताभ बच्चन की आवाज का मैं दीवाना था।
1: अच्छा।
2: ए भारी भरकम आवाज और उसमें खास अदा,
1: बिल्कुल,
2: पर हमें वो रिकॉर्ड किए हुए नहीं मिलते थे, मतलब कहीं से इकट्ठी कलेक्शन नहीं मिलती थी। तो जैसे ही आकाशवाणी के रेडियो विविध भारती पे या किसी भी प्रोग्राम के अंदर ये वाले गाने आते थे, खास तौर को जैसे अभी आपने सुनाया,
1: बिल्कुल,
2: तो मैं जैसे ही उनका डायलॉग पार्ट आता था वो रिकॉर्ड कर लेता था।
1: अच्छा।
2: और भी काफी फिल्मों में उन्होंने डायलॉग्स पार्ट्स हैं, काफी गानों सिलसिला में हैं और फिल्मों में भी हैं।
1: बिल्कुल।
2: वो रिकॉर्ड करते करते मेरी एक कैसेट के अंदर इनके भी और कलाकारों के भी जब रिकॉर्ड वर्जन जो बीच में होते थे वो मैं अलग अलग पीस रिकॉर्ड कर लेता था और उसकी एक कैसेट मैंने बनाई और ऊपर मैगजीनों से फोटो वोटो काट के उसका कवर बनाया।
1: क्या बात है।
2: तो वर्षों बाद जब मैं अमिताभ बच्चन संग मिला, जब मैंने शोज किए उनके साथ, तो तब मैंने उनको वो कैसेट दिखाई। मैंने कहा सर ये मैं मैनुअल बनाई थी इसको। तो आप सोचिए कि आकाशवाणी के एक सुर ताल के बीच में से निकले हुए वो शानदार लफ्ज मेरे लिए एक इतिहास बने, मेरे लिए गोल्डन, वो एक अचीवमेंट बन गए।
1: बिल्कुल। और ये एक हम कह सकते हैं कि आप फैन हैं अमिताभ जी के और आपने आकाशवाणी आप सुनते आए हैं, आकाशवाणी के भी आप फैन हैं।
2: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो आपने उनके डायलॉग्स रिकॉर्ड किए और देखिए संजोग आपको उनसे मिलने का अवसर मिला और आप इतने काबिल हैं, ये हम बता ही चुके हैं।
2: ये मोहब्बत है ना। मुझे एक गीत याद आता था, जाने कि लोग मोहब्बत किया करते हैं
1: जी, जी,
2: तो मुझे अब मालूम पड़ता है कि मोहब्बत इसलिए की जाती है कि जो आपका रोल मॉडल हो एक ना एक दिन पूरी कायनात अगर आप दिल से चाहो तो उस तक ले ही जाती है। जरिया आकाशवाणी बना, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है।
1: बिल्कुल। और देखिए आप आकाशवाणी के भी फैन है, तो आप आज यहाँ हमारे स्पेशल गेस्ट बनकर आए हैं।
2: क्या बात है, क्या बात।
1: तो जैसा आपने कहा, आप ही की पसंद का एक और गाना, क्योंकि मोहब्बत की बात हो रही है, तो महबूब की मेहंदी फिल्म से ये खूबसूरत गीत आप सबके लिए भी और सर आपके लिए भी।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: स्वागत आप सभी का आकाशवाणी के संग यादों के रंग प्रोग्राम में, जिसमें हम सेलिब्रेट कर रहे हैं आकाशवाणी के 90 खूबसूरत साल। और हमारे साथ इसी उपलक्ष में है एक विशेष अतिथि, श्री हरविंदर मांकड़, जो जाने माने कार्टूनिस्ट हैं, पटकथा लेखक भी हैं और फिल्म निर्देशक भी हैं। तो हरविंदर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कमेंट्री से जुड़ा क्या आपका कोई ऐसा याद है या फिर कोई ऐसा वाक्या है जो आप हमारे लिसनर्स के साथ यहाँ बांटना चाहेंगे?
2: देखें, अगर हम बात हिंदुस्तान की करें, सरजमीन हिंद पे अगर सबसे ज्यादा पसंद किए जाना खेल है क्रिकेट।
1: जी जी,
2: क्रिकेट और हॉकी ये हमारी मतलब रूहें रवा हैं, हमारी नसों में बसे हुए हैं।
1: जी,
2: और जब क्रिकेट हुआ करता था ना, तो उस समय जो कमेंट्री रेडियो या ट्रांजिस्टर पे आती थी, आहा हा हा, ऐसे लगता था कि मानो हम मैदान में बैठे हैं और बॉलर बॉल जो है वो मुझसे पूछ के ही करेगा। वो इतनी करीब चले जाते थे।
1: बिल्कुल।
2: सुशील दोषी हुआ करते थे, जो पुराने जानने वाले हैं हिंदी के कमेंटेटर, जसदेव सिंह जी हुआ करते थे, बहुत बढ़िया कमेंटेटर, नरोत्तम पुरी हुआ करते थे, बहुत अच्छे कमेंटेटर। ये लोग कमेंट्री एक इस तरह करते थे कि मानो आपके सामने इन्होंने बहुत बड़ी स्क्रीन खोल दी
1: जी,
2: और आप उसके ऊपर पूरा मैच विजुअल देख रहे हैं।
1: बिल्कुल, आंखों देखा हाल,
2: आंखों देखा हाल। तो ये आकाशवाणी का ही करिश्मा हो सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि खेलों को, खेल समाचारों को एक अलग ढंग से पेश करते थे ये लोग। खेल समाचार आया करते थे, आप भी आते होंगे, नेचुरली आते हैं, तो उसमें हर खेल के बारे में कैसे उसका कौन जीता, अगर एशियाड होते थे या ओलंपिक होते थे, तो ये आकाशवाणी हमेशा नंबर वन रहा है। और मैं इसकी कमेंट्री के लिए, मैंने एक छोटा सा ट्रांजिस्टर, मुझे याद है आज, तब खरीदा था, बिल्कुल जो
1: अच्छा।
2: पॉकेट ट्रांजिस्टर जिसको बोला जाता था। और उसको रात को या दिन को, जब भी वो समय, कई बार विदेश में होती थी तो वो रात को कमेंट्री होती थी।
1: जी, जी।
2: तो अपने सिरहाने के पास रखा, बस ऊपर चद्दर ली और सुनते रहे सुनील गावस्कर, व्यंग सरकर, वीनू मांकड़
1: जी,
2: आपके ये सारे खिलाड़ी जो उस समय के खिलाड़ी हुआ करते थे, बिशन सिंह बेदी साहब,
1: बिल्कुल,
2: तो वो एक अलग नशा था, एक अलग मजा था। तो आकाशवाणी, बहुत बहुत धन्यवाद इतने वर्षों के बाद मुझे वो सारी चीजें फिर से याद दिलाने के लिए। वो फिर से मेरे अंदर वही कशिश, वही प्यार, वही मोहब्बत अपने प्रति जताने के लिए और मुझे अपने स्टूडियो में बुलाने के लिए।
1: बिल्कुल, आपसे बातचीत यहाँ हम जारी रखेंगे। और मैं बिल्कुल ये एहसास कर सकती हूँ कि जो हमारे लिसनर्स हैं उन्हें भी इन बातों में बहुत आनंद आ रहा है। वो जानना चाहते हैं कि हरविंदर जी के पास और क्या खास है हमारे साथ बांटने के लिए। लेकिन उससे पहले हम उनकी यादों के पिटारे में से एक गाना, जो वो हमारे लिए लेकर आए हैं, उसे ज़रूर सुन लेते हैं। और आप वैसे बता सकते हैं, फिल्म है कुदरत।

0: तो बड़ी दिलचस्प बातचीत आज यहाँ हम कर रहे हैं। हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट हैं, और अगर आपने अभी ट्यून इन किया है तो मैं बता दूं कि आज का स्पेशल प्रोग्राम आकाशवाणी के संग यादों के रंग में हमारे साथ हैं श्री हरविंदर मांकड़ जी, और बहुत सारी अपनी सुरीली यादें वो हमारे साथ यहाँ साझा कर रहे हैं। तो सर, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या आपको लगता है कि जैसे आपने बताया कि बचपन से आप आकाशवाणी के साथ जुड़े हैं, एक लिसनर की तरह आप सुनते आए हैं और आपने कई बार आकाशवाणी पर प्रोग्राम भी दिए हैं, तो कहीं आपकी लेखनी में, आपके किसी कैरेक्टर में जो आप कार्टून बनाते हैं उनमें आकाशवाणी सुनते हुए या यहाँ के कुछ प्रोग्राम सुनते हुए या कुछ नाटक सुने जब आपने, तो क्या वो इन्फ्लुएंस हुए उनसे, आपकी सोच प्रभावित हुई और आपने कोई कैरेक्टर ऐसा बनाया कुछ भी?
1: सही पकड़े हैं आपने, पकड़ लिया। क्या है कि आकाशवाणी का एक प्रोग्राम आया करता था हवा महल, वो नाटक हुआ करते थे, मतलब इसको प्ले बोलते हैं, कॉमेडी के ज्यादातर हुआ करते थे, 10 से 15 मिनट का होता
0: बिल्कुल,
1: था
0: बिल्कुल।
1: और केपी सक्सेना जी और बहुत सारे जो उस समय के अच्छे व्यंगकार हुआ करते थे, उनकी कहानियों उनके लिखे होते थे। जब ऐसा होता है ना बचपन में आप ये चीजें सुनते हैं तो सब कॉन्शियस में कहीं ना कहीं वो मैनरिज्म रह जाता है, कोई करेक्टर रह जाता है। तो जब मैंने मामा जी कॉमिक सीरीज बनाई थी तो उसमें एक करेक्टर था यांगू।
0: अच्छा।
1: वो मुझे केपी सक्सेना साहब के एक कहानी थी चरोंजी का समथिंग कुछ, मुझे आज पूरा शायद नाम नहीं याद आ रहा मुझे उसका। तो वो उसमें वो एक यांगू नाम का लड़का था कि जो हमेशा एक ही चीज के जब पीछे पड़ जाता था तो उसको तब तक चुप नहीं कराया जा सकता था जब तक लाइट ना चली जाए मानिए घर की, जैसे रेडियो है
0: जी।
1: तो आकाशवाणी की तरह मैंने उसका नाम रख के यांगू को हमने आकाशवाणी बना दिया कि कॉमिक के अंदर, कि वो जब बोलना शुरू करता है तो सिर्फ सब सुनते सब इंटरेस्ट से हैं, लेकिन उसको चुप कैसे कराया जाए ये

0: ये किसी को मालूम नहीं होता था स्वयं मामा जी के। तो ये चीजें आकाशवाणी ने ही मुझे दी हैं, मतलब ऑल इंडिया रेडियो कहें आकाशवाणी कहें, क्योंकि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय अगर कोई किसी का नाम या टैगलाइन होती है तो सोचिए कि कितने सोच समझ के वो चीजें थी, जो आज तक मेरा ख्याल है अब 40-50 साल हो गए उस बातों को, 55 साल हो गए
1: जी जी,
0: जहन में है, जहनियत में है। तो ऐसे हवा महल और ऐसे नाटक अब तो बहुत सारे, जिसको हम स्किट कहते हैं या रील कहते हैं, ये आकाशवाणी सदियों पहले कर चुका है इन चीजों को, उसी से इंस्पायर होके आज लोग बना रहे हैं। तो ये अच्छी बात है क्योंकि ये इतिहास की एक चीज बन चुकी है और उसका जन्मदाता आकाशवाणी है।
1: क्या बात है। तो ऐसा लग रहा है हमें कि स्पेशल गेस्ट के रूप में हमारे साथ एक जो है आरजे ही है। आज आप ही की पसंद का अगला गीत अमर प्रेम फिल्म से मैं सुनवा रही हूँ सभी लिसनर्स को। आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: The Indian Navy invites online applications from unmarried male and female candidates for short service commission information technology entry. Last date for submission is 1st June 2026. For more details visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy, combat ready, cohesive, Atmanirbhar, safeguarding seas for a viksit samriddh Bharat.

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के संग यादों के रंग। मैं हूं आपके साथ अपराजिता और मेरे साथ हैं जाने माने कार्टूनिस्ट, लेखक, पटकथा लेखक और फिल्म निर्देशक भी, और वो हैं श्री हरविंदर मांकर। हरविंदर जी, हम आपके जीवन से जुड़ी और आकाशवाणी आपके जीवन से कैसा जुड़ा हुआ है, ये सारी बातें आज आपके साथ कर रहे हैं, आपकी यादों को जान रहे हैं बहुत करीब से। तो ओ मेरी महबूबा, ये गाना आपके दिल के बेहद करीब है, ये मुझे पता चला अभी ब्रेक के दौरान। तो इससे जुड़ी क्या कहानी है और वो कहानी आकाशवाणी से कैसे जुड़ी हुई है?
1: क्या बात है, क्या बात है, आपने वो तार हिलाई है जो मेरे अंदर तक पूरी बज गई। ये फिल्म शायद आई थी 70-75 के आसपास, मुझे थोड़ा नहीं उसकी नॉलेज ज़्यादा, और मैं 11-12 साल का था। तो हम लोग ये सुबह 9:30 उन दिनों आकाशवाणी पे शायद ये पहला स्पॉन्सर सॉन्ग आया करता था डेली, धर्मवीर अच्छा। फिल्म का
0: जी जी,
1: ओ मेरी महबूबा।
0: अच्छा,
1: मैं इतना ये रफी साहब का गाया था और मुझे तब ये, हालांकि 11 साल की उम्र में क्या महबूबा होगी, बट वो इतना अच्छा लगता था मुझे। और मैं 1.5 मील दूर मैदान में हम लोग क्रिकेट खेलने जाया करते थे, लेकिन मेरे को तब जैसे ही वहाँ 9:15 होते थे मैं भागता था
0: बिल्कुल,
1: कि मुझे घर आके फटाफट रेडियो पे ये सॉन्ग सुनना है
0: जी।
1: इतना प्यारा ये गीत था और तब आज तक अमर गीत है ये, आज भी उतना ही खूबसूरत है। तो ये आप खुद सोचिए ना, अगर आकाशवाणी ना होता और मैंने ये गीत सुना नहीं होता तो कैसे मैं शायद आज मैं फिल्में भी बनाता हूँ, फिल्मों में काम भी करता हूँ। तो मुझे वहाँ ले जाने का जो मेरे अंदर आग भरी है, जो जोश भरा है, जो जुनून भरा है, उसका सारा क्रेडिट आकाशवाणी को ही जाता है।
0: बहुत खूब। और अगर हम आपको अभी मौका दें कि आप इस गाने को एक आरजे की तरह इस कट को प्रेजेंट करें और ये गाना आपको नेक्स्ट प्ले करवाना है, तो आप कैसे करेंगे?
1: बहनों और भाइयों, आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के 90 साल का सफर, और जो गीत आप सुनने जा रहे हैं वो मोहम्मद रफी साहब का गाया है और धर्मवीर फिल्म का है, ओ मेरी महबूबा। देखिए, इसको सुनिए और अपनी अपनी सभी जहां जहां आपकी मोहब्बत है, प्यार है, उसे याद कीजिए ना, ओ मेरी महबूबा।

0: जी आज तो खूबसूरत गीतों का साथ रहा और बहुत सारी मजेदार बातें हमने आज श्री हरविंदर जी के साथ यहाँ की। और सर, जाने से पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि वैसे मैं अपने लिसनर्स को पहले बता देती हूँ कि सर एक बहुत ही जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और आप आकाशवाणी 90 वर्ष इस साल पूरे कर रहा है, इस उपलक्ष्य में आप आज यहाँ हमारे स्टूडियो में आए हैं, तो आप FM गोल्ड के जरिए हमारे लिसनर्स को क्या कुछ मोटिवेशनल बताना चाहेंगे, कहना चाहेंगे?
1: देखें, 90 साल अगर कोई संस्था या कोई शो, आकाशवाणी जैसी चीज अगर रहती है और पूरे गरूर और पूरे एकदम आत्मसम्मान के साथ रहती है तो उसमें कुछ तो बात होगी। वो बात है पॉजिटिविटी, वो बात है अच्छी चीजें करना। आकाशवाणी ने हमें सिखाया कि जिंदगी को मुस्कुरा के कैसे जीना है, हालातों से लोहा कैसे लेना है। हालात ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया तो आकाशवाणी कोई कम हुआ, वो उसी ही जोश से आज भी खड़ा है। क्योंकि रीज़न ये है कि सब कुछ बदलता है, समाज बदलता है। आप अपना एक फोकस, जो भी सुनने वाले हैं, अपना एक फोकस तय कीजिए, टारगेट तय कीजिए। बच्चों को भी एक अच्छी चीज़ें दीजिए, अच्छे संस्कार दीजिए, बड़ों की इज्जत दीजिए, माँ बाप की सेवा करना सिखाइए, जो हम भूलते जा रहे हैं। हमारे भारतीय संस्कार, भारतीय खाना और शुद्ध खाना, ये जो जंक फूड ने आके जो हम सब की जिंदगी के अंदर एक बवंडर ले आए हैं, उससे बचिए। बच्चों को कहिए कि अच्छे रहें, और अगर देखना है उनकी उड़ान को तो ये जोश रखिए कि जाओ और ऊंचा कर दो आसमान को।
0: बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप यहाँ आए और आपने हमें इतनी महत्वपूर्ण बातें और इतनी मज़ेदार बातें अपनी ज़िंदगी की, आकाशवाणी से जुड़ी और कुछ बातों के बीच में कुछ मोटिवेशन से जुड़ी बातें, बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ यहाँ आज शेयर की। इसके लिए मैं आकाशवाणी की तरफ से, अपनी पूरी टीम की तरफ से आपको धन्यवाद करती हूँ और ये उम्मीद करती हूँ कि आकाशवाणी के संग यादों के रंग में आगे भी ऐसे ही स्पीकर्स आते रहेंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इस सम्मेलन का उद्देश्य प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा, सतत विकास और व्यापार जैसे क्षेत्रों में नॉर्डिक देशों के साथ भारत की साझेदारी को मजबूत करना है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनास गोहरस्टोर्क के अलावा डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन, फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेटेरी ओर्पो, आइसलैंड के प्रधानमंत्री सुश्री क्रिस्टन फ्रॉस्टोडेटर और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन भी शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। शिखर सम्मेलन के इतर प्रधानमंत्री मोदी ने आज ओस्लो में आइसलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टन म्योर फ्रॉस्टोडेटर और फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेटेरी ओर्पो के साथ द्विपक्षीय

0: बैठकें की। भारत और स्वीडन का विश्वास है कि वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में सहयोग से साझा समृद्धि और सतत भविष्य का मार्ग प्रशस्त होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेसन द्वारा लिखे गए एक लेख में इस बात का उल्लेख किया गया है कि बढ़ती भू राजनीतिक अनिश्चितता, ऊर्जा असुरक्षा, आर्थिक बिखराव के इस समय में दुनिया को फैसला करना है कि वो या तो संकीर्ण राष्ट्रीय सोच की ओर लौट जाए या फिर आपसी सहयोग को सुदृढ़ करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम इटली के रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। श्री मोदी इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के व्यक्तिगत निमंत्रण पर वहां जा रहे हैं। और ब्यौरा रोम में मौजूद हमारी संवाददाता सुपर्णा भाटिया से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इटली पहुंचने वाले हैं, जो उनके 5 देशों के दौरे का अंतिम चरण है। इस यात्रा से भारत इटली रणनीतिक संबंधों को कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई गति मिलने की उम्मीद है। व्यापार, निवेश और औद्योगिक साझेदारियों से जुड़ी सहयोग योजनाओं की घोषणा होने की संभावना है, क्योंकि दोनों देश आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और सहयोग के नए क्षेत्रों की तलाश में हैं। व्यापारिक संबंध पहले से ही मजबूत हैं और इस यात्रा के दौरान होने वाली उच्च स्तरीय वार्ताओं के बाद इनके और आगे बढ़ने की उम्मीद है। मुझे यहाँ भारतीय प्रवासी समुदाय से बात करने का भी अवसर मिला, जो प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर विशेष रूप से उत्साहित हैं।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने, भारत की प्रतिस्पर्धात्मक बढ़ाने और विकसित भारत की दिशा में देश की प्रगति के लिए उद्योग और सरकार के बीच सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने ये बात आज नई दिल्ली में आयोजित भारत व्यापार सुधार सम्मेलन में कही। श्री गोयल ने कहा कि वर्तमान वैश्विक स्थिति और भू राजनीतिक अनिश्चितताओं को भारत के लिए व्यापारिक प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करने, तेजी से सुधार करने, अधिक लचीलापन विकसित करने और आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने के अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। श्री गोयल ने कहा कि व्यवसायों को उभरती प्रौद्योगिकी और वैश्विक विकास को अवसरों के रूप में देखना चाहिए। रेलवे ने 54 किलोमीटर लंबे केवला झाझा तीसरी लाइन प्रोजेक्ट के लिए 962 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि ये प्रोजेक्ट हावड़ा दिल्ली कॉरिडोर की क्षमता को बढ़ाएगा। रेलवे ने अरक्कोनम चिंगलपट्टू दोहरीकरण परियोजना के लिए भी 993 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। चेन्नई उपनगरीय रेल नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए ये फैसला किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों से पकड़े गए लावारिस कुत्तों को टीकाकरण या नसबंदी के बाद वापस न छोड़ने के अपने पूर्व निर्देशों को वापस लेने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने नवंबर 2025 के आदेश में संशोधन की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया और अधिकारियों को ऐसे कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने का निर्देश दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने जन सुरक्षा को देखते हुए रेबीज, बुरी तरह बीमार या खतरनाक कुत्तों को पहली बार मौत का इंजेक्शन देने की भी अनुमति दे दी है। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ ने देश में आवारा कुत्तों की बढ़ती जनसंख्या से निपटने के मद्देनजर कई निर्देश जारी किए हैं। जयपुर में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। अंक तालिका में राजस्थान 5वें और लखनऊ 10वें नंबर पर है। प्लेऑफ के मद्देनजर ये मुकाबला राजस्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। मौसम विभाग ने दिल्ली, मध्य प्रदेश, पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज भीषण लू चलने का अनुमान लगाया है। बिहार और मराठवाड़ा में भी आज ऐसे ही स्थिति रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi will attend the 3rd India-Nordic Summit in Oslo this afternoon. The Prime Ministers of Norway, Sweden, Iceland, Finland and Denmark will also be taking part in the summit. This summit will build upon the increased sectoral cooperation between India and the Nordic countries since the previous summit held in Copenhagen in Denmark in 2022. The areas in focus are tech and innovation, sustainability, renewable energy and digitization. With trade and economic partnership agreement in force, the summit will try to forge deeper trade and investment linkages. On the sidelines of the summit, Prime Minister Modi today held a bilateral meeting with Prime Minister of Iceland, Kristrún Mjög Frostadóttir. Prime Minister Modi reached Norway yesterday after completing

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

नमस्कार, मैं मालिनी अवस्थी। मुझे लगता है मेरी जिंदगी की पूरी कहानी यदि आप लिखेंगे तो उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा आकाशवाणी के हवाले होगा। 90 बरस हुए और आप ये समझ लें कि 50 साल का मेरा जुड़ाव रेडियो से है। मैं 10 बरस की थी, गोरखपुर में आकाशवाणी गोरखपुर का सेंटर खुला था नया, और तब बाल जगत में सबसे पहले तो बच्चों के साथ और भैया दीदी के साथ बैठ करके बात करते थे, और वो पहला अनुभव था। ये बात हो गई 76 के, और बड़े अच्छे कमाल के ज्ञानवर्धक बातें, बच्चों को अपनी कविताएं सुनानी होती थी, कोई गा सकता है तो गाए भी, तो आकाशवाणी एक तरह से इल्म भी था। फिर वहां से रेडियो में युववाणी है, फिर अब जनरल है, फिर अब टॉप ग्रेड तक पहुंचना है, एक तरह का वो हमारे लिए सीढ़ी बन गई। गोरखपुर से लखनऊ आकाशवाणी, फिर दिल्ली रेडियो, तो हमारे लिए पूरी दुनिया में बल्कि भारतवर्ष में कॉन्सर्ट्स में हम जब यात्रा करते अलग अलग शहरों में, तो सबसे खुशी होती थी कि जब नाम के साथ ये जुड़ता था कि अब आपके सामने आ रही आकाशवाणी कलाकार मालिनी अवस्थी। और सबसे बड़ी बात आज यहाँ जरूर कहूंगी कि आकाशवाणी इस मामले में एक बहुत क्वालिटी कॉन्शियस था। आप किनको गा सकते हैं और किनको नहीं गा सकते, रेडियो का जो एक स्टैंडर्ड था वो इतना कमाल का था, तो हमारे लिए आकाशवाणी स्टूड लाइक गोल्डन स्टैंडर्ड ऑफ व्हाट नीड्स टू बी फॉलोड। मारे करे जुवा माती बलम घरे ना मोरे नने दी,

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: on the official website, that is at www.dfccil.com. The last date for submission is 30 days from the date of publication in the Employment News. I repeat the website, kindly refer to www.dfccil.com. BRIC National Agri-Food and Biomanufacturing Institute, Mohali, has invited applications for several scientific, administrative and technical posts including Scientist D, Assistant Engineer Civil Electrical, Senior Private Secretary and Senior Technical Assistant. The vacancies are on direct recruitment basis with pay levels ranging from level 6 to level 12 as per the 7 CPC. Candidates with qualifications in life sciences, biotechnology, engineering, food technology, administration and related fields can apply. The last date for online applications is 1st June 2026. Detailed advertisement and online application process is available on the website, that is at https://www.nabi.res.in. I repeat the address, it is www.nabi.res.in. National Tuberculosis Institute, NTI Bengaluru, under the Ministry of Health and Family Welfare, has invited applications for one post of Junior Bacteriologist on deputation basis for an initial period of 3 years. Applications from eligible officers working in central, state government departments, PSUs and autonomous bodies must be submitted through proper channel within 60 days from the date of publication of this advertisement in the Employment News. Full details available on the website, that is at www.nti.gov.in. I repeat, www.nti.gov.in. Indian Bureau of Mines, IBM, Ministry of Mines has invited applications for the post of a director in pay level 15 on deputation or short-term contract or promotion basis. Eligible officers from government departments, PSUs, universities and research institutions can apply within 60 days from the date of publication of this advertisement in the Employment News. Details available on the website at www.ibm.gov.in. Delhi Urban Art Commission, DUAC, under the Ministry of Housing and Urban Affairs, has invited applications for the post of an administrative officer and private secretary on deputation basis. Interested candidates can check eligibility conditions and application details on the official website. Applications must reach within 60 days from the date of publication of this advertisement in the Employment News. For details, kindly refer to the website, that is at www.duac.org.in. Hemvati Nandan Bahuguna Garhwal University, Srinagar Garhwal, Uttarakhand has invited online applications for the post of a Registrar, Executive Engineer Civil and Section Officer on direct recruitment, tenure and deputation basis. The university is seeking experienced and qualified candidates with a strong academic and administrative background. Online applications, last date to apply is 25th May 2026. Candidates should regularly check the official university website for details. And the website is www.hnbgu.ac.in. I repeat, www.hnbgu.ac.in. And now we have the employment news in Hindi.
1: समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के साथ हाजिर हूँ मैं विनीता। आइए कुछ जानकारी लेते हैं रिक्तियों से संबंधित। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी। सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या फिर स्वायत्त निकायों या सांविधिक संगठनों या फिर सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के पात्र अधिकारियों से सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद प्रतिनियुक्ति के आधार पर मुख्य ड्रिल प्रशिक्षक के एक पद को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। इस पद के लिए वेतन, आवश्यक योग्यताएं, अन्य पात्रता मानदंड और आवेदन प्रपत्र एकेडमी की वेबसाइट पर मिल जाएगी, जो है www.svpupa.gov.in/vacancies। इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज। इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज IDS जयपुर, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली और राजस्थान सरकार द्वारा संयुक्त रूप से निशिबद्ध राजस्थान में अनुसंधान में संलग्न एवं स्वायत्त प्रमुख सामाजिक विज्ञान अनुसंधान संस्थान है। यहाँ पर कुछ पद के लिए आवेदन आमंत्रित किया जा रहा है। लेखा कार्यपालक, ये पद का नाम है। पदों की संख्या होगी एक और आयु सीमा की बात करें तो 18 से 40 वर्ष। पदों की प्रकृति होगी संविदागत आधार पर और श्रेणी है अनारक्षित। इन्हें मिलेंगे 62,000 रूपए और PF। कनिष्ठ कार्यालय सहायक, एक पद यहाँ पर भी रिक्त है। 18 से 40 वर्ष के बीच इनकी आयु होनी चाहिए और ये स्थायी पद होगा, अनारक्षित है। ये ग्रेड पे 2400 के लिए है। 18 से 40 वर्ष में एक और पद रिक्त है, वो है कनिष्ठ कार्यालय सहायक का, संविदागत आधार पर अनारक्षित। इन्हें मिलेंगे 33,000 रूपए प्लस PF। चालक, एक स्थान रिक्त है, 18 से 40 वर्ष स्थायी होगा, ये अनारक्षित है। इसमें आपका ग्रेड पे होगा 2400। एक स्थान यहाँ रिक्त है, 18 से 40 वर्ष की उम्र, स्थायी अनारक्षित और ये ग्रेड पे 1700 के अंतर्गत आते हैं। आयु में छूट पर राजस्थान राज्य सरकार मानकों के अनुसार विचार किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त संस्थान IDS JGB निर्माण के अनुसार आयु में मानदंड में छूट देने का अधिकार सुरक्षित रखता है। सभी पदों के लिए निर्धारित आवेदन पत्र आपको मिल जाएगा वेबसाइट पर, जो है www.idsg.org/vacancies। इस विज्ञापन के प्रसारण के 15 दिनों के अंदर आप आवेदन कर सकते हैं। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, भारतीय खान ब्यूरो। भारतीय खान ब्यूरो IBM में सामान्य केंद्रीय सेवा, अराजपत्रित राजपत्रित समूह बी के स्तर 7 के अंतर्गत सहायक भंडार अधिकारी के एक पद को प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरने के लिए केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार या फिर संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या फिर सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम या सांविधिक निकायों मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान के अधीन अधिकारियों से आवेदन आमंत्रित किया जा रहा है। विभाग में इन पद के लिए आवेदन की अंतिम तारीख होगी इस विज्ञापन के प्रसारण के 60 दिनों के अंदर। आवेदन करने वाले सभी आवेदकों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।
2: This program was produced and presented by the New Services Division of Akashvani.

0: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
1: नमस्कार श्रोताओं, जिंदगी की एक नई शाम में हम आ गए हैं न्यूज मैगजीन परिक्रमा का एक नया अंक लेकर। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, रोजाना की तरह चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास भी और जानेंगे कि उनके पास आज हमारे लिए क्या खास जानकारी है। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और उन खास व्यक्तित्वों को भी हम याद करेंगे जिनकी आज पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन है। आज के अंक में मैं हूं सरफिरोजी और मेरे साथ हैं अनुजा।
2: यस हेलो एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून सरफिरोजी। वी ऑल नो दैट आवर प्राइम मिनिस्टर इज ऑन द टूर टू द नॉर्डिक रीजन एंड रेफरिंग टू आवर प्राइम मिनिस्टर बीइंग ऑनर्ड देयर, इट इज हार्ट वार्मिंग एंड अ वेलकम्ड जेस्चर बाय स्वीडन।

0: Norway, they conferred their highest civilian and state honours on the Indian Prime Minister during his bilateral visit to the Nordic region day before yesterday and yesterday as well, bringing his total international accolades to 32. The recognition has bolstered his political standing as supporters and the ruling party highlight his global popularity and rising international clout as well. Political representatives in India have praised the development, stating that the accolades elevate India's global prestige and signify how the country is acknowledged and respected on the world stage nowadays. PM Modi also dedicated these prestigious honours to the people of India and the historic friendships his country shares with the Nordic nations. Isn't it, Sir Firozi?
1: Bilkul, Anuja.
0: It's a matter of great pride. And now, shall we begin with a real parikrama? Let's begin with the news making headlines at this hour of the day, Sir Firozi.
1: Bilkul, Anuja. Baat ho rahi thi PM Modi ki yatra ki. To Pradhan Mantri Narendra Modi Pradyogiki Navikarniya Urja Raksha aur Vyapar mein Sahyog ko Mazboot karne ke Uddeshya se Ayojit Teesre Bharat Nordic Shikhar Sammelan mein Bhag Lenge.
0: Prime Minister Modi and his Swedish counterpart Ulf Kristersson, in a joint newspaper article, stress on partnerships in times of global uncertainty.
1: सर्वोच्च न्यायालय का टीकाकरण या नसबंदी किए गए लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने के अपने पूर्व आदेश को वापस लेने से इनकार.
0: IMD shows yellow alert for heat wave in national capital for the next 3 days.
1: और IPL क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से.
0: And Sir Firozi, it's now time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or global level. And today we will talk about World Fair Play Day. We welcome you all to our special segment dedicated to a brand new global celebration, that is World Fair Play Day, which is observed for the very first time on 19th of May 2025. Now, when we hear the words fair play, most of us immediately think of sports, a footballer helping an injured opponent, a cricketer walking off the field honestly, even before the umpire gives her decision. Players shaking hands after an intense match. But fair play is much more than that. It is about respect, honesty, equality, kindness, discipline, and of course, humanity. And today's program will explore how sports and fair play can transform not just the games, but society itself.
1: बिल्कुल अनुजा, और बात करें वर्ल्ड फेयर प्ले डे के इतिहास की, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1 जुलाई 2024 को अपनाए गए एक प्रस्ताव के माध्यम से आधिकारिक तौर पर 19 मई यानी आज के दिन को विश्व फेयर प्ले दिवस के रूप में घोषित किया. और ये प्रस्ताव दोस्ती, एकजुटता, सहिष्णुता, समावेशन और खास तौर पर भेदभाव रहित व्यवहार जैसी खेल भावनाओं को बढ़ावा देते हैं. खेल महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाते हैं, दिव्यांग व्यक्तियों को सहयोग देते हैं और युवाओं को जिम्मेदार वैश्विक नागरिक बनने के लिए प्रेरित करते हैं.
0: So listeners, let's begin with a simple question. What exactly is fair play? Fair play means following the rules honestly, respecting teammates and opponents, accepting victory with humility, accepting defeat with dignity, and rejecting violence, cheating, racism, and doping. Fair play reminds us that how we win matters just as much as winning itself.
1: बिल्कुल अनुजा, जैसा कि आपने कहा कि फेयर प्ले जो शब्द है उसे सुनकर खासतौर पर हमारे दिमाग में स्पोर्ट्स ही आता है, पर हम सभी को पता होना चाहिए कि आज सिर्फ स्टेडियम में नहीं बल्कि हर जगह निष्पक्षता यानी फेयर प्ले की जरूरत है, चाहे वो स्कूल हो, आपके वर्क प्लेस हो, ऑनलाइन आप कोई ओपिनियन दे रहे हैं या ओवरऑल सोसाइटी की बात हो. जब लोगों के साथ बराबरी और सम्मान से पेश आया जाता है तो लोग ज्यादा मजबूत और खुशहाल बनते हैं और खेल हमें ये सबक अपने आप सिखा देते हैं. खेलों को अक्सर इंसानियत की यूनिवर्सल भाषा कहा जाता है. ऐसा इसलिए क्योंकि हम चाहे कहीं से भी आए हों, खेल हमें तुरंत आपस में जोड़ देते हैं. ब्राजील में फुटबॉल मैच, भारत में क्रिकेट, यूएसए में बास्केटबॉल, केन्या में एथलेटिक्स, अलग अलग खेलों की भावनाएं एक जैसी होती हैं. इनमें एक जैसी खुशी होती है, टीम स्पिरिट होता है, जीतने का पक्का इरादा, और खेल मनोरंजन से हटकर हमारे सर्वांगीण विकास के लिए भी जरूरी होते हैं.
0: And at a time when many young people spend hours

0: on phones and computers, sports do encourage active and healthy lifestyles. Sports also build mental strength. They teach us confidence, patience, focus, discipline, and resilience. Athletes learn how to handle pressure, recover from failure, and keep trying despite setbacks. That's a lesson valuable in every aspect of life. Other than this, sports also teach teamwork. In sports, no one succeeds alone. Players learn how to cooperate, how to communicate, the trust, the leadership, and responsibility. Whether you are on a football field or in an office meeting later in life, teamwork remains essential, isn't it?
1: बिल्कुल अनुजा, और खेल यानी स्पोर्ट्स की जो सबसे खूबसूरत बातों में से एक है वो ये है कि ये अलग अलग कल्चर और सीमा के पार लोगों को भी एक साथ लाते हैं. जब एथलीट इंटरनेशनल लेवल पर मुकाबला करते हैं तो हमें मैच के दौरान स्टेडियम में या खेल के मैदान में इन देशों के बीच की दोस्ती भी दिखती है. अलग अलग बैकग्राउंड के फैंस एक साथ जश्न मनाते हैं, जो ये साबित करता है कि स्पोर्ट्स यानी खेल दूरियों को कम कर सकते हैं.
0: नाउ लेट्स talk about some moments where fair play touched hearts around the world. There have been athletes who stopped running to help injured competitors. There have been teams who refused unfair advantages even when victory was at stake. And there have been players who used their fame to fight racism, discrimination, and injustice. These moments remind us that sports are not just about trophies. They are about character.
1: बिल्कुल अनुजा, जो सच्चे विजेता होते हैं उनके लिए सिर्फ जीत ही नहीं बल्कि उनकी कैरेक्टर, उनकी वैल्यू के लिए भी उन्हें याद किया जाता है. और खेल वैश्विक विकास लक्ष्यों में भी योगदान देते हैं. वर्ल्ड फेयर प्ले डे कई सतत विकास लक्ष्यों का भी समर्थन करता है जिन्हें SDGs के नाम से भी जाना जाता है.
0: Yes, and these sustainable development goals, they include good health and well-being, quality education, that sports teach life skills such as discipline and teamwork, gender equality, sports empower women and girls and challenge stereotypes. They also reduce inequalities. Sports include people from all backgrounds and abilities. Peace, justice, strong institutions, fair play promotes all these things. Respect, justice and peaceful communities as well.
1: यही कारण है कि दुनिया भर की सरकारों, स्कूलों और खेल संगठनों को इस दिन को मनाने और जागरूकता फैलाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, क्योंकि खेलों के माध्यम से हम सोसाइटी में पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं. निष्पक्ष खेलों को बढ़ावा देने में युवाओं की खास तौर पर बहुत बड़ी भूमिका होती है. और अनुजा, ऐसा ही कहा जाता है कि जो आज के युवा हैं वो कल के नेता हैं. जब बच्चे खेलों के जरिए ईमानदारी, समावेश और सम्मान जैसे मूल्यों को सीखते हैं तो वे बड़े होने पर भी उन मूल्यों को अपने जीवन में बनाए रखते हैं. और कैसे स्कूल और माता पिता निष्पक्ष खेल को बढ़ावा दे सकते हैं अनुजा?
0: Yes, just to look into the few points. They promote participation over unhealthy competition, celebrating effort and also teamwork, and teaching children to respect everyone equally. And listeners, sports should be accessible to everyone, boys and girls, rich and poor, able-bodied persons and persons with disabilities. The spirit of fair play means nobody should be left behind. Inclusive sports create inclusive societies.
1: बिल्कुल अनुजा, और श्रोताओं, फेयर प्ले सिर्फ एथलेटिक फील्ड के लिए नहीं है. आप दूसरों की बात सुनकर, दूसरों की मदद कर, भेदभाव से बचकर, एग्जाम या वर्कप्लेस पर ईमानदार रहकर और खास तौर पर बुलिंग के खिलाफ खड़े होकर भी फेयर प्ले की भावना को बढ़ावा दे सकते हैं.
0: एंड दैट्स द रियल मैसेज ऑफ World Fair Play Day. Not just play fair in sports, but also live fair in life. Dear listeners, every game teaches us something. Sometimes we win, sometimes we lose.
1: बिल्कुल अनुजा, लेकिन हर बार जब हम ईमानदारी और सम्मान के साथ खेलते हैं तो एक इंसान के तौर पर भी हम बेहतर बनते हैं. खेल हमें सिखाते हैं कि असफलता अस्थाई होती है लेकिन आपकी कड़ी मेहनत मायने रखती है.
0: Of course, whether you are a professional athlete, a student, a coach, or simply someone who enjoys playing for fun, remember, fair play makes sports beautiful, and sports make life healthier, happier, and more united. Let's play fair, live fair, and build a better world together.
1: और श्रोताओं, अब आपको लेकर चलेंगे देश दुनिया की परिक्रमा पर और जानेंगे कि अपने हमारे क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास आज हमारे लिए क्या खास जानकारी है। सबसे पहले बात कर रहे हैं गुजरात की। गुजरात के कच्छ की सदियों पुरानी पारंपरिक कॉपर बेल हस्तकला को GI टैग मिलने के बाद अब अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिल चुकी है। ये ऐतिहासिक कला अब ग्रामीण कारीगरों की किस्मत बदलने के साथ साथ विश्व स्तर पर भी भारत का गौरव बढ़ा रही है।
2: गुजरात के सीमावर्ती कच्छ जिले की सदियों पुरानी पारंपरिक कॉपर बेल हस्तकला को GI टैग मिलने के बाद अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई और अनूठी पहचान मिली है। कच्छ की यह अद्भुत और ऐतिहासिक कला आज एक बड़ा वैश्विक ब्रांड बन चुकी है, जिससे स्थानीय ग्रामीण कारीगरों को वैश्विक बाजार में अपनी कला का प्रदर्शन करने का सुनहरा अवसर मिला है। लोहे के कबाड़ से बेहद मधुर और सुरीली गूंज पैदा करने वाली ये कलात्मक घंटियां अब अमेरिका और ब्रिटेन जैसे विकसित देशों के आलीशान घरों के ड्राइंग रूम की शोभा बढ़ा रही है। GI टैग मिलने के बाद इन घंटियों की मांग विदेशों में काफी तेजी से बढ़ी है और वर्तमान में इन्हें 500 से अधिक नई और आधुनिक डिजाइनों में तैयार कर बड़े पैमाने पर निर्यात किया जा रहा है। कच्छ का झूरा गांव इस ऐतिहासिक कॉपर बेल हस्तकला का मुख्य केंद्र माना जाता है, जहां कई पीढ़ियों से कारीगर परिवार लोहे के कबाड़ को बड़ी कुशलता से हथौड़े से पीट कर सुंदर घंटियों का आकार देते हैं। इस निर्माण प्रक्रिया के तहत सबसे पहले घंटी की मुख्य बॉडी कैप और हैंडल तैयार किया जाता है और फिर उस पर तांबे या पीतल की परत चढ़ाई जाती है। इसके बाद इसे भट्टी में पूरी तरह तपाकर अंतिम रूप दिया जाता है और अंत में कारीगर अपने पारंपरिक अनुभव से घंटी के भीतर एक अत्यंत मधुर रणकार पैदा करता है। इस प्राचीन कला को पुनर्जीवित करने में राज्य सरकार की गर्वी गुर्जरी संस्था, कार्यशालाओं और लोन योजनाओं का बड़ा योगदान रहा है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है और नई पीढ़ी के युवा भी इस गरिमापूर्ण व्यवसाय की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। परिक्रमा के लिए बूट से परेश मारू।
0: एंड सर फिरोजी, स्पाइसेस दे सर्व टू एनहांस द फ्लेवर ऑफ फूड।
1: बिल्कुल।
0: एंड अमंग स्पाइसेस द चिली पेपर होल्ड्स द टॉप स्पॉट। Our country boasts a wide variety of chili peppers. In the Parbhani district of the Marathwada region lies a village called Kapsi, which is currently making headlines thanks to its red chilies. Let's listen to what our correspondent has to say.
3: भारत में आज भी कई लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती किसानी ही है। किसी भी गांव के पास खेतों में जाकर देखें तो कई तरह की फसलें दिखाई देती हैं। लेकिन परभणी जिले में कापसी नाम का एक गांव ऐसा है जहां के अधिकतर किसान मिर्च की पैदावार लेते हैं। लगभग 1200 आबादी के इस गांव की उगाई लाल मिर्च इन दिनों काफी चर्चा में है। गाँव में 450 हेक्टेयर की कुल खेती में से पूरे क्षेत्र पर खरीफ मौसम में केवल मिर्ची की पैदावार ली जाती है। इस पैदावार के लिए लगने वाले 100% बीज यही की मिर्ची के होते हैं, जो इन किसानों ने पारंपरिक रूप से कई सालों से संजोए हैं। हर वर्ष लगभग 25 जुलाई के बाद बुवाई शुरू होती है और जनवरी के मध्य में मिर्ची तैयार होती है। हरी मिर्च को पौधों पर ही पकने के लिए रखा जाता है। सुर्ख लाल रंग आने पर ही मिर्ची की तुड़ाई होती है। इस काम के लिए आसपास के कई गांवों की महिलाएं आती है, जिन्हें दिन भर 14-15 किलो मिर्च तोड़ने के बाद मेहनताने के रूप में 1 किलो मिर्च या 350 रुपए दिए जाते हैं। तोड़ने के बाद इस मिर्च को घरों के छतों पर कम से कम हफ्ता भर के लिए सुखाया जाता है। गांव में हर एकड़ में 8 से 9 क्विंटल तक मिर्च का उत्पादन होता है और सूखी मिर्च को लगभग 350 से 380 रुपए किलो तक दाम मिलते हैं। कापसी गांव के किसान पहले अपनी मिर्च को आसपास के गांव में ही बेचते थे। कई व्यापारी सीधा इनके खेतों में जाकर किसानों से मिर्च खरीदते भी थे, लेकिन किसानों को इस मिर्च के तब अच्छे दाम नहीं मिलते थे। कुछ युवा किसानों ने कुछ वर्ष पूर्व मुंबई और दूसरे शहरों के मार्केट में जाकर अपनी मिर्च बेचने का निर्णय लिया और उन्हें उसके अच्छे दाम मिले। आज कापसी गांव की मिर्च को मुंबई के साथ साथ आखाती देशों से भी अच्छी मांग है। इस बार खरीफ मौसम में कापसी गांव ने 1200 क्विंटल मिर्च की उपज की है। तीखी लाल मिर्च के माध्यम से इस गांव के किसानों के जीवन में मिठास आई है। परिक्रमा के लिए छत्रपति संभाजीनगर से मैं हर्षवर्धन दीक्षित।
1: हर साल की तरह इस बार भी गोवा में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई को मनाया गया। राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और युवाओं में संग्रहालयों के प्रति रुचि बढ़ाना इसका उद्देश्य था। एक रिपोर्ट।
4: गोवा विज्ञान केंद्र में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस समारोह के दौरान गोवा की समृद्ध संस्कृति और इतिहास की झलक देखने को मिली। माई ओन कलेक्शन नामक प्रदर्शनी का आयोजन 16 से 18 मई तक किया गया, जिसमें पुराने सिक्के, 50 देशों की मुद्रा, मिनिएचर, चॉकलेट रैपर के विविध संग्रह और कई अनोखे संग्रहणीय वस्तुएं प्रदर्शित की गई, जिन्हें हॉबी कलेक्टर्स ने प्रस्तुत किया। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि
5: हमने म्यूजियम डे इस फंक्शन ऑर्गेनाइज किया था माय ओन कलेक्शन, जो गोवा के बच्चों से लेके सीनियर सिटीजन डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो चीज स्टैम्प से लेके ट्रेडिशनल गिफ्ट आइटम्स जो है उसका कलेक्शन

0: She was posthumously awarded the Padma Bhushan in 2006.
1: श्रोताओं अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का. इजाजत दीजिए सर फिरोजी और अनुजा को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की. नमस्कार.
2: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है. मीडियम वेव 305.81 मीटर यानी 981 किलो हर्ट्स और फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.8 मेगा हर्ट्स पर. शाम के 5 बजे हैं. कुछ ही पलों में हमारा अगला प्रसारण होगा. यह आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है. प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ.

0: दीवाने गजराज
1: नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 75 है। ये धूरिया, अरचोका, भेलकक्ष, पेंडारी, बोदरई, शाही डांड के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वन मंडल के सूरजपुर में हाथियों की कुल संख्या 3 है। ये कल्याणपुर, कोटबहरा, घाघीटी, टिकरा, मोहनपुर, हरिपुर, सुंदरगंज, बोझा, माया

0: पुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वन मंडल के वाड्रफ नगर, रामानुजगंज और राजपुर में हाथियों की कुल संख्या 26 है। ये मिंडारी, प्रेमनगर, भगवानपुर, नवापारा, चिनिया, महावीरगंज, रामपुर, कनकपुर, कुंदीकला, जामदोहर, अखोरा, बदौली, जवा खांड के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वन मंडल के लुंड्रा, उदयपुर और मैनपाट में हाथियों की कुल संख्या 25 है। ये पड़ौली, किशुनपुर, जमीरा, चकेरी, बासेन, परसा, सानीबर्रा, बरवाली, बरडांड, दातीढाप, घटगांव, कंडराजा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वन मंडल के कुनकुरी और पत्थल गांव में हाथियों की कुल संख्या 34 है। ये नारायणपुर, जामचुआ, बिलासपुर, चरईमारा, रानी कोम्बो, हस्तिनापुर, खड़ा चा, पीठा आमा, राजा आमा, महेशपुर, झिमकी, कुकुर गांव के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वन मंडल के छाल, धर्मजयगढ़, कापू और बोरो में हाथियों की कुल संख्या 122 है। ये गिरसा, पोटिया, आमगांव, रुपुंगा, तेजपुर, बेहरामार, बनहर, अवरानारा, पुरुंगा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। गढ़घोरा वन मंडल के जडगा और केंदई में हाथियों की कुल संख्या 50 है। ये बांधापारा, लालडी, झुनकीडी, कुकरी कादर, डंग बोरा, कोदवारी, खड़पड़ी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वन मंडल के रायगढ़ और घरघोड़ा में हाथियों की कुल संख्या 18 है। ये बंगूरसिया, नवागांव, चक्रधरपुर, जुनवानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सारंगढ़, बिलाईगढ़ वन मंडल के गोमरडा अभ्यारण्य में एक हाथी विचरण कर रहा है। ये आमाकोनी, नवापारा, सरायपाली, गंधरा चुआ के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वन मंडल के बार और कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 29 है। ये पकरीत, कोठारी, गुड़ागढ़, फुरफुंदी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये ओड़, अमलोर, ताराजह, डडई पानी, बुडार, सिंहार, छिंदौला, लूठापारा, नारीपानी, डूमर घाट, कोदोमाली, मासूल खोई के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गाँव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दें। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दे। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमार हाथी हमार गोट।
2: हमार हाथी हमार गोट ये प्रायोजित कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी रायपुर है। कुछ ही पलों में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। श्रोताओं, अब समय है कार्यक्रम विवरण का।

आइए श्रोताओं आपको जानकारी दे दें हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों की। स्पोर्ट्स कैन सुनिएगा रात 8:30 पर, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात 10:30 पर सुनिएगा पंडित निखिल बैनर्जी का सितार पर बजाया राग रागेश्री। अब से कुछ ही देर में यानी शाम 5:10 पर युवाओं के कार्यक्रम युववाणी में आज अपन गोट का विषय होगा पढ़ाई लिखाई के महत्व, और होंगे क्रम सवाल जवाब और माटी के गीत। प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़ियां आप सुनेंगे शाम 6:30 पर। किसान साथियों के कार्यक्रम चौपाल में शाम 7:21 पर आज की बात का विषय होगा वनोपज का गुणवत्तापूर्ण संग्रहण है ज्यादा आमदनी का आधार, और फोन इन कार्यक्रम हेलो किसानवाणी में धान में श्री विधि अपनाएं उत्पादन बढ़ाएं, इस विषय पर जानकारी देंगे मनीष कुमार वर्मा, संचालन नीतू शर्मा का और प्रस्तुतकर्ता होंगे शशि प्रकाश पांडे। रात 9:30 पर सुनिएगा रूपक भीड़ में गुम होते घर, लेखक श्री सुरेश तिवारी और प्रस्तुति होगी श्री मिर्जा मसूद की। श्रोताओं की पसंद पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद पेश करेंगे रात 10:00, और श्रोताओं चित्रपट संगीत का प्रसारण समय होगा शाम 7:00, रात 8:00 और रात 9:15 पर। तो ये थी आज प्रसारित किए जाने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी। अब एक नज़र कल के प्रमुख कार्यक्रमों पर। स्पोर्ट्स कैन रात 8:30 पर और रात 9:30 पर चर्चा का विषय है। ये दोनों ही कार्यक्रम हम कल आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कल सुबह 7:00 पेश करेंगे सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर, प्रस्तुतकर्ता होंगे देवव्रत भगत। पत्रोत्तर कार्यक्रम आपके पत्र का प्रसारण समय होगा कल सुबह 8:30 पर। कल सुबह 9:00 गांधी चर्चा के अंतर्गत सुनिएगा महात्मा गांधी के संस्मरण मेरे समकालीन का धारावाहिक पाठ, वाचक स्वर प्रकाश उदय और रमा शंकर के होंगे। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में कल सुबह 10:00 और कल रात 10:30 पर सुनिएगा उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खां का गायन, राग होंगे मियाँ की तोड़ी और बिहाग। कल दिन के 11:05 पर आप सुनेंगे श्रोताओं की पसंद पर आधारित कार्यक्रम ईमेल भेजो छत्तीसगढ़ी गीत सुनाओ। और श्रोताओं चित्रपट संगीत का प्रसारण समय होगा कल सुबह 9:15 पर, कल सुबह 10:30 पर, कल दोपहर 1:05 पर, दोपहर 2:00, दोपहर 2:30 पर, कल शाम 7:00, रात 8:00 और कल रात 9:15 पर। तो श्रोताओं ये थे हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित किए जाने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी रायपुर है, कुछ ही पलों में हमारा अगला प्रसारण होगा। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियोज की घड़ी में शाम के 5:10 हुए हैं। प्रस्तुत है युवाओं का अपना कार्यक्रम युववाणी।

0: युवाणी कार्यक्रम के अगोरामा बैठे हमर जम्मो श्रोता संगी मल्ला मोर यानी थनेश्वरी बघेल के राम राम।
1: अपन मयारू नीलेश साहू के झोंको माया भरे जोहार।
0: नीलेश, आज समाचार पत्र पढ़त रहे हो,
1: हाँ।
0: जेमा संघ लोक सेवा आयोग मा चयनित हो एक जन अभ्यर्थी के बारे में लिखा रही से,
1: हाँ।
0: कि एक मजदूरी करैया के लइका हा कैसे देश के सबले कठिन परीक्षा ला पास करी से।
1: थनेश्वरी, सिर्फ मजदूरी करैया परिवार के नो हरे ये जोन खबर ल तेर पढ़ेस देहा, और ये जो सफलता है वह एक मजदूर करिया परिवार के नो है भलुक, ऐसे समाज के परिणाम आए जिन ओ अभ्यर्थी ला पढ़ाई लिखाई बर प्रेरित करी से।
0: सिर्तुन कहेस नीलेश, मनखे के सफलता मा पढ़ाई लिखाई के बड़ महत्व होते,
1: हाँ।
0: जेन ओला ओखर लक्ष्य पाए बर सहायता करते।
1: तेकरे सेती कीथों धनेश्वरी, पढ़ाई लिखाई मा ध्यान लगाए कर गई।
0: वाह, मोला कहा थस, अपन ला बता तो भला की कतिक पढ़थस ते है।
1: धनेश्वरी, मोर तो कामे पढ़ाई करना कराना हरे भाई।
0: फिर संगवारी, शिक्षा सिर्फ किताब तक नहीं होना चाहिए,
1: हाँ।
0: भलुक मनखे ला सही और गलत की पहचान करे बर घलो आना चाहिए,
1: हाँ। और आज के बेरा मा शिक्षा हा जुन हवे तेन हा बिना जिंदगी के अधूरा हो गया है, बिना शिक्षा के जिंदगी अधूरा हवे,
0: हाँ।
1: काबर की अपन संग होवैया गलत व्यवहार के पहचान कबू कोई सीखते कि कैसे करते ओला सिखाते कौन, शिक्षा। और आज के आधुनिक युग में तो ठगी है घलो कम नहीं है, आए दिन ऑनलाइन ठगी के खबर आते रही थे।
0: तो ऐसा माँ हमला जागरूक रहना घलो जरूरी है,
1: हाँ।
0: और एक शिक्षित मनखे है अपन आप जागरूक रखे बर तो आत्मनिर्भर रथे ही,
1: हाँ।
0: और शिक्षा के असर सिर्फ एक जन तक सीमित नहीं रहा है,
1: हाँ।
0: भलुक पूरा परिवार और समाज ऊपर पर थे,
1: हाँ।
0: जब एक मनखे है शिक्षित होते,
1: हाँ।
0: तब वो है अपन परिवार ला घलो सही रद्दा दिखा पाते,
1: हाँ। सिर्तोन मा और पढ़े लिखे समाज मा लोगन मना अपन अधिकार और कर्तव्य ला बने ढंग ले समझ पाते।
0: और नीलेश, पाछू के बेरा मा लोगन है शिक्षा ला सिर्फ नौकरी पाए के जरिया समझत रही से, फिर अब शिक्षा के क्षेत्र हा बाढ़ गे है। आज शिक्षा हमन ला तकनीक, विज्ञान, संस्कृति और सामाजिक जिम्मेदारी बर घलो जागरूक करते,
1: हाँ। आज समाज बहुत तेजी ले बदलत हवे, नवा नवा तकनीक आवत घलो हवे, तो ऐसन बेरा मा शिक्षा हा हमन ला लोगन के संग मा चलना सिखाते।
0: और सबले बड़े बात ये हावे संगवारी कि शिक्षा हा मनखे के व्यक्तित्व के सृजन करते,
1: हाँ।
0: जेखर सेती एक पढ़े लिखे मनखे हा सिर्फ अपन बर नहीं भलुक समाज और देश के विकास मा घलो योगदान देते।
1: और संगी ये दे थोड़ी दिन पहली 10वीं 12वीं के परीक्षा के परिणाम ही से अब कतको विद्यार्थी मन हा आगे के पढ़ाई करे बर अपन लक्ष्य के हिसाब ले पढ़ाई ल कर ही, माने विषय के चयन कर ही,
0: बिल्कुल, हाँ। फिर नीलेश,
1: हाँ।
0: कतकोन विद्यार्थी मन हा ऐसे घलो होते ना जे मन हा देखा सीखी मा गलत निर्णय ले लेते और आगू चल के पछतावा भर ल पाते, लक्ष्य ल नहीं पावे।
1: सिर्तोन कहे संगवारी, एकर बर जरूरी हवे सही मार्गदर्शन, जेकर ले अपन लक्ष्य बर हमन सही रद्दा के जानकारी मिल पाथे। और आज देखन त एक शिक्षक, वैज्ञानिक, पत्रकार, डॉक्टर, इंजीनियर और प्रशासनिक अधिकारी हर क्षेत्र मा शिक्षा के बड़ महत्व है, और ये है तभी संभव हो पाई से जब ओ मल्ला सही मार्गदर्शन मिले।
0: बिल्कुल। और संगवारी, जिहा शिक्षा प्रभाव ज्यादा रथे वहाँ गरीबी, अंधविश्वास और भेदभाव के प्रभाव कम रही थे।
1: काबर की शिक्षित मनखे हा रोजगार पाथे और नहीं तो स्वरोजगार के सृजन करते,
0: बिल्कुल,
1: जेखर ले गरीबी हा दूर होते और मनखे हा तर्क करे बर जानते, अंधविश्वास घलो दूर होते और शिक्षा ले मनखे हा मानवता ला समझते, तो वो हा कखरो ले भेदभाव नहीं करे, माने शिक्षा हा समाज मा समानता लाए के काम घलो करते।
0: बिल्कुल भाई, सिर्तुन कहथस, आज तो युवा मन बर शिक्षा बहुते जरूरी हावे,
1: हाँ।
0: काबर की आज प्रतियोगिता के बेरा चलत हावे,
1: हाँ।
0: जम्मो क्षेत्र मा आगू बढ़े बर ज्ञान और कौशल दोनों के जरूरत पड़ते,
1: हाँ। एकरे सेती संगवारी, ज्ञान जतका होवे जहां ले होवे उतका हासिल करना चाहिए।
0: आज सरकार घलो शिक्षा ला बढ़ावा देबर कई योजना चलावत हावे, गांव मा स्कूल के सुविधा बढ़ावा जावत हावे ताकि जम्मो लइका शिक्षा हासिल कर सके,
1: हाँ। और अब तो डिजिटल माध्यम घलो आगे हवे, ये सीखे के नवा रद्दा घलो खोल दे हवे, अब मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम ले विद्यार्थी मन हा घर बैठे घलो बहुत कुछ ला सीख सकत हवे।
0: बिल्कुल। फिर हमन ला ये बात के घलो ध्यान रखना चाहिए कि तकनीक के सही उपयोग होवे,
1: हाँ।
0: शिक्षा के उद्देश्य सिर्फ जानकारी पाना नहीं है, बल्कि एक सभ्य नागरिक बनना घलो हावे। संगवारी हो, अगर हमन हा चाहथन कि हमर समाज और देश तरक्की करे, तो हर घर तक शिक्षा पहुंचना बहुत जरूरी है।
1: हाँ, और बेटी मन के शिक्षा पर तो हमन ला ज्यादा ध्यान देना चाहिए, उतके ध्यान देना चाहिए जितका एक बेटा के शिक्षा पर, काबर की बेटी के पढ़ाई पूरा परिवार ला शिक्षित बनाथे।
0: सिरतोन मा
1: तसंगी हो, हमन ला चाहिए कि दूसर मन ला घलो शिक्षा पर प्रेरित करन,
0: काबर की शिक्षा ही उज्जवल भविष्य के आधार हवे,
1: और पढ़े लिखे समाज ही विकसित और मजबूत राष्ट्र के पहचान होते।
2: दसवीं या बीएससी पास युवाओं के लिए प्लास्टिक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सुनहरा भविष्य, भारत सरकार की संस्था सीपेट रायपुर और कोरबा में प्रवेश पाइए। डिप्लोमा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स के साथ 100% प्लेसमेंट सहायता, छात्रवृत्ति और शासकीय योजनाओं का लाभ उठाएं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 28 मई 2026। विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट है www.cipet.gov.in।
3: 10 लाख की लॉटरी मुझे,
4: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
5: RBI कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: संगी हो अभी सुनत रहें ये सुग्घर अकन माटी के गीत ला जिनला अपन सुर देवत रहिन खुशी दास मानिकपुरी अउ बिंदु देवांगन।
1: अभी गीत ला सुने बर चाहरीन हमारी संगवारी मन मुंडा टोला डोंडी लोहारा ले संगवारी मन हावे डोमेंद्र नेतांग गंगेश्वरी चंचल कामेश माहिर नेताम लच्छनपुर छत्तीसगढ़ ले विश्वनाथ साहू पंकज तिरुपति साहू लघान पंडरिया ले उत्तम कुमार बघेल रुक्मणी साहिल भारती बघेल कोपरा राजिम ले लक्ष्मी नारायण पटेल देवकी सैलबाई राधिका रूपेश तुषार पटेल दलदल सिवनी ले संगवारी मन हावे रेखा पटेल अमित अजीत जितेंद्र पटेल अंजू सरोज प्रीति पटेल मन हा कन्नेवाड़ा ले संगवारी मन हावे देवेंद्र कुमार सोनवानी लक्ष्मीना सोनवानी मन हा।
2: दसवीं या बीएससी पास युवाओं के लिए प्लास्टिक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सुनहरा भविष्य भारत सरकार की संस्था सीपेट रायपुर और कोरबा में प्रवेश पाइए। डिप्लोमा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स के साथ शत प्रतिशत प्लेसमेंट सहायता छात्रवृत्ति और शासकीय योजनाओं का लाभ उठाएं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 28 मई 2026। विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट है www.cipet.gov.in।
0: आज शिक्षा के गोट होवत रही से
1: जबर गोट करत हस भाई तेहा आज शिक्षा के कावा थे
0: भाई। शिक्षा हा एक मनखे के जीवन मा बड़का महत्व रखते काबर की ओखरे ले हमर समाज के सृजन घलो होते एक सभ्य समाज के सृजन होते।
1: बिल्कुल आओ शिक्षा हा अपन मूलभूत अधिकार ला जाने बर घलो अच्छा माध्यम आए।
0: हाँ बड़का भूमिका निभाते औ बड़का भूमिका हमर युवाणी हा घलो निभाते जानथस।
1: हाँ बिल्कुल जानता ना संगवारी
0: ज्ञान ला बढ़ाए में हमर युवाणी कार्यक्रम हा घलो बड़का महत्व और ओकर सबसे बढ़िया क्रम कौन से होते
1: क्रम सवाल जवाब अंक।
0: हाँ तो संगवारी हो झटकुन शुरू करथन क्रम
1: सवाल जवाब अंक।
0: तो धनेश्वरी संगवारी मन हा जब क्रम सवाल जवाब शुरू होते ना तो सबले पहली का के अगोरा करते
1: ओमन अगोरा करते कि हाँ पाछूदारी पूछे रहीस तेकर सवाल जवाब ओकर जवाब ला कहीं के।
0: हाँ और ओकर बाद अगोरा करते अपन
1: नाव के हाँ
0: कि मैं हाँ सही जवाब दे हूँ कि नहीं दे हूँ कहीं।
1: बिल्कुल तब भाई सही जवाब ला बता देथन फिर हाँ। आप मन हा मिलान करो अपन सही जवाब सन।
0: हाँ
1: तो क्रम सवाल जवाब अंक 230 के पहले यह सवाल रही से संगवारी हो ए बच्छर बस्तर दशहरा कब से मनाए जाही।
0: हाँ और संगी हो एकर उत्तर आए हरेली अमावस्या ले।
1: और ए अंक खातिर दूसरी यह सवाल रही से इंसुलिन के प्रयोग कौन से बीमारी में इंसुलिन के प्रयोग कौन से बीमारी के उपचार में कराए जाते
0: और संगी हो एकर उत्तर है मधुमेह यानी डायबिटीज।
1: और ए अंक खातिर तीसरी यह सवाल रही से भारत में होवैया जनगणना में कौन से क्रम के जनगणना हो।
0: हाँ और एकर उत्तर आए संगी हो 16वां क्रम के।
1: ए अंक खातिर चौथैया सवार रही से पद्मश्री गोविंद राम निर्मलकर हा कौन से कला क्षेत्र ले संबंधित थे।
0: और ए सवाल के उत्तर है संगवारी हो नाट्य कला।
1: ए अंक खातिर पांचवा सवार रही से सुशासन तिहार कब ले कब तक मनाए जावत थे।
0: और संगी हो ये पांचवैया सवाल के उत्तर आए 1 मई ले 10 जून।
1: और ए अंक खातिर छठवा आखिरी सवार रही से छत्तीसगढ़ी जनौला उचकुल गुचकुल कुआं खदान 32 पेड़ मा एक पान।
0: और संगवारी हो एकर जवाब आए जीब।
1: ता संगवारी हो ए तो रही से सही जवाब। अब सही जवाब पठोया संगवारी मन के नाव लगल जान लेथन और हमर संगवारी मन तो बड़ अकन सही जवाब पठोए नी लेस।
0: हाँ।
1: 6 सही जवाब 5 सही जवाब 4 सही जवाब बिकट अकन पठोए हेबे।
0: हाँ।
1: तेहा झटकुन बता डार कि कौन संगी है केठन सही जवाब पठोए हावे।
0: हाँ तो धनेश्वरी सबले पहली हमन हा वो संगवारी मन के नाम ला जानथन जे मन हा 6 ठन सवाल की सही सही जवाब ला पठो हेवे। संगवारी मन हा हवे सोंगा मगर लोडे फनेश कुमार चंदन सावित्री देवी मोहित देविका गजेंद्र हेयांश चंदन साकरा सोमनी ले नारायण लाल साहू कुलवंती नेहा मिलिन प्रणय रुद्रांश प्रताप साहू खैरागढ़ राज लालपुर ले संगी मन हा मोतीलाल भीमटे सुशीला मेघा नेहा येशु भीमटे सिंगारबाड़ी घुटकू ले है ये संगी मन हा भगत राम पटेल किशन सोनम मानवी पटेल मुंडा टोला डोंडी लोहारा ले है ये संगी मन हा डोमेंद्र नेताम चंचल कामेश माहिर नेताम पोटिया कला दुर्ग ले है संजय साहू सुजाता शशांक सीमा साहू चर डोंगरी पिपरिया ले है संगी मन हा दुर्गाराम साहू अजय जय किशन कुमारी इंद्राणी माया साहू कमरिया बिलासपुर ले साबित खान धर्मेंद्र प्रजापति सावित्री देवी प्रतीक कुमार देवरी भाटापारा ले मुकेश कुमार रजक, युवान हाव्या तन्नु तानिया नित्या रजक, जवाहर नगर दुर्ग ले आरसी कांबड़े, करुणा मीना, अश्विनी विपुल कांबड़े, भिलाईगढ़ ले संगी मन रोशनलाल देवांगन, कौशल्या हेम

0: कार्यकर्ता डिंपल देवांगन और सारंगढ़ बिलाई गढ़ ले है ये संगी मन हा भाव्या प्रियांश अखिल दीप्ति मन हा
1: और संगवारी मन हावे हमर छह सही जवाब पठोया चांदनी चौक गंडई पंडरिया ले पवन कुमार सेन प्रभा देवी लक्की विक्की नानू रविंद्र रौनक सेन पंजौनिया जालौन उत्तर प्रदेश ले सत्येंद्र कुमार चंसौलिया संगवारी मन हावे रमेश कुमार एमन हा अपन गांव के पता ला नहीं भेजे हावे पीपरपारा पालचुआ मुंगेली ले उत्तरा दिवाकर परमेश्वरी भानुप्रिया योगिता नितिन वंशिका दिवाकर पलारी छत्तीसगढ़ ले नितेश कुमार देवांगर दुर्गा प्रसाद लखनलाल बागबारा भदरसी ले पन्नालाल सेन खुशबू तारा कौशल सेन पहांदा पलारी ले नीतीश कुमार ईशान सावित्री बाई तनुजा देवांगन भवरपुर बसना ले चंपा देवांगन राधेश्याम राजू और जगदीश देवांगन मन ये तो रही ने छह सही जवाब पठोया हमर संगवारी मन के नाम
0: अब धनेश्वरी वो संगवारी मन के नाम ल जानते हैं जी मन हा पांच ठन सवाल के सही सही जवाब भेजे हबे ये संगी मन हवे इंदिरा चौक तखतपुर ले मिश्रीलाल विश्वकर्मा मीरा देवी विशाल मानस गंगा देवी विश्वकर्मा कन्या दमो बालाघाट ले मध्य प्रदेश ले घलो है संगवारी मन हा संगी मन के नाम हवे दुर्वा राम साहू परसराम देवांगन देवानंद श्वेता योगिता साहू आर्यनगर कोका भिलाई ले है संगी मन हा उत्तम सिंह जंघेल मोरस अनिल अजीत आयुष नंदनी जंघेल चिरमिरी कुरासिया कालरी ले है संगी मन हा इंद्रबान सिंह अनुभव ऋषभ राम सहोदर नारायण प्रसाद लहरे दिनेश प्रसाद कालिंदी लहरे आमा खोडरा रेंगा खारले देवी सिंह नेताम राजेंद्र दक्षप्रिया गीत सरगम नेताम भीम खोज तरपोंगी ले है खल्लारी ले है संगी मन हा जी एल साहू सरोज छोटी पिंकी अड़ार नांदघाट लेहे माखन वर्मा चांदनी राहुल गोपी भूपेश डोंडी लोहारा बालोद लेहे संगी मनहा देवशंकर तामुरिया अजय देव तुषार डौली पूजा तामुरिया डोंगरगांव ले राष्ट्रपाल गज भैये राधिका बेबी अनिष्का तन्मय गज भैये देवरी भाटापारा ले कन्नूलाल रजक के आर साहू अश्विनी वर्मा गणेश राम मिस्त्री सुंदरपारा रोहासी ले डगेसर राम साहू नूतन गौरव घनश्याम साहू पहारा अयवारा ले पोषण बंछोर चंद्र कीर्तन प्रीति छाया बंछोर और भाटापारा ले बचकामल मोतीलाल बसंत भृगु विनय ठाकुर चोवाराम वर्मा अब्दुल मजीद कुरैशी रेहाना बेगम मनहा
1: और पांच सही जवाब हमर पठोया हमारे यहू संगवारी मन हावे छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवाले चंदूलाल सिंगरौल नारायणी नोमेश नेहा वान्या सिंगरौल परसा टोला अंबागढ़ चौकी ले संगवारी मन हावे ओम प्रकाश मसिया सिलोचनी तुषारनी खुमेंद्र मसिया दतरेंगी भाटापारा ले नोखेलाल वर्मा हीरामणि पारसमणि पुष्पेंद्रमणि वर्मा बोरसरा नैला ले प्रमोद कुमार साहू बीमा वैभवी विभूति साहू नरगोड़ा छत्तीसगढ़ ले कीर्तनपुरी गोस्वामी लक्ष्मी देवी जोगेश ट्विंकल डिंपल मीनाक्षी गोस्वामी बठेना पाटन ले संगवारी मन हावे बलकरण वर्मा अंजनी ज्योति प्रहलाद राजेंद्र मुरली औ खूबचंद वर्मा गंडई टिकरी पारा ले जागेश्वर देवांगन कचरीबाई दीपक जयश्री ऋषभ ऋचा देवांगन बंगला मटिया बालोद ले शिवकुमार अंगारे अंजनी त्र्यंबिका लीना अंशुमाला आशुतोष अंगारे कर्मा चौक लोहारी डीले अशोक कुमार साहू लीलेश्वरी खुशांत निशांत साहू भड़गा कोदवा गुड़ान ले श्याम सिंह मरावी राजकुमारी रानी रजनी राहुल पूजा मरावी कुई ग्राम भंगी टोला ले ननका राम धुर्वे जामुनबाई फीरत राम मालती ध्रुवे मनहा
0: और ये संगे मनहा हवे बोरसी धमतरी ले भूपत राम सिन्हा तोषण सिन्हा धरसेवी धरसीवा बस स्टैंड लेहे छेदूलाल यादव सीता अर्चना अरुणा अनुराधा अल्पना खुशी प्रवीण साहू इकबाल कुरैशी पुतकी कला कवर्धा ले राधे श्याम पांडे वीणा विनय शंकर नयन सुमांशु पांडे रिंगनी लेहे दिनेश वर्मा करुणा वर्मा ढोडरी घोटिया मोहला मानपुर लेहे संगी मनहा महेश कुमार निषाद रंभा रानी निखिल नैतिक पुष्पांजलि स्वप्निल निषाद कुमरदा रानंदगांव ले ताराचंद साहू ओम माही धर्मेंद्र साहू सहसपुर लोहारा दनिया खुर्द लेहे गुनीराम राजपूत संतोषी हेमप्रभा पुष्पराज सूरभ राजपूत गेंदा टोला बाजार चौकले वीरेंद्र गुप्ता अंजलि योगिता गजेंद्र गुप्ता कुर्मा जांजगीर चापा लेहे संगी मनहा दिलदार मेरी ज्योति जानवी दीक्षांत मेरी हसदा नंबर दूल्हे कमलेश साहू जितेंद्र दिलीप प्रवीण पायल लक्ष्मी गीतांजलि आकांक्षा पार्वती टिकेश्वरी नाकेश्वरी तुलसाराम साहू लच्छनपुर लेहे संगी मनहा रामजी साहू जीवनलाल रजक निम्मी शिवम सतीश मुकेश कुमार साहू मदनपुर कवर्धा ले श्रवण कुमार साहू योगेश राहुल साहू और रोहासी पलारी ले श्यामलाल रामदास युवराज साहू मनहा
1: तो चार सही जवाब पठोया हमारे हो संगवारी मन हावे संगवारी मन है टिकरापारा रायपुर ले लता देवी चौहान रूपापाली बसना ले हीरालाल जगत चंद्रिका देवेश ब्रिजेश एकता कश्यप कोयलारी कवर्धा ले कैलाश चंद्राकर मुकुंद पूर्णेंद्र साहिल चंद्राकर

0: उर्मी चचेडीले कमलकांत मरावी, प्रमिला नेहा पुष्पराज ऋषभ मरावी, रानीगांव नगरीले खिलेश कुमार साहू, चित्रेखा शुभम सेजल साहू, सोनार पाल बस्तर छत्तीसगढ़ले दुलेश्वर कश्यप, कुंती कश्यप, धरदेई सरगांवले चंदुलाल पटवा, सुनीता हर्ष कुमार, विनीत कुमार, कृष्टि पटवा, लुकाऊपाली छतवनले पुनीतराम सूर्यवंशी, निर्मला निहारिका, पंकज सिंह सूर्यवंशी, लघान पंडरियाले रुक्मणी बघेल, साहिल भारती बघेल, भदरसीले घनराम सेन, गीतेश दीपेश निर्मला सेन, बाघामुड़ा कोमा खानले प्रज्ञानंद देवांगन, नंदिनी प्रकाश देवांगन, बाजार वार्ड महासमुदले संगवारी मन है भीष्मदास नर्मदा, हिरमनी दीपक लक्षदास, साले भाठा महासमुदले जीतू ध्रुव, केवल किरण दिव्यांशी खेमू ध्रुव मनहा।
1: और यहू संगवारी मन हा चार ठन सवाल के सही सही जवाब पठो है संगवी मन है भाई खमार मुड़ा ले सतीश गिरी गोस्वामी, श्रेयांश शिवाय, एकांशी गोस्वामी, फुलझर घटर अनिले, योगेश्वर साहू, डुमेश्वरी यामिनी, मुस्कान हर्षिता साहू, तेंदु भाटा मगर लोडले, उमेंद कुमार निषाद, महेश्वरी देविका, पोषण नूतन, सुरेंद्र यशस्वी, भास्कर किशन, दिव्यांश भूपेश, शिवा निषाद। और नवागढ़ कटैले है हमारे संगी मन हा नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, शारदा मयंक वर्मा मन हा।
0: निलेश ये तो रही से सही जवाब पठो या ज्यादा ले ज्यादा संगवारी मन के ना।
1: हाँ
0: अब
1: संगवारी मन हा ए अंक खातिर सवाल क्या गुरा करत हो ही?
0: बिल्कुल
1: हाँ फिर बतावन दिन का भी
0: नहीं भाई अब हाँ। मन तो गलत मनोरंजन के होते
1: हाँ।
0: काबर नहीं मनोरंजन खातिर एक ठन गीत सुना देते
1: सिर तोन में।

0: संगी हो अभी सुनत रहें मनोरंजन खातिर सुघर कन गीत ला जिला अपन सुर देवत रहिन गोरेलाल बर्मन।
1: अभी गीत ला सुने बर चाहे रहिन हमारे संगवारी मन परसा टोला अंबागढ़ चौकी ले ओम प्रकाश मसिया, सिलोचनी खुमेंद्र तुषारनी मसिया, पीपरपारा पालचुआ मुंगेली ले उत्तरा दिवाकर, परमेश्वरी योगिता नितिन वंशिका दिवाकर, कोरासी छत्तीसगढ़ ले पवन कुमार साहू, क्रांति देवी पंकज सुस्मिता दीपिका साहू, पथरिया भरेवा ले चंदूलाल नारायणी नोमेश नेहा वान्या सिंगरौल, बोगाटोला मोहला मानपुले मानिक राम सिन्हा, तारामती मुनिंद इंदु चांदनी सविता देवी सिन्हा, बंगला मटिया बालोदले शिव कुमार अंगारे, अंजनी त्र्यंबिका लीना अंशुमाला आशुतोष अंगारे, कुमारदा राजनांदगांवले ताराचंद साहू, ओम माही धर्मेंद्र साहू, जवाहर नगर दुर्गले आरसी कामड़े, करुणा मीना अश्विनी विपुल कामड़े, सहसपुर लोहारा दनिया खुर्दले गुनीराम राजपूत, संतोषी हेमप्रभा पुष्पराज सूरज राजपूत, और संगवारी मन हावे गेंदा टोला बाजार चौकले बीरेंद्र गुप्ता, अंजलि योगिता गजेंद्र गुप्ता मन हा, पुतकी कला कवर्धले राधेश्याम पांडे, वीणा विनय शंकर नयन सुमांशु पांडे मन हा। त नीलेश तो संगवारी मन हा तो तैयार हो गए हो ही पेन कापी धर के।
0: हाँ, सवाल जवाब अंक 231 के सवाल पर।
1: तो देरी नहीं करन और बता देथन हमर सवाल ला। संगवारी हो सवाल ला लिखो, सवाल जवाब अंक 231 के पहले यह सवाल हावे, बछर 2026 के प्रतिष्ठित लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार बर कौन ला चुने गए है।
0: संगी हो सवाल ला मैं एक घाव और दोहरावत हूँ, सवाल हवे पहले यह सवाल, बछर 2026 के प्रतिष्ठित लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार बर कौन ला चुने गए है।
1: और एक खाते दूसरे यह सवाल ला लिखो, बेठिया प्रथा छत्तीसगढ़ के कौन से क्षेत्र में प्रचलित हावे।
0: संगी हो दूसरे यह सवाल ला दोहरावत हूँ मैं, हाँ, बेठिया प्रथा छत्तीसगढ़ के कौन से क्षेत्र में प्रचलित हावे।
1: ए अंक खाते तीसरा सवाल ला लिखो, मई 2026 में कौन भारतीय शतरंज खिलाड़ी हा मात्र 5 सप्ताह में 3 मानदंड पूरा करके इंटरनेशनल मास्टर के खिताब जीते है।
0: संगी हो तीसरा सवाल ला मैं दोहरावत हूँ, तीसरा सवाल है, मई 2026 में कौन भारतीय शतरंज खिलाड़ी है मात्र 5 सप्ताह में 3 मानदंड पूरा करके इंटरनेशनल मास्टर के खिताब ला जीते है।
1: संगवारी हो ए अंक खातिर चौथैया सवाल ला लिखो, भारत के पहला कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला एल्गी ट्री कहाँ स्थापित करेगे है।
0: संगी हो चौथैया सवाल है, भारत के पहले या कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला एल्गी ट्री कहाँ स्थापित करेगे है।
1: तो संगवारी हो पांचवा सवाल ला लिखो, पांचवा सवाल है, जनगणना 2027 बर कौन से हेल्पलाइन नंबर पूरा देश में शुरू हुए है।
0: संगी हो पांचवा सवाल है, जनगणना 2027 बर कौन से हेल्पलाइन नंबर पूरा देश में शुरू हुए है।
1: संगवारी हो ए अंक खाती छठवा और आखिरी सवाल लिखो, भारत में पहली बार लॉन्च करेंगे डोनेनमेब चिकित्सा दवा के संबंध कौन से रोगले है।
0: संगी हो सवाल जवाब अंक 231 के छठवैया और आखिरी सवाल है, भारत में पहली बार लॉन्च करेंगे डोनेनमेब चिकित्सा दवा के संबंध कौन से रोग ले हवे।
1: तो संगवारी हो, सवाल हा कोनो मेर छूट गे होही तो मैं हा एक घाव और दोहरावत हूँ, लिख लूँ मिला लूँ। पहले ये सवाल हावे, बछर 2026 के प्रतिष्ठित लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार बर कौन ला चुने गए है। दूसरा ये सवाल हावे, बेठिया प्रथा छत्तीसगढ़ के कौन से क्षेत्र में प्रचलित हावे। तीसरा ये सवाल है, मई 2026 में कौन भारतीय शतरंज खिलाड़ी हा मात्र 5 सप्ताह में 3 मानदंड पूरा करके इंटरनेशनल मास्टर के खिताब जीते है। चौथा यह सवाल हावे, भारत के पहला कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला एल्गी ट्री कहाँ स्थापित करेगे है। पांचवा यह सवाल है, जनगणना 2027 बर कौन से हेल्पलाइन नंबर पूरा देश में शुरू हुए है। छठवैया और आखिरी सवाल हरे, भारत में पहली बार लॉन्च करेगी डोनेनमेब चिकित्सा दवा के संबंध कौन से रोग ले है। तो ये तो रही से हमार सबो सवाल, और सवाल भेजे बर जवाब भेजे बर आप मल्ला हमार पता चाहिए, तो हमार पता ला बता दे भाई नीलेश।
0: हाँ संगी हो, जिन संगवारी मन हा पाती के माध्यम ले हमन ला जवाब पठोहू तिकर मन बर हमर पता है, क्रम सवाल जवाब अंक 231 युवाणी अनुभाग द्वारा केंद्र निदेशक पोस्ट बॉक्स नंबर 97। और संगवारी हो, रायपुर के कोड ला डाले बर झन बुराहू, रायपुर के पिन कोड आए 492001। और जिन संगवारी मन हा ईमेल के माध्यम ले हमन ला जवाब पठोहू तिन संगवारी मन बर हमर ईमेल पता है airyouth9@gmail.com। और संगवारी हो, सब्जेक्ट कोड आए y13।
1: संगी हो, कैसे भेजना है तिला तो जानते छ, तबो ले बता देथन, काबा की बहुत जन संगी मन हा PDF में भेज देथा, ता सीधा सब्जेक्ट कोड के बाद टेक्स्ट रथे ओमा लिख के अपन सही जवाब ला लिखा, और एखर ले का है हमन ला आसानी से दिख जाते और पढ़े में घलो आसानी हो जाते, जेखर ले नाम शामिल होए में सुविधा हो जाते।
0: तो तनेश्वरी, क्रम सवाल जवाब
1: इहे तक। तो भाई बता, अब आज तो तेहा विकट शिक्षा के गोट करे हस, फिर मैं हाँ कहूँ शिक्षा के गोट तो करबोचे आगू, फिर ओखर ले पहली सुन लेथन ये गीतला।
0: हाँ।

0: संगी हो अभी सुनत रहें सुघर अकन माटी के गीत ला जिन ला अपन सुर देवत रहें निर्मला बेलचंदन और संतोष शुक्ला।
1: अभी गीत ला सुने बर चाहरीन हमर ये संगवारी मन है डोंगर गांव ले राष्ट्रपाल गजभिये राधिका बेबी अनिष्का तन्मय गजभिये पिपरिया ले कमलकांत गुप्ता दीपा रिमझिम गुप्ता मन है।
0: धनेश्वरी आजकल ना मोला ऐसे लगते है कि लोगन हा अपन रचनात्मकता में ना कम ध्यान देते।
1: ते ज्यादा नहीं सोचा था का है कहा था समझ नहीं आते।
0: अरे काहे मैं तोरे एक ठन फोटो देखे हूँ।
1: अच्छा
0: हाँ ते माँ बड़ सुघर दिखा थी तोर फोटो के डिजाइन है।
1: ओ है तो एआई के कमाल हरे नीले।
0: हाँ एआई यही मैं कहा रहे हूँ कि लोगन हा आज एआई के ज्यादा इस्तेमाल करत हवे। भाई हमन हा एआई के इस्तेमाल जतके ज्यादा करबो उतके हमार जो रचनात्मकता के क्षमता है तेन हा कम हुई।
1: काबर की ऐसे है ना नीलेश एआई जो है वो हमार जो बात है जो हमन हा जो रचनात्मकता जो दिखाना चाहत हन ओला नहीं समझ सके।
0: हाँ हमार जो जरूरत हवे तेन ला तो हम मन के समझ सकते
1: बिल्कुल
0: एआई हा तो नहीं समझ सके। और कतकोन एआई टूल तो ऐसे घलो रहते थनेश्वरी जेमा हमन हा फोटो डालत हन अपन छवि डालत हन तो ओकर गलत प्रयोग घलो हो सकत
1: है। हाँ अपन पहचान ला घलो चुरा सकत
0: है। हाँ

0: युवाओं का कार्यक्रम युववाणी अभी आप सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। थोड़ी ही देर में हमारा अगला प्रसारण होगा। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है, शाम के 6 बजने को है। समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आज नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में शुरू हुआ। सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्री शामिल हैं। बैठक का उद्देश्य भारत और नॉर्डिक देशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाना है। इस सम्मेलन में ऊर्जा, समुद्री अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी और नवाचार, स्थिरता, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण पर चर्चा होगी। भारत और नॉर्डिक क्षेत्र के बीच फिलहाल व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौता लागू है। सम्मेलन में भारत और इस क्षेत्र के देशों के बीच व्यापार और निवेश का विस्तार करने के उपायों पर चर्चा होने की संभावना है। नॉर्डिक ब्लॉक के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार $19 अरब के करीब पहुंच गया है। सम्मेलन से भारत और नॉर्डिक देशों के बीच बहुआयामी सहयोग को और विस्तार मिलने तथा पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा। सम्मेलन से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने आइसलैंड के प्रधानमंत्री सुश्री क्रिस्टन फ्रॉस्टेडाइटी, फिनलैंड के प्रधानमंत्री शिप्पेटेरी ओरपो और डेनमार्क के प्रधानमंत्री सुश्री मेटे फ्रेडरिक्सन के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली के रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: इस यात्रा से भारत इटली रणनीतिक संबंधों को कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई गति मिलने की उम्मीद है। व्यापार, निवेश और औद्योगिक साझेदारियों से जुड़ी सहयोग योजनाओं की घोषणा होने की संभावना है, क्योंकि दोनों देश आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और सहयोग के नए क्षेत्रों की तलाश में हैं। व्यापारिक संबंध पहले से ही मजबूत हैं और इस यात्रा के दौरान होने वाली उच्च स्तरीय वार्ताओं के बाद इनके और आगे बढ़ने की उम्मीद है। भारतीय प्रवासी समुदाय प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर विशेष रूप से उत्साहित है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन की यात्रा पर आज दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल पहुंचे। यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और रणनीतिक भागीदारी को और सुदृढ़ करना है। इस यात्रा से द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत

0: करने तथा परस्पर हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का अवसर मिलेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि छत्तीसगढ़ का बस्तर मंडल अगले 5 वर्षों में देश का सबसे विकसित आदिवासी मंडल बनकर उभरेगा। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में श्री शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य 2031 तक बस्तर के लोगों की औसत आय को 6 गुना बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि बस्तर को नक्सलवाद से मुक्त कराने के बाद केंद्र और राज्य सरकार ने अगले 5 वर्षों में इस क्षेत्र के विकास के लिए संयुक्त रूप से एक वैज्ञानिक रूपरेखा तैयार की है।
1: 19 मई 2026 की ये तिथि है कि जहां से नक्सल प्रभावित क्षेत्र में संपूर्ण विकास की परिकल्पना को लॉन्च किया जा रहा है। बस्तर के 7 जिले को नक्सलवाद से मुक्त कराने के लिए भारत सरकार के द्वारा यहां पर करीब करीब 200 सुरक्षा कैंप बनाए गए।
0: श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने विभिन्न कानूनों मंचों पर विचाराधीन मामलों का समयबद्ध निपटान सुनिश्चित करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं के लंबित मामलों की संख्या 1 अप्रैल 2024 में लगभग 5,000 से घटकर इस वर्ष 31 मार्च तक 2,600 रह गई है। उन्होंने बताया कि ईपीएफओ व्हाट्सएप अपनाने की योजना बना रहा है ताकि संपर्क सुविधा को बढ़ाया जा सके। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज आम आदमी पार्टी नेताओं अरविंद केजरीवाल और अन्य से न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा के खिलाफ सोशल मीडिया पर अपमानजनक पोस्ट करने के मामले में आपराधिक अवमानना मामले में उनका पक्ष पूछा है। मनीष सिसोदिया, दुर्गेश पाठक, संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज से भी उनका पक्ष पूछा गया है। न्यायालय की पीठ ने इन नेताओं को मामले के संबंध में नोटिस जारी किया। उन्हें अपना जवाब दाखिल करने के लिए 4 हफ्ते का समय दिया है। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 114 अंक गिरकर 75,201 पर बंद हुआ। निफ्टी 32 अंक गिरकर 23,618 पर आ गया। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच और 3 एकदिवसीय मैच की श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। शुभमन गिल टेस्ट टीम के कप्तान और केएल राहुल को उपकप्तान बनाया गया है। शुभमन गिल एकदिवसीय टीम के कप्तानी करेंगे और श्रेयस अय्यर उपकप्तान होंगे। उधर जयपुर में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है।
3: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।

ये खनकती आवाज अब आप सुन सकते हैं और भी बेहतरीन क्वालिटी में, कभी ब्लूटूथ स्पीकर से कनेक्ट करके तो कभी हेडफोन पर लगाकर। आकाशवाणी रायपुर का प्रसारण अब उपलब्ध है मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTH पर। चाहे पास रहें या दूर, आपके करीब हर पल आकाशवाणी रायपुर सुना।

0: अरे सुमित, तुमने बाइक इधर क्यों मोड़ दी?
1: अरे इसी रोड पर ही तो हमको जाना है यार। हेलो।
0: अरे सुमित।
1: हेलो।
0: सुमित, ये तुम क्या कर रहे
1: हो? हेलो, अरे बात कर रहा हूँ यार, मुझे बात तो करने दे।
0: सुमित, तुम Hello? गाड़ी रोक कर भी तो बात कर सकते हो।
1: अरे छोड़ ना यार, मैं तो चलती गाड़ी में ही कॉल अटेंड कर लेता हूँ। हेलो।
0: अरे सुमित।
1: कौन? संदीप।
0: सुमित देख के।
1: हाँ बोल यार।
0: सुमित,
1: कब आना है?
0: अरे देख के सामने।
1: ठीक है, और कौन आएंगे?
2: सुमित आज इस दुनिया में नहीं है और उसका दोस्त घायल है। वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग बिल्कुल ना करें। खुद की और दूसरों की सुरक्षा के लिए यातायात के नियमों का पालन करें।
3: मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट होने के बाद बीमा कंपनी वाले क्लेम देने में बहुत देर कर रहे हैं, अब मैं क्या करूं?
4: अरे जो सामान मैंने खरीदा वो तो खराब निकला, बेचने वाला इसे वापस नहीं ले रहा है, अब मैं क्या करूं?
5: मेरी बहन के ससुराल वाले उसे रुपयों के लिए बहुत परेशान कर रहे हैं। इस मुसीबत से मैं उसे कैसे बचा सकती हूँ?

ऐसी कोई भी परिस्थिति कभी भी किसी के भी जीवन में आ सकती है। अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कानून की जानकारी सबको होनी चाहिए। हमारे संविधान में क्या है, किसी भी विवाद या परिस्थिति में समाधान का प्रावधान, जानने के लिए सुनिए आकाशवाणी रायपुर और प्रदेश के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर रविवार शाम 6:30 बजे समन्वित कार्यक्रम कानून की बात।

0: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। कुछ ही पलों में हमारा अगला प्रसारण होगा। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियोज की घड़ी में शाम के 6:10 होने को है। कुछ ही पलों में छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग ललित साहू के जय जोहार। अब सुनाओ आज के प्रमुख समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कहने की अवैया 5 साल में राज्य के बस्तर संभाग है देश के सबले विकसित आदिवासी संभाग बन जाये। तेल कंपनी डहर ले पेट्रोल और डीजल के कीमत में आज फिर एक घाव बढ़ोतरी करेगे है। और अवैया 24 घंटा के दौरान प्रदेश के कोनो कोनो जगह में हवा गरेर के संग थोर बहुत वर्षा होने के संभावना है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह कहने की अवैया 5 साल में छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग है देश के सबले विकसित आदिवासी संभाग बन जाही। आज बस्तर के संभागीय मुख्यालय जगदलपुर में मीडिया ले गोट बात कर श्री शाह कहन कि सरकार के लक्ष्य है कि बछर 2031 तक बस्तर के लोगन मन के आमदनी 6 गुना तक बढ़ जाही। ओमन कहन कि बस्तर ला नक्सल मुक्त बनाए के बाद केंद्र और राज्य सरकार है मिलके अवैया 5 साल बर एखर विकास ले जुड़े 1 ठन वैज्ञानिक रोड मैप तैयार करे है जेखर ले बस्तर संभाग में बनाए गए सुरक्षा बल के करीबन 200 शिविर मन ले 70 ठन कैंप मल्ला शहीद वीर गुंडाधुर सेवा डेरा में बदले जाही। ये सेवा डेरा के माध्यम ले स्थानीय लोगन मल्ला शासन के जम्मो योजना मन के फायदा पहुँचाए जाही जेमा बैंकिंग कौशल प्रशिक्षण स्कूल आंगनबाड़ी वन उपज प्रसंस्करण शामिल है। एकर अलावा बस्तर के हर आदिवासी परिवार ला एक एक ठन गाय और भैंस दे जाही और अवैया 6 महीना के भीतर यह सहकारी डेयरी के 1 ठन बहुत बड़े नेटवर्क तैयार करे जाही। एक काम पर छत्तीसगढ़ सरकार हा राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड के संग अनुबंध कर ले है। केंद्रीय गृह मंत्री है यू इनकी सरकार है बस्तर के लोगन मन के सुरक्षा के संगे संग ओखर विकास बर घलो प्रयास करी। श्री शाह कहन की हिंसा है कोनो भी समस्या के समाधान नहीं है और हिंसा ले आज तक काखरो विकास नहीं हो है। ओमन कहन की अवैया 5 साल के दौरान केंद्र और राज्य सरकार है मिलके बस्तर के लोगन मन तक सरकार के जम्मो सुविधा पहुँचाही और यह दुनिया में विकास के 1 ठन लोकतांत्रिक मॉडल बनही। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज जगदलपुर में रखे गए मध्य क्षेत्रीय परिषद के 26वां बैठक की अगुवाई करें। ये बैठक में छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के संगे संग केंद्रीय गृह सचिव इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक और ये चारों राज्य के पुलिस महानिदेशक के अलावा पुलिस और प्रशासन के बड़का अधिकारी मन शामिल हुए। तेल कंपनी डहर ले पेट्रोल और डीजल के कीमत में आज फिर एक घाव बढ़ोतरी करे गए है। तेल कंपनी के छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय समन्वयक नितिन चौहान है आकाशवाणी समाचार ला बतेन कि पेट्रोल के कीमत में 90 पैसा और डीजल के कीमत में 96 पैसा प्रति लीटर के बढ़ोतरी करे गए है। राज्य सरकार है कहने की प्रदेश में पेट्रोल और डीजल के कोनो कमी नहीं है। एकर ले लोगन मल्ला घबराए के कोनो बात नहीं है। सरकार के मुताबिक राज्य में अभी 3,88,00,000 लीटर ले ज्यादा पेट्रोल और 7,75,00,000 लीटर ले ज्यादा डीजल हवे। खाद्य विभाग डहर ले जम्मो तेल कंपनी मन के संग समीक्षा बैठक राखेगीस। ये दौरान कहन की जौन जौन पेट्रोल पंप में स्टॉक कमती है वहाँ प्राथमिकता के मुताबिक पेट्रोल और डीजल के आपूर्ति करे जाए। प्रदेश में कुल 2,516 ठन पेट्रोल पंप हवे। पाछू कुछ दिन में मांग बढ़े के सेती पेट्रोल के खरीदी में 47% और डीजल के खरीदी में 22% के बढ़ोतरी दर्ज करे गए है। सरकार है लोगन मन ले अपील करे है कि कोनो भी प्रकार के अफवाह में मत आवे और ज्यादा पेट्रोल ला स्टॉक में झर रखे। राजधानी रायपुर के लोक भवन में हिमाचल प्रदेश गुजरात सिक्किम और महाराष्ट्र के स्थापना दिवस के कार्यक्रम पारंपरिक उत्साह और उमंग के संग मनाए गईस। राज्यपाल रमेन डेकाला एक कार्यक्रम के माई पहुना बनाए गई रहीस। लोक भवन के छत्तीसगढ़ मंडपम में एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के रखे गए कार्यक्रम में राज्य के प्रतिनिधि मन घलो शामिल हुई। राज्यपाल है ये जम्मू के राज्य के लोगन मल्ला बधाई और शुभकामना दीन। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन ला आप मन हा आकाशवाणी रायपुर ले सुना था।
2: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचत हन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
1: और अब आगू बढ़बो बांचे समाचार कोती। प्रदेश में जनजाति समुदाय मन तक सरकारी योजना मल्ला बताए खातिर काली ले जन भागीदारी सबले दूर सबले पहले अभियान शुरू करे गए है। जनजाति गरिमा उत्सव के तहत यह अभियान ला 25 मई तक चलाया जाही। अभियान के तहत जनजाति क्षेत्र मन में ज्यादा ले ज्यादा जन जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाही। ये दौरान सेवा केंद्र मन में जन सुनवाई कार्यक्रम राख के शिकायत मन के समाधान करे जाही। प्रदेश में PM जन मन योजना और धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत चुने गए करीबन 8,000 गाँव 7,000 ले ज्यादा सेवा केंद्र मन के माध्यम ले ये अभियान ला चलाया जाही। सर्वोच्च न्यायालय है सार्वजनिक स्थान मनले पकड़े गए लावारिस कुकुर मल्ला टीकाकरण या नसबंदी करे के बाद वापिस नहीं छोड़े के अपन पूर्व निर्देश ला वापस ले में इनकार कर दिन। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ के अध्यक्षता वाले पीठ है नवंबर 2025 के आदेश में संशोधन करे के मांग वाला याचिका ला खारिज कर दिन और अधिकारी मल्ला ऐसा कुकुर मल्ला आश्रय जगह में रखे के निर्देश दिन। पीठ चेतावनी दे है कि निर्देश मन के पालन नहीं करैया अधिकारी मन ला अवमानना और अनुशासनात्मक के सामना करे बर पड़ सकत है। दुर्ग पुलिस के टीम डहर ले IPL मैच के दौरान ऑनलाइन सट्टा ऐप चलिया गिरोह के 13 जिन आरोपी मन ला गिरफ्तार करे गिस। पुलिस ने बतेन कि ऑनलाइन सट्टा कारोबार के प्रमुख संचालक सेट स्पोर्ट बुक और लोटस ऐप के माध्यम ले म्यूल अकाउंट के उपयोग करके करोड़ों रुपया के लेन देन करत रहीस। पुलिस आरोपी मंत्री ले मिले म्यूल खाता के करीबन 5 करोड़ रुपया के लेन देन के जानकारी मिले है। दुर्ग भिलाई के नेहरू नगर इलाका में हो एक ठन चोरी के मामला के जांच करत पुलिस अंतरराज्यीय गिरोह को खुलासा करे है। पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल है बतेन कि यह मामला में मेरठ ले 2 आरोपी मल्ला गिरफ्तार करे गए है। ओखर तिल्ले 60 लाख रुपया के कीमत के करीबन 400 ग्राम सोना और 3.5 लाख रुपया नकदी बरामद करे गए है। ये गिरोह दुर्ग भिलाई नवा रायपुर बिलासपुर और जबलपुर में चोरी करत रहीन। श्री अग्रवाल है बतेन कि आरोपी मन हा दिन में फेरी वाले बन के कपड़ा और कंबल बेचे के बहाना रेकी करे। बिलासपुर जिला में पुलिस और ACCU के टीम हा सरकंडा थाना क्षेत्र के अंतर्गत 90 किलो गांजा के संग 8 माइलोगिन मल्ला गिरफ्तार करीन। ये माइलोगिन मन हा इलेक्ट्रॉनिक ऑटो गाड़ी ले गांजा के तस्करी करत रहीन। ये जम्मो झन माइलोगिन मन हा मटियारी गांव के रवैया रहे और ओमन उड़ीसा ले गांजा ला के तीर तखार के इलाका में बेचत रहीस। पुलिस के टीम हा गांजा के संग 2 इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी ला घलो जब्ती कर ले है। एकर कीमत ला 46,75,000 रुपया बताए जात है। अब पेश है मौसम के हाल। मौसम विभाग डहल ले आज प्रदेश के रायपुर दुर्ग बालोद राजनांदगांव बलौदाबाजार जांजगीर चांपा रायगढ़ और बिलासपुर के संगे संग कोनो कोनो जिला मन में हवा गरेर और हल्का बारिश होए के संभावना जता है। ओती बस्तर संभाग के जिला मन में गरज चमक के संग छीटपुट वर्षा होए के और गाज गिरे के चेतावनी दे गए है। और अब थोरकुन समाचार सार में छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्या मंडलम हा उत्तर मध्यमा पहली बछर और 11वीं के दूसरिया मुख्य परीक्षा के समय सारणी ला जारी कर दे है। ये परीक्षा 1 जून ले 9 जून तक रखे जाही। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति और जनजाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजना के तहत कक्षा 6वीं में दाखिला खातिर अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के विद्यार्थी मन हा 20 जून तक अपन अर्जी दे सकत है। चयन परीक्षा ला 26 जुलाई के मंझनिया 12 बजे ले 2 बजे तक रखे जाही। जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र राजनांदगांव डहर ले काली 20 मई के बिहनिया 10 बजे ले अंबागढ़ चौकी तहसील कार्यालय परिसर में जिला स्तरीय रोजगार मेला के कार्यक्रम रखे जाही। कांकेर जिला के भानुप्रतापपुर और आज बिहनिया रेलवे पटरी पार करत रेलगाड़ी के चपेट में आयल एक जन रिटायर शिक्षक के मौत हो गए और जांजगीर चांपा जिला के खटोला गांव में कार और फटफटी के आपस में टकराए ले एक जिन जवान लड़का के मौत हो गए। उन्हें 3 जवान घायल हो गए। आखिर में प्रमुख समाचार एक घाव फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कहने की अवैया 5 साल में राज्य के बस्तर संभाग है देश के सबले विकसित आदिवासी संभाग बन जही। तेल कंपनी डाले पेट्रोल और डीजल के कीमत में आज फिर एक घाव बढ़ोतरी करे गए है और अवैया 24 घंटा के दौरान प्रदेश के कोनो कोनो जगह में हवा गरेर के संग थोर बहुत वर्षा हो के संभावना है। एक संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन यही सिरावत है। जय जोहार।
0: यह आकाशवाणी रायपुर है। शाम के 6:20 हुए हैं। संस्कृत समाचार दिल्ली से रिले करते हैं।
3: प्रवाचक पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ओस्लो नगरे तृतीय भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलने भागं भजितवान्। यस्योद्देश्यं प्रौद्योगिकी पुनर्नवीकरणीयोर्जा रक्षा व्यापार क्षेत्रेषु सहकारं सुदृढीकरणमस्ति। प्रधानमन्त्रिणा श्रीमोदिना स्वीडन देशस्य समकक्षीयेण उल्फ क्रिस्टर्सन इत्यनेन सह संयुक्तलेखे वैश्विक अनिश्चिततावधौ सहभागितायाः विषये अवधानं प्रदत्तम्। सर्वोच्च न्यायालयेन मानवजीवनस्य सार्वजनिक सुरक्षायाः च आवश्यकताम् उल्लिखन् उन्मत्तानाम् असाध्यरोगिणाम् अथवा प्रत्यक्षतया अपायकारिणां मार्गभ्रष्ट सुनकानां कृते प्रथमवारं यूथेनेशिया माध्यमेन मृत्योः अनुमतिः प्रदत्ता। अपि च आईपीएल क्रिकेट क्रीडायां अद्य सायंकाले जयपुरे राजस्थान रॉयल्स दलं लखनऊ सुपर जायंट्स दलं सम्मुखी करिष्यति। अथ वार्ताः विस्तरेण। तृतीयं भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलनम् अद्य नॉर्वे देशस्य राजधान्यां ओस्लो नगरे समारब्धम्। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह नॉर्वे स्वीडन आइसलैंड फिनलैंड डेनमार्क इत्येतेषां समकक्षिभिः सह अस्मिन् शिखर सम्मेलने भागं स्वीकृतम्। 2022 वर्षे डेनमार्क देशस्य कोपेनहेगन नगरे आयोजितस्य पूर्व शिखर सम्मेलनानन्तरं भारत नॉर्डिक देशानां मध्ये क्षेत्रीय सहकारं सुदृढीकरणम् अस्य सम्मेलनस्य उद्देश्यमस्ति। तन्त्रज्ञानं नवान्वेषणं च सुस्थिरता पुनर्नवीकरणीयोर्जा डिजिटलीकरणं च अस्य सम्मेलनस्य प्रमुखानि क्षेत्राणि सन्ति। व्यापार आर्थिक सहभागित्व सन्धिना TEPA इत्यनेन सह अधुना प्रवृत्तेन शिखर सम्मेलनस्य भारत नॉर्डिक क्षेत्राणां मध्ये व्यापार निवेश संबंधाः अपि सुदृढाः भविष्यन्ति इति अपेक्षा अस्ति। नॉर्डिक समूहेन सह भारतस्य द्वैपाक्षिक व्यापारः सम्प्रति प्रायः 21 बिलियन डॉलर मितम् अस्ति। अनेन शिखर सम्मेलनेन भारत नॉर्डिक देशयोः मध्ये बहुपक्षीय सहकारस्य विस्तारः भविष्यति तथा च परस्पर हितस्य क्षेत्रीय वैश्विक विषयेषु चर्चायाः अवसरः प्राप्यते इत्यपि अपेक्षा अस्ति। शिखर सम्मेलनात् प्राक् पूर्वं प्रधानमन्त्री मोदी आइसलैंड देशस्य प्रधानमन्त्रिणा फिनलैंड देशस्य प्रधानमन्त्रिणा डेनमार्क देशस्य प्रधानमन्त्रिणा च सह द्वैपाक्षिक मेलनं कृतवान्। प्रधानमन्त्री श्रीमोदी UAE नीदरलैंड्स स्वीडन देशानां भ्रमणं समाप्य ह्यः नॉर्वे देशं सम्प्राप्तवान्। गतसायं सः क्राउन प्रिंस हकोन तथा नॉर्वे देशस्य प्रधानमन्त्रिणा जोनास गहर स्टोन इत्युभाभ्यां सह भारत नॉर्वे व्यापार अनुसंधान शिखर सम्मेलने भागं भजितवान्। वाणिज्य अनुसंधान समुदायं संबोधयन् प्रधानमंत्री श्रीमोदी व्यापार आर्थिक सहभागित्व संधेः प्रभावात् परं द्वैपाक्षिक व्यापारस्य निवेशस्य च वृद्धेः प्रशंसाम् अकरोत्। सः अधोरेखितवान् यत् उभयोः पक्षयोः हितधारकाः 100 बिलियन US डॉलर इत्यस्य निवेशलक्ष्यं साधयितुं प्रयत्नान् कुर्युः। परिणामतः भारते 10 लक्षाणि यावत् वृत्त्यावसराणां सृजनं च करणीयम्। प्रधानमन्त्री श्रीमोदी स्वस्य 5 राष्ट्राणां यात्रायाः पञ्चमान्तिमे चरणे च अद्य इटली देशं गमिष्यति। भारत स्वीडन देशौ वैश्विक अनिश्चिततायाः क्षणे सहकारः सहभागी समृद्धेः सुस्थिरस्य भविष्यस्य च मार्गं निर्धारणाय अवधानं दत्तवन्तौ। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना तस्य स्वीडन देशस्य समकक्षीयेण उल्फ क्रिस्टर्सन इत्यनेन च लिखिते लेखे वैश्विक अनिश्चितताया ऊर्जा असुरक्षाया आर्थिक विभाजन से च समये विश्वम एकाकीभूय कार्य कर्तुम अंतर्राष्ट्रीय सहभागित्वं सुदृढ़ीकर्तुम वा चयनम कर्तव्यम इति अवधानम दत्तवन्तौ। अद्य राष्ट्रीय दैनिक पत्रिकायां प्रकाशिते लेखे उभौ प्रधानमन्त्रिणौ उक्तवन्तौ यत् संयुक्त राष्ट्र संघः स्वस्य 80तमं वार्षिकोत्सवम् आचरति। अतः अन्ताराष्ट्रिय सहयोगस्य बहुपक्षवादस्य च मूल्यम् इतोपि स्पष्टम् अभवत्। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। सर्वोच्च न्यायालयेन मानव जीवनस्य सार्वजनिक सुरक्षायाः च आवश्यकताम् उल्लिखन् उन्मत्तानाम् असाध्य रोगिणाम् अथवा प्रत्यक्षतया अपायकारिणां मार्गभ्रष्ट शुनकानां कृते प्रथमवारं यूथेनेशिया माध्यमेन मृत्योः अनुमतिः प्रदत्ता। न्यायाधीशः विक्रमनाथः, न्यायाधीशः संदीप मेहता, न्यायाधीशः एनवी अंजारिया इत्येतेषां पीठेन सम्पूर्णे देशे वर्धमानानां स्वामी विरहितानां शुनकानां संख्यां निवारयितुं निर्देशाः प्रदत्ताः। न्यायपीठेन उक्तं यत् यत्र यत्र स्वामी विरहितानां शुनकानां संख्या चिन्ताजनक स्तरम् अवाप्नोत् तथा च यत्र पुनः पुनः शुनकानां दंशः वा आक्रमणानि जनसुरक्षायै विभीषिकां जनयन्ति तत्र नगरपालिकाः मृत्योः आश्रयं स्वीकर्तुं शक्नुवन्ति। गतवर्षस्य जुलाई मासस्य 28 दिनाङ्के आरब्धे प्रकरणे अयमादेशः प्रसारमाध्यमानां प्रतिवेदनेषु विशेषतः राष्ट्रिय राजधान्यां बालानां मध्ये स्वामिविरहितानां शुनकानां दंशनस्य रेविज इति रोगस्य च घटनाः प्रकाशमानाः आसन्। एतदतिरिच्य सर्वोच्च न्यायालयेन स्वामी विरहितानां शुनकानां स्थानान्तरणस्य प्रजननावरोधस्य च विषये पूर्वतनस्य आदेशस्य पुनरावेदनस्य याचिका निरस्तीकृता। सः अवदत् यत् गौरवपूर्वकं जीवनस्य अधिकारे शुनकानां दंशनस्य आक्रमणात् हानिकारकं भयं विना स्वातन्त्र्यतया भ्रमणस्य अधिकारः अन्तर्भवति। केन्द्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल अद्य उद्यम सर्वकारयो मध्ये व्यापारे सुगमतां वर्धयितुं भारते प्रतिस्पर्धात्मकं वर्धयितुं विकसित भारतं प्रति देशस्य यात्रां च त्वरितं कर्तुं प्रगाढ़ सहयोगस्य आह्वानम् अकरोत्। नवदिल्ल्यां 26,2023 भारत व्यापार परिष्कार शिखर सम्मेलने मंत्री भाषमाणः आसीत्। श्री गोयल अवदत् यत् वर्तमान वैश्विक परिस्थितिः, भूराजनैतिक अनिश्चितताः च भारतस्य कृते व्यापार प्रतिक्रियां सुदृढं कर्तुं द्रुततर परिष्कारान् स्वीकर्तुं महत्तर स्थितिस्थापकायाः निर्माणं कर्तुं आपूर्तिश्रृंखलाः सुदृढां कर्तुं च अवसरत्वेन द्रष्टव्यम्। रूसदेशस्य राष्ट्रपतिः व्लादिमीर पुतिनः चीनदेशस्य राष्ट्रपतिना शी चिनफिंग वर्येण सह मेलनं करिष्यति। क्रेमलिन इत्यस्यानुसारम् उभौ नेतारौ आर्थिक सहयोगस्य विषये प्रमुखेषु प्रादेशिक वैश्विक विषयेषु च चर्चां करिष्यतः। एषा यात्रा चीन रूस मैत्रीसन्धेः 25 वर्षाणाम् उपलक्ष्ये आचर्यते। एषा वार्ता तदा अभवत् यदा वैश्विक भूराजनैतिक संघर्षस्य मध्ये चीनदेशः अमेरिकादेशेन रूसदेशेन च सह स्वस्य सम्बन्धान् सन्तोलयति। युक्रेन द्वन्द्वस्य विषये पाश्चात्य प्रतिबन्धानाम् अनन्तरम् अपि चीनदेशः रूसदेशस्य बृहत्तमः वाणिज्यिक सहभागी रूसदेशस्य तैल प्राकृतिकेन्धनस्य प्रमुखः क्रेता चास्ति। आईपीएल क्रिकेट क्रीडायाम् अद्य सायं 7:30 जयपुरे राजस्थान रॉयल्स दलं लखनऊ सुपर जायंट्स दलं सम्मुखीकरिष्यति। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, गुजरात टाइटन्स, सनराइजर्स हैदराबाद दलानि च पूर्वमेव प्ले ऑफ क्रीडायां प्रविष्टवन्तः। मुंबई इंडियंस लखनऊ सुपर जायंट्स दले स्पर्धातः बहिः गतवन्तः। पंजाब किंग्स, राजस्थान रॉयल्स, चेन्नई सुपर किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स, कोलकाता नाइट राइडर्स दलानि अधुनापि अंतिम स्पर्धा याम संति। अन्ते मुख्यवार्ताः पुनः एकवारम्। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ओस्लो नगरे तृतीये भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलने भागं भजितवान्। यस्योद्देश्यं प्रौद्योगिकी पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा रक्षा व्यापार क्षेत्रे सुसहकारं सुदृढीकरणमस्ति। प्रधानमन्त्रिणा मोदिना स्वीडन देशस्य समकक्षीयेण उल्फ क्रिस्टर्सन इत्यनेन सह संयुक्त लेखे वैश्विक अनिश्चिततावधौ सहभागितायाः विषये अवधानं प्रदत्तम्। आईपीएल क्रिकेट क्रीडायाम् अद्य सायंकाले जयपुरे राजस्थान रॉयल्स दलं लखनऊ सुपर जायंट्स दलं सम्मुखी करिष्यति इति वार्ताः।
0: आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। शाम के 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़ियां।

0: नमस्कार श्रोताओ, आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे कार्यक्रम हमारी बेड़िया में। तो श्रोताओ, आज फिर हम आपके लिए एक नई कहानी लेकर आए हैं। आज की कहानी शुरू करने से पहले आप हमारा फोन नंबर नोट कीजिए। हमारा नंबर है
1: 9311504004। जी हाँ, 9311504004।
0: श्रोतो, हमारे भारत को युवा देश माना जाता है। हमें युवाओं को नशे से बचाकर युवा शक्ति को राष्ट्र निर्माण में प्रयोग करना है। आंकड़ों से पता चलता है कि देश में अधिकतर युवा हैं नशे की गिरफ्त में हैं। श्रोताओं, नशा एक अभिशाप है। यह एक ऐसी बुराई है जिसमें इंसान का अनमोल जीवन समय से पहले ही मौत का शिकार हो जाता है। नशे के लिए समाज में शराब, गांजा, भांग, अफीम, जर्दा, गुटखा, तंबाकू आदि पदार्थों का उपयोग किया जाता है। इन जहरीले और नशीले पदार्थों के सेवन से व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक हानि पहुंचने के साथ ही इससे सामाजिक वातावरण भी प्रदूषित होता है। साथ ही स्वयं और परिवार की सामाजिक स्थिति को भी भारी नुकसान पहुंचता है। जो कोई भी नशे के चंगुल में फंस गया वह स्वयं को बर्बाद होता ही है, इसके साथ ही उसका परिवार भी बर्बाद हो जाता है। नशा करने वाले व्यक्ति का सबसे बुरा प्रभाव अपनी पत्नी और बच्चों पर पड़ता है। भारत के कई इलाकों में नशा करके औरतों के साथ बदतमीजी से बोलना, उनके साथ मारपीट करना जैसे आम सी बात है। नशा करने के बाद व्यक्ति को उनके व्यवहार का भी कोई होश नहीं रहता और नशा करने वाला व्यक्ति नशे का इतना आदी हो जाता है कि नशे का सेवन ही उसके लिए और उसके परिवार से अधिक महत्वपूर्ण बन जाता है। इसलिए व्यक्ति को सही समय पर रोकना, नशे की लत से बाहर लाने के लिए मदद करना अत्यंत आवश्यक है। अगर सही व्यक्तियों, परिवार, दोस्तों का सहयोग मिले तो नशे की लत से छूटा जा सकता है। तो आइए बढ़ते हैं आज के कार्यक्रम की ओर और देखते हैं नशे का क्या प्रभाव है और नशा हमें किस हद तक बर्बादी तक पहुंचा सकता है। तो आज के हमारे कार्यक्रम का शीर्षक है मेरी लत। रमेश एक दिन अपने काम से घर लौट रहा था, तभी उसे उसका पुराना जिगरी मित्र दिनेश एक दारू के ठेके के पास दिखता है।
2: अरे दिनेश, तू यहाँ? अरे कैसा है तू?
3: अरे रमेश, तू इतने समय बाद? मैं अच्छा हूँ, तू बता, तू कैसा है?
2: अरे यार, मैं भी अच्छा हूँ, पर तू यहाँ शराब की दुकान के बाहर क्या कर रहा है?
3: कुछ नहीं, यह सब छोड़, चल तू मेरे घर चल, बैठकर बात करेंगे।
2: अरे नहीं नहीं यार, इस समय तेरे घर मेरे घर से निकलवाएगा क्या?
3: मतलब?
2: अरे तेरी भाभी मुझे घर से निकाल ही देगी।
3: तेरी शादी कब हुई?
2: बस यार, अभी 2 साल पहले।
3: सही है, बताया भी नहीं।
2: अरे यार माफ करना, कोशिश तो की थी पर तेरा नंबर या कुछ पता नहीं मिला।
3: चल कोई बात नहीं, अभी तू घर चल, आज लेट घर चले जाना।
2: चलो ठीक है।
3: अरे दिया, दरवाजा खोलो।
4: हाँ अभी आई।
3: ये देखो मेरे साथ कौन आया है, पहचाना तुमने?
4: रमेश भैया है ना।
3: अरे वाह, तुम कैसे पहचानी?
4: एक तो आपकी खुशी से, दूसरा पहले की कुछ फोटो देखे हैं तो बस अंदाजा लगा लिया। अब अंदर भी आ जाओ।
3: दिया जरा चाय नाश्ता बना दो।
4: हाँ अभी लाती हूँ।
3: और बता भाई कैसा है तू, और क्या कर रहा है आजकल, और पत्नी बच्चे कैसे हैं?
2: बस यार सब बढ़िया है, अभी कुछ 7-8 महीने पहले ही यहाँ के किसी पास के अस्पताल में नौकरी लगी, तब से बस यही कर रहा हूँ। हमेशा दूसरे रास्ते से घर जाता हूँ, लेकिन आज जब पहली बार यहाँ से निकला तो तुझे देखा और तू मिल गया।
3: हाँ यार सच में मैं तुझे बहुत याद करता हूँ।
4: ये लीजिए, चाय नाश्ता तैयार है।
3: चाय पी ले, दिया चाय बहुत अच्छी बनाती है।
2: यार खुशबू तो अच्छी आ रही है। वाह वाकई में बहुत अच्छी चाय बनाई है भाभी। पर भाई अब मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे।
3: अरे इतनी जल्दी जा रहा है, खाना भी तो खाकर जाता।
2: नहीं नहीं भाई, खाने के लिए फिर कभी आऊंगा, बस अभी चलता हूँ।
3: ठीक है भाई,
2: अच्छा वैसे एक बात बता, तू जहाँ हम मिले थे वहाँ क्या कर रहा था?
3: अरे अरे कुछ नहीं यार, इन बातों को छोड़ तू।
2: सच बता दिनेश मुझे, डॉक्टर हूँ, पीने वाले को पहचान ही लेता हूँ।
3: ठीक है, कल मिल सकता है वहीं पर?
2: हाँ ठीक है, कल मिलते हैं।
3: दिया लाइट बंद कर दो, मैं सोने जा रहा हूँ।
4: अरे आपने खाना तो खाया ही नहीं।
3: मन नहीं है, तुम खा लो।
4: क्या हुआ, कुछ परेशानी है क्या, मुझे बताइए।
3: ज्यादा चपड़ चपड़ करने की जरूरत नहीं है, जितना बोला उतना करो, समझी?
4: जी।
2: हाँ रमेश अब बता क्या हुआ।
3: क्या बताऊँ यार, नौकरी सही नहीं चल रही है, एक नया बॉस आया है, हमेशा कुछ ना कुछ करके सबको नौकरी से निकाल रहा है, मुझे भी वार्निंग दी है, तो बस अपना गम दूर करने के लिए यहाँ आ जाता हूँ।
2: चाहे तू कुछ भी क्यों ना कर, पर यार शराब पीना किसी बात का समाधान नहीं है, और तू ऐसा कैसे कर सकता है यार, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा।
3: तो क्या करूँ यार।
2: अरे बस कर यार, उठ और कितना पिएगा, अभी घर जा, मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ।
3: दिया, ओ दिया दरवाजा खोलो।
4: आज आप फिर से पीकर आए हो?
3: फिर से चपड़ चपड़ करने लगी तू?
4: मैंने क्या किया, मैं सही तो बोल रही हूँ, शराब पीना सेहत के लिए बहुत बुरा होता है।
3: चुप हो जा, ज्यादा मत बोल तू।
2: दिनेश, ओ दिनेश, अरे दरवाजा खोलो भाभी।
4: अरे रमेश भैया आप आइए आइए।
2: नमस्ते भाभी, ये मेरी पत्नी है रिया।
5: नमस्ते भाभी।
4: नमस्ते।

0: अरे भाभी, ये आपके चेहरे पर क्या हो रहा है?
1: अरे अरे कुछ नहीं, आप लोग बैठिए, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ।
2: भाभी, दिनेश कहाँ है?
1: वो तो अभी सो रहे हैं।
2: भाभी आप यहाँ बैठिए, ये दिनेश आजकल जो भी कर रहा है आप मुझे बताइए।
1: पता नहीं भैया, इनको क्या हो गया है आजकल? पहले तो ये बहुत सही थे, पर आजकल रोज रात को लेट आते हैं, रोज शराब पी कर आते हैं। मैं कुछ समझाती हूँ तो मुझे मारते हैं, पर अब घर में भी किसी चीज का उनको कोई होश नहीं रहता है। वैसे ही तनख्वाह बहुत कम है और अब तो जितनी आती है वो सब शराब में खत्म हो जाती है।
0: अरे अरे भाभी, आप रोइए मत, रोइए मत, शांत हो जाइए।
2: अरे अरे भाभी आप चिंता मत कीजिए, मैं बात करता हूँ दिनेश से, मैं समझाता हूँ उसे। दिनेश उठ, उठ, तुझसे बात करनी है।
3: अरे भाई तू सुबह सुबह यहाँ?
2: हाँ इधर आ बैठ। ये सब क्या चल रहा है यार, ये तू क्या कर रहा है? शराब पीकर अपना सब कुछ खराब करना चाहता है। तुझे इतनी अच्छी पत्नी मिली है फिर भी तू उसकी परवाह नहीं करता। देख भाभी को, और तूने उन पर हाथ भी उठाया।
3: तो क्या करूं, घर आते ही शुरू हो जाती है, कुछ समझती नहीं है ये।
2: दिनेश शराब न पीने की ही तो बात कहती है, और कुछ तो नहीं कहा ना, तो मैं भी तुझसे वही कहता हूँ तो तू मुझे भी मारेगा।
3: भाई अभी मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज, मुझे अच्छा लगता है शराब पीकर, मैं अपना गम भूल जाता हूँ। क्या गलत करता हूँ पीकर? पीकर आता हूँ, आकर सो जाता हूँ चुपचाप।
2: यही तो गलत है यार, जो भी बात है बता, मिलकर कुछ समाधान निकालेंगे। पर ये इस तरह से शराब पीना कोई समाधान नहीं है किसी चीज का।
3: भाई प्लीज, अभी मैं कुछ समझने की कंडीशन में नहीं हूँ, बस अभी मुझे अकेला छोड़ दो।
2: ओह ठीक है यार, फिर हम चलते हैं।
1: अरे आप लोग चाय नाश्ता तो करके जाइए।
2: नहीं भाभी, फिर कभी, अपना और दिनेश का ध्यान रखिए, और कुछ भी जरूरत हो तो मुझे फोन कर दीजिए।
0: दिनेश भैया, शराब की वजह से आपने, आपकी पत्नी, आपका घर परिवार सब मुश्किल में है, सबसे ज्यादा तो आप खुद। आप समय लीजिए और सोचिए, और जल्दी से सही होकर हमें बुलाइए खाने पर।
3: जी भाभी जरूर।
2: ठीक है दिनेश चलते हैं।
3: मेरी बेइज्जती करके खुशी मिल गई होगी तुमको, अब बस कृपया करके मुझे अकेला छोड़ दो।
4: दिनेश परेशानियों फिर दफ्तर के खराब माहौल की वजह से पीना शुरू कर देता है और शराब पीने का आदी हो जाता है। दिनेश को उसके दोस्त, उसकी पत्नी सब समझाने की कोशिश करते हैं, पर वह नहीं समझता। शराब का सेवन और बढ़ता जा रहा है, उसका व्यवहार दिन ब दिन बदतर होने लगता है। अब आगे।
3: दिया, ओ दिया।
1: बस भी कीजिए आप, और कितनी शराब पियेंगे, आपकी हालत खराब होती जा रही है।
0: हेलो भाभी।
1: हेलो
0: भाभी, आप रो रही हैं? सब ठीक तो है ना?
1: रिया, इन्होंने बहुत ज्यादा पीना शुरू कर दिया है, कुछ खाते पीते भी नहीं है सही से। अब तो इनको उल्टियाँ होने लगी हैं और ये बस दिन भर शराब पीते रहते हैं।
0: ओहो भाभी, मैं रमेश को कहती हूँ, वो जरूर कुछ करेंगे।
1: प्लीज रिया, एक बार जरूर बोलिए रमेश भैया को।
0: हाँ हाँ भाभी, आप परेशान मत हो, मैं अभी उनसे बात करती हूँ, रुकिए।
1: थैंक यू रिया।
3: दिया, ओ दिया।
1: अरे ये क्या हो गया, खून, अब मैं क्या करूँ? एक काम करती हूँ, रमेश भैया को कॉल करती हूँ, वो डॉक्टर है, वो ही मेरी मदद कर सकते हैं। हेलो रमेश भैया।
2: हेलो, हाँ भाभी। भाभी क्या हुआ, आप इतनी घबराई क्यों है, सब ठीक तो है ना?
1: नहीं भैया, दिनेश लगातार शराब पी रहे थे कुछ दिन से और उन्हें उल्टियाँ हो रही थी, आज तो उनको खून की उल्टी हो गई है और वो बेहोश हो गए हैं।
2: अरे भाभी आप घबराइए मत, मैं अभी आता हूँ।
1: भैया दिनेश ठीक तो है ना?
2: हाँ भाभी अभी तो वो ठीक हो गया है, ज्यादा शराब पीने की वजह से बस लीवर में थोड़ी सूजन हो गई थी, पर उसे दवाइयाँ और ड्रिप चढ़ा दी है, थोड़ी देर में उसे अब होश भी आ जाएगा।
1: थैंक यू सो मच भैया।
2: नहीं नहीं भाभी, थैंक यू मत कहिए, इसकी जरूरत नहीं है।
3: दिया, ओ दिया, ये मैं कहाँ हूँ?
2: अस्पताल में।
3: अरे रमेश तू?
2: हाँ मैं, देख दिनेश डॉक्टर हूँ मैं, इसीलिए मरीज का इलाज करना मेरा फर्ज है, इसके सिवा मैं तुझे नहीं जानता।
3: तू ऐसे क्यों बोल रहा है यार?
2: ऐसे नहीं तो कैसे बोलूं? दोस्त तो है नहीं तू मेरा, अगर दोस्त होता तो एक दोस्त की बात मान लेता। कितना समझाया तुझे शराब मत पी, ये सिर्फ बर्बादी का रास्ता है, पर तुझे तो समझ ही नहीं आया।
0: और तू और शराब की लत में ऐसे फिर गए, अपने अपनी आप को भाभी का भी ध्यान नहीं रखा, क्या हालत हो गई देखो उनकी। और आपने उन पे हाथ भी उठाया? अपनी पत्नी पर हाथ उठाना, उसके साथ मारपीट करना, ये तो सबसे ज्यादा बुरी बात है भैया।
3: दिया कहाँ है? दिया प्लीज मुझे माफ कर दो, अब से मैं तुम्हारे साथ ऐसा बिल्कुल भी व्यवहार नहीं करूँगा।
2: नहीं दिनेश, हम सब तुझसे गुस्सा हैं।
0: हाँ, और अब तो हम भाभी को भी लेकर जा रहे हैं, आप जितना मर्जी चाहे शराब पी लो।
2: हाँ यार, अब तो मैंने तेरे लिए 3-4 कार्टून और मंगवा लिए हैं।
3: अब से मैं कभी भी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा, और मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ प्लीज, मुझे माफ कर दो दिया।
1: थैंक यू सो मच रमेश भैया और रिया भाभी, आप दोनों ने मेरी बहुत मदद की, और दिनेश बहुत लकी है कि उनको आपके जैसे समझदार और अच्छे दोस्त मिले हैं।
2: अरे नहीं नहीं भाभी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी मैं एक डॉक्टर हूँ, ये तो मेरा फर्ज था।
4: श्रोताओं, जैसा कि आपने सुना आज की कहानी में, किस प्रकार तनाव में आकर दिनेश ने शराब पीना शुरू कर दिया और धीरे धीरे करके वह शराब का आदी हो गया, और इसी लत की वजह से वह अपनी पत्नी के साथ मारपीट करने लगा। मैं आशा करती हूँ कि आज की कहानी ने आपको जरूर प्रेरित किया होगा। कहानी से जुड़े विचार और सवाल आप हम तक शीघ्र से शीघ्र पहुँचाएं, उसके लिए हमारा नंबर नोट करें। हमारा नंबर है
5: 9311504004। जी हाँ, 9311504004।
4: और साथ ही आप हमें पत्र भी भेज सकते हैं। पत्र भेजने के लिए हमारा पता है, कार्यक्रम हमारी बेड़ियाँ, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1।
0: इसी के साथ श्रोताओं, अब मैं आपसे विदा लेना चाहूंगी, तब तक के लिए मुझ राखी की तरफ से आप सभी को प्यार।

0: प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़ियां अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है, कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। शाम के 6:45 हुए हैं, थोड़ी ही देर में हिंदी में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
2: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
1: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
2: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं, उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
1: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
2: क्यों?
1: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
3: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
4: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
5: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
4: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
5: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
4: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है।
5: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
3: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए। विज्ञापन बुक करने

0: आकाशवाणी आइए।
1: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
2: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
1: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
2: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
1: आकाशवाणी से।
0: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
2: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
1: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
2: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
0: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
3: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं विभाष कुमार झा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगले 5 वर्षों में बस्तर संभाग के लोगों तक सभी शासकीय सुविधाएं पहुंचाकर उनकी औसत आमदनी में 6 गुना की वृद्धि की जाएगी। पेट्रोल की कीमत में 90 पैसे और डीजल के मूल्य में 96 पैसे प्रति लीटर की हुई बढ़ोतरी। और रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर सहित प्रदेश के मैदानी इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग देश का सबसे विकसित आदिवासी संभाग बन जाएगा। आज बस्तर के संभागीय मुख्यालय जगदलपुर में मीडिया से चर्चा करते हुए श्री शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2031 तक बस्तर के लोगों की औसत आमदनी 6 गुना तक बढ़ जाए।
4: मैं इतना सुनिश्चित करना चाहता हूं कि बस्तर का हर नागरिक की अभी जो एवरेज आय है उसको कम से कम हम 5 साल में 6 गुना करने का काम करेंगे, इसमें कोई संशय रखने की जरूरत नहीं।
5: नरेंद्र मोदी जी ने पूरे नक्सल मुक्त क्षेत्र के लिए एक तय लक्ष्य तय किया है कि सुरक्षा से विश्वास की यात्रा पूरी करनी है, विश्वास से विकास की यात्रा पूरी करनी है, विकास से समृद्धि की यात्रा और समृद्धि से संतृप्ति तक की यात्रा आने वाले 5 साल में पूरी करनी है।
3: श्री शाह ने कहा कि बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने के बाद केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर अगले 5 वर्षों के लिए इसके विकास से संबंधित एक वैज्ञानिक रोडमैप तैयार किया है। इसके तहत बस्तर संभाग में स्थापित सुरक्षा बलों के करीब 200 शिविरों में से 70 कैंपों को शहीद वीर गुंडाधूर सेवा डेरा में बदला जाएगा। इस सेवा डेरा के माध्यम से स्थानीय लोगों को शासन की सभी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाएगा, जिसमें बैंकिंग, कौशल प्रशिक्षण, स्कूल, आंगनबाड़ी और वनोपज प्रसंस्करण शामिल हैं। इसके साथ ही बस्तर के हर आदिवासी परिवार को एक एक गाय भैंस दी जाएगी और अगले 6 माह के दौरान यहां सहकारी डेयरी का एक बड़ा नेटवर्क तैयार किया जाएगा। इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड NDDB के साथ अनुबंध कर लिया है।
4: मैं इतना सुनिश्चित करना चाहता हूं कि बस्तर का हर नागरिक की अभी जो एवरेज आय है उसको कम से कम हम 5 साल में 6 गुना करने का काम करेंगे, इसमें कोई संशय रखने की जरूरत नहीं।
5: नरेंद्र मोदी जी ने पूरे नक्सल मुक्त क्षेत्र के लिए एक तय लक्ष्य तय किया है कि सुरक्षा से विश्वास की यात्रा पूरी करनी है, विश्वास से विकास की यात्रा पूरी करनी है, विकास से समृद्धि की यात्रा और समृद्धि से संतृप्ति तक की यात्रा आने वाले 5 साल में पूरी करनी है।
3: इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री ने आज जगदलपुर में आयोजित मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों के साथ ही केंद्रीय गृह सचिव, इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक और इन चारों राज्यों के पुलिस महानिदेशक तथा पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में आज फिर से बढ़ोतरी की है। तेल कंपनियों के छत्तीसगढ़ के राज्य स्तरीय समन्वयक नितिन चौहान ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि पेट्रोल की कीमत में 90 पैसे और डीजल की कीमत में 96 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। इस तरह से रायपुर में अब पेट्रोल 104 रुपये 46 पैसे प्रति लीटर और डीजल 97 रुपये 51 पैसे प्रति लीटर की दर से मिलेगा। इस बीच राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि छत्तीसगढ़ में पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है और आम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार के अनुसार प्रदेश में वर्तमान में 3,28,00,000 लीटर से अधिक पेट्रोल और 7,75,00,000 लीटर से ज्यादा डीजल उपलब्ध है। सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और अनावश्यक भंडारण न करें। कोंडागांव पुलिस ने अंतर्राज्यीय साइबर गिरोह का पर्दाफाश कर इसके 7 सदस्यों को दिल्ली और गाजियाबाद से गिरफ्तार किया है। फरसगांव के एसडीओ पुलिस अभिनव उपाध्याय ने बताया कि आरोपियों को पकड़ने के लिए जिला पुलिस की अलग अलग टीमें पिछले करीब 3 महीने से तलाश कर रही थीं। उन्होंने बताया कि आरोपी खुद को बीमा एजेंट बताकर लोगों से पैसा वसूल किया करते थे और अलग अलग मोबाइल फोन से फर्जी मैसेज भेजकर उनके साथ ठगी किया करते थे। दुर्ग पुलिस ने आईपीएल मैचों के दौरान ऑनलाइन सट्टा ऐप संचालित करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि ऑनलाइन सट्टा कारोबार का मुख्य संचालक सेट स्पोर्ट बुक और लोटस ऐप के जरिए म्यूल अकाउंट का उपयोग कर करोड़ों रुपए का लेन देन कर रहा था। पुलिस को आरोपियों के पास मिले म्यूल खातों से करीब 5 करोड़ रुपए से ज्यादा के ट्रांजेक्शन की जानकारी मिली है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। राज्यपाल रमेश डेका ने कल लोकभवन में विभिन्न राज्यों के स्थापना दिवस समारोह के दौरान समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले गुमनाम नायकों को सम्मानित किया। इनमें शुभांगी आप्टे, संजय आप्टे, सुजॉय मंडल, रुचि साहू, तुमन साहू, कुसुमलता बिपरे और पुलिस अधिकारी सूरज सिंह परिहार शामिल हैं। दुर्ग भिलाई के नेहरू नगर इलाके में हुई एक चोरी के मामले की जांच करते हुए पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने बताया कि इस मामले में मेरठ से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।
6: नेहरू नगर में विगत दिनों चोरी हुई, चोरी के उपरांत पुलिस टीम लगातार उस पर लगी हुई थी। एक स्पेशल टीम का भी गठन किया गया था। अंततः 2 आरोपी मेरठ से पकड़े गए हैं और वहां से लगभग 400 ग्राम सोना रिकवर हुआ है जो गली हुई अवस्था में था और साथ ही लगभग 3.5 लाख कैश मिला है। ट्रांजिट रिमांड टीम को लाया गया है और इनसे इंटरोगेशन करने हेतु PR लिया जाएगा।
3: वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस गिरोह ने दुर्ग भिलाई, नवा रायपुर, बिलासपुर और जबलपुर में चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया था। ये आरोपी दिन के समय फेरी वाले बनकर कपड़ा और कंबल बेचने के बहाने रेकी किया करते थे। बिलासपुर जिले में पुलिस और ACCO की टीम ने सरकंडा थाना क्षेत्र के अंतर्गत 90 किलो गांजा के साथ 8 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। ये महिलाएं इलेक्ट्रिक ऑटो से गांजे की तस्करी कर रही थीं। ये सभी महिलाएं भटियारी गांव की रहने वाली हैं और ओडिशा से गांजा लाकर आसपास के इलाकों में खपाने की तैयारी में थीं। पुलिस ने गांजे के साथ 2 इलेक्ट्रिक ऑटो भी जब्त किए हैं जिनकी कुल कीमत 46,75,000 रुपये आंकी गई है। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के रायपुर, बालोद, राजनांदगांव, बलौदाबाजार, जांजगीर चांपा, रायगढ़ और बिलासपुर सहित कुछ जिलों में तेज हवा चलने और हल्की बारिश होने की संभावना जताई है। वहीं बस्तर संभाग के जिलों में हल्की वर्षा और मेघ गर्जन के साथ ही आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। इस बीच आज शाम दुर्ग जिले में मौसम ने अचानक करवट बदली और तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। कई इलाकों से आकाशीय बिजली गिरने की भी खबर मिली है। आंधी के कारण अनेक स्थानों पर पेड़ गिर गए हैं जिससे बिजली और यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई है। और अब कुछ खबरें संक्षेप में सुन लीजिए। सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों से पकड़े गए लावारिस कुत्तों को टीकाकरण या नसबंदी के बाद वापस नहीं छोड़ने के अपने पूर्व के निर्देशों को वापस लेने से इनकार किया है। राजधानी रायपुर स्थित लोकभवन में कल हिमाचल प्रदेश, गुजरात, सिक्किम और महाराष्ट्र के स्थापना दिवस का कार्यक्रम पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया गया। राज्यपाल रमेश डेका इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्या मंडलम ने उत्तर मध्यमा प्रथम वर्ष 11वीं की द्वितीय मुख्य परीक्षा की समय सारणी जारी कर दी है। ये परीक्षा 1 जून से 9 जून तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा हर दिन सुबह 9 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक होगी। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति और जनजाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजना के तहत कक्षा 6वीं में प्रवेश के लिए अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के विद्यार्थी 20 जून तक आवेदन कर सकते हैं। चयन परीक्षा 26 जुलाई को दोपहर 12 से 2 बजे तक होगी। जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र राजनांदगांव द्वारा कल 20 मई को सुबह 10 बजे से अंबागढ़ चौकी तहसील कार्यालय परिसर में जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। कांकेर जिले के भानु प्रतापपुर में आज सुबह रेलवे पटरी पार करते समय ट्रेन की चपेट में आने से एक सेवानिवृत्त शिक्षक की मौत हो गई। जांजगीर जिले के खटोला गांव में कार और मोटरसाइकिल की टक्कर में एक युवक की मौत हो गई।

0: समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। कुछ ही पलों में हमारा अगला प्रसारण होगा।

हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय हमारे स्टूडियोज की घड़ी में शाम के 7 बजे हैं। पेश है चित्रपट संगीत का कार्यक्रम।

ആകാശവാണി എറ്റ് 90. आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत का कार्यक्रम आशिकी 2। लीजिए श्रोताओं, अब सुनिए इस फिल्म का गीत। आवाजें पलक मुच्छल और अरिजीत सिंह की, इरशाद कामिल के लिखे इस गीत को संगीत में पिरोया है मिथुन ने।

श्रोताओं अब एक कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए। श्रोताओं आगामी शुक्रवार 22 मई 2026 को प्रसारित होने वाले हेलो चौपाल कार्यक्रम का विषय होगा खेती किसानी के समय किसानों को होने वाले चर्म रोग एवं सावधानियां। आपकी समस्याओं और जिज्ञासाओं के समाधान हेतु हमारे स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर मृत्युंजय सिंह, चर्म रोग विशेषज्ञ, मेकाहारा, रायपुर। आप अपनी जिज्ञासा और शंका का समाधान पाने के लिए हमें फोन कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स है 400-3482, 400-3483 और 400-3484। रायपुर का एसटीडी कोड है 0771। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग शुक्रवार 22 मई 2026 को दिन के 11:30 से 12 बजे तक की जाएगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण शुक्रवार को शाम 7:30 पर किया जाएगा। हमें आपके फोन कॉल्स का इंतजार रहेगा। सूचना समाप्त हुई। आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत का कार्यक्रम। अरिजीत सिंह के स्वर में यह है एक विलन फिल्म का गीत। गीत और संगीत मिथुन का है।

फिल्म का नाम है एयरलिफ्ट, आवाजें तुलसी कुमार, अरिजीत सिंह और अमाल मलिक की, गीतकार कुमार और संगीतकार है अमाल मलिक।

कार्यक्रम के आखिर में सुनिए श्रद्धा कपूर और अमाल मलिक की आवाजों में बागी फिल्म का गीत, बोल संजीव चतुर्वेदी के और संगीत अमाल मलिक का है।

चित्रपट संगीत का कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। चित्रपट संगीत आप रात 8 बजे भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। शाम के 7:21 हुए हैं। प्रस्तुत है किसान साथियों का कार्यक्रम चौपाल।

0: राम राम निधि।
1: राम राम नीतू दीदी। औ कार्यक्रम सुनैया जम्मू संगवारी मल्ला हमर दोनों के
0: राम राम। निधि हमर जिन भुइया है कक्का सुघर है और ये भुइया मा जिन सबले सुघर है ना वो हरे हमर राज हमर देश है नहीं भाई। देखे जाए निधि तो हमर देश ला जंगल नदिया और प्रकृति के वरदान मिले है। तखरे सुती तो अतका सुघर धरती मा हमर देश सबले सुघर दिखते भाई। हमर देश के बहुत अकन जिन परिवार है ना वो है यही जो वरदान मिले है जंगल नदिया के। वो मन का अपन जीवन चलाहे बर जंगल ऊपर निर्भर है। जंगल ले मिले जिनिस मन ना वन उपज कहे जाते जैसे तेंदू पत्ता महुआ हर्रा बहेरा आंवरा चिरौंजी लाग साल के बीजा बेल और औषधि पौधा। ये जम्मो सिर्फ घर के जरूरत ला ही पूरा नहीं करे भलुक आमदनी के बड़े साधन घलो होते।
1: हाँ नीतू दीदी सही कहते हैं। फिर वनोपज के सही तरीका ले संग्रहण करे ले जंगल के संरक्षण घलो होते है ना। और लोगन मन ला बढ़िया आमदनी घलो मिलते। मगर देख अब का होते कि वनोपज ला बेरा अनुसार साफ सुथरा और सावधानी ले संग्रहित करे जाए ना तो ओखर बाजार मा कीमत तको ज्यादा मिलते।
0: हाँ।
1: गुणवत्तापूर्ण वनोपज के मांग आज देश और विदेश दोनों जगह बढ़त जाते।
0: निधि देखरे पाए के गुणवत्तापूर्ण संग्रहण बड़ जरूरी है। साफ सुखा और बढ़िया गुणवत्ता वाले वनोपज के बाजार में ज्यादा कीमत मिलते। सही तरीका ले संग्रहित वनोपज जल्दी खराब नहीं होए। गंदगी फफूंदी और खराबी ले बचाए बर स्वस्थ और सुरक्षा बर अच्छा तरीका ले संग्रहण जरूरी है। बढ़िया गुणवत्ता के वनोपज विदेशों में तको बेचा जाते हैं।
1: हाँ नीतू दीदी सिर्फ उनके अगर गोट करन वनोपज संग्रहण के सही तरीका के ता सबले पहली समय के ध्यान रखना जरूरी है।
0: हाँ।
1: समय के पहली या बाद मा तोड़े ले गुणवत्ता खराब हो जाते। जैसे महुआ फूल ला बिहान में बिनना चाहिए
0: है ना? बिहनिया। हाँ।
1: बिहनिया। वैसने आंवला तो पूरा पके के बाद तोड़ना चाहिए।
0: हाँ।
1: और तेंदू पत्ता के गोट करन तो तेंदू पत्ता ला कोमल अवस्था में तोड़े जाते। संगे संग साफ सफाई के ध्यान तको देना चाहिए।
0: हाँ।
1: वनोपज ला भुइया के गंदगी धुर्रा और पानी ले बचाए बर बहुत जरूरी हो जाते। और संग्रहण के बाद मा साफ कपड़ा या फिर कोनो टोकरी मा इला रखे बर जरूरी हो जाते।
0: निधि वैसने सुखाए के सही तरीका ला भी ध्यान देना चाहिए। वैसे महुआ इमली हर्रा जैसन वनोपज मल्ला धूप मा सही ढंग ले सुखाना बहुत जरूरी होते। अधूरा सुखाए ले फफूंदी लग सकते। दूसर पेड़ पौधा के संरक्षण हो ऐसे वनोपज के संग्रहण करना चाहिए। वनोपज ला लेवत बेरा पेड़ के डार ला नहीं तोड़ना चाहिए। एखर ले जंगल सुरक्षित रही। अगर हम डार अच ला तोड़ देबो तो कई ठन जिन पेड़ है वो मन मर जाए भाई और जंगल का हाल सुरक्षित रही है नहीं। तो और अगर बने असन तोड़बो ना तो डारल नहीं तोड़बो तो अवैया बच्छर में हमला और उपज ज्यादा मिल सकत है। भंडारण तको सुरक्षित तरीका ले करना चाहिए। सूखा और साफ जगह में वनोपज ला बोरी में या डब्बा में राखे बर चाहिए। नमी ले बचाना चाहिए और बहुत जरूरी है कि इमें बिल्कुल भी नमी न लगे नहीं तो इमें फफूंद लग सकते या इमें यह खराब हो सकत है।
1: बिल्कुल सही के नीतू दीदी। नीतू दीदी अगर लोगन मतलब प्रशिक्षण ले के वैज्ञानिक तरीका जब उमन अपनाए ला शुरू कर दी ना तो उखर आमदनी कई गुना बढ़ सकत है।
0: हाँ।
1: सरकार और वन विभाग घलो वनोपज सहकारी समिति के माध्यम ले समर्थन मूल्य में खरीदी करते। संगे संग महुआ ले लाडू हो गए तेल और पेय पदार्थ बना के है ना। इमली ले चटनी और कैंडी बना के। आंवला ले उकर अचार और दवाई बना के। माने ये प्रकार ले प्रसंस्करण करके और ज्यादा लाभ कमाया जा सकत है। काबर की ये तुरते कच्चा में तो लाभ पहुंचावे करते। फिर हमन मतलब इला ज्यादा दिन तक के कहूँ सुरक्षित और संरक्षित करके रखना है तो उकर प्रसंस्करण हमला करना पड़े।
0: अगर बिना मौसम के खर मजा लेना है कहना चाहिए तो ये रकम ले हम प्रसंस्करण कर सकते।
1: काबर की जतको वनोपज है ना तीन हमर शरीर पर बहुत लाभ के है। ये कहान के ये औषधि है अभी। हाँ। ते गोट करत रहे ना औषधि के। हर्रा बहरा ये हमर जब जुन्ना मन के रीसन है ते मन एकर महत्व ला ज्यादा बतावे हमन मल्ला के कहूं को नोला खांसी हो गे के मौसम के उतार चढ़ाव हो गे ते एकर उपयोग बहुत आयले करे जावे।
0: निधि, अगर ये दिशा में हमार जेन सरकार है वनोपज के संग्रहण के दिशा में, तो संग्राहक मन पर कई योजना तको चलावत है, जैसे न्यूनतम समर्थन मूल्य, महिला स्व सहायता समूह के प्रशिक्षण, वनोपज प्रसंस्करण केंद्र, संग्रहण उपकरण वितरण, ये योजना मन ले ग्रामीण परिवार मन के आर्थिक स्थिति मजबूत होत है। माने देखन की पहले मतलब बने असन अपन उपज के ज्यादा कीमत नहीं मिल पात रही से, लेकिन अब मतलब सही कीमत मिल पाते हैं।
1: हाँ, काबर की लोगन मन अब जागरूक हो गए रितु दीदी। और दीदी देख, वनोपज हमर प्रकृति के अनमोल देना है, अगर हमन ओकर गुणवत्तापूर्ण संग्रहण करबो तो जंगल घलो बाँची और आमदनो घलो बाढ़ी। और वनोपज संग्रहण ले ग्रामीण आदिवासी परिवार मन आत्मनिर्भर बन सकते हैं।
0: ऐसे है निधि, ये रकम ले बने गुणवत्तापूर्ण वनोपज के संग्रहण करके ज्यादा आमदनी के आधार अपन बना सकत हन। तो आगू और गोठियाबो फिर सुन लेथन ये संदेश ला।

0: संगवारी हो, कतको बेरा बदलत जाए, मनखे के नवा नवा जौन तकनीक आ जाए, फिर जुन्ना बेरा के जौन बताए जिन रद्दा हे, जिन सियानहा मन बताते तिन आजो काम आथे।
1: हाँ।
0: हमन जैसे खेती किसानी में घलो देखथन, हमन परंपरागत कृषि खेती किसानी करत आवत हन नीतू दीदी, फिर देख बदलत बेरा संग नवा नवा तकनीक आईस, हमन नवा तकनीक ला तो अपनाएन, फिर अपन जुन्ना अपन तकनीक ला नहीं छोड़ेन। वैसने बात है, कतको भी नवा नवा जीनिस रिकिम रिकिम के दवाई पानी आ जाए, फिर जो जुन्ना बेरा के जेन औषधि जड़ी बूटी मन है तेन हा आज घलो उतके ही महत्ता रखते।
1: निधि कथे ना कि वर्तमान ला जानना है तो हमला पहले इतिहास ला जाने बर लागी,
0: हाँ।
1: भविष्य ला संवारना है तो वर्तमान ला बने संवारना लागी। एकरे पाए के हमर जेन पुराना जेन तरीका है, चाहे वो वनोपज संग्रहण के होए, ओखर से औषधि बनाए के तरीका हो, तो ये जम्मो हमर संगवारी मन बर लाभ के हो सका थे।
0: अब नीतू दीदी देख, हमर गोठ है तो कभू खत्म नहीं हुए, फिर बेरा कहा थे कि बेरा हो गए है किसान वाणी के, और प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।

संगवारी हो, आज आए मंगलवार और आप मन ला अगोरा रीते अपन पसंदीदा क्रम हेलो किसान वाणी के जोन फोन इन कार्यक्रम है। आज के विषय रे से धान मा श्री विधि अपनाएं उत्पादन बढ़ाएं, ये विषय के जानकारी और आप मन के शंका समाधान करे खातिर विशेषज्ञ रहिन मनीष कुमार वर्मा, विषय वस्तु विशेषज्ञ कृषि विज्ञान केंद्र पहंदा दुर्ग, प्रस्तुतकर्ता शशि प्रकाश पांडे और संचालन करता रहीन नीतू शर्मा। तो सुनथन संगवारी हो क्रम हेलो किसान वाणी।

0: संगवारी हो जुर्गे है अंतस के तार ये पार ले वो पार सूचना मनोरंजन जानकारी के है जेखर बानी तेखर नाव है हेलो किसानवाणी। राम राम संगवारी हो। अपन गांव गवई के किसान भाई बहनी मन बर बहुत जरूरी और फायदा के खेती के तरीका के गोट फोन के माध्यम ले करे बर जुरिया है हमन संगवारी हो। ये तरीका है धान के श्री विधि ले उत्पादन कमती बीजा कमती पानी कमती लागत में ज्यादा उपज पाए के आसान और वैज्ञानिक तरीका है धान के श्री विधि। ता आज के बेरा में देखथन कि पानी के बचत और बने पैदावार दोनों बहुत जरूरी हो गए हैं। यही ले श्री विधि खेती किसान मन बर वरदान साबित हुआ थे। त ये बात ला फरिया के आपके समस्या और जिज्ञासा के समाधान बतावत है मनीष कुमार वर्मा विषय वस्तु विशेषज्ञ कृषि विज्ञान केंद्र पहंदा दुर्गले। राम राम मनीष वर्मा जी।
1: राम राम सबो किसान भाई बहनी मल्ला।
0: वर्मा जी जैसे कि आज के हमर जैन विषय है श्री विधि ले धान के उत्पादन त हमर संगवारी मन के जैन फोन है वह आए बार शुरू हो गए है। हेलो किसान वाणी कौन बोला था?
2: मैं दानी राम चंद्रवंशी बोला था दीदी लखनपुर कवर्धा से।
0: जी जी त आप मन ये बताओ भैया कि अभी तक गर्मी बने बाढ़ गए तो आप मन खेती किसानी के काय काम चलत है अभी आप मन के?
2: अरे खातू मती पले ही चलत है घर खातू जैविक खातू दीदी।
0: अवैया बेरा में आप मन हा कौन से फसल लू भाई
2: हर कतेक पैदावार आ जाए इसी विधि खेती करे माँ।
0: हाँ
2: हाँ हाँ हम रोपा लगाते हैं ना तो 35 कुंटल एकड़ में आ जाते है।
0: हाँ
2: हाँ। कतेक एकड़ में कतेक कुंटल आही विधि खेती करे माँ अधिक आय बढ़ाए बढ़ते ही बात पूछे पर लगा दीदी।
0: जी जी तो भैया आपके जैन समस्या है खर समाधान हमारे विशेषज्ञ मन हा बतावत है।
1: किसान भाई आप नमस्कार।
2: नमस्कार भैया।
1: जैसे कि आप पूछे हो कि कतेक उत्पादन एमा बढ़ जाए करके तो जे श्री विधि है ओमा हमर जेन सामान्य रोपा हमर लगाथन ओकर से लगभग 20-50% तक वो आपके मतलब जेन किसानी है ओकर ऊपर निर्भर करते तो वो 20-50% तक आपके उत्पादन एमा बढ़ जाते है ना। कारण कि एकर सिद्धांत जेन है तेन हा जेन अपन मून रोपा लगाथन ओकर से अलग है तेकर बारे में आप मतलब कुछ जानकारी है का श्री विधि के?
2: हाँ कुछ एक साल लगा रहे हैं भैया मैं सरना धान के।
1: हाँ हाँ
2: और घर बाद अभी अब बीच में इसने हमार रोपा लगा देते हैं तो 34 खान कुंटल कर प्रति 34-35 कुंटल हमारे इसने रोपा मारे थे भैया इकर में लगाते हैं। अब श्री विधि लाइन से लगी तो वहाँ कते का कुछ अटका जही का पैदावार।
1: हाँ एमा हाँ एमा दो तीन चीज है जैसे हमन सामान्य रोपा लगाथन ना तो ओमा हमर रोपा कम से कम 20-25 दिन के हो जाते है है ना। तो एमा हमला छोटे पौधा ला ही रोपा लगाए ला लगते कम 8-12-15 दिन के जिन पौधा है ओला हम रोपा लगाथन है ना। ये मतलब एकर सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि जतका जल्दी हम रोपा लगाबो तो पौधा ला जड़ विकास करे में और वृद्धि करे में ज्यादा मतलब अच्छा से करते क्योंकि कम उम्र में लगाबो तो कर वृद्धि विकास ज्यादा अच्छा तरीके से होते।
2: ओ हम लगाते हैं 24-25 दिन के हो जाते भैया तब लगाते हैं बड़े हो जाते लंबा।
1: हाँ हाँ तो एकर जेन है ना उकर से अलग है यह एमा हमला 8-12 ज्यादा से ज्यादा 15 दिन के पौधा हमला रोपा लगाना है। करके जतका जल्दी हम रोपा लगाबो उतका जल्दी वह जड़ पकड़ी और जड़ मजबूत हो ही पौधा के वृद्धि विकास अच्छा तरीका से हो ही कंसा अधिक बढ़ी और एमा दूरी भी ज्यादा रखथन है ना।
2: ठीक है भैया धन्यवाद।
1: ठीक
0: हमार संगवारी मन के फोन आवत है मनीष कुमार वर्मा जी। हेलो किसान वाणी।
3: हाँ हेलो किसान वाणी
0: जी। भैया कौन बोला था?
3: हाँ दीदी राम राम।
0: राम राम भैया
3: कन्या बालाघाट मध्य प्रदेश ले ध्रुवा राम साहू बोला था।
0: जी ध्रुवा राम साहू भैया का करा था अभी खेती किसानी के काम आप मन के का तैयारी चला थे भाई?
3: कालीन उलट वो है दीदी हमन। हाँ
0: हाँ हाँ
3: वो भी पानी वाली चला काम चालू है।
0: जी जी
3: फूल फल लागे है आए बार।
0: जैसे की आज के हमारे जैन विषय है धान के उत्पादन श्री विधि ले ये विषय में आपके का समस्या है भाई?
3: देखे ये मिल थे जिसे लाइन से लाइन लगाना है। हाँ तो हम ले पूछ रही से कि एकर बीज के चुनाव किसे करना है और किस तरह से कर खेती करना है में का परेशानी आते वो हर डॉक्टर साहब ने जानकारी ले रही से।
0: जी जी तो भाई बीज के चुनाव और दिगर आपके जैन समस्या है उखर समाधान हमार विशेषज्ञ मन बतावा थे।
1: भैया जैसे कि बीज के चुनाव आप कहे हो तो बीज जैन है हमेशा प्रमाणित बीज के उपयोग करना है हमला या जिन प्रमाणित सोर्स रही थे संस्था से खरीदना है वही बीज ला उपयोग करना है। और अगर अपन घर के बीज हम उपयोग करथन तो 17% नमक घोल के द्वारा हम स्वस्थ बीज के चयन करके ही वो बीज ला हमला बोए बर उपयोग करना है ना। हाँ और का प्रश्न है आपके?
3: हाँ प्रश्न ये रही से सर कि अपन कतका बीज लग जाए, मतलब एक एकड़ पर जिसे लगाना है हमला से।
1: प्रति हेक्टेयर एमा 5 से 8 किलो बीज हमला लगते प्रति हेक्टेयर है ना,
3: हेक्टेयर मतलब ढाई एकड़,
1: ढाई एकड़ में ठीक है। और जैसे कि पहले भी बताया कि एमा जेन हमला रोपा जेन लगाथन हम थरहा कुकर जेन पौधा की उम्र है वो छोटे उम्र में ही हमला लगाना है, 8 से 12-15 दिन अधिकतम पौधा हमला रोपा लगाना है।
3: मतलब छोटे रही तब लगा देना है ना?
1: हाँ छोटे रही तो उकर वृद्धि विकास ज्यादा अच्छा तरीका से हो ही। उकर बात का है कि एमा जिन दूरी है ये 25 सेंटीमीटर के दूरी में एला रोपा लगाना है, पौधा से पौधा के बीच के भी दूरी और कतार से कतार के बीच के भी दूरी। हाँ हाँ यही हर यही हर मेडागास्कर करके जो देश है ना वहाँ एक पहली बार मतलब चालू हो रही से एक सेती मेडागास्कर विधि भी बोलते हैं।
3: अच्छा अच्छा हाँ चलो ठीक है ये बार बिल्कुल करके देखो।
1: हाँ
0: मनीष वर्मा जी हमारा वो आगू संगवारी मन के फोन आवत है। हेलो किसान वाणी।
4: हाँ दीदी मोर माया भरे राम राम।
0: राम राम भैया कौन बोला था आप मन?
4: मैं नवागढ़ कटाई जिला बेमेतरा ले नारायण प्रसाद वर्मा बोला था।
0: जी जी नारायण वर्मा जी भाई आप मन फोन करे हो, आपके खेती किसानी ले जुड़े आज के जिन विषय है ओखर ले संबंधित का समस्या है आपके?
4: दीदी जैसे हम श्री विधि ले खेती करना चाहते हैं, वैसे तो मैं कृषक आदमी हूँ।
0: जी जी
4: तो ये श्री विधि ले खेती करना चाहता था तो मुख्य रूप से का बात के ध्यान रखेल पड़ी दीदी और एक तैयारी कैसा ढंग ले करबो यही जम्मो बात ला पूछे बर फोन लगाए हो दीदी।
0: तो हमारे विशेषज्ञ मतलब पहले बताओ कि आप मन हा धान के खेती श्री विधि ले करना चाहता तो कतका कन खेत है आप मन तीर या कतका कन खेत में आप मन धान लगाना चाहता?
4: दीदी वैसे मोर पास तो 30 एकड़ खेत है लेकिन 4-5 एकड़ में एक खेती करके देखना चाहता हूँ दीदी मैं।
0: पहली पैत आप मन करना चाहता है विधि ले खेती?
4: हाँ हाँ दीदी पहली बार मैं खेती करना चाहता हूँ श्री विधि के।
0: जी जी तो हमारे विशेषज्ञ तो हमारे बीच है, आपके समस्या के जैन समाधान है ओला हमारे विशेषज्ञ मन करत है।
1: भैया जैसे आप मन बताओ कि आप ला श्री विधि में खेती करना है तो मुख्य मुख्य हमें 3-4 बात मैं आप ला बताता हूँ जेकर हमला ध्यान रखना जरूरी है जिन जिन सामान्य रोपा लगाथन तेकर से अलग है ना। पहला है कि कम उम्र के पौधा ला रोपा लगाना है, जैसे कि मैं बार बार बताता हूँ 8 से 15 दिन के जिन पौधा है ओला हमला थरहा है ओला रोपा लगाना है ठीक है। और दूसरा चीज कि एमा एक मात्र एक पौधा एक जगह में लगाना है, जैसे हमन गुच्छा में 4-5 पौधा लगाथन जिन सामान्य रोपा है उमा तो एमा एक जगह में एक ही पौधा ला रोपना है हमला।
4: अच्छा अच्छा
1: है ना। पौधा से पौधा और कतार से कतार दोनों के बीच के जिन दूरी है तीन 25 सेंटीमीटर रही। और एमा हमला जैसे नींदा नियंत्रण बर एमा नींदनाशक के उपयोग ना करके कोनो विडर करके एक ठो यंत्र आते एला हमला उपयोग करना है, पहला बार एला उपयोग करना है 10 दिन में रोपा लगाए के, ओकर बाद 10 से 20 दिन के अंतराल में और 3 बार ओला आउग लगाना है। एकर कारण ये है कि नींदा ला हमला उखाड़ना है और वो उही में मिल जही तेकर से हमार मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ के मात्रा बढ़ी और हमार मिट्टी के उर्वरता क्षमता भी बने रही।
4: हाँ,
1: है ना। तो ये मोटा मोटी 3-4 बात जेन है तेनला आपला ध्यान रखे भर पड़ी।
4: ठीक भैया सुघर जानकारी भर आपला बहुत बहुत
0: जी। आप मन हमार संगवारी के समस्या के बहुत अच्छा समाधान बताओ, फिर आगू हमार और संगवारी के फोन आवत है। हेलो किसान वाणी।
5: हेलो किसान वाणी
0: कौन बोला था भैया आप मन?
5: मैं राजेंद्र कुमार दामले को क्या सुनती थी सिर मुंडा।
0: जी जी दामले भैया ठीक है भाई,
5: बस ये धान लगा हाँ ओकरे तैयारी थी कर रहे था जी।
0: हाँ हाँ तो अभी खरीफ में आओ आप मन धान लगाए के तैयारी करा था तो अभी जैसे हमारे विशेषज्ञ बताते भाई कि ग्रीष्मकालीन जुताई करना चाहिए माटी के परीक्षण करना चाहिए ते जम्मो काज ला आप मन कर रहे हो भैया?
5: हाँ हो गए जुताई उताई सब हो गए।
0: जी जी
5: और जो भी खर पतवार है सब निकाल नुकली के वाला।
0: जैसे कि आज हमारे विषय है भैया फोन इन के धान में श्री विधि अपनाए उत्पादन बढ़ाए तो ये विषय ले संबंधित आपके का समस्या है?
5: आज के विषय बहुत अच्छे दीदी देख रहे अनुसार बता देते कि धान में अपन श्री विधि अपनाना है उत्पादन बढ़ाना है तो कैसे विधि अपनाना और कैसे उत्पादन बढ़ाने लगन बता देते हैं।
0: जी जी जी तो आपके जिन समस्या है भैया उखर बारे में समाधान बतावत है हमारे विशेषज्ञ मन।
1: आज के जिन चर्चा है जिसे हम शुरू से चर्चा करा था भैया तो 3-4 बात एक मुख्य है जिसे अभी एक पहली के जिन भैया ही सुहूल बताया कि हमला कम उम्र के थरहा पौधा के थरहा देना है 8 से 15 दिन के है ना, एक जगह में एक ही पौधा लगाना है रोपा में, पौधा से पौधा पौधा और कतार से कतार के बीच के जिन दूरी है वो 25 सेंटीमीटर रखना है और नींदा नियंत्रण बर कोनो वीडर एक यंत्र है ओकर माध्यम से हमला नींदा ला निकाल के मिट्टी में मिलाना है और एक महत्वपूर्ण चीज़ आऊ है कि जिन पानी भर के हम रखथन सामान्य रोपा लगाते हैं सामान्य धान की खेती में तो एमा एक मुख्य अंतर यही है कि एमा पानी ला भर के खेत में नहीं रखना है एला हम लग खेत ला गीला करना है ओकर बाद फिर जब ये ऐसे लगे कि एकदम सूख चुके हैं ओकर बाद फिर से मतलब एला अल्टरनेट रूप से गीला और सूखा रखना है हमार खेत ला जेकर से ज़्यादा वायु के संचरण एमा मिट्टी में हो सके और पौधा के वृद्धि विकास अच्छा से हो सके।
0: मनीष वर्मा जी हमारे संगवारी मल्ला ये बताते हो कि अगर हमन हा धान के श्री विधि में जल प्रबंधन करना चाहते तो कौन रकम ले करे हमन हा जल प्रबंधन ला?
1: जल प्रबंधन की जैसे बात है तो जैसे कि हमन सामान्य जैसे धान की खेती करथन तो वहाँ पानी ला खेत में भर के रखथन है ना और श्री विधि के और एमा एक बहुत बड़े अंतर यही है कि एमा पानी ला भर के खेत में नहीं रखना है खेत ला गीला रखना है ओकर बाद फिर जैसे सूखी दरार पड़े लगी तो फिर एमा पानी डालना है एकर कारण ही एमा जल प्रबंधन के कारण ही एमा जिन खरपतवार प्रबंधन है तेन बहुत महत्वपूर्ण हो जाते कारण कि खेत में पानी नहीं रहे ले नींदा मन ज़्यादा जागते तो एकर सेती एमा कोनो वीडर चला के हमला हर 10-10 दिन में इला कोनो वीडर जला के वो नींदा मल्ला जमीन में मिलाने लगती यही एक मतलब मुख्य एमा अंतर है जल प्रबंधन के सामान्य रूपों में उस श्री विधि।
0: हेलो किसान वाणी। हेलो भैया कौन बोला था भैया?
6: मैं टीवी पारा ले जगेश्वर देवांगन बोला था भैया।
0: जी देवांगन भैया बताओ भाई आज आप मन हा फोन लगाए हमारे कार्यक्रम में तो आपके का समस्या है?
6: हम ये जानना चाहते हैं श्री पद्धति से खेती करना है तो कौन से किस्म से करना है और कैसे करना है बारे में थोड़ा विस्तार पूर्वक जानकारी लेना।
0: जी जी जी बिल्कुल तो आपके जिन समस्या है श्री विधि ले अपन धान के उत्पादन करना चाहता तो ये समस्या के समाधान हमार विशेषज्ञ मन हा बतावत है।
1: सबसे पहले भैया प्रमाणित बीज के आप उपयोग करो हमेशा अच्छा बीज के उपयोग करना है ना 5-8 किलो बीज एमा प्रति हेक्टेयर हमला लगते श्री विधि में। दूसरा है एमा कि 8-15 दिन के जिन पौधा है ओकर हमला रोपा लगाना है और एक जगह में एक पौधा ला रोपना है पौधा के दूरी ज़्यादा रखना है हमला 25 सेंटीमीटर पौधा से पौधा कतार से कतार के दूरी रखना है और जल प्रबंधन जिसे कि अभी बताया कि हम खेत में पानी भर के नहीं रखना है ना गीला करना है उकर बाद फिर जब सूखे ही दरार पड़े लगी तो फिर से हम जल प्रबंधन के हिसाब से मतलब पानी एमा देना है और रही बात खरपतवार के तो खरपतवार पर हमला कोनो वीडर के उपयोग करके खरपतवार नियंत्रण एमा करना है रासायनिक जो नींदा नाशक रीत है नींदा नाशी ओकर उपयोग एमा हमला नहीं करना है तो ये मुख्य मुख्य जिन सामान्य रूपा से ये ला अलग करते इस ए विधि ला।
0: हेलो किसान वाणी।
7: हाँ नीतू मैडम नमस्कार।
0: नमस्कार कौन बोला था भैया आप?
7: जी मैं मानवेंद्र साहू बोला था।
0: हाँ हाँ मानवेंद्र भाई भाई आप मन हाँ अभी खेती किसानी के का काम करा था पहली तो ये बतावा।
7: अभी से खेती किसानी के तो अभी मतलब खरीफ में बोना है देकर तैयारी चला थे खाद वगैरह के बीज वगैरह के तो कौन से धान बोन किस रंग के लगावे सब तैयारी चला थे मैडम तो इसने आज विषय घलो है श्री विधि अपनाए उत्पादन बढ़ाए खीर के तो मैं प्रश्न है कि श्री विधि से हमन हा जैसे वे लागत कतका रख देते एक एकड़ में और उत्पादन कितना आ सकत है ये पूछना रही।
0: हाँ हाँ भाई कि आप मन हा लागत उत्पादन श्री विधि ले कतका कैसे आते ये बारे में हमार जन विशेषज्ञ है ओखर मन से पूछे हो तो भाई हमार विशेषज्ञ मन हा आपके समस्या के समाधान ला बतावा थे।
1: जैसे लागत के बात है भैया तो लागत एमा आप मन जिसे हमन शुरू से चर्चा करथन कि बीज जेन है तेन हमला बहुत कम लगते 5-8 किलो लगते और सामान्यतः किसान जब इसे हम रोपा लगाथन तो 50 किलो तक बीज उपयोग करथन है ना तो है ना तो एमा लगभग हमार 40-45 किलो बीज के कम लगते है ना और जैसे पानी है पानी भी हमला भर के नहीं रखना है एमा तो मतलब खर्चा जेन है तेन हम काफ़ी हद तक एमा कम हो जाते और जेन उत्पादन आपके आही वो लगभग जो विभिन्न स्रोत के अनुसार 20-50% तक एमा हमला उत्पादन ज़्यादा। बीज हमला कम लगत है तो ऐसे ही बीज के मात्रा कम लग गया, नींदा नाशक वगैरह के भी उपयोग हमें एमा नहीं करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश हमार ये करना है एमा कि जेन हमार घर के खाद है ओकर उपयोग एमा करना है, रासायनिक खाद के कम से कम उपयोग करके जेन हमार घर के बने हुए खाद है ओकर उपयोग हमें एमा करना है, एकर से हमार जेन खर्चा है अपन खुद के हम घर के चीज यूज कर उपयोग करबो तो काफ़ी हद तक एकर खर्चा हमला कम लगी, उत्पादन जेन है 30-50% तक आप ये विधि से बढ़ा सकत।
7: अच्छा हाँ हाँ तो ठीक है सर जी, जानकारी के लिए धन्यवाद।
0: तो मानवेंद भाई फोन करे खर बार बहुत बहुत धन्यवाद
7: जी।
0: अच्छा वर्मा जी हमारे संगवारी मल्ला ये बताते हो कि श्री विधि ले अगर धान के उत्पादन करत है तो एखर ले का लाभ हो मल्ला हो सकत है?
1: देखो एमा एक तो जिसे खर्चा हमार कम हो जाते है ना, मिट्टी के जेन स्थिति है हम कार्बनिक पदार्थ के मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा मिलाबो, कार्बनिक खाद के उपयोग करबो तो मिट्टी के लिए बहुत अच्छा है। दूसरा चीज़ ये है कि जैसे कि अभी हमन देखा था विगत कुछ वर्षों से पानी के भी जेन वर्षा के जेन मात्रा है और जेन जोकर वितरण है वो असामान्य हो गए, तो एमा पानी के भी मात्रा हमला कम लगते, पानी ला भर के रखना नहीं है तो इसे मतलब पानी के बचत है, एमा बीज के बचत है और हमार मिट्टी के जिन संरचना है मिट्टी के जिन स्थिति है एमा सुधार करे बर ये विधि है बहुत अच्छा है।
0: तो मनीष जी हमार संगवारी मन के अब फोन आवत है आगू। हेलो किसान वाणी।
8: हेलो नमस्ते जी।
0: राम राम भाई बताओ। जी जी तो आज जैसे हमार फोन इन के जेन विषय है श्री विधि ले धान के उत्पादन करे और आय बढ़ाए तो एक विषय में आप मन के का समस्या है?
8: श्री विधि में धान उपजाए बर का कैसे उपजाना है एकर बारे में जानकारी देना जी।
0: अच्छा अच्छा हाँ तो आपके जेन प्रश्न है भाई ओखर जवाब हमार संगवारी आपके जेन समस्या के समाधान है ओला हमार विशेषज्ञ मन करा थे।
1: श्री विधि से जिन धान लगाना है भैया जो सामान्य धान हम लगाथन ओकर से 3-4 चीज है जिन एला अलग करते शुरू से जिन हम अभी चर्चा में ले हन एला कि जैसे हम 20-22 दिन के थरहा ला रोपा लगाथन सामान्य रोपा में तो एमा हमला 8-15 दिन के जिन पौधा है ओकर रोपा लगाना है और दूरी है रोपा लगाथन ओमा 25 सेंटीमीटर की दूरी एमा पौधा से पौधा कतार से कतार के रखना है, एक जगह में एक ही पौधा रोपना है और जल प्रबंधन है मा कि पानी भर के खेत में नहीं रखना है ना, और जेकर से का होते कि वायु संचरण मिट्टी में अच्छा होते और ज़्यादा से ज़्यादा पौधा के वृद्धि विकास होते और इमा जो नींदा नियंत्रण है तेकर पर कोनो वीडर करके यंत्र है ओकर से हमला नींदा के नियंत्रण करना है, नींदा ला निकाल के ओला ये कोनो वीडर है मिट्टी में मिला देते जेकर से मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ के मात्रा बढ़ते हमार मिट्टी के लोहा अच्छा स्वस्थ बनाते, तो ये जो मुख्य 3-4 चीज है तेकर ध्यान हमला श्री विधि से धान की खेती करे में रखना।
0: धन्यवाद भैया आप मन फोन करे खर बार। मनीष जी हमारे संगवारी मतलब ये बताते हो कि श्री विधि ले धान के उत्पादन अगर करना है तो ये विधि ले का जम्मो जिन किस्म है धान के ओखर खेती करे जा सके थे या कोई विशेष किस्म है जेकर हम खेती ये श्री विधि ले कर सकत हन?
1: नहीं एमा सभी किस्म के खेती हम कर सकत हन, ऐसे कोई एमा किस्म विशेष के बाध्यता नहीं है, सभी के खेती हम ये विधि में कर सकत हन, बस जो एकर 3-4 मुख्य सिद्धांत है ओला हमला ध्यान में रखना है।
0: हेलो किसान वाणी।
9: हाँ हेलो किसान वाणी।
0: हाँ भैया कौन बोला था?
9: हाँ नमस्ते मैडम जी, मैं तुलसी देशमुख बोला था गांव चंगोरी जिला दुर्गले।
0: जी जी राम राम भैया, ता आप मन ये बताओ कि आप मन हा खेती बस करता हो कि खेती के अलावा पशुपालन या दीगर काम काज भी करता हो?
9: नहीं खेती से जुड़े काम है, पशुपालन वगैरह नहीं है, जरूरत की पूर्ति हावे।
0: अच्छा
9: मुख्य काम तो धान की खेती हावे।
0: जी जी ता आप मन हा धान अभी खरीफ के मौसम में लगाए के तैयारी कर रहे हो?
9: जी जी हाँ तैयारी चलत है।
0: कतका एकड़ में धान लगाते हो भैया आप मन?
9: श्री विधि में प्रति एकड़ बीज के मात्रा कतका रखना चाहिए इसे कही के?
0: अच्छा अच्छा हाँ तो श्री विधि ले आप मन धान की खेती करना चाहता था तो कतका बीज के मात्रा रखना है ये जिन आपके जिन प्रश्न है वो या समस्या है उखर समाधान हमारे विशेषज्ञ मन बतावा थे।
1: एमा बीज के मात्रा जिन है श्री विधि में 5-8 किलो प्रति हेक्टेयर हम बीज के मात्रा यूज करथन, मतलब वो प्रति एकड़ आप मान लो वही 2-3 किलो बीज के उपयोग हमला करे लगे।
9: हाँ
1: प्रति एकड़ है ना, कारण कि एमा हम एक सिंगल पौधा ही रोपथन ओकर सेती एमा बीज के जेन मात्रा है तेन काफी कम हो जाते।
9: ओकर दूरी कैसे रखना चाहिए, कतका दिन के लगाना है थरहा, जैसे रोपाई नर्सरी डालबो तेला?
1: हाँ, नर्सरी जैसे से हमला जैसे थरहा ला 8 से अधिकतम 15 दिन, 15 दिन से ज्यादा के पौधा ला एमा रोपाई नहीं करना है ना, अधिकतम 15 दिन के पौधा रोपाई करना है। और जेन पौधा से पौधा और कतार से कतार के जेन दूरी है वो 25 सेंटीमीटर रखना है ना, कारण की जैसे हम जेन कोनो वीडर चलाथन ना तो ओकर चले बर भी जगह चाहिए, तो 25 सेंटीमीटर जगह रखबो तो वो जेन कोनो वीडर है जेमा हम नींदा नियंत्रण करथन वो आसानी से ओमा चल सके।
9: वो एक समस्या आते सर वीडर चलाए हमला, हमर मन के जमीन का है पता नहीं लद्दी टाइप के हो गए, तो वीडर चलाबे तो वीडर में ही फंस जाते पूरा लद्दी है, तो वीडर चले में थोड़ा दिक्कत होते है हमला।
1: हाँ तो ओमा जेन हाँ ओमा नहीं वीडर तो ओमा जेन सबसे मुख्य चीज है नींदा नियंत्रण पर, कि अब एमा जो पानी है ना भैया, पानी ज्यादा रखना नहीं है खेत में है ना, एमा का है एकदम पानी गीला करना है खेत ला, ओकर बाद जब सूख ही और दरार पड़े ला लगी ना तो फिर से गीला करना है।
9: अच्छा, भर के रखना नहीं है?
1: हाँ, भर के एमा नहीं रखना है।
9: तो नींदा नियंत्रण करे बार फिर नींदनाशक वगैरह का उपयोग कर सकते हैं कि नहीं कर
1: सकते? नहीं, एमा जिसे जिन सिद्धांत एकर ये है कि एमा नींदा नियंत्रण करे बार हमला कोनो वीडर के ही उपयोग करना है, कर कारण ये है भैया कि वो हम जब नींदा नियंत्रण पर कोनो वीडर चलाबो तो पौधा जिन है नींदा के पौधा उखड़ के उही में मिट्टी में मिला देना है ओला।
9: अच्छा,
1: तो ओकर से का है कार्बनिक पदार्थ के मात्रा हमार मिट्टी में बढ़ी और मिट्टी की अच्छा ओमा कार्बनिक पदार्थ के मात्रा बढ़े से ओकर उपजाऊ शक्ति भी बढ़ी, ओकर सेती एलमा रासायनिक जिन नींदा नियंत्रण है तेकर पर मनाही है, एमा केवल कोनो वीडर के उपयोग हमला करना है।
9: बहुत सुन्दर जानकारी पर धन्यवाद महोदय।
1: धन्यवाद।
0: तब मनीष कुमार वर्मा जी, आज आप मन धान में श्री विधि अपनाए उत्पादन बढ़ाए ये विषय में बहुत ही सुघर जानकारी हमार संगवारी मल्ला दे उखर जिज्ञासा और समस्या के समाधान बहुत ही फरिया के बताए, तो एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।

संगवारियों अभी सुनत रहें फोन इन कार्यक्रम हेलो किसानवाणी, जेकर विषय रही से धान म श्री विधि अपनाए उत्पादन बढ़ाएं। विशेषज्ञ रहीन मनीष कुमार वर्मा, विषय वस्तु विशेषज्ञ कृषि विज्ञान केंद्र पहंदा दुर्ग, प्रस्तुतकर्ता रहीन शशि प्रकाश पांडे और संचालनकर्ता रहीन नीतू शर्मा।

0: संगवारी हो अब एक ठीन सूचना। संगवारी हो बता दन आप मल्ला कि अवैया शुक्रवार माने 22 मई 2026 के प्रसारित होवैया हेलो चौपाल कार्यक्रम के विषय हो ही खेती किसानी के समय किसानों को होने वाले चर्म रोग एवं सावधानियां, आपके समस्या और जिज्ञासा के समाधान पर हमारे स्टूडियो में उपस्थित हुई विशेषज्ञ डॉक्टर मृत्युंजय सिंह, चर्म रोग विशेषज्ञ मेकाहारा रायपुर ले। आप अपन जिज्ञासा और शंका के समाधान पाए बर हमला फोन कर सकत हो। हमार फोन नंबर ये रकम ले है। पहला फोन नंबर है 4003482, दूसरा फोन नंबर है 4003483 और तीसरा फोन नंबर है 4003484 और रायपुर के एसटीडी कोड है 0771। संगवारियों बता दें कि यह कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग शुक्रवार 22 मई 2026 के बिहना 11:30 बजे ले 12 बजे तक करे जाही। ये कार्यक्रम के प्रसारण शुक्रवार के ही संझा 7:30 में करे जाही। हमला आपके फोन कॉल के अगोरा रही संगवारी हो, सूचना यही मेरे सिरावत है।
1: नीतू दीदी, संगवारी मन हमार कार्यक्रम ला ध्यान लगा के सुने हो ही, तो जो हमार अगला क्रम है कृषक प्रश्न मंच के, तो संगवारी मन ला गोरा घलो ही हमार के कागज कलम लेके संगवारी मन हो जाओ तैयार और लिख डरो हमार आज के प्रश्न ला। हमार आज के प्रश्न है श्री विधि ले धान के उत्पादन पर प्रति हेक्टेयर धान के कतका बीज लागथे, एक घाव बता देथन। श्री विधि ले धान के उत्पादन बर प्रति हेक्टेयर धान के कतका बीज लागथे और ये प्रश्न के सही उत्तर अवैया मंगलवार तक आप मन हमर ये ईमेल पता मा भेज सकत हो। हमर पता है राय आज के प्रश्न 23@gmail.com।
0: और अब बता देथन संगवारी मतलब पाछू हफ्ता पूछे प्रश्न ओखर सही सही जवाब। पाछू हफ्ता पूछे रहे संगवारी हो, गर्मी में पशुधन मन खातिर कौन कौन से हरा चारा उगा सकत हन, तेखर उत्तर ही से बरसीम, लूसन, मटर, मेथी, ग्वार, लोबिया, सुडार, गात। और ये प्रश्न के सही सही उत्तर लिख के हमर ये संगवारी मन पठो है पथरिया भरेवाले चंदुलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, परसाटोला राजनांदगांवले ओम प्रकाश मसिया, सिलोचनी तुसारनी मसिया, अमलेश्वर दुर्गले डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, रेयांश गुड़िया, अवगरा पार बांधा बाजार ले मानवेन साहू, गंगाराम, सुलोचना, राकेश साहू। आप जम्मू मल्ला संगवारी हो गाड़ा गाड़ा बधाई। आओ भाई ऐसे है कि ये तो कृषक प्रश्न मंच तो सिरागे। निधि, अभी गर्मी बढ़त है ना, तो गर्मी के बढ़त संगे संग ऊर्जा के खपत तक को बढ़त है, देखता नहीं आए दिन बिजली कटौती हुआ थे।
1: देख दीदी, ऐसा है कि गर्मी बढ़त है ना, तो अब कोनो मनखे बिना सुविधा के नहीं रह सके, है ना। ये कहान के लइका मन के सबले ज्यादा काबर की गर्मी में बैठबे तो धाय ले पंखा चलाना, धाय ले लाइट बारना, बिना लाइट पंखा के हम दिन ला नहीं काट सकन, और जब ज्यादा ओकर पूर्ति नहीं हो पावे तो ओकर कटौती हो जाती।
0: फिर निधि कही थे ना, आज के जन बचत है वो काली के भविष्य है।

0: क्या जाए के बेरा हो गया, घड़ी के इशारा हो गया, तो जाके हाँ, बिराती
1: बता फिर यही था? बता देते हैं कि भैया संगवारी हो, ये रही से किसानवाणी, प्रायोजक रही कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
0: तब बता देते हैं काली के कार्यक्रम काली चौपाल में आज की बात के संक्रम चिट्ठी मिली इसमें अपन पाती के जवाब जानू और आज की सलाह में किसान मन पर मछली के लाभदायक प्रजाति के सही चुनाव विषय में जानकारी सुनी हो बसंसी सहायक प्राध्यापक पॉलिटेक्निक मत्स्य पालन धमधाले और संगे संग कृषक प्रश्न मंच गीत संगीत तक हो काली फिर मिलबो तब तक नीतू शर्मा
1: और निधि शर्मा के
0: राम राम।

0: किसान साथियों का कार्यक्रम चौपाल अभी आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात के 8 बजे हैं। लीजिए पेश है चित्रपट संगीत का कार्यक्रम। पहले ये संदेश।
1: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
2: घर आंगन, ग्रामीण बहनी मन के मनपसंद कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के मंझनिया 1:30 से 2 बजे तक। घर द्वार, बारी बखरी के गोठ, स्वास्थ्य और पारिवारिक समस्या के समाधान, सुघर गीत संगीत और कविता कहानी एक के जगह। और तो अब तो हमार बहनी मन के सीधा भागीदारी फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम जोहार बहनी के संग मा। ता आपो सुनाओ संगी संगवारी मल्ला तको सुनाओ। घर आंगन प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के मंझनिया 1:30 से 2 बजे तक।
0: कार्यक्रम का पहला गीत पार्थिव गोहिल के स्वर में, गीतकार संदीप नाथ, संगीतकार मोंटी, फिल्म है सांवरिया।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: चित्रपट संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए मधुश्री और AR रहमान की आवाजों में महबूब का लिखा गीत। संगीत AR रहमान का, फिल्म है युवा।

श्रोताओं, कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवा रहे हैं श्रेया घोषाल और सोनू निगम की आवाजों में कुमार का लिखा गीत, संगीत राजू सिंह का, और फिल्म का नाम है राज, द मिस्ट्री कंटिन्यूज़।

अभी आप सुन रहे थे चित्रपट संगीत का कार्यक्रम। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। रात के 8:15 हुए हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम। कलाकार हैं खुमान लाल साव और साथी। कार्यक्रम में पहले सुनिए लता खापर्डे के स्वर में लक्ष्मण मस्तुरिया की रचना।

आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से आप सुन रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम। लीजिए सुनिए लता खापर्डे, अनीता वासनिक, रमेश ठाकुर, खुमान लाल और साथियों के स्वर में लक्ष्मण मस्तुरिया की ये रचना।

लोक संगीत के कार्यक्रम में कलाकार थे खुमान लाल साव, लता खापर्डे और साथी। यह आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। रात के 8:30 होने को है। स्पोर्ट्स कैन आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।

नमस्कार, मैं हूं शक्ति सिंह और स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। हम एक बार फिर मौजूद हैं नए क्लेवर, नए रंग और नए अंदाज के साथ, जहां हमारे साथ होगा हर मैच का ताजा अपडेट, हर मैदान का हाल और हर खिलाड़ी की खबर, सब कुछ अधिक डिटेल के साथ। तो शुरू करते हैं खेल की हर बात स्पोर्ट्स कैन के साथ। सबसे पहले आज के मुख्य समाचार। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच और 3 एकदिवसीय मुकाबलों की श्रृंखला के लिए भारतीय टीम का ऐलान, शुभमन गिल के हाथों में टीम की कमान। आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मैच जारी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बाद सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस प्लेऑफ में। मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन सुपर 500 टूर्नामेंट आज से शुरू हुआ। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंदा सुपर शतरंज क्लासिक के 5वें दौर में ड्रॉ खेलकर आगे बढ़े और भारत की अंडर 18 पुरुष हॉकी टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 6-3 से हराकर श्रृंखला में 1-1 से बराबरी की।

0: तो आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं और हमारे पास सबसे पहले आज जो खबर है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच और 3 एकदिवसीय मुकाबलों की श्रृंखला के लिए आज भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। दोनों ही फॉर्मेट में टीम इंडिया की कमान शुभमन गिल के हाथों में होगी, जबकि टेस्ट में केएल राहुल और एकदिवसीय फॉर्मेट में श्रेयस अय्यर भारतीय टीम के उपकप्तान होंगे। अधिक ब्यौरे के साथ हमारी सहयोगी।
1: दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा को एक दिवसीय टीम में शामिल किया गया है। हालांकि जसप्रीत बुमराह इस टूर्नामेंट का हिस्सा नहीं होंगे। अगर टेस्ट टीम की बात की जाए तो युवा यशस्वी जायसवाल को टीम में शामिल किया गया है। विकेट कीपिंग का जिम्मा ऋषभ पंत के कंधों पर होगा। साई सुदर्शन, देवदत्त पड्डिकल, वॉशिंगटन सुंदर, नीतीश राणा और मोहम्मद सिराज जैसे खिलाड़ियों के साथ एम सुथार, प्रसिद्ध कृष्णा, गुन्नूर बरार और हर्ष दुबे को इस टीम में स्थान मिला है। एक दिवसीय टीम की बात करें तो रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या को श्रृंखला में मौका दिया गया है, लेकिन उनका खेलना फिटनेस के आधार पर तय होगा। अनुभवी खिलाड़ी विराट कोहली भी एक बार फिर नीली जर्सी में नजर आएंगे। ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, अर्शदीप सिंह, वॉशिंगटन सुंदर भी इस सीरीज का हिस्सा है। मानव सुथार, गुन्नूर बरार और हर्ष दुबे वो खिलाड़ी हैं जिन्हें पहली बार भारतीय टीम में शामिल किया गया है। श्रृंखला की शुरुआत 6 जून को न्यू चंडीगढ़ में भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच से होगी। इसके बाद 14, 17 और 20 जून को 3 एक दिवसीय मैच खेले जाएंगे। प्रियंका अरोड़ा, स्पोर्ट्स कैम।
0: तो आईपीएल के इस रोमांच के बाद भारतीय टीम फिर क्रिकेट के मैदान में उतरेगी सफेद जर्सी और नीली जर्सी में, और सबकी नजरें स्वाभाविक हैं कि रोहित शर्मा और विराट कोहली की जोड़ी को देखने के लिए होंगी और फैंस की भी यही दुआ होगी कि रोहित शर्मा जल्दी फिट हों और नीली जर्सी में मैदान पे चौके छक्कों की बारिश करते हुए नजर आएं। और अब रुक करते हैं आईपीएल क्रिकेट का, जहां जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच इस समय मैच खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक लखनऊ सुपर जायंट्स ने 11 ओवर में एक विकेट खोकर 137 रन बना लिए थे। इससे पहले राजस्थान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। अगर अंक तालिका की बात की जाए तो राजस्थान 5वें स्थान पर है और वो चाहेगी कि इस मैच को जल्द से जल्द जीता जाए और किसी तरह प्लेऑफ की जो दौड़ है जिसमें एक ही स्थान बचा हुआ है उसमें अपनी दावेदारी कुछ और मजबूत की जाए। दूसरी तरफ लखनऊ है जो इस प्रतियोगिता के प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी है, तो स्वाभाविक है कि चाहेगी कि जाते जाते कुछ अच्छी विदाइयां और कुछ अच्छी मेमोरीज लेके आगे बढ़े अच्छे आने वाले सीजन के लिए। इससे पहले कल खेले गए मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को हराकर प्लेऑफ में प्रवेश कर लिया। सुनते हैं चेन्नई में खेले गए इस मुकाबले का पूरा हाल।
2: आईपीएल 2026 को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बाद अपनी दो और प्लेऑफ की टीमें मिल गई हैं। कल चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद ने एक रोमांचक मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स को हराकर खुद तो प्लेऑफ में अपना स्थान पक्का किया, साथ ही गुजरात टाइटंस का भी प्लेऑफ में स्थान फिक्स कर दिया। और इस हार के साथ ही चेन्नई की प्लेऑफ में पहुंचने की संभावनाएं और भी सीमित हो गई हैं। मुकाबले में टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी चेन्नई सुपर किंग्स ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 180 रन बनाए, जिसमें संजू सैमसन के 27, शिवम दुबे के 26, कार्तिक शर्मा के 32 और डेवाल्ड ब्रेविस के 44 रन का योगदान शामिल रहा। हैदराबाद की ओर से कप्तान पैट कमिंस ने 3 और साकिब हुसैन ने 2 विकेट लिए। 181 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी सनराइजर्स हैदराबाद के लिए कल ईशान किशन मैच के हीरो बनकर उभरे, जिन्होंने 47 गेंद में 70 रन की पारी खेली। किशन का बखूबी साथ हेनरिक क्लासन ने दिया, जिन्होंने 26 गेंद में 47 रन की पारी खेली, जिसकी बदौलत हैदराबाद ने 19वें ओवर में 5 विकेट खोकर ये लक्ष्य हासिल कर लिया। ईशान किशन को शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रशांत कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
0: कल जब हमने इस कार्यक्रम में चर्चा की थी तो हमारे सामने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु एकमात्र टीम थी जो प्लेऑफ में पहुंची, और जब कल का मैच खत्म हुआ चेपॉक स्टेडियम में तो एसआरएच खुद तो गई और अपने साथ ही गुजरात को भी प्लेऑफ में लेके चली गई है। अब स्थिति यह है कि प्लेऑफ के लिए इस गाड़ी में 4 में से 3 सीटें भर चुकी हैं, एक स्थान अभी भी खाली है, जिसके लिए दावेदारों की संख्या बहुत ज़्यादा है, जहाँ पंजाब है जो अंक तालिका में 4थे स्थान पर है, राजस्थान रॉयल्स 5वें नंबर पर है, चेन्नई और दबे पांव से दिल्ली और कलकत्ता भी अभी उम्मीद और समीकरण बैठा रहे हैं कि किस तरह इस गाड़ी की 4थी सीट पे जगह बना करके अहमदाबाद तक का सफर तय किया जाए। और अब क्रिकेट के बाद रुख करते हैं बैडमिंटन कोर्ट का, जहां मलेशिया मास्टर्स सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट का आगाज आज से हो गया है, जहां कुआलालंपुर में भारतीय खिलाड़ियों ने मिले जुले परिणामों के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। तो सुनते हैं आज खेले गए मुकाबलों का हाल।
3: महिला सिंगल्स के क्वालिफायर मुकाबले में अश्मिता चालिहा ने चीनी ताइपे की पा युपो को 21-23, 21-16, 21-16 से हराकर मुख्य ड्रॉ में प्रवेश किया। वहीं आकर्षी कश्यप को दक्षिण कोरिया की पार्का उन से हार का सामना करना पड़ा, जबकि मिक्स डबल्स के क्वालिफायर मुकाबले में एन सिक्की रेड्डी और राधिका शर्मा की जोड़ी ने मलेशिया के दातू अनिफ इसाक दातू असरहा और क्लारिसा सेन को 21-15, 21-17 से रोमांचक मुकाबले में शिकस्त दी। पुरुष डबल्स में हरिहरन अमसा करुणन और एम आर अर्जुन की जोड़ी ने राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में फ्रांस के क्रिस्टो पोपोव और टूमा जूनियर पोपोव को 21-19, 21-15 से मात देकर टूर्नामेंट के प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। वहीं महिला डबल्स में कनाडा की क्रिस्टल लाई और जैकी डेंट ने अश्वनी भट्ट और शिखा गौतम की जोड़ी को परास्त करते हुए प्रतियोगिता में उनका सफर समाप्त कर दिया। वैष्णवी स्पोर्ट्स कैन।
0: तो प्रतियोगिता का औपचारिक आगाज आज से हो गया है और कई क्वालिफायर्स खेले गए और जो भारत के लिए सबसे अच्छा नतीजा रहा वो ये रहा कि भारतीय पुरुष डबल्स जोड़ी अब प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत को कल भी कई अहम मुकाबले खेलने हैं। कई भारतीय स्टार खिलाड़ी कल कोर्ट पे उतरेंगे और इन खिलाड़ियों की जानकारी और अपडेट के साथ हमारे साथ मौजूद हैं सहयोगी विशेष। विशेष ये बताइए कि कल भारत के लिए नज़रें जो हैं किन खिलाड़ियों पर होने वाली हैं, खासकर सिंगल्स में।
4: जी शक्ति, कल कई भारतीय स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी अपने अभियान की शुरुआत करते नजर आएंगे। इनमें पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन, एचएस प्रणॉय, थरुण मनेपल्ली और किरण जॉर्ज पर नजरें होंगी। महिलाओं के सिंगल्स में कई युवा खिलाड़ी भारत के लिए चुनौती रखेंगे। तन्वी शर्मा, अनमोल खरब, देविका सिहाग तथा ईशा रानी बरुआ, अस्मिता चालिहा, मानविका बंसोड़ और अन्य भारतीय खिलाड़ी से काफ़ी उम्मीद होंगी।
0: जी बिल्कुल, अस्मिता ने आज क्वालिफायर्स के जरिए पहले राउंड में प्रवेश किया है। सिंगल्स का हाल रहा, डबल्स में कल भारत को अपने किन खिलाड़ियों से सबसे अधिक उम्मीदें होंगी?
4: देखिए, डबल्स में महिलाओं में पांडा बहनें अपना दमखम दिखाएंगी, वहीं मिक्स डबल्स में ऋत्विका, शिवानी गड्डे रोहन कपूर के साथ खेलती नजर आएंगी। जबकि एक नई जोड़ी भारत के लिए है जिसमें अशित सूर्या और अमृता प्रथमेश अपनी चुनौती पेश करेंगे।
0: जी बिल्कुल, तो कहा जा सकता है कि कई युवा खिलाड़ी जो हैं यहाँ पे भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। खासकर पांडा बहनें काफ़ी संतुलन के साथ जो है उतरती हैं और एक बहुत अच्छा तालमेल दिखाई देता है, जहाँ पे श्वेत पर्णा और रूपर्णा पांडा जब भी कभी अपने मुकाबले खेलती हैं। और अब बैडमिंटन के बाद बात करते हैं शतरंज के कुछ दावपेचों की, जहाँ भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंदा ने सुपर शतरंज क्लासिक के पाँचवें दौर में अमरीकी वेस्ली सॉ के साथ ड्रॉ खेला। इसके साथ ही जर्मनी के विंसेंट कीमर ने अपने आधे अंक की बढ़त बरकरार रखी है। वह 3.5 अंकों के साथ पहले स्थान पर हैं। कीमर के बाद प्रज्ञानानंदा और नीदरलैंड के अनीश गिरी दूसरे स्थान पर हैं, जिन्होंने संयुक्त बढ़त बना रखी है। और अब चेस के बाद रुख करते हैं हॉकी के मैदान का, जहां भारत की अंडर 18 पुरुष हॉकी टीम ने कल ऑस्ट्रेलिया के साथ मुकाबले में 6-3 से एक शानदार जीत दर्ज करते हुए सीरीज को 1-1 की बराबरी पर ला दिया है। जबकि भारत की अंडर 18 महिला टीम को मेहमान टीम के खिलाफ 1-2 से हार का सामना करना पड़ा। ये महिला टीम की लगातार तीसरी हार रही। पुरुष और महिला टीमें दोनों ही कल अपने अपने सीरीज के जो हैं चौथे मुकाबले खेलने के लिए उतरेंगी। और अब रुख करते हैं फीफा का, जहां फीफा धीरे धीरे वापस, फीफा का बुखार जो है वो लोगों के ऊपर चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और जैसे जैसे प्रतियोगिता करीब आ रही है फीफा विश्व कप की, कई टीमों ने अपने ऐलान करना शुरू कर दिए हैं खिलाड़ियों के। इसी कड़ी में फीफा विश्व कप 2026 में नेमार को ब्राज़ील की टीम में शामिल किया गया है। नेमार 2.5 साल बाद अपनी नेशनल टीम में वापसी कर रहे हैं। 34 वर्षीय खिलाड़ी की लोकप्रियता का कोई मतलब बैरियर नहीं है। शानदार खिलाड़ी जब भी उतरते हैं उनको, उनसे उम्मीदें होती हैं दर्शकों को, उनके फैंस को। और अब तक 128 मैच खेल चुके हैं जिसमें 79 गोल उन्होंने किए हैं। तो कोई दो राय नहीं कि एक बहुत शानदार खिलाड़ी वापसी करता हुआ फीफा जैसी बड़ी प्रतियोगिता में नजर आएगा। उधर प्रीमियर लीग फुटबॉल में आर्सेनल एफसी कल बर्नेल एफसी पर 1-0 की रोमांचक जीत दर्ज करते हुए अंक तालिका में ऊपर आ गया है। आर्सेनल के लिए मैच में एकमात्र गोल काई हैवर्ड्स ने किया। इंडियन ओपन सफरिंग टूर्नामेंट का आयोजन 29 से 31 मई तक मैंगलुरु में होगा। ये प्रतियोगिता जापान में इस साल के आखिरी में होने वाले एशियाई खेलों की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि वहां पे पहुंचने से पहले आपको एक बड़ा मंच मिलेगा जहां पे आप अपनी प्रैक्टिस और अपनी पूरी तैयारियों को अंतिम जामा पहना सकते हैं, अंतिम रूप दे सकते हैं। इस प्रतियोगिता का आयोजन जो है भारतीय सफरिंग महासंघ SFI के तत्वाधान में किया जाएगा। और ISL की बात कर लेते हैं, जहां ISL फुटबॉल में आज नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC ने मोहम्मदन FC को 2-0 से हरा दिया। वहीं कल खेले गए मुकाबले में केरला ब्लास्टर्स FC ने गोवा FC को 2-1 से शिकस्त दी। भारत के पूर्व बल्लेबाज और दिग्गज क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर ने कहा है कि युवा खिलाड़ियों को भारत की जर्सी में खेलने के लिए त्याग करने होंगे, क्योंकि शॉर्टकट से कभी सफलता नहीं मिलती है। सचिन तेंदुलकर अहमदाबाद में SRT 10 अल्टीवेल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के उद्घाटन समारोह में शामिल थे। इस दौरान उन्होंने बताया कि ये सेंटर देश में खेल संस्कृति बढ़ाने की दिशा में बड़ी भूमिका निभा रहा है।
5: SRT 10 और अल्टावॉल एक पार्टनरशिप कर रहे स्पोर्ट्स सेंटर हमने इनॉग्रेट किया है आज, जहां पे बहुत अलग अलग स्पोर्ट्स है और फैसिलिटीज आर मैग्निफिसेंट। और द आइडिया इज टू ट्रांसफॉर्म इंडिया फ्रॉम अ स्पोर्ट्स लविंग नेशन टू स्पोर्ट्स प्लेइंग नेशन।
0: तो एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर सचिन ने कही कि भारत अब एक स्पोर्ट्स लविंग देश से एक स्पोर्ट्स प्लेइंग नेशन की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जहाँ पे सिर्फ खेल को देखना ही नहीं, उसमें कैसे बढ़ सकते हैं उसके नतीजे भी हमें दिखने लगे हैं। कई खेल जहाँ भारत अब तक प्रतिभागिता नहीं करता था वहाँ बढ़ रहा है और लगातार अच्छे प्रदर्शन नजर आ रहे हैं। सचिन ने युवा पीढ़ी को सीख देते हुए ये भी कहा कि ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार जब भी खेलने जाओ तो सफल हो जाओ, लेकिन हर बार आपको नई तैयारी के साथ जाना बहुत ज़रूरी है।
6: We want our children to be successful, और उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी एंड अबव ऑल बच्चों को फ्रीडम देना पड़ेगा। हर बार आप खेलने जाओगे तो सक्सेसफुल नहीं रहोगे, मगर हर बार तैयारी करके जा सकते हो। ओके, सक्सेस इज नेवर गारंटीड, बट योर प्रेपरेशन एंड योर डिसिप्लिन, फोकस, ये सारी चीजें, जैसे कि हम कहते हैं कि टू टिक ऑल दोस बॉक्सेस, वो तुम्हारे हाथ में है।
0: जी बिल्कुल, और इस कार्यक्रम में ICC के अध्यक्ष जय शाह और गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी भी मौजूद रहे, और ये शानदार सेंटर अब युवाओं को अपनी सेवा देने के लिए तैयार है। और सचिन की बात की तो बात करते हैं उनके एक फैन की भी, कि साहिल लुधियानवी का शेर है कि हजार बर्क गिरे आंधियां उठें वो फूल खिलके रहेंगे जो खिलने वाले हैं। जम्मू कश्मीर पैरा क्रिकेट टीम के कप्तान आमिर हुसैन लोन की कहानी पर जो अब सिनेमा के बड़े पर्दे पर उतरने जा रही है, बिना हाथों के अपना भविष्य लिखने वाले इस खिलाड़ी की फिल्म अनआर्म्ड शोल्डर की घोषणा कांस फिल्म फेस्टिवल में कर दी गई है। अपने सामने खड़ी हर चुनौती को अपने मजबूत इरादों से बौना साबित कर देने वाला एक खिलाड़ी आज लाखों युवाओं की प्रेरणा है। आइए सुनते हैं अपनी फिल्म की घोषणा के बाद इस खिलाड़ी ने क्या कहा और क्या अपने अनुभव साझा किए।
7: मैं बहुत मुश्किलात उठाने पड़े जब 8 साल की उम्र में एक्सीडेंट हुआ, लेकिन उसके बाद भी मैं डटा रहा, अपने आप को मजबूत किया, और कभी मैं ये नहीं सोचा था मैं यहाँ तक इन मुकाम पर पहुँचूँ, लेकिन ये कभी मैंने जहन में नहीं सोचा था कि आज इस मुकाम पर हूँ। लेकिन इसके पीछे बहुत स्ट्रगल है और वो मेहनत है, वो सपना है जो मैंने अपने जहन में लेकर ये किया कि मैं एक दिन, ऐसा भी एक दिन आएगा जब मैं अपने देश को रिप्रेजेंट करूँ, मैं क्रिकेटर बनूँ। जब मैंने सचिन सर ने मेरी जर्सी पहनी और सचिन सर ने मुझे मतलब इतने तारीफ की, तो मैं वो बयान कैसे करूं। और इस फिल्म
0: जी बिल्कुल एक बहुत बड़ा लम्हा था उनके लिए। और श्रोताओं, समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस पर आप अपनी राय और अपने सुझाव हमें हमारी ईमेल sportscan.air@gmail.com sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमको अनुमति दीजिए, नमस्कार।
8: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। भारत और नॉर्डिक देशों ने आपसी संबंधों को हरित प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्रियों के साथ नॉर्वे के ओस्लो में 3rd भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अगले महीने होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय ने रेबीज से संक्रमित और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में भीषण गर्मी की चेतावनी दी, दक्षिण क्षेत्र में तेज वर्षा की आशंका। और शुभमन गिल अफगानिस्तान के साथ टेस्ट और एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक सम्मेलन के बाद श्री मोदी ने ये बात कही।
9: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
8: श्री मोदी ने भारत नॉर्डिक संबंधों में विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले एक दशक में व्यापार में 4 गुना वृद्धि हुई है।
9: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
8: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्नत भागीदारी के जरिए प्रत्येक नॉर्डिक देश की विशेषज्ञताओं का उपयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों के बीच अनुसंधान, कौशल विकास और प्रतिभा के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालयों, प्रयोगशालाओं, स्टार्टअप तंत्र के स्तर पर सहयोग मजबूत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और नॉर्डिक देश आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख रखते हैं।
9: वैश्विक तनाव और संघर्ष के इस दौर में भारत और नॉर्डिक देश साथ मिलकर एक रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर को बल देते रहेंगे और यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर सहमत है कि मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म आवश्यक भी है और अर्जेंट भी है और टेररिज्म पर भी हमारा क्लियर और यूनाइटेड स्टैंड है, नो कॉम्प्रोमाइज, नो डबल स्टैंडर्ड।
8: प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण के लिए इटली रवाना हो गए हैं। वे देर रात रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। इटली में भारत के राजदूत वाणी सरराजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा आदान प्रदान, नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
10: सुश्री राव ने बताया कि यह यात्रा समुद्री सुरक्षा, मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं, व्यापार साझेदारियों और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ठोस परिणाम देने का लक्ष्य रखती है और इस दौरान कुछ महत्वपूर्ण समझौतों की घोषणा होने की उम्मीद है। इटली में भारतीय समुदाय के बारे में बात करते हुए भारत की राजदूत वाणी सरराजू राव ने कहा कि भारतीय प्रवासी समुदाय ने डेयरी और कृषि सहित कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय की गतिशीलता और कल्याण से जुड़े मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान चर्चा हो सकती है। सुपर्णा भाटिया, रोम से।
8: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन की यात्रा पर आज दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल पहुंचे। रक्षा मंत्री दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आंग्यू बेक के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता रक्षा और सहयोग की समीक्षा करेंगे तथा द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने के लिए नई पहलों की तलाश करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में नीट यूजी की दोबारा परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए। श्री प्रधान ने कहा कि दोबारा परीक्षा सख्त सुरक्षा नियमों के अंतर्गत सुरक्षित, बिना किसी रुकावट के और पूरी तरह से पुख्ता तरीके से आयोजित की जानी चाहिए। इस बीच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने महाराष्ट्र के लातूर जिले में स्थित रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस कोचिंग सेंटर में एक और तलाश अभियान चलाकर कथित नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में जांच तेज कर दी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 की मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि एक और दिन बढ़ा दी है। उम्मीदवार अब 23 मई तक आवेदन जमा करा सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग देश का सबसे विकसित जनजातीय संभाग बन जाएगा। बस्तर में श्री शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है वर्ष 2031 तक बस्तर के लोगों के औसत आमदनी में 6 गुना वृद्धि करना है। उन्होंने कहा कि बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने के बाद केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर अगले 5 सालों के लिए इसके विकास से संबंधित एक वैज्ञानिक प्रारूप तैयार किया है।
2: 19 मई 2026 की ये तिथि है कि जहां से नक्सल प्रभावित क्षेत्र में संपूर्ण विकास की परिकल्पना को लॉन्च किया जा रहा है। बस्तर के 7 जिले को नक्सलवाद से मुक्त कराने के लिए भारत सरकार के द्वारा यहां पर करीब करीब 200 सुरक्षा कैंप बनाए।
1: वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने, भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और विकसित भारत की दिशा में देश की प्रगति के लिए उद्योग और सरकार के बीच सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में श्री गोयल ने ये बात कही।
3: हम दुनिया की भू राजनीतिक परिस्थितियों और उनसे जुड़े जोखिमों को तेज सुधारों के अवसर में बदलेंगे, खुद को अधिक मजबूत और लचीला बनाने की तैयारी करेंगे, अपनी

0: सप्लाई चेन को और सशक्त करेंगे और दुनिया जो भी अवसर दे रही है तथा भारत जो अवसर दुनिया को प्रदान कर रहा है उसके पूरे लाभ उठाएंगे। उदाहरण के तौर पर वे 38 देश जो एक के बाद एक मुक्त व्यापार समझौते के ढांचे में शामिल हो रहे हैं।
1: वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि भारत का लक्ष्य 2030-31 तक 350 अरब डॉलर का कपड़ा बाजार बनाना है। इसमें 100 अरब डॉलर का निर्यात शामिल होगा। नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि टिकाऊ और प्राकृतिक फाइबर ही कपड़ा क्षेत्र के भविष्य को आगे बढ़ाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से उर्वरक प्राप्त करना दिन प्रतिदिन कठिन होता जा रहा है। ओडिशा के भुवनेश्वर में श्री चौहान ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद केंद्र सरकार किसानों के लिए पर्याप्त उर्वरक आपूर्ति सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने जन सुरक्षा को देखते हुए रेबी से संक्रमित और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दे दी है। न्यायालय की पीठ ने देश में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से निपटने के मद्देनजर कई निर्देश जारी किए हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजी का दुष्कर्म मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करेगा। पीड़िता के अभिभावकों ने अपराध की आगे की जांच के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मामले में एक से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने का दावा किया है। इससे पहले इस मामले में सियालदह सत्र अदालत ने संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने आज फालता विधानसभा क्षेत्र में होने वाले आगामी पुनर्मतदान से अपना नाम वापस लेने की घोषणा की है। भाजपा के नेतृत्व वाली नई सरकार के विशेष पैकेज की उन्होंने सराहना की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष नई दिल्ली में भारत की अध्यक्षता में आयोजित होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। रूस ने बताया है कि श्री पुतिन 12 और 13 सितंबर को सम्मेलन में शामिल होंगे। एक साल के अंदर श्री पुतिन की ये दूसरी भारत यात्रा होगी। इससे पहले वो दिसंबर 2025 में भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली आए थे। देश के पूर्वोत्तर राज्यों में कारीगरों और बुनकरों के एक समूह ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से आज राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अपनी प्रतिभा दर्शाने के लिए मंच प्रदान करने पर राष्ट्रपति का आभार व्यक्त किया। राष्ट्रपति ने कारीगरों और बुनकरों को सहायता देने की जरूरत पर बल दिया ताकि उनका हुनर अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके और वे आत्मनिर्भर बन सकें। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 114 अंक गिरकर 75,201 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 32 अंक लुढ़ककर 23,618 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 18 पैसे कमजोर होकर 96.53 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ।
1: मौसम विभाग ने गुरुवार तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में रातें अधिक गर्म रहने का रेड अलर्ट जारी किया है। कल पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली एनसीआर में भीषण लू की आशंका है। अगले 2 से 3 दिन के लिए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दक्षिण पश्चिम बिहार, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश या मराठवाड़ा और उड़ीसा में लू चलने की संभावना है। इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि 21 मई तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरल, माहे और लक्षद्वीप में तेज बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश, बिहार, गंगा के मैदानी, पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा में गरज के साथ तेज हवाओं का अनुमान है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच और 3 एकदिवसीय मैच की श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। शुभमन गिल टेस्ट टीम के कप्तान और केएल राहुल को उपकप्तान बनाया गया है। शुभमन गिल एकदिवसीय टीम की कप्तानी करेंगे और श्रेयस अय्यर उपकप्तान होंगे। आईपीएल क्रिकेट में जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मैच जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक लखनऊ सुपर जायंट्स ने

0: का इंजेक्शन देने की अनुमति दी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में भीषण गर्मी की चेतावनी दी, दक्षिण क्षेत्र में तेज वर्षा की आशंका। और शुभमन गिल अफगानिस्तान के साथ टेस्ट और एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी and I am Subhadra Ramachandran with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says investments from Nordic countries in India rose by 200% in the past decade, attends third India-Nordic summit in Oslo with counterparts from Norway, Sweden, Iceland, Finland and Denmark. Education Minister Dharmendra Pradhan reviews preparation for NEET UG re-examination to be held next month. Supreme Court allows euthanasia for rabid and dangerous stray dogs to protect human life. Russian President Vladimir Putin to attend New Delhi BRICS summit in September this year. IMD warns of severe heatwave conditions in northern India, forecasts heavy rainfall in southern region. In cricket, Shubman Gill to lead Indian squads in Test and ODI series against Afghanistan. India and the Nordic nations comprising Norway, Sweden, Denmark, Finland and Iceland have elevated their bilateral ties to a green technology and innovation strategic partnership. Mr. Modi made the announcement while addressing a joint press meet with leaders of Nordic nations after attending the third India-Nordic summit in Norwegian capital Oslo today.
2: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सेंसिटिविटी में एक्सपर्टीज को, सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज को भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
1: Prime Minister Narendra Modi said investments from Nordic countries in India rose by 200% in the past decade.
2: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
1: Prime Minister Modi affirmed that the relations between India and the Nordic countries are set to usher in a new golden era with the recently concluded trade agreements, including trade and economic partnership and India-EU free trade deal. On terrorism, Mr. Modi said the two sides have a clear and united stand, no compromise, no double standards.
2: आज हम सब ने मिलकर ग्लोबल इश्यूज पर भी विचार साझा किए। वैश्विक तनाव और संघर्ष के इस दौर में भारत और नॉर्डिक देश साथ मिलकर एक रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर को बल देते रहेंगे और यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर सहमत है कि मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म आवश्यक भी है और अर्जेंट भी है, और टेररिज्म पर भी हमारा क्लियर और यूनाइटेड स्टैंड है, नो कॉम्प्रोमाइज, नो डबल स्टैंडर्ड।
1: Speaking on the occasion, the prime ministers of Norway, Sweden, Iceland, Finland and Denmark reiterated their commitment to shared values of democracy, a rules-based global order and urgent reforms in multilateral institutions in today's changing world. Acknowledging India's global stature, they stressed the need for enhanced cooperation with New Delhi as countries sharing similar values, particularly to address the challenges of conflict and global disruptions. Prime Minister

0: be held next month. Supreme Court allows euthanasia for rabid and dangerous stray dogs to protect human life. Russian President Vladimir Putin to attend New Delhi BRICS summit in September this year. IMD warns of severe heatwave conditions in northern India, forecasts heavy rainfall in southern region. In cricket, Shubman Gill to lead Indian squads in Test and ODI series against Afghanistan. That's all in the news at 9. Good night.
1: हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से बोल रहे हैं। रात के 9:15 हुए हैं। चित्रपट संगीत कार्यक्रम का पहला गीत किशोर कुमार के स्वर में, आनंद बख्शी की रचना, संगीत एसडी बर्मन का, फिल्म है आराधना।
2: रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना,

पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

चित्रपट संगीत के कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए मोहम्मद रफी की आवाज में लव इन टोक्यो फिल्म का गीत। नगमा निगार हसरत जयपुरी और मौसिकार हैं शंकर जयकिशन।

0: कुछ यादें अतीत की।
1: आकाशवाणी गोरखपुर के बड़े मशहूर फनकार और आर्टिस्ट राहत अली खान साहब, जो कि रायपुर खूब आते रहे हैं रेडियो के भी प्रोग्राम्स में, मेरा नसीब था कि मुझे उनकी छाया मिली और उनसे दादरे, गजलें, सूफियाना चीजें खूब सीखी।
0: कुछ बातें वर्तमान की।
2: आज बस जिंदगी का आनंद ले रहा हूँ, गाने का आनंद ले रहा हूँ। रोज अपना 2-4 घंटे का रियाज सुबह मेरा होता है।
0: कुछ सपने भविष्य के।
3: अभी फिर जल्दी ही कुछ अच्छे बैनरों की अच्छी फिल्में और अच्छे गीत आपको सुनने मिलेंगे।
0: कुछ किस्से अनकहे।
4: जो भी एक्शन हो रही है फिल्मों में,

0: जो हम देख सकते हैं लेकिन वो देख नहीं सकते, वो हमें हमारी आवाज के माध्यम से बोलना पड़ता है।
1: विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े विशिष्ट जनों से मुलाकात, सुनिए इनसे मिलिए हर शुक्रवार सुबह 8:30 बजे आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से। आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं यूट्यूब पर। यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो यूट्यूब पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।
2: श्रोताओं, कार्यक्रम के आखिर में लीजिए सुनिए महान फिल्म का गीत, आवाज किशोर कुमार की। अनजान के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है आर डी बर्मन ने।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। रात के 9:30 हुए हैं। भीड़ में गुम होते घर, लीजिए सुनिए ये नाटक, ये रूपक। लेखक श्री सुरेश तिवारी, संगीत संयोजन विश्वास केलकर का और प्रस्तुति श्री मिर्जा मसूद की है।

0: हम कौन हैं, हम कहां से चले थे, आज हम कहां आ गए हैं। हम आप और सभी सिर्फ समय के बीतते चले जाने को ही अपने जहन में दर्ज करते चले आ रहे हैं, पर हमारे बीच कुछ रीतता चला आ रहा है जिसे हम फौरन दर्ज नहीं कर पाते। समय के साथ उभरती हैं बहुत सी यादें और समय बार बार सच झूठ और अपने पराये से रूबरू कराता रहता है। याद करें तो बहुत सी बातें याद आती हैं। याद ये भी आता है कि अपने घर से दूर ये शहर जो कभी अपना नहीं लगता था, आज अपना सा होता जा रहा है। घर याद तो आता है पर बिल्कुल भी पास नजर नहीं आता। अपने सबकी नजरों के सामने दिखते हैं पर हम चाहकर भी उनके सामने नहीं पहुंच पाते। अपने आप को जानने, पहचानने और दुनिया से जूझने की जरूरत ने हमें बदल कर रख दिया है। कभी और बल्कि कहीं दूर से हम अपने आप को देखें तो लगता नहीं कि हम वाकई नहीं हैं। हम अपने आप को ठीक से पहचान नहीं पाते। हमारे भीतर का परिवर्तन जिंदगी की कठिन लड़ाइयों का परिवर्तन तो नहीं है। कई बार लगता है कि हम भीड़ के दबाव और प्रभाव से जितना नहीं बदले उससे ज्यादा हमारा मन बदल गया और एक ही रक्त संबंध से जुड़े लोग आज एक ही शहर में रहते हुए न केवल अजनबी से बन गए हैं बल्कि गलियों सड़कों की दूरी ने त्योहारों पर एकत्र होने की परंपरा को भी खत्म कर दिया है। रिश्ते अब औपचारिक की बजाय मशीनी हो गए हैं। मिलने की बात करने की वजह भी अब बहाना लगती है हमें। भीड़ हमारे चारों तरफ बढ़ रही है। भीड़ के बीच जीने के आदि हम सिर्फ भीड़ का हिस्सा बनते जा रहे हैं। खासतौर से शहरों की भीड़ और उसमें शामिल हमारे जीवन की भाग दौड़ दोनों ने मिलकर हमारे जीवन का वास्तविक मजा छीन लिया है। अगर हम अपने बचपन पर नजर डालें, थोड़ा पीछे चलें, कुछ सालों पीछे चलें, याद करें तो याद आएंगे बीते पल, ऐसे पल जो सिर्फ बीते नहीं बल्कि उनके साथ जुड़ी हैं मीठी मीठी स्मृतियां, सुनहरी और खट्टी मीठी बातें, रूठना मनाना, भागना और छुप जाना और दादी नानी की कहानियां, कहानी लोरी से जुड़ा बचपन का समय, भरा पूरा घर और भरी पूरी लगने वाली जिंदगी। पर जैसे समय का पहिया घूमता है, घूमता चला जाता है, बचपन फिर नए नए रूप बदलता चला जाता है, नई नई जिम्मेदारियां सामने आने लगती हैं, जिम्मेदारियों से जुड़ा दबाव सामने आता है, फिर यही जिम्मेदारी एक बड़े घर को छोटे छोटे घरों में बदल देती है। परिवार का दायरा टूटता है तो हम सब भी आपस में टूटते हैं। अपनी अपनी जिम्मेदारी लेकर टूटना या अलग हो जाना अब शहरों की जिंदगी का साफ सा हिस्सा हो गया है। अपनों से अलग होकर फिर जीने और जीते चले जाने की एक स्वाभाविक शैली स्वतः विकसित हुई है शहरों में। अपनों के बीच अकेले होकर जीने को विवश हम, अपने आप से लड़ते हम और अपने तर्कों से जूझते हारते हम आखिर में ये तय नहीं कर पाते कि भीड़ में हम गुम होते जा रहे हैं या फिर भीड़ में कहीं हमारा अपना घर गुम हो गया है, हमारा बचपन गुम हो गया है, हमारी माँ और हमारे पिता गुम हो गए हैं, हमारे बचपन का वो दोस्त अब नहीं है या फिर मामा चाचा का घर इतना दूर हो गया है कि पांव वहां तक जाते ही नहीं। डॉक्टर एलिना सेन।
1: भारत जैसे देश में एक हिसाब से परिवार ने ही व्यक्ति को और पूरे समूह को, पूरे समाज को वो सुरक्षा प्रदान किया जो कि कहीं कहीं कानूनी तौर पे सामाजिक सुरक्षा के प्रावधानों द्वारा दिया जाता है। उदाहरण के लिए बूढ़ों की देखभाल, हमारे यहाँ कुछ साल पहले तक हम सोच नहीं सकते थे कि बूढ़ों को हमें किसी वृद्धाश्रम में या किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन में, संस्था में रखा जाए, तो उनकी भी एक भूमिका होती थी बच्चों के लालन पालन में, बच्चों को उनसे प्यार मिलता था। इसी प्रकार से बच्चे भी परिवार के केवल माता पिता नहीं, पूरे परिवार से उनको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता था, एक प्यार मिलता था, एक माहौल मिलता था। लेकिन आज के ज़माने में ये सारी ढांचा जो है ये टूटन पे है, क्योंकि व्यक्ति और परिवार भी उपभोक्तावादी होते जा रहे हैं और इसके तहत व्यक्तिगत तरक्की भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और कंज्यूमर कल्चर में कौन ज़्यादा से ज़्यादा गैजेट्स किसके पास हो, किस व्यक्ति के पास हो, या एकल परिवार में अगर दो भाई हैं तो किस भाई के पास ज़्यादा है, इस प्रकार की भावना जो है वो आते गई है।
0: भीड़ भीड़ भीड़, बस एक भीड़ ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है, यहाँ से वहाँ तक चारों तरफ मकान ही मकान, मशीनी रफ्तार से बढ़ती भीड़, सिरहे हमारे चारों तरफ। पर कहीं जो चीज नहीं है और दिखती भी नहीं है वो चीज है प्यार। संयुक्त से एकल परिवार में बदल गई हमारी जिंदगी की बाकी क्रियाएं। श्रीमती विमल व्यास,
2: संयुक्त परिवार से ही शादी होकर आई थी। लगातार साथ रहने से जैसा कि थ्योरिटिकल कहा जाता है कि आपसी प्रेम बढ़ता है, पर प्रैक्टिकली प्रॉब्लम देखा जाए तो आज के ज़माने में बच्चों की लड़ाई पल में बड़ों के झगड़ों में बदल जाती है और धीरे धीरे गंभीर रूप धारण कर लेती है, तब संयुक्त परिवार की प्रासंगिकता खत्म हो जाती है। हालांकि हम लोग व्यास जी की नौकरी के कारण घर से दूर आए हैं, पर अभी भी हमारे सभी रिश्तेदार से हमारा संपर्क बना रहता है और वे सभी हमारे लिए समय निकालते हैं। गर्मियों में बच्चों की बुआ, बच्चों के चाचा सभी हमारे यहाँ आते जाते हैं। बचपन के पुराने दिन हम लोग याद करते हैं और हम लोग भी उनसे मिलने के लिए जाते रहते हैं। अचानक सब लोगों के आने से कंजस्टेड जरूर हो जाता है, पर फिर भी हम लोग एक दूसरे को एडजस्ट कर लेते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि सभी परिवारजन यदि एक दूसरे के लिए प्रेम और आदर रखते हैं, एक दूसरे की प्रॉब्लम को समझते हैं, तो फिर उनके साथ रहने और अलग रहने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता।
0: समाज अपने आप को समय के साथ साथ बदलता रहता है। समाज के भीतर समय से जुड़े अनेकानेक बदलाव दर्ज हैं। अभी समाज का जो स्वरूप हमारे सामने है वो भी आने वाले कुछ समय में फिर बदल जाएगा। अभी समाज में किसी खास चीज को मान्यता प्राप्त है तो कोई अन्य बात या चीज हम और आप और हम समाज को सिर्फ समझने के प्रयास में अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा लगा देते हैं। पर क्या सिर्फ समझने का प्रयास करने से ही सारी चीजें समझ में आ सकती हैं? आदमी तो आज इतना समझदार हो गया है कि वो दुनिया भर की सारी चीजों को समझने का दावा करने लगा है, पर वो अपने मन की बेचैनी या फिर भी तर की परेशानी को ठीक से समझ पा रहा है? बड़े बड़े शहरों में और बड़े बड़े घरों में आदमी का मन ज्यादा ही बेचैन है। भीड़ के कारण आदमी बेचैन है या फिर अपने अकेलेपन से? डॉक्टर प्रभावती शुक्ला,
3: ये जैसे ये भी एक प्रकार का मोटिवेशन ही है, नीड मोटिवेशन जैसे कहा जाता है, वो भी एक मोटिवेशन है। इसमें क्या है, जब मैस्लो की थ्योरी के बेस पे ये देखा गया है कि पांच प्रकार के मोटिवेशंस होते हैं। एक तो फिजियोलॉजिकल मोटिवेशन है, नीड फॉर फिजियोलॉजिकल नीड्स जैसे बोलते हैं वही, और सेकंड है सेफ्टी नीड्स, सिक्योरिटी नीड्स, एस्टीम नीड्स और एक्चुअलाइजेशन नीड। तो पर्सन के या व्यक्ति के जीवन में क्या है, ये हर एक नीड जो है फुलफिल होती जाती है। जैसे एक नीड फुलफिल होती है तो वो क्या है, सेकंड नीड की उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो सेफ्टी या सिक्योरिटी नीड है जो है उसमें क्या है, पर्सनस को क्या है, फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस जो है वो उसमें मिलता है। ये क्या है? ये ज़्यादा करके जो पेयर ग्रुप्स हैं जो अपने फैमिलीज में मदर, पेरेंट्स, फादर और सिस्टर, ब्रदर, ये सबसे क्या है, फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस जो है ये मिलता है। तो उसके बाद जो है जो एडजस्टमेंट, जैसे एडजस्टमेंट का है, तो आजकल जो पर्सन्स जो है वो क्या है, एडजस्टमेंट उनके में बिल्कुल ही नहीं है, टॉलरेंस नहीं करवा, और इसी कारण जो ज़्यादा केसेस हो रहे हैं, सुसाइड केसेस, डिप्रेशन के केसेस, फ्रस्ट्रेशन के केसेस जो हो रहे हैं, वो क्या है उनकी जस्ट जो एडजस्टमेंट, ही कैन नॉट एडजस्ट विथ द सिचुएशन एज वेल एज विथ हिज फैमिली और एज वेल एज विथ हिज फ्रेंड।
0: वो परिवार इन दिनों ज़्यादा ही बेचैन है जहाँ अपना कहने को सिर्फ पति पत्नी और दो बच्चे हैं। बच्चे छोटे हैं और घर में दिन भर फैला होता है कामों का ढेर। जिधर नजर फेरी उधर दिखता है बस काम ही काम। ऐसे में याद आती है माता पिता की और दादा दादी की। लगता ये भी है कि अगर नाना नानी होते तो कुछ दिन वहीं चले जाते, पर ज्यादातर हमारे आसपास ऐसे लोग हैं जिनका यहां से वहां तक, बल्कि साफ तौर पर कहें तो दूर दूर तक अपना कोई नहीं है। रिश्ते वैसे भी शहरों के भीतर कागज पर लिखी किसी इबारत से ज्यादा नहीं रह गए हैं। डॉक्टर श्रीमती शैल शर्मा।
4: भारतीय संस्कृति जो संयुक्त परिवार की रही है वह आज टुकड़ों में बिखर रही है। इसका मूल कारण एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना में कमी आना या एक दूसरे के प्रति विश्वास की भावना में कमी होना और एक दूसरे के प्रति जो त्याग और सहने की जो भावना होती थी उनमें आज कमी आ रही है। और इसी कमी को देखते हुए प्रत्येक व्यक्ति अपना व्यक्तित्व विकास भी करना चाहता है, जिसके कारण वो परिवार का सहयोग न होने से अलग रहने के लिए विवश हो रहा है। मैं संयुक्त परिवार में आई हूँ और संयुक्त परिवार में रहने से वहाँ कम से कम एक दूसरे के प्रति विश्वास, सहयोग और त्याग को ही रखकर, कायम रखकर ही परिवार को सुदृढ़ और संपन्न बनाया जा सकता है। जिसके लिए बहुत अच्छा है कि किसी एक कवि ने कहा है कि प्रेम को उस दीपक की तरह कहा जाएगा जिसमें जब तक स्नेह रूपी तेल दीपक में भरा होगा तब तक दीपक जलता रहेगा। उसी तरह यदि परिवार में आपसी प्रेम, स्नेह और विश्वास कायम रहेगा तो परिवार और घर भी खुशहाल रहेगा।
0: मकान की समस्या हो तो आदमी हल कर सकता है उसे, पर घर की समस्या और उसके भीतर के दर्द वही जान सकता है जिसने इसे महसूस किया है। बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ा हो गया है शहर और घटते घटते इतने घटे रिश्ते कि आज बड़े शहर का आदमी सिर्फ गोल गोल घूम रहा है। गोल गोल यानी अपने और बस अपने घर के चारों तरफ। ये तस्वीर उस समय और विकट

0: जाती है जब पति पत्नी दोनों कामकाजी हो, उनका अपना छोटा सा परिवार हो, यानी पति पत्नी और दो बच्चे। बच्चों की जिम्मेदारी, घर की जिम्मेदारी और दफ्तर के काम की जिम्मेदारी। डॉक्टर सुमी गुहा।
1: किसी के पास समय नहीं है कि वो अपने बच्चे के बारे में सुन सके या बच्चे की बातों को ध्यान दे सके, परंतु सबसे बड़ा काम जो हमें करना चाहिए वो है कि हमें अपने बच्चों के दोस्त बन जाना चाहिए। उसके लिए थोड़ा समय नौकरी करते हैं, मानते हैं कि आज लेडीज़ भी जॉब कर रही हैं तो उनको समय नहीं मिलता है कि बच्चों के समय पूरा समय व्यतीत कर सकें, पर वो समय निकालें, बच्चों के साथ उनकी बातें सुनें, उनके पहले क्या प्रॉब्लम सुने ये बताएं कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, और फिर डिसीजन उन्हें लेने दें कि ये बता दें कि ये अच्छा बुरा है, पर अपने डिसीजन ना थोपते हुए उनके डिसीजंस पे ध्यान दें कि वो क्या चाहते हैं इस चीज़ में, तभी शायद वो कुछ अच्छा कर पाएगा। क्योंकि बहुत बार देखा गया है कि हम अपनी मर्जी के हिसाब से उनको बोलते हैं ये करो वो करो, और ये उसको अदरवाइज ले लेते हैं बच्चे, और फिर कुछ गलत काम कर लेते हैं। तो इट विल बी बेटर कि हम उनको डिसीजंस खुद लेने दें और अच्छा बुरा का ज्ञान जरूर दे दें। एक अच्छा दोस्त बन जाएंगे तो वो अपने प्रॉब्लम जरूर हमें बता पाएगा।
0: पहले भी गाँव थे, शहर थे, महानगर थे, राज्य था, राजधानी थी, जीवन था, और आज के सलीके के तमाम लोग थे, पर पहले जो था शायद आज नहीं है, या फिर आज जो है शायद वो पहले नहीं था। राज, राजा और सरकारें समय के साथ बदलती रहती हैं, पर भावनात्मक पहलू उतनी तेजी से नहीं बदलते। रिश्तों की गर्माहट भले खत्म हो जाए, पर सच्चे मायनों में रिश्ते ताउम्र नहीं बदलते। श्रीमती निर्मला सिंघवी।
2: मैं एक संयुक्त परिवार से आई हुई हूँ और संयुक्त परिवार में ही मेरी शादी हुई। मेरे भी 6 भाई और 4 बहन, और यहाँ मेरे ससुराल में भी 6 भाई 4 बहन का ही परिवार था। संयुक्त परिवार रहा, वहाँ भी संयुक्त परिवार था। विचारों में आजकल इसलिए बहुत परिवर्तन आ रहा है क्योंकि सहनशीलता कम हो रही है। आधुनिक विचारों को लेके जो लड़कियां जीना चाह रही हैं, जॉइंट फैमिली में रहती हैं, उसके बाद भी संयुक्त परिवार में जाने के बाद में भी वो चाहती हैं कि हम अलग रहें, हमारा अलग घर रहे, हमारा पति हमारे हम डोमिनेट उसको करें। पहले के जो संयुक्त परिवार में था ये बात नहीं थी कि हमारे पति को हम डोमिनेट करें, डोमिनेट नहीं, उसमें सहयोग की भावना से परिवार चलता था। जैसे कि आपको मैं अपने पिताजी के यहाँ के बारे में बताती हूँ, बहुत बड़ा परिवार है और 4 पीढ़ियाँ एक साथ एक छत्र के नीचे रह रही हैं। अब ये आश्चर्यजनक बात रहती है कि बहुत से विदेशियों ने आके भी वहाँ हमारे यहाँ इंटरव्यू लिया है, टीवी में भी बहुत बार आ चुका है, पर उसका कारण ये है कि मेरे पिताजी का मान सम्मान इतना ज़्यादा आदर है कि समाज के लोग तो खैर मानते ही हैं। मेरे भाई अगर एक शब्द मेरे पिताजी बोल दें तो उसको ना नहीं कर सकते, क्यों? कि उनमें समर्पण की भावना है। वो चाहते हैं कि हमारे जो पिताजी का महत्व है आज तक बना रहा है उनको हम माने, और उन्हीं का अनुसरण करके मेरे भाइयों का अनुसरण कर उनके बेटे कर रहे हैं, उनके बेटे से उनके बेटे कर रहे हैं।
0: खुशी और दुख सबके अपने अपने होते हैं, पर अनुभवों को जरूर आपस में बांटा जा सकता है। कई बार एक व्यक्ति का अनुभव बहुत सारे व्यक्तियों का भी अनुभव बन जाता है। आप माने या ना माने, आज शहर और गांव दोनों ही जगहों का आदमी अपने अपने कारणों से परेशान है। जमीन और शान से जुड़े झगड़ों ने हम सभी को बांट कर रख दिया है। भीड़ में जब तक आदमी है तब तक तो ठीक है, पर ज्यों ही आदमी अकेला होता है वो मन में उठते विचारों के सैलाब से घबरा जाता है। कंप्यूटर, इंटरनेट ने आज आदमी को न केवल एकांत प्रिय बनाया है बल्कि उसे चिड़चिड़ा और स्वार्थी भी बना दिया है। तलाक के किस्से लगातार बढ़ रहे हैं, टीवी सीरियलों से मतिभ्रम की स्थिति पैदा होने लगी है, लोगों की निर्णय शक्ति कल की तुलना में आज कमजोर हुई है, लगातार चारों तरफ भय का वातावरण बढ़ा है, भौतिक आकांक्षाएं बढ़ी हैं। मन कहीं तो आज आदमी कहीं है। किस्तों में वस्तुएं खरीदने के नए प्रचलन से भी काफी घर टूट रहे हैं। एसएन अवस्थी।
3: एकल परिवार आज के समय में एक मजबूरी आदमी के सामने आ जाती है। मजबूरी इस तरह से हुई कि नौकरियां बड़ी दूर दूर हो गईं। पहले कृषि थी तो सब एक जगह रहा करते थे और नौकरी भी नज़दीक में कहीं यहाँ वहाँ करते थे तो लौटाया करते थे घर में और सब एक ही जगह रहा करते थे। लेकिन अब ये क्षेत्र इतना ज़्यादा बढ़ गया, इतना विस्तृत हो गया कि स्थानीय नौकरियाँ रही नहीं। नौकरियों के लिहाज से आदमी को बाहर जाना पड़ता है। जब वो बाहर जाता है तो कुछ समय तक हमने देखा, हमारे बड़े भाई थे, उनकी पत्नी लगभग 20 वर्षों तक वो होशंगाबाद में रहीं और वो सागर विश्वविद्यालय में अध्यापन का कार्य करते थे और 20-22 वर्षों के बाद वो फिर उनके साथ सागर में जाके रहीं। फिर सिलसिला चला कि उनके जब बच्चे हुए, उन बच्चों की परवरिश माँ बाप के पास हो या काफ़ी दूर हो गए, तो फिर उस मजबूरी से लोग अलग रहना शुरू हो गए। एकल परिवार में आज की आवश्यकता को देखते हुए ये थोड़े समय का एक उम्र का जुनून जब आदमी अपने जीवन में प्रवेश करता है और आजकल ये नाना प्रकार के माध्यमों में जो देखता है टीवी में या दूसरे माध्यमों से, तो थोड़े समय के लिए उसे ऐसा लगता है कि अगर हम अकेले रहें तो उस आयु का जीवन सुखी होगा, हमें स्वतंत्रता उसे मिलेगी, थोड़ी आज़ादी के साथ हम रहेंगे। बड़े परिवार में रहने से कुछ बंधन, सामयिक बंधन आदमी महसूस करता है, लेकिन अगर व्यापक तौर पर अधिकांश लोगों को हम देखें और उनसे मिलें तो आज के माहौल में संयुक्त परिवार में वो ज़्यादा सुरक्षित महसूस करता है।
0: तेजी से बदलते समय और भौतिकतावादी युग में आज शिक्षित, अशिक्षित और अर्ध बेरोजगारी तीनों ही दशा से जुड़ा युवा वर्ग अन्य लोगों की तुलना में कुछ ज्यादा ही परेशान है। भविष्य के सपने और मौजूदा कठिनाइयों से जूझता हुआ उसका मन तय नहीं कर पाता कि अभी तक माता पिता के घर का सहारा आगे भी बना रहेगा या नहीं। उम्र बढ़ने के साथ सपने बदलते हैं और सपनों के साए में बदलता है संसार। पथरीली जमीन पर सुनहरे सपनों के बीच चलना आसान है, पर सच्चाई ही असल में सारा कुछ है जिससे सभी को जूझना है। अनुसुईया पाटिए।
4: परिवार से हमें बहुत सारी आशाएं होती हैं। हम यह चाहते हैं कि हमारी सफलता में वो हमारा साथ दें। हम अपनी सफलताओं का श्रेय भी अपने परिवार को ही दे देते हैं, क्योंकि हर काम में हमारे परिवार वाले हमारा हर वर्क में सपोर्ट करते हैं। हमें कभी असफलता हाथ लगती है तो हमें वो सांत्वना देते हैं और हमें निराशा के अंधकार से उबरने के लिए प्रेरित भी करते हैं, ताकि हम अपने भविष्य को नए सिरे से और नए संघर्ष हेतु तैयार कर सकें। कभी कभी ऐसा होता है परिवार वाले हमारे विचारों से सहमत नहीं होते, क्योंकि ये हो सकता है उम्र के अंतर के कारण होता हो। हमारे विचारों में, हमारी भावनाओं में अंतर होना स्वाभाविक है। हमें घर के लोगों के, घर के सदस्यों के विचारों को भी समझना चाहिए, उनकी भावनाओं का आदर करना चाहिए। हमें परिवार वालों से हर समय सपोर्ट मिलता है। यदि हम किसी समस्या में होते हैं, कठिनाई में होते हैं, तो परिवार वाले ही होते हैं जो हमें अपने अनुभवों से इन समस्याओं से उबारते हैं।
0: भीड़ और घर, घर और भीड़, भीड़ से घर लौटते हुए हम और घर से निकलकर भीड़ में गुम होते हुए हम, ऐसे चक्र के बीच नौकरी की जद्दोजहद में अपना घर छोड़कर बेगाने शहर में नौकरी के चक्कर में आने वाले लोगों की अपनी पीड़ा है, अपना दर्द है। सब कुछ अपने पास है और देखें तो कुछ भी पास नहीं है। पास सारा कुछ हो, पास बिल्कुल भी न लगे, है ना कितनी विचित्र बात, डॉक्टर नीरजा कुन्हप्पन।
5: परिवार में या पारिवारिक मूल्यों में जो बदलियां आ रही हैं पुराने समय में या जब हम बचपन में थे और अब जो हमारे बच्चे हैं, हम जब बचपन में थे तब जो परिवार की जो गति है वो बहुत धीमी हुआ करती थी, जिंदगी की रफ्तार इतनी तेज नहीं थी। माँ बाप को बच्चों के लिए पूरा समय रहता था, शाम को पिताजी घर में हुआ करते थे, माताएं पूरे समय घर में रहती थी बच्चों का ख्याल करने के लिए, उन्हें अच्छी परवरिश देने के लिए, उन्हें टाइम पे भोजन उपलब्ध कराने के लिए, और पिताजी उन्हें रहते थे कि उन्हें शाम को पढ़ा सकें या कहीं घूमने जा सकें, पूरा एक समय एक परिवार बंधा हुआ रहता था। लेकिन आज जब हम अपने परिवार में या मैं अपने परिवार में देखूं तो हम गुम चुके हैं, समय में गुम चुके हैं, किसी के पास किसी के लिए समय नहीं है। एक तो बड़ों के लिए आदर की भावना, और सबसे बड़ी चीज़ है प्यार, जो आज माँ बाप को भी बच्चों के लिए है, पति को भी पत्नी के लिए है, लेकिन वो एक दूसरे को बता नहीं पाते क्योंकि उनके पास समय नहीं है। आज ज़रूरी है कि हर परिवार में हर सदस्य एक दूसरे के लिए कम से कम कुछ समय निकाले ताकि वो साथ में रह सकें।
0: सफ़र, हाँ सफ़र तो सफ़र ही है, चलना तो चलना ही है, पर किसी जगह से चलकर लौटना या किसी सफ़र से अपने घर लौटना कितना सुखद लगता है। सुबह जैसे भोर का एहसास दिलाकर आसमान की ऊंचाइयां नापने को निकले पंछी, जब शाम ढले अपने घोंसलों की ओर लौटते हैं तो उनकी कतारबद्ध पंक्तियां अथवा झुंड यह एहसास जरूर कराते हैं कि कहीं तो अपना घर या घोंसला है जहां लौटना है। भीड़ में अपना घर भले सीधा दिखाई न पड़े, घर घर सभी को बुलाता है, हमको, उनको और सभी को।

भीड़ में गुम होते घर। अभी आप सुन रहे थे ये रूपक। आलेख श्री सुरेश तिवारी का था, वाचक स्वर दीपक हटवार का, संगीत पक्ष के कलाकार थे सतीश पंड्या और विजय कुर्म, संगीत संयोजन विश्वास

श्रोताओं नमस्कार। श्रोताओं, किसी ने क्या खूब कहा है, आपकी पसंद का असर कुछ यूं दिल पर छा जाता है, आपकी पसंद का असर कुछ यूं दिल पर छा जाता है, जो गीत आप सुन ले वो हमारा भी पसंदीदा बन जाता है। जी हाँ श्रोताओं, आपकी पसंद के गीत है आज हमारी प्लेलिस्ट में। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं सिलसिला आपकी पसंद और फरमाइशों का, और आज आपको आपके पसंद के गीत सुनवाऊंगी मैं, आपकी रेडियो दोस्त दीपा। तो आइए कार्यक्रम का पहला गीत सुनते हैं मिस्टर नटवरलाल फिल्म से। आवाजें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की है, गीतकार आनंद बख्शी और संगीतकार है राजेश रोशन, और पसंद आप सभी की है। बेमित्रा से सुरेश कुमार सारथी, पूर्णिमा हेमलता सारथी, कमलकांत सारथी, वीरेंद्र वृजकांत सारथी, भाटापारा दत्रेंगी छत्तीसगढ़ से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झावेंद्र कुमार वर्मा, धरसीवा से छेदूलाल यादव, अर्चना अरुणा अनुराधा अल्पना यादव, दुर्गापारा संतोषी नगर रायपुर से छन्नूलाल यादव, अनुराग अभिषेक अलका अनामिका बलदाऊ यादव, रानू खुशी प्रवीण साहू सीएल यादव, शिक्षक नगर दुर्ग से राकेश वर्मा सचिन वर्मा वाणी वर्मा, शीतलानगर दुर्ग से शिव चंद्राकर भगवान चंद्राकर, और कोटा रायपुर से रुचि वर्मा योगिता वर्मा खुशी ओजल वर्मा, यहीं से अरुण वर्मा ईश्वर वर्मा अनिल और दिनेश सेन। तो आप सभी की फरमाइश करते हैं पूरी, और आपको सुनवाते हैं मिस्टर नटवरलाल फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में।

कार्यक्रम आपकी पसंद की अगली पेशकश फिल्म त्रिशूल से स्वर लता मंगेशकर और किशोर कुमार के, नगमा निगार साहिर लुधियानवी और मौसिकार हैं खय्याम। और इस गीत के लिए ख्वाहिशमंद श्रोता हैं आप सभी, भाटापारा से दान सिंह रावत, पद्मिनी रावत, शुभम सौरभ रावत, बेरड़ी से राजेश सोनी, कंचन, गायत्री, वैष्णवी ढोमने, चंचल, अर्जुन गवनेकर, धीरज सब्बा शेरे, मनोरा से प्रभाकर परांडे, निलेश, परमेश्वर टेकाले, नितिन डहाके, संतोष गुगे, यहीं से तुलसीराम पेंटर डेरे, संदेश आदेश, किरण प्रज्वल, दादुल्य डेरे और माया डेरे, पंजाब से डॉक्टर राजेश जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, बेबी आरजू जाजोरिया, सुभाष वार्ड भाटापारा से एमएल यादव, अजय कुमार यादव, अमित अमीन यादव, गिरीश करण यादव, युवान ढाबेश यादव, यहीं से अमृता यादव, पार्वती यादव, ईश्वरी लक्ष्मी यादव, प्रेरणा डिम्पी यादव, राजनांदगांव से मानवेंद्र साहू और उनके साथी, भाटापारा से बचकामल मोतीलाल यादव, डॉक्टर बसंत भृगु, विनय कुमार ठाकुर और सोनाडीह से सुब्रत चौधरी। तो आइए आप सभी की नज़र करते हैं त्रिशूल फिल्म का ये गीत।

आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से आप सुन रहे हैं श्रोताओं की पसंद पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं प्रिंस फिल्म का गीत मोहम्मद रफी की आवाज में। राजेंद्र कृष्ण के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है शंकर जयकिशन ने, और पत्रों के माध्यम से हमें इस गीत के लिए फरमाइश प्राप्त हुई है आप सभी श्रोताओं की। ग्राम परसाटोला, जिला अंबागढ़ चौकी, छत्तीसगढ़ से ओम प्रकाश मसिया, सिलोचनी मसिया, खुमेंद्र मसिया, तुषारणी मसिया, भाटापारा से श्याम रतन मुंधड़ा, रचनाकार मुंधड़ा, ग्राम बेलरगांव से मिथिलेश देवांगन, हिमांशु, अंकित देवांगन, वार्ड नंबर 20 बेमेत्रा से राज, रागिनी वैष्णव, दाबवली से बसंत सिंह, राजकुमार, सुनीता, कुलदीप गांधी, सिमगा छत्तीसगढ़ से सविता जैन, प्रदीप जैन और उनके साथी, गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंधड़े, आरती जोंधड़े, आप हैं सादुल शहर राजस्थान से ओम प्रकाश चौहान, मन्नू प्रकाश, शिव प्रकाश, वेद प्रकाश चौहान, बनियापारा धमतरी से रामचंद माखीजा, सविता माखीजा, बेबी स्वाति माखीजा, माही, पूजा, छुटकी, शरद और पूरा माखीजा परिवार, और सिर्री गातापार से लावण्या साहू, उपासना देवराज, ओम कुमार साहू, पुष्पराज साहू और प्रभुराम साहू। तो आप सभी की पसंद पर आप सभी को सुनवाते हैं प्रिंस फिल्म का ये गीत।

आकाशवाणी के रायपुर और सरायपली केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद प्यार का मौसम। आइए श्रोताओं अब सुने इस फिल्म का गीत। आवाजें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की है, शब्द रचना मजरूह सुल्तानपुरी की और मौसिकी है आरडी बर्मन की, और इस गीत के लिए हमें फरमाइशें मिली है आप सभी की। छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, शीतल राजेश, पावर हाउस भिलाई से विकास वर्मा, खुशी वर्मा, ग्रंथ वर्मा, संजय प्रधान, पूजा प्रधान, नर्मदा धाम सुरसुली से कैलाश यादव, सुरेश यादव, डिकेंद्र यादव, योगेश यादव, बेमेत्रा से भरतलाल सिन्हा, लव कुमार सिन्हा, लक्की सिन्हा, सुरेश कुमार सारथी, कमलकांत सारथी, हरदेवलाल पारा वार्ड सिमगा से रमेश कुमार यादव, माया यादव, रिंकू सन्नी, कोमल यादव, अमरपुर पेंड्रा से रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी श्रीवास्तव, यहीं से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंशीलाल श्रीवास्तव, रुआबांधा शनिचरी बाजार भिलाई से सुशील जैन, कल्पना जैन, सिया जैन, सौरभ जैन, शौर्य जैन, शुभम जैन, ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेन नेताम, कुसुम नेताम, प्रोनिका प्रोनामिका, उत्कर्ष नेताम, और हथनीपारा भाटापारा से चोवाराम वर्मा, मुकेश वर्मा, दुलारी वर्मा और दुर्गा दुर्गेश्वरी वर्मा। तो चलिए आप सभी को सुनाते हैं आपकी पसंद पर प्यार का मौसम फिल्म का ये गीत।

कार्यक्रम के आखिर में लीजिए श्रोताओं, सुनिए लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी को। गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और धुन तैयार की है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और इस गीत के लिए ख्वाहिशमंद श्रोता हैं आप सभी। देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा, गणेश मिस्त्री, रामनगर रायपुर से राजेश अम्बादे, शशिकला अम्बादे, पूजा अम्बादे, चांदनी चौक गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की नानू, रविंद्र सेन, यहीं से खुशी सेन, रौनक सेन, भाटापारा से नारायण यदु, पुनिया यदु, राकेश यदु, आरती यदु, नवागढ़ कटई छत्तीसगढ़ से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा, दामिनी वर्मा, शांतिनगर भाटापारा से रमजान खान, सिकंदर, असरफ खान, नासिर खान, अयाज, अल्फैज खान, सादिया खान, ग्राम पहरा अहिवारा से पोषण बंछोर, चंद्रकिरण, प्रीति, छाया बंछोर, दत्रेंगी से विश्राम यदु, पार्वती यदु, प्रतिमा, रीना यदु, लक्ष्मीना यदु और रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। तो श्रोताओं, आप सभी की नजर करते हैं हमजोली फिल्म का ये गीत।

न चांद की चाहत न सितारों की फरमाइश, हम और आप यूं ही मिलते रहे, बस यही है ख्वाहिश। उम्मीद है श्रोताओं हमारा ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। हमें अपनी प्रतिक्रियाओं से अवगत कराते रहिए। इसी के साथ फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद से अब अपनी रेडियो दोस्त दीपा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं की पसंद पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। रात के 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। इसमें सुनिए पंडित निखिल बैनर्जी का सितार पर बजाया राग रागेश्री। तबले पर संगत की है उस्ताद करामतुल्ला खान ने।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित निखिल बैनर्जी का सितार पर बजाया राग रागेश्री। तबले पर संगत की थी उस्ताद करामतुल्लाह खान ने। यह आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है, रात के 11 बजने को है। समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं, पहले हिंदी फिर अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती।

0: पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
1: प्रधानमंत्री ने भारत नॉर्डिक संबंधों में विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले एक दशक में द्विपक्षीय व्यापार में 4 गुना वृद्धि हुई है।
0: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच अनुसंधान, कौशल विकास और प्रतिभा के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालयों, प्रयोगशालाओं और स्टार्टअप तंत्र के स्तर पर सहयोग मजबूत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और नॉर्डिक देश आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण के लिए इटली रवाना हो गए हैं। वे देर रात राजधानी रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। इटली में भारत की राजदूत वाणी सर्राजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा का आदान प्रदान, नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन की यात्रा पर आज दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल पहुंचे। रक्षा मंत्री दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यू बैक के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता रक्षा और सहयोग की समीक्षा करेंगे तथा द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने के लिए नई पहलों पर चर्चा करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में नीट यूजी की दोबारा परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए। इस बीच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में जांच तेज कर दी है। सीबीआई ने महाराष्ट्र के लातूर जिले में स्थित रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस कोचिंग सेंटर में एक और तलाशी अभियान चलाया। सर्वोच्च न्यायालय ने जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेबीज से संक्रमित और जानलेवा कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी है। न्यायालय की पीठ ने देश में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से निपटने के मद्देनजर कई निर्देश जारी किए हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय आरजीकर दुष्कर्म हत्या मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करेगा। भारतीय रेलवे का विद्युतीकरण अब 99.6% तक पहुंच गया है। देश में 69,873 किलोमीटर से अधिक रेलमार्ग का विद्युतीकरण किया जा चुका है। मणिपुर के महान नाटा संकीर्तन गुरु युमनाम जात्रा सिंह को 25 मई को राष्ट्रपति भवन में मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नागरिक अलंकरण समारोह के दौरान यह पुरस्कार प्रदान करेंगी। मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में रातें अधिक गर्म रहने का रेड अलर्ट जारी किया है। कल पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली एनसीआर में भी भीषण लू की चेतावनी है। अगले 2 से 3 दिनों तक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दक्षिण पश्चिम बिहार और उड़ीसा में लू चलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। ENTA and the Nordic nations comprising Norway, Sweden, Denmark, Finland and Iceland have elevated their bilateral ties to a green technology and innovation strategic partnership. Mr. Modi made the announcement while addressing a joint press meet with leaders of Nordic nations after attending the 3rd India-Nordic summit in Norwegian capital Oslo today. Prime Minister Modi said investments from Nordic countries in India rose by 200% in past decade.
0: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लग